मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा।

देवे या ना देवे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना, क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें ना मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी

जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, जो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ? साधु

युग में हनुमान जी कहां, जहां महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे, नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने आपको हम बताएं अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार, बोलिए बोलिए, 5 बार, 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं, पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि

हनुमान जी ने बाल काल में बचपन में लगाई, ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा, वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई?

हाँ हाँ, पहली छलांग बचपन में सूद खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई, जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण

रावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में? जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह हनुमान जी की पांचवी छलांग है। भैया, इन पांच छलांगों से सीखना क्या है? हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं पांच छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ। क्या?

0: हनुमान जी ने क्रमशः जीवन में छलांग लगाई, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं। आहा, हमें एक कथा याद आती है। एक बार श्री चित्रकूट धाम को कौन कौन जानता है, जरा हाथ उठाओ। चित्रकूट को जानते हो? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक धाम चित्रकूट।
1: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी, 137वें एपिसोड में देश विदेश के मुद्दों पर बात रखेंगे। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है नीट पीजी 2026 की परीक्षा, एग्जाम के लिए 2,73,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ, शोभा यात्रा के साथ पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए कलाकारों ने बिखेरे अपने रंग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी, पीएम के सम्मान में पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन। उज्बेकिस्तान की सबसे मशहूर यांगी उज्बेकिस्तान पार्क पहुंचे पीएम मोदी, स्मारक स्तंभ के बाहर प्रधानमंत्री ने तस्वीर भी खिंचवाई। ताशकंद में पीएम मोदी के सम्मान में तिरंगे से रोशन हुआ होटल, भगवा सफेद और हरे रंग से जगमग दिखी इमारत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए आज पीएम मोदी देशवासियों से संवाद करेंगे। 137वें एपिसोड के जरिए देश विदेश के मुद्दों पर रखेंगे बात। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत। चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित फिल्म इंडिया एक्सपो में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा सिनेमा में ही समाज को नई दिशा देने की ताकत है। आज सुबह 9 बजे से होगी नीट पीजी 2026 की परीक्षा, देशभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित कराया जा रहा है एग्जाम। नीट पीजी 2026 के लिए 2,73,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, तमाम जरूरी इंतजामों के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे अपने रंग। साढ़े 450 कलाकार ने बाघों की रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग, जोशीले अंदाज में सड़कों पर किया बाघ नृत्य। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी, आयोजन में शामिल टीमों ने दिखाया अपना हुनर। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट पेंटर्स और ढोल वादकों के को लेकर टीमों में बीच मुकाबला हुआ। रंग बिरंगी वेशभूषा में उत्सव में लगाए चार चंद। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा गजब का उत्साह। समारोह के दौरान शहर की गलियों में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में डीएम ने एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, साफ सफाई के नियमों की अनदेखी मिली। खाना पकाने वाले बर्तनों में गंदगी देखकर डीएम ने जताई नाराजगी, स्वच्छता बहाली के लिए 2 दिन तक रेस्टोरेंट बंद रखने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति सेट कार्यक्रम का समापन हुआ, भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शिरकत की। यूपी में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को निर्देश, तारीख पर तारीख का चलन बंद हो। त्योहारों पर सुरक्षा के साथ बाढ़ राहत के लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। चित्रकूट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है मंदाकिनी नदी, बाढ़ प्रभावित एक दर्जन से ज्यादा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्रकूट के गोबरिया गांव में जल भराव से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे तक बाढ़ में फंसे हुए 16 ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन मुस्तैद। चित्रकूट के बहादुरपुर और तरोहा गांव में भरा बाढ़ का पानी, एसडीआरएफ ने 3 गांवों से 161 लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी ले जा रही है मदद, तो वहीं बोट और नावों के साथ रात दिन राहत बचाव का काम जारी। शोपिया में राम मंदिर की रखी गई नींव, दर्शकों के बाद कश्मीरी पंडितों ने जताई खुशी, पूजा और हवन के बाद राम मंदिर की रखी गई आधारशिला। सैकड़ों कश्मीरी पंडित समारोह में शामिल हुए, कश्मीरी पंडितों के लिए भावुक होने वाला पल, शोपिया में लौटी धार्मिक विरासत की उम्मीद। राम मंदिर बना वापसी और उम्मीद का प्रतीक, राम मंदिर के पुनर्निर्माण ने नई शुरुआत का संदेश दिया। बीरभूम में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तारापीठ मंदिर में लगाई हाजिरी, मां तारा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के हसन में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने पूजा अर्चना की, आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। करगिल की सुरु घाटी में भव्य समर फेस्टिवल का आयोजन, दमसना में संस्कृति और रोमांच का शानदार संगम देखने को मिला। सुरु घाटी में सजा रंगारंग उत्सव, तो वहीं नुनकुन की चोटियों के बीच सजा फेस्टिवल, लोक कलाकारों और गायकों ने बांधा समा। संस्कृति, संगीत और रोमांच से गुलजार हुआ पूरा इलाका, युवाओं और बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध। विदेशी सैलानियों ने चखा लद्दाख की लोकल फूड का स्वाद, पारंपरिक व्यंजनों ने जीता पर्यटकों का दिल। हाथ से बने प्रोडक्ट्स के स्टॉल पर उमड़ी भीड़, लोकल हस्तशिल्प की खरीदारी में दिखा जबरदस्त उत्साह। दरभंगा में बनेगा नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम, 200 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, खेले जा सकेंगे डे नाइट आईपीएल मैच। नए स्टेडियम में हाई मास लाइट्स और बड़ी स्क्रीन होंगी, पुराने नेहरू स्टेडियम की जगह बनेगा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्रिकेट के साथ कई इंडोर गेम्स की सुविधा भी मिलेगी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए बनेगा हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर। देवरिया में 305 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सीएम योगी ने 80 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सड़क और पुल से मजबूत होगी देवरिया की कनेक्टिविटी, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की सुरक्षित वापसी हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला मोर्चा, 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाए अतिरिक्त कोच, रेलवे ने स्पेशल इंतजाम कर भेजा घर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी दिया गया, सरकारी मदद से पर्यटकों की घर वापसी आसान हुई। सकुशल घर लौटने पर पर्यटकों के परिजनों पर चेहरों पर खुशी देखने को मिली, सरकार और रेलवे का शुक्रिया अदा किया। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखी मदद की मिसाल, रेलवे की मदद ने पर्यटकों का हौसला बढ़ाया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी का पुरी के तट पर बनाई भव्य कलाकृति, सुदर्शन पटनायक ने बनाया प्रेयर्स फॉर नेपाल का संदेश। सुदर्शन पटनायक ने नेपाल के लिए प्रार्थना की, 20 फीट चौड़ी रेत की कलाकृति ने संदेश दिया, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। सुदर्शन पटनायक की कला में दिखी संवेदना, सुदर्शन सैंड आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी दिया साथ। सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट जारी हुआ, एनटीए ने परीक्षा के नतीजे घोषित किए, स्कोर कार्ड में नंबर दिखेंगे और क्वालिफाइंग स्टेजेस भी दिखेगा। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह हुई साफ, 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 17 से 18 जुलाई को हुई थी जून सेशन की परीक्षा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी और 8 भारतीय नागरिक शामिल हैं। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई, प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक, पोकलेन और भारी मशीनरी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा है मलबा, रेस्क्यू के लिए लोगों की हेलीकॉप्टर से मदद के लिए सुरक्षित सामग्री और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है उन्हें। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ हेल्थ बेसिलिका शुरू हुआ, समारोह में हर साल देश विदेश से पहुंचते हैं लाखों तीर्थयात्री। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी में नहाया चर्च, 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक उत्सव चलने वाला है। अमेरिका में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मानवता की एकता पर जोर दिया, न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन नाम से आयोजित कार्यक्रम में बोले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, कहा भारत के डीएनए में एकता और विविधता है। मैडिसन स्क्वायर के बाहर भारतीय मूल की महिलाओं ने बांटी राखियां, लोगों को त्योहार की मूल भावना की जानकारी दी गई है। महिला टी20 एशिया कप में आज थाईलैंड से होगा भारतीय टीम का मैच, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जीत किसान टूर्नामेंट में आगाज करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। भारत में अब तक 9 में से 7 बार एशिया कप जीत चुका है भारत। एक ही तारीख पर रिलीज होगी किंग नाम से 2 फिल्में। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से भिड़ेंगे मेगा स्टार नागार्जुन। मेकर्स ने नागार्जुन की 67वें जन्मदिन पर टाइटल और पहली झलक रिवील की। फिल्म का टाइटल किंग 100 रखा गया है। 24 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। हिंदी हॉरर कॉमेडी और एडवेंचर वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द दस्तक देने वाली है। 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। दृश्यम 3 में फिर विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन। नए पोस्टर ने बढ़ाया है सस्पेंस, चेहरे पर तनाव नजर आया। फिल्म 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। एक्टर डॉक्टर शिवा राजकुमार का दिखेगा नया अवतार। ओरिजिनल मॉन्स्टर का मोशन आउट, तो वहीं दमदार लुक ने बढ़ाई एक्साइटमेंट। जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। शिव राजकुमार की बेल टीजर ने मचाया है धमाल। पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में शिव राजकुमार। टीजर रिलीज के बाद से फिल्म का क्रेज बढ़ गया है। अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का दूसरा गाना येश नागुला रिलीज हुआ। नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी ने फिर से धमाल मचाया है। गाने में कीर्ति सुरेश का स्पेशल अपीयरेंस दिखा है। डैलस में हुआ यश नागुला सॉन्ग की शानदार लॉन्चिंग। अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ स्टेज पर नानी का धमाकेदार एंट्री हुई। फैंस ने जमकर सेलिब्रेट किया। 24 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है फिल्म। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर खास संदेश दे रहा है। शिक्षा और इलाज सेवा है, कारोबार नहीं, ये बताया गया है। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो। बोले आज मैं जीना चाहिए सिर्फ मुहावरा नहीं, हाल के हादसों ने जिंदगी की सच्चाई का एहसास कराया है। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग रिलीज हुआ। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि शनि देव का आपकी आयु के साथ, आपके एज के साथ क्या संबंध है और शनि की पूजा करके, उपासना करके आप अपनी आयु को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी आयु के बारे में और शनि के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है और चंद्रमा उसका मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़ कर रखता है, क्योंकि प्राण और मन जुड़ेगा तभी जीवन शुरू होगा और शनि इस प्राण और मन को जोड़े रखता है। इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और किसी व्यक्ति की आयु को बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण बनता है। दुनिया में किसी का भी जन्म हो, बिना शनि के प्रभाव और बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आपने ये तो समझ लिया कि शनि देव का आपके आयु से क्या संबंध है। अब शनि किस प्रकार से आपके आयु पर और आपके जीवन पर असर डालता है। अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है निगेटिवली, तो ये तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर शनि बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो लंबी बीमारी का, मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तब गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ ले जाता है। यानी
शनि से अलग अलग ग्रहों का संबंध जीवन में अलग अलग तरीकों से मृत्यु की स्थिति के बारे में बताता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि कब शनि जीवन में लंबी आयु देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों फेवरेबल पोजीशन में हो, चर राशियों से इनका संबंध हो, तो आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूती से बैठा है और शनि पर ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है, तो भी आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों कुंडली में अनुकूल हों, दोनों कुंडली में फेवरेबल हों, तो ये आयु को लंबा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो और सदाचारी हो, सन्मार्ग पर चलता हो, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा हो, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो विधाता के विधान को बदल सकते हैं, तो अगर व्यक्ति पर किसी सद्गुरु की कृपा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में आयु पर संकट हो या कोई खराब दशा चल रही हो जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल की वृक्ष की जड़ में जल डालें। सुबह के समय शिव जी या कृष्ण जी के मंत्रों का जप करें, और सबसे अच्छा होगा अमृत मृत्युंजय ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करें। शाम के समय शनि देव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। माता पिता के नित्य प्रातः चरण स्पर्श करें। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। मैं आपको फिर बता दूं कि जो व्यक्ति अपना आचरण शुद्ध रखता है, दूसरों की सहायता करता है, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, शनिदेव उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी कुंडली में आपके जीवन में शनि की अशुभ दशा चल रही है, तो शिव जी या श्री कृष्ण की उपासना आप नियमित रूप से करिएगा, आपको राहत मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। लोटे के किनारे लगी हुई रोली
अपने माथे पर लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी, 137वें एपिसोड में देश विदेश के मुद्दों पर रखेंगे बात। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है नीट PG 2026 की परीक्षा, एग्जाम के लिए 2,73,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन, शोभा यात्रा के साथ पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए कलाकारों ने बिखेरे रंग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस खास शो में गुड लक टुडे में हम बात करने जा रहे हैं शनि के शुभ योग की, शनि के शुभ योग कब बनते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
5: अगर आपको हमेशा नौकरी से संबंधित समस्या लगी रहती हो, नौकरी में हमेशा दिक्कत रहती हो, तो दो काम करें, एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें तो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी।
4: चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:36 तक, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब जान लेते हैं हमारे जीवन में शनि की भूमिका के बारे में। पंडित जी, हमारे जीवन में शनि की भूमिका क्या रहती है?
5: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के शुभ योगों के बारे में और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है, नवग्रहों में सेवा का स्वामी है। शनि को न्याय का अधिपति, न्याय का स्वामी भी कहा जाता है। शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है और शनि जीवन में कानून से, नौकरी से, टेक्नोलॉजी से और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली में शनि के शुभ योग हैं तो आप जीवन में प्रगति जरूर करेंगे, जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। अगर शनि शुभता देते हैं जीवन में तो शुभ परिणाम भी थोड़े विलंब से आते हैं।
4: और चलिए आगे बढ़ने से पहले अब वक्त हो चला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
5: मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपको हो सकती है, वाद विवाद में सावधानी रखें, संतान पक्ष का ध्यान दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब जान लेते हैं कि शश योग क्या होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है।
5: शनि के शुभ योगों में सबसे पहला शुभ योग है शश योग। क्या होता है ये, क्या प्रभाव है इसका? देखिए, ये शनि का पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ग्रहों से अलग अलग पंच महापुरुष योग बनते हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो शश योग शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में हो तो ये योग बन जाता है, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में होगा, मकर कुंभ या तुला में होगा, तो शश नामक योग बनेगा। इस योग के होने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से उठकर, बहुत निम्न स्तर से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ये योग व्यक्ति को धन, संपन्नता, संपत्ति जरूर देता है, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद। ये योग धन तो देगा, लेकिन जीवन में मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। अगर कुंडली में ये योग बनता हो तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। अगर पंच महापुरुष योग शनि का आपकी कुंडली में है तो निर्बलों का, अपने से छोटों का आप जितना सम्मान करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम ये योग आपको दे पाएगा।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
5: कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल किसका रहने वाला है
0: जी?

0: 3:50 AM मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का बेटी का करियर कैसा रहेगा, उसका विवाह कब होगा और कैसा होगा। हितेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। अगर आपकी बेटी कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से आपकी बेटी को लाभ होगा। आपकी बेटी की कुंडली मांगलिक है, इसीलिए विवाह के पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए और आपकी बेटी का विवाह उनकी स्वयं की इच्छा से वर्ष 2028 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके बेहतर करियर और जीवन के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न भावना ने हमें दिल्ली से लिखा है। 13 मई 1982 का जन्म है। 1:05 मध्य रात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, जीवन में सुधार कब तक होगा, भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा होगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य की ज्यादातर दिक्कतें देखो मानसिक हैं। चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, चिंताएं और तनाव बहुत है, जिस वजह से आपकी सेहत बिगड़ रही है। कुंडली के हिसाब से आपका बेहतर समय अप्रैल 2027 के बाद शुरू होगा और उसके बाद जीवन आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में 7वें स्थान पर शनि बैठे हुए हैं तो इसका आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है।
0: अगर कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठ जाए तो ये भी शनि की एक शुभता है। इसका प्रभाव क्या है? देखिए, कुंडली के 7वें खाने में, 7वें भाव में अगर शनि बैठे तो शनि 7म भाव में दिग्बली हो जाता है। यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बना देता है, लेकिन ये शनि व्यक्ति के विवाह में विलंब भी करता है और कभी कभी व्यक्ति की शादी अपने से बड़े उम्र की लड़की या लड़के से करवा देता है।

0: सप्तम भाव में अगर शनि हो तो व्यक्ति कर्मठ और अपने परिश्रम से आगे बढ़ने वाला होता है, और सप्तम भाव में अगर शनि हो तो ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हो तो नियमित रूप से शनि देव की पूजा करनी चाहिए। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और शनिवार को निरंतर दान करना चाहिए। ऐसा करने से सातवें भाव के शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जान लेने का वक्त है।
0: तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय प्रयास करने से आपका बन जाएगा। नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पड़ोसियों के साथ विवाद और समस्या हो सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का योग है तो इसका आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ने वाला है।
0: देखिए, शनि और शुक्र का जो योग है, शनि और शुक्र का जो संबंध है, ये भी कुछ विशेष स्थितियों में जीवन में शुभता पैदा करता है। शनि स्थिरता का स्वामी है और शुक्र वैभव का स्वामी है। दोनों का अगर संबंध बनता है तो कुंडली में एक शुभ योग आसानी से बन जाता है। ये योग तभी प्रभावशाली होता है जब शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तब ये योग नहीं बनेगा। शुक्र शनि का संबंध अगर तुला लग्न में या वृषभ लग्न में बने तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे, इसके परिणाम सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। शनि शुक्र का अगर अनुकूल संबंध हो तो व्यक्ति को राज्य सुख की और अपार वैभव की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में ये योग बना हुआ है तो नियमित रूप से निर्धनों को क्वाइंस का यानी सिक्कों का अगर आप दान करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपकी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपका तीसरा सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, तीसरा सवाल आज का किसका रहने वाला है?
0: जी, अगला प्रश्न पंकज जी ने हमें लिखा है और पंकज जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1985, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। पंकज कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक मैं नौकरी कर रहा था, अभी मेरी नौकरी चली गई है, तो क्या अब आगे मुझे कोई व्यापार करना चाहिए और किस चीज का मैं व्यापार करूं तो मेरे लिए बेहतर होगा? पंकज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अब व्यापार में जाना चाहिए और अगर अब आप खाने पीने की चीजों का, कपड़ों का, दवाइयों का ऐसा कोई व्यापार करें तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और बिल्कुल सही समय है, आप अपने व्यापार का आरंभ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अकेले व्यापार करिएगा, पार्टनरशिप में मत जाइएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के चौथे और अंतिम सवाल का, आपका सवाल। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अंतिम प्रश्न आकांक्षा ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं। आकांक्षा की जन्म तारीख है 3 सितंबर 1994, जन्म का समय सुबह के 7:55, जन्म स्थान है प्रयागराज। आकांक्षा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आकांक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और अब से लेकर के जून 2027 के पहले आपकी शादी होनी चाहिए। प्रयागराज के आसपास में ही आपके विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपका क्रोध और आपकी वाणी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आज हमने पंडित जी से जान लिया कि शनि के शुभ योग में क्या कुछ असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि अगर हमारी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग बन रहा है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है।
0: जी देखिए, शनि की अशुभता आपके जीवन में है, इसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है, जो प्रभाव है, वो ये है कि आप जीवन में निरंतर संघर्ष करते जाएं और आपको सफलता बिल्कुल ना मिले। शनि की शुभता में भी संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन शनि की शुभता में संघर्ष के बाद के परिणाम बड़े बेहतर होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग है जिसकी वजह से आपका संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, निरंतर चलता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले या तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की खूब उपासना करिए। दूसरा, निर्धनों की सेवा सहायता दान करिए। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करें, अपना खान पान, अपना आचरण शुद्ध और सात्विक रखें, तो शनि के अशुभ योग का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 30 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 30 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में स्थिरता आएगी, धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा, विवाह और संतान के मामलों में हालांकि विलंब होगा, स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि जब हम सामान्यतः पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं, पंचामृत में तुलसी दल कब नहीं डालना चाहिए? अगर पंचामृत भगवान विष्णु या उनके अवतारों को अर्पित करना है तो उसमें तुलसी दल डालना आवश्यक होता है। लेकिन अगर पंचामृत शिव जी को अर्पित करना है तो इसमें भूल कर भी तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। जो पंचामृत शिव जी को अर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 30 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 30 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की गुडलक राशि के बारे में जान लेने का।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी किस कमजोरी पर ध्यान दें और क्या जीवन में जरूर करें। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपको हमेशा विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा रहेगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या होगा।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, सूर्य के कारण आपको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद जरा सा गुड़ का सेवन करिए और हर रविवार हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर कर्म भूमि द्वारका तक किशन कन्हैया बंसी बजैया के जन्म पर बधाइयां बजने वाली है, क्योंकि अब श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की बिक्री भी हो गई है।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महा उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं, जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहां पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसे ही एक खूबसूरत पहचान है। सितंबर में BAPS के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है।
5: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि बैप्स के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। बैप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में बैप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। बैप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। बैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। बैप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और पेरिस के पास बना बैप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत। चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी, शनिवार के दिन 468 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दुनिया भर से नेपाल को भेजी जा रही है राहत सामग्री। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे। नागपुर स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ, अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदायों से मुलाकात की। 2 दिन बाद बिश्केक के SCO समिट में होंगे शामिल। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है नीट PG 2026 की परीक्षा। एग्जाम के लिए 273,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ। शोभा यात्रा के साथ पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए कलाकारों ने बिखेरे अपने रंग।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय के नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी, पीएम के सम्मान में पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। उज्बेकिस्तान की सबसे मशहूर यांगी उज्बेकिस्तान पार्क पहुंचे पीएम मोदी, स्मारक स्तंभ के बाहर प्रधानमंत्री ने तस्वीर भी खिंचवाई। ताशकंद में पीएम मोदी के सम्मान में तिरंगे से रोशन हुआ होटल, भगवा सफेद और हरे रंग से जगमग दिखी इमारत। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए आज पीएम मोदी देशवासियों से संवाद करेंगे। 137वें एपिसोड के जरिए देश विदेश के मुद्दों पर बात रखेंगे। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत। चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फिल्म इंडिया एक्सपो में पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा सिनेमा में समाज को नई दिशा देने की ताकत है। नीट PG 2026 की परीक्षा शुरू, देश भर में एक ही शिफ्ट में आयोजित कराया जा रहा है एग्जाम। नीट पीजी 2024 के लिए 2,73,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, तमाम जरूरी इंतजामों के साथ सीसीटीवी कैमरों में निगरानी। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे रंग। 450 कलाकारों ने बाघों की रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग, जोशीले अंदाज में सड़कों पर किया बाघ नृत्य। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियों की बनी आकर्षण का केंद्र बनी, तो वहीं आयोजन में शामिल टीमों ने दिखाया अपना हुनर। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट पेंटर्स और ढोल वादकों को लेकर टीमों में मुकाबला हुआ। रंग बिरंगी वेशभूषा ने उत्सव में लगाई चार चांद। पुलिकोटू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा गजब का उत्साह। समारोह के दौरान शहर की गलियों में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में डीएम ने एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, साफ सफाई के नियमों की मिली अनदेखी। खाना पकाने वाले बर्तनों में गंदगी देखकर डीएम ने जताई नाराजगी, स्वच्छता बहाली के लिए 2 दिन तक रेस्टोरेंट बंद रखने के निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति सैट कार्यक्रम का आज समापन हुआ, तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शिरकत की। यूपी में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे की देरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई, अधिकारियों को निर्देश दिया तारीख पतारीख का जलन बंद हो। त्योहारों पर सुरक्षा के साथ बाढ़ राहत में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, प्रभावित इलाकों के जिला अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। चित्रकूट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मंदाकिनी नदी, बाढ़ प्रभावित एक दर्जन से ज्यादा गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चित्रकूट के गोबरिया गांव में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे तक बाढ़ में फंसे हुए 16 ग्रामीणों का किया सफल रेस्क्यू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन मुस्तैद। चित्रकूट के बहादुरपुर और तरौहा गांव में भरा बाढ़ का पानी, एसडीआरएफ ने 3 गांवों से 161 लोगों का रेस्क्यू किया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, बोट और नावों के साथ रात दिन राहत बचाव का काम जारी है। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के दरवाजे, हालात पर प्रशासन की नजर। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच उफान पर आई कई नदियां, तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश के चलते बदले हालात, तो वहीं गांव के धमलपुर नाला पुल से ऊपर 2 फीट तक भरा पानी। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ बड़ा गंगा का कटान, कई मकानों के गिरने का खतरा, खाली कराए गए घर। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखा शानदार नजारा, सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल का मंदिर परिसर में हुआ स्वागत, भव्य आरती के बीच जयकारों से गूंज उठा गर्भगृह। गंगा स्नान के दौरान लेटे हुए हनुमान जी का किया गया भव्य श्रृंगार, सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर के तट पर पानी का उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना जारी, महादेव का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। भारत से नेपाल की सहायता के लिए भेजी गई चौथी खेप, 11 टन राहत सामग्री शामिल। 220 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के लिए भी भेजा गया सामान, 16 ट्रकों से नेपाल पहुंचा सामान। सात और बेली ब्रिज बनाने के लिए भी जल्द से जल्द भेजा जाएगा सामान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारत की ओर से अब तक लगभग 69 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है काठमांडू, इसमें जरूरी दवाएं, पोर्टेबल जनरेटर सेट और खाने के पैकेट और पानी शामिल है। 11 सदस्यीय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम भी नेपाल भेजी गई है, टनल में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भी भारतीय रेस्क्यू टीम मदद कर रही है। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से नागपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे हैं पर्यटक। मुश्किल हालात के बीच भारतीय रेलवे ने संभाला मोर्चा, 106 पर्यटकों के लिए रेलवे ने लगाए अतिरिक्त कोच, रेलवे ने स्पेशल इंतजाम कर घर भेजा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पर्यटकों को नाश्ता पानी भी दिया गया, सरकारी मदद से पर्यटकों की घर वापसी आसान की गई। सकुशल लौटने पर पर्यटकों के परिजनों पर चेहरों पर खुशी नजर आई, सरकार और रेलवे का शुक्रिया अदा किया, नेपाल से लौटे हुए पर्यटकों ने बयां किया अपना अनुभव। नेपाल की त्रासदी के बीच दिखी मदद की मिसाल, रेलवे की मदद ने पर्यटकों का हौसला बढ़ाया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नेपाल त्रासदी पर पुरी के तट पर बनाई भावुक कलाकृति, सुदर्शन पटनायक ने बनाया प्रेयर्स फॉर नेपाल का संदेश। सुदर्शन पटनायक ने नेपाल के लिए प्रार्थना की, 20 फीट चौड़ी रेत की कलाकृति ने संदेश दिया, मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ भारत खड़ा है। सुदर्शन पटनायक की कला में दिखी संवेदना, सुदर्शन सैंड आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी साथ दिया है। CSIR UGC नेट जून 2026 का रिजल्ट जारी, NTA ने परीक्षा के नतीजे घोषित किए, स्कोर कार्ड में दिखेंगे नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह हुई साफ, 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 17 से 18 जुलाई को हुई थी जून सेशन की परीक्षा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी और 8 भारतीय नागरिक शामिल हैं। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई, प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक, पोकलेन और भारी मशीनरी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा है मलबा, रेस्क्यू के लिए लोगों की हेलीकॉप्टर से मदद के लिए सुरक्षित सामग्री और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है उन्हें। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ हेल्थ बेसिलिका शुरू हुआ, समारोह में हर साल देश विदेश से पहुंचते हैं लाखों तीर्थयात्री। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी में नहाया चर्च, 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक उत्सव चलने वाला है। अमेरिका में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मानवता की एकता पर जोर दिया, न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन नाम से आयोजित कार्यक्रम में बोले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, कहा भारत के डीएनए में एकता और विविधता है। मैडिसन स्क्वायर के बाहर भारतीय मूल की महिलाओं ने बांटी राखियां, लोगों को त्योहार की मूल भावना की जानकारी दी गई है। महिला T20 एशिया कप में आज थाईलैंड से होगा भारतीय टीम का मैच, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया, भारत में अब तक 9 में से 7 बार एशिया कप जीत चुका है भारत। एक ही तारीख पर रिलीज

100 रखा गया है। 24 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। हिंदी हॉरर कॉमेडी और एडवेंचर वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत ओटीटी पर जल्द दस्तक देने वाली है। 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। दृश्यम 3 में फिर विजय सलगांवकर बनेंगे अजय देवगन। नए पोस्टर ने बढ़ाया है सस्पेंस, चेहरे पर तनाव नजर आया। फिल्म 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। एक्टर डॉक्टर शिवा राजकुमार का दिखेगा नया अवतार, ओरिजिनल मॉन्स्टर का मोशन आउट। तो वहीं दमदार लुक ने बढ़ाई एक्साइटमेंट, जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। शिव राजकुमार की बेल टीजर ने मचाया है धमाल, पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका में शिव राजकुमार। टीजर रिलीज के बाद से फिल्म का क्रेज बढ़ गया है। अपकमिंग फिल्म द पैराडाइज का दूसरा गाना येश नागुला रिलीज हुआ। नानी और कीर्ति सुरेश की जोड़ी ने फिर से धमाल मचाया है। गाने में कीर्ति सुरेश का स्पेशल अपीयरेंस दिखा है। डैलस में हुआ यश नागुला सॉन्ग की शानदार लॉन्चिंग, अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ स्टेज पर नानी का धमाकेदार एंट्री हुई। फैंस ने जमकर सेलिब्रेट किया। 24 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है फिल्म। बांग्ला फिल्म डॉक्टर काकू का ऑफिशियल ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर खास संदेश दे रहा है। शिक्षा और इलाज सेवा है, कारोबार नहीं, ये बताया गया है। एक्टर अनुपम खेर ने शेयर किया भावुक वीडियो, बोले आज मैं जीना चाहिए सिर्फ मुहावरा नहीं, हाल के हादसों ने जिंदगी की सच्चाई का एहसास कराया है। फिल्म प्रेम कीटाणु का दूसरा सॉन्ग रिलीज हुआ। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 31 अगस्त को नई फिल्म दायरा का ट्रेलर रिलीज होगा। फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन का अहम रोल है। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मिर्जापुर द मूवी की एडवांस बुकिंग कल से शुरू होने वाली है। 4 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म रेस 4 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ की एंट्री हुई। फिल्म में आमिर खान अहम रोल में नजर आएंगे। सलार 2 में हुई धरा शौर्यांग की एंट्री। फिल्म में प्रभास के पिता के रोल में नजर आएंगे धरा। इटली के कॉस्टल गोंडोल्फो में पोप लियो ने लेक एल्बनो की पारंपरिक धार्मिक शोभा यात्रा में नाव से शिरकत की। ऐसा करने वाले इतिहास के पहले पोप बने। चर्च में मैरी और जूसस की प्रतिमा के साथ जुलूस निकाला गया। झील के बीच से गुजरे शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। लेक एल्बेनो में पोप लियो उसी नाव पर सवार हुए जिस पर मैरियन प्रतिमा मौजूद थी। शोभा यात्रा के बाद पोप ने लोगों को प्रेम, दान और क्षमा का रास्ता अपनाने का संदेश दिया। कहा, नफरत और बुराई को इंसानियत पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पोप लियो ने युद्ध से घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना भी की। सार्वजनिक जीवन के जिम्मेदार लोगों से न्याय, स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और जन कल्याण को बढ़ावा देने। अरागोन में मार्क मार्केज ने अपने छोटे भाई एलेक्सन को हराकर स्प्रिट रेस जीती। तो वहीं घरेलू मैदान पर मार्केज ने दबदबा कायम रखा है। मार्क मार्केज ने जीत के साथ अरागोन में स्प्रिंट जीत की हैट्रिक लगाई। रेस में मार्क के छोटे भाई एलेक्सन ने हासिल किया दूसरा स्थान। फिनलैंड के सामी पजारी ने टोयोटा जीआर यारिस रैली 1 में अपनी बढ़त को कायम रखा है। कार के रियर विंग को नुकसान के बावजूद 22 सेकंड की बनाई लीड। रेस में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं न्यूजीलैंड के हेडन पैडन। 2018 के बाद हुंडई के साथ पहली बार लीड की दौड़ में पहुंचे पैडन। वेल्स के एल्फिन एवांस 55.3 सेकंड पीछे तीसरे नंबर पर हैं। तो वहीं पिछली रेस में टायर डिलिमिनेशन में नुकसान हुआ था, इसके बाद लगातार वापसी कर रहे हैं एवांस। ब्रिटेन की फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नॉरिस का मैकलरन के साथ नया करार हुआ। F1 चैंपियन ने कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक बढ़ाया। मैकलरन में ही करियर खत्म करना चाहते हैं नॉरिस। करार में 2030 के बाद का मल्टी ईयर ऑप्शन भी है।
मैकलेरन से नॉरिस को मिला बेहद खास तोहफा। मैकलेरन

0: चैंपियन बनने वाली MCL 39 कार गिफ्ट की। स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस वुएल्टा में आंद्रियास लुकेनसुंड का जलवा देखने को मिला। नॉर्वे की राइडर अंजिता सेज 7। करीब 150 किलोमीटर की रेस में बने चैंपियन, तो वहीं टोबियास योहानसेन रहे दूसरे नंबर पर। चाइना में खुला देश का पहला कैट थीम पार्क, तो वहीं हाइलो गजियांग में 150 स्ट्रे कैट्स का बना नया घर। पुराने एम्यूजमेंट पार्क को दिया गया नया रूप। स्कारलेट स्प्रिंग्स में स्ट्रे कैट्स के लिए बना खास पार्क, बिल्लियों के साथ वक्त बिताने का अनोखा ठिकाना। विजिटर्स स्ट्रे कैट्स को खिला सकते हैं खाना। दिल्ली की विशाल मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, कैट थीम पार्क के कई अनोखे स्पॉट बनाए गए। पंजे के आकार का लॉन ने भी खींचा दर्शकों का ध्यान। हांगकांग में ई विटोल को पहले टेस्ट फ्लाइट, तो वहीं ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट ने भरी सफल उड़ान। हवा में उड़ा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ई विटोल ने, टेक ऑफ हावरिंग और लैंडिंग की, तो वहीं इससे सफर मिनटों में पूरा करने की तैयारी है और 1,00,000 से ज्यादा उड़ाने भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ISS के अंतरिक्ष यात्रियों से बात की। ह्यूस्टन में नासा सेंटर पहुंचकर किया संवाद, ISS क्रू से बातचीत में शुभकामनाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बनेगी नई स्पेस अकेडमी, मिलिट्री सर्विस अकेडमी की तर्ज पर होगी तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान अंतरिक्ष यात्री दिखे बेहद उत्साहित। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्री जैक हैथवे के मूंछ की तारीफ की। बोले डोनाल्ड ट्रंप, मुझे भी चाहिए ऐसी मूंछ। ये सुनकर सभी एस्ट्रोनॉट्स के चेहरों पर दिखी मुस्कान। आर्टेमिस 2 के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ा सम्मान, डोनाल्ड ट्रंप ने चंद्र मिशन के लिए किया कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर का ऐलान। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में ऐतिहासिक उपलब्धि पर मेडल दिया गया। सम्मान समारोह के बाद खास पल देखने को मिला। आर्टेमिस 2 क्रू ने डोनाल्ड ट्रंप को नासा जैकेट दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत। चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी, शनिवार के दिन 468 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दुनिया भर से नेपाल को भेजी जा रही है राहत सामग्री। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे। नागपुर स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ, अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, सेना के हेलीकॉप्टर से 2 लोग एयरलिफ्ट किए गए, अब तक 350 का रेस्क्यू। प्रयागराज गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लेटे हनुमान मंदिर में घुसा पानी, ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ते जलस्तर का स्वागत, तो वहीं हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उज्बेकिस्तान दौरे पर ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय से मुलाकात की, 2 दिन बाद बिश्केक के SCO समिट में होंगे शामिल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजय संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही थी।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग अंजने का है।
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चलना और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एकमात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
3: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। तो वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
4: लोगों का लोगों से मिलन होना
5: हम यही चाहते हैं और उसका यही उत्तम उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
4: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthday.
5: People to people
4: will connect through Ramayana.
5: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
6: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया, हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: सच्चाई सा का मार्ग कौन? इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़े तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए।
0: साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विषय, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीड़नम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: उज्बेकिस्तान दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया को दिया योग से सेहत का संदेश। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी, शनिवार के दिन 468 लोगों को किया गया रेस्क्यू, दुनिया भर से नेपाल को भेजी जा रही है राहत सामग्री। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे, नागपुर स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ, अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, सेना के हेलीकॉप्टर से 2 लोग एयरलिफ्ट किए गए, अब तक 350 का रेस्क्यू। प्रयागराज गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लेटे हनुमान मंदिर में घुसा पानी, ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ते जलस्तर का स्वागत किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव का आपकी आयु के साथ, आपके एज के साथ क्या संबंध है और शनि की पूजा करके, उपासना करके आप अपनी आयु को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:36 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी आयु के बारे में और शनि के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है और चंद्रमा उसका मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़ कर रखता है, क्योंकि प्राण और मन जुड़ेगा तभी जीवन शुरू होगा और शनि इस प्राण और मन को जोड़े रखता है। इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और किसी व्यक्ति की आयु को बढ़ा भी सकता है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का और शुरुआत का कारण बनता है। दुनिया में किसी का भी जन्म हो, बिना शनि के प्रभाव और बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से सावधान रहें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि शनि देव का आपके आयु से क्या संबंध है। अब शनि किस प्रकार से आपके आयु पर और आपके जीवन पर असर डालता है? अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है निगेटिवली, तो ये तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर शनि बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो लंबी बीमारी का, मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि आयु के लिए असर डालता है तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तब गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ ले जाता है। यानी शनि से अलग अलग ग्रहों का संबंध जीवन में अलग अलग तरीकों से मृत्यु की स्थिति के बारे में बताता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब शनि जीवन में लंबी आयु देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों फेवरेबल पोजीशन में हो, चर राशियों से इनका संबंध हो, तो आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूती से बैठा है और शनि पर ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है तो भी आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों कुंडली में अनुकूल हों, दोनों कुंडली में फेवरेबल हों, तो ये आयु को लंबा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो और सदाचारी हो, सन्मार्ग पर चलता हो, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर सद्गुरु की कृपा हो, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो विधाता के विधान को बदल सकते हैं, तो अगर व्यक्ति पर किसी सद्गुरु की कृपा हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में आयु पर संकट हो या कोई खराब दशा चल रही हो जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल की वृक्ष की जड़ में जल डालें। सुबह के समय शिव जी या कृष्ण जी के मंत्रों का जप करें और सबसे अच्छा होगा अमृत मृत्युंजय ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करें। शाम के समय शनि देव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। माता पिता के नित्य प्रातः चरण स्पर्श करें, निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करें। मैं आपको फिर बता दूं कि जो व्यक्ति अपना आचरण शुद्ध रखता है, दूसरों की सहायता करता है, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, शनिदेव उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पड़ोसियों से समस्या हो सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा,
सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का

बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी कुंडली में आपके जीवन में शनि की अशुभ दशा चल रही है तो शिव जी या श्री कृष्ण की उपासना आप नियमित रूप से करिएगा, आपको राहत मिलेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। लोटे के किनारे लगी हुई रोली अपने माथे पर लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर
3: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है? और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है? रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुडलक स्पेशल में।

हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो, फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें, बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा, बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही। और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए।

मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया, जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत, असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलो, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे हैं, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी को कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा।

भजना दे बे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। अच्छा देखो तो धनरे अंग्रेजी का जमाना क्या जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया, गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी एसी काले भूरे बिलैया छाप ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे, हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे बैल कम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं कुत्तों से सावधान। बताओ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए, चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा।

हनुमान जी कौन? जिन्हें ना मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराराम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो

जिनका चारों युगों में प्रताप है, यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में बानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपित ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है, तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहाँ? अरे भैया कहाँ नहीं, जो हम उत्तर दे देते हैं, कहाँ?

जहाँ जहाँ संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहाँ? जहाँ महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो, छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत है। बोलो जय सिया राम। देखा, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए, 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं, पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहुं भयो निहारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा हा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई? संजीवनी

पहली छलांग बचपन में सूद खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई, आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई, जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है, पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में, जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज्य अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। यह हनुमान जी की पांचवी छलांग है। भैया इन पांच छलांगों से सीखना क्या है, हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं पांच छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ, क्या

क्रमशः जीवन में छलांग लगाई, इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर गुड।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
19: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है? और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है? रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुडलक स्पेशल में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: उज्बेकिस्तान दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया को दिया योग से सेहत का संदेश। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी, शनिवार के दिन 468 लोगों को किया गया रेस्क्यू, दुनिया भर से नेपाल को भेजी जा रही है राहत सामग्री। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे, नागपुर स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ, अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, सेना के हेलीकॉप्टर से 2 लोग एयरलिफ्ट किए गए, अब तक 350 का रेस्क्यू। प्रयागराज गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लेटे हनुमान मंदिर में घुसा पानी, ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ते जलस्तर का स्वागत किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रफाल एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान रहता है। रफाल की ताकत और तकनीक ही कुछ ऐसी है कि रण क्षेत्र में दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रफाल की बेमिसाल खूबियां ही सबसे बड़ी वजह है कि दुश्मन रफाल के रण कौशल को डिकोड करने की कोशिश में लगा रहता है। खबर है कि चीन रफाल के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताकि रफाल की बारीकियों को समझा जा सके।
1: चीन और मिस्र के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज मिस्र में हो रही है जिसमें चीन के J-16 फाइटर जेट सीधा रफाल के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्या इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि चीन रफाल की क्षमताओं को परखना चाहता है? क्या चीन रफाल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बना है?
0: 23 अगस्त को चीन मिस्र संयुक्त एयर एक्सरसाइज में J-16 और रफाल आमने सामने आए। इस एक्सरसाइज में चीन के J-16 और मिस्र के रफाल के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई। ये पहली रिपोर्टेड ट्रेनिंग थी जिसमें किसी चीनी फाइटर ने रफाल के साथ सीधे कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल में पूरा युद्ध जैसा ही सीन था। एक और चाइनीज J-16 गरज रहे थे तो दूसरी तरफ रफाल जेट्स।
1: दरअसल मिस्र में चीन के फाइटर पायलट्स वहां की सेना और रफाल के साथ सीधे तौर पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं जिसमें पहली बार चीन के पायलट्स किसी पश्चिमी देश में बने 4.5 जेनरेशन के रफाल फाइटर जेट के साथ अभ्यास कर रहे हैं और उसकी बारीकियों को जानने समझने की कोशिश की जा रही है।
0: ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए चीन को रफाल की क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई युद्ध की रणनीतियों को समझने का मौका मिल सकता है।
2: जो चाइना और इजिप्ट की एक्सरसाइज हो रही है, एक लंबी एक्सरसाइज है और इसका नाम दिया गया है ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026। ये दिखाता है कि दो सिविलाइजेशन की एक्सरसाइज, इजिप्ट की भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सो इज चाइना, तो इसका नाम बड़ा ही एप्ट रखा है। अब दो बड़े प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट, एक राफेल जो 4.5 जनरेशन है और साथ में F-16 वो भी 4.5 जनरेशन है। बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, जिस तरीके से डीप स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक करते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। तो जब दोनों एक साथ हवा में उड़ेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे दोनों देशों को पता लगेगा विच एयरक्राफ्ट इज बेटर। हालांकि दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, किस तरीके से आप उसको कॉम्बैट एयर में इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा।
0: भारतीय वायुसेना ने LSC पर रफाल को तैनात कर रखा है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चीन वॉर एक्सरसाइज के जरिए रफाल की कमजोरियों और उसकी उड़ान सीमाओं को समझना चाहता है। मिस्र के रफाल के साथ J-16 फाइटर के एक्सरसाइज से चीन क्या डिकोड कर सकता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रफाल का एरोडायनामिक्स और युद्ध क्षमता जानना, जिसमें रफाल का टर्न रेट यानी कि ये हवा में कितनी तेजी से मुड़ सकता है, क्लाइंब रेट क्या है और ये क्लोज रेंज डॉग फाइट में रफाल कितनी ऊर्जा बरकरार रखता है। दूसरा है रफाल का बेसिक रडार सिग्नेचर पता लगाना। चीन के J-16 के ऐसा रडार मिस्र के रफाल का रडार क्रॉस सेक्शन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि रफाल उनके रडार पर कितनी दूरी से दिखाई दे सकता है। और तीसरा पश्चिमी युद्ध रणनीति, मिस्र की वायुसेना फ्रांसीसी और अमेरिकी युद्ध शैलियों का पालन करती है। इसके खिलाफ लड़कर चीनी पायलट पश्चिमी वायुसेनाओं की हवाई रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: अभी तक चीन के फाइटर जेट्स का मुकाबला केवल ब्रिटिश और रशियन मूल के फाइटर जेट्स के साथ ही हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे खुद चीन एक मौके के तौर पर देख रहा है, जहां पर मिस्र में इस अभ्यास में उसे किसी पश्चिमी देश, खास तौर पर फ्रांस के लड़ाकू विमान रफाल के साथ सीधे एक्सरसाइज करने का मौका मिला।
0: रक्षा जानकारों का मानना है कि एक युद्धाभ्यास से रफाल की सभी क्षमताओं या कमजोरियों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चीन के लिए इसकी अहमियत जरूर है। पहली बार J-16 को रफाल के खिलाफ सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट का प्रत्यक्ष अनुभव मिला है और यही अनुभव भविष्य की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को प्रभावित कर सकता है। चीन राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिटियोर मिसाइल के रडार सिग्नेचर को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। ऐसा करने से चीनी डिफेंस सिस्टम को राफेल में लगी मिसाइलों को जाम करने या फिर उन्हें चकमा देने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
2: देखिए, चाइना जब किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है, जब भी कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है, उसके कई सारे मैनी फोल्ड एम्स होते हैं। सबसे बड़ा एम तो यह है कि विश्व में वो J-16 का मार्केट खोज रहा है। दूसरी तरफ वो जब राफेल के साथ उड़ेगा तो राफेल की कमियों को वो नोटिस करेगा और अपने सिस्टम में वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा। और साथ में हिंदुस्तान के पास आज की डेट में राफेल है तो इन सारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मकसद तो एक यही है कि राफेल के कंपटीशन में J-16 को पिच करके अपने वर्ल्ड में मार्केट पकड़ना, और दूसरा अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी उसको ऑपरेशनली कमिट करना पड़ा J-16 तो वो राफेल को कैसे काउंटर करेगा, ये इसका अल्टीरियर एम है।
0: राफेल विमान का स्पेक्ट्रा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर राफेल एयरक्राफ्ट एक बेहद उन्नत और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो राफेल लड़ाकू विमान को दुश्मन के खतरों के खिलाफ अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, जानना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रा से राफेल को 360 डिग्री सुरक्षा और डिटेक्शन मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल वार्निंग के जरिए ये विमान के चारों तरफ और 360 डिग्री की कवरेज देता है। लंबी दूरी से ही दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेजर और इंफ्रारेड खतरों को समय रहते भापा जा सकता है। दुश्मन का रडार या मिसाइल किसी दिशा से आ रहे हों, यह उसकी सटीक लोकेशन पायलट को बताता है। स्पेक्ट्रा के जरिए आक्रामक और रक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार जैमिंग, स्मार्ट डिकॉय, एक्स गार्ड डिकॉय के जरिए राफेल की सुरक्षा तय होती है। रडार जैमिंग के लिए राफेल में एक्टिव फेज्ड एरे रडार जैमर्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जाम कर सकते हैं। स्मार्ट डिकॉय में ये सिस्टम इंफ्रारेड फ्लेयर्स और चाफ छोड़ता है ताकि थर्मल या फिर रडार गाइडेड मिसाइल मिसगाइड होकर राफेल के बजाय नकली मशीनों पर वार करते। एक्स गार्ड डिकॉय में एडवांस टोड डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये स्मार्ट बॉडी डबल या छलावे के रूप में काम करता है। उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर एक्स गार्ड डिकॉय का इस्तेमाल होता है जिसमें एडवांस टोड डिकॉय को विमान के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हवा में छोड़ दिया जाता है। एआई की मदद से डिकॉय हूबहू उसी लड़ाकू विमान के रडार क्रॉस सेक्शन, डॉपलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की नकल करता है जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकर भ्रमित हो जाते हैं और वो असली लड़ाकू विमान के बजाय डिकॉय को ही असली विमान मानकर उस पर लॉक कर देते हैं।
2: देखिए, एक्स गार्ड डिकॉय एक ऐसा सिस्टम है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब एयरक्राफ्ट किसी मिशन में जाता है या बियॉन्ड विजुअल रेंज से किसी मिसाइल को लॉन्च करता है और कहीं हवा में उसको ये महसूस होता है कि दुश्मन के रडार ने उसको लॉक कर लिया या दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर मिसाइल डालने के लिए उसको लॉक कर रखा है, ऐसे समय में एक्स गार्ड डिकॉय को वो रिलीज करता है। एक्स गार्ड डिकॉय कुछ नहीं बल्कि एक 100 मीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक डिकॉय सिस्टम है जिसका की वजन 30 kg होता है। वो 100 मीटर दूर एक स्टिंग आप समझ लीजिए उससे जुड़ा हुआ वो हवा में आता है। तो जब वो एयर में इस तरीके से उड़ता है तो जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की लोकेशन है वो डिकॉय रडार पे दिखाता है और जो मिसाइल जो लॉकिंग की हुई है आज की डेट में जब वो हवाई जहाज के नजदीक आती है तो उस डिकॉय को डिस्ट्रॉय करती है।
0: स्पेक्ट्रा में एक सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट होता है यानी कंप्यूटर यूनिट जो सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में जोड़ता है। खतरा दिखने पर यह सिस्टम बिना किसी देरी के पायलट को सबसे सटीक पैतरेबाजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई करने का सुझाव देता है। आसान भाषा में अगर स्पेक्ट्रा को समझना हो तो सीधे तौर पर यह एक तरीके से राफेल के रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। हवा या फिर जमीन से आने वाले किसी भी खतरे को यह भटका सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने हाल ही में स्पेक्ट्रा के नए F4 वर्जन को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ कितना गहरा है। चीन रफेल के खिलाफ हवाई युद्ध से जो भी डेटा और खुफिया जानकारियां जुटा रहा है उसे वो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझा भी कर सकता है और इससे पाकिस्तान को भी भारतीय रफेल से निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ इतना गहरा है कि दोनों देश इसे आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। ये सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि संयुक्त हथियार विकास, खुफिया जानकारी साझा करने, परमाणु सहयोग और रणनीतिक सैन्य अड्डों तक फैल चुका है जिसका अहम मकसद भारत को घेरना है।
2: आसिम मुनीर कई बार चाइना के विजिट कर चुके हैं और चाइना पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटजी

0: या अदरवाइज गैदर कर रहा, उसका वो शेयरिंग पाकिस्तान से जरूर करता और पाकिस्तान को अपने हथियार बेचता है, J-16 बेचता है, तमाम तरीके के फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जो J-सीरीज के एयरक्राफ्ट है वो भी बेचने की बात है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो इस फ्रंट पे उलझा के रखना चाहता है।
1: सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 70% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आता है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक J-10CE फाइटर जेट दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत के राफेल के मुकाबले तैनात करता है। चीन पाकिस्तानी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके तहत टाइप 054AP जियांगकाई 2 क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और हैंगर क्लास टाइप 039B पनडुब्बियां शामिल हैं जो समुद्र में भारत की घेराबंदी के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना चीन में बने BT-4 मेन बैटल टैंक और SH-15 होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही है। चीन सिर्फ हथियार बेचता नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उनका निर्माण भी करता है जिससे पाकिस्तान आत्मनिर्भर दिखने की कोशिश करता है। आधुनिक युद्ध रणनीति में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। चीन अपने सैटेलाइट जैसे ब्यूडो नेविगेशन सिस्टम के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता है। हाल के वर्षों में चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार को चकमा देने वाली तकनीकों जैसे होलोथीरियन एंटी रडार डिकॉय सिस्टम पर एक साथ काम करना तेज कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं साल भर उच्च स्तरीय अभ्यास करती हैं जिससे दोनों की युद्ध प्रणालियां आपस में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं, यानी दो दुश्मनों की सांठगांठ भारत के लिए खतरा पैदा करती है। और अब मिस्र में राफेल के साथ J-16 के एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नजरें भी चीन पर ही टिक गई हैं। वैसे देखा जाए तो चीन मिस्र में राफेल के साथ जिस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है उसमें इसके बुनियादी ढांचे को परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ये बात भूल रहा है कि वो राफेल के बाहरी ढांचे को तो परख सकता है लेकिन उसकी आत्मा को परखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के पास जो राफेल है वो मिस्र के राफेल से बहुत अलग है। इसीलिए चीन के लिए राफेल को, खासतौर पर भारतीय राफेल को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। चीन मिस्र के राफेल का डाटा ले रहा है लेकिन भारतीय राफेल फिर भी सुरक्षित है। भारत ने इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स यानी कि भारत ने फ्रांस से जो राफेल खरीदे हैं उनमें 13 विशेष बदलाव करवाए हैं जिसमें कोल्ड स्टार्ट क्षमता, खतरनाक हथियारों का पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और ट्रैकिंग समेत कई तकनीकें जोड़ी गई हैं। लद्दाख और अरुणाचल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में युद्ध के नियम काफी हद तक बदल जाते हैं। यहाँ पर विमान की एक्चुअल कागजी स्पीड काम नहीं करती है, यहाँ काम करती है विमान की पेलोड क्षमता और कोल्ड कैपेसिटी, यानी कितने भारी मात्रा में विमान हथियारों को ले जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड में। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
0: राफेल एक ऐसा डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो हाई अल्टीट्यूड में भी काम करता है। ये इसका ऑपरेटिंग रेट 50,000 फीट है और 50,000 फीट से ऊपर से अगर कोई ये उड़ सकता है, अपनी काबिलियत रखता है, तो ये तमाम टारगेट को, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे अरुणाचल हो या हाई अल्टीट्यूड एरिया, उसमें वो स्ट्राइक कर सकता। और साथ में इसके मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज पर आप लॉन्च करते हैं, साथ में इसका डिकॉय सिस्टम जो इसको इनहेरेंट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो एक बड़ा ही वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है। हमें 4.5 जनरेशन के इस तरीके के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इसकी संख्या और बढ़ेगी जैसे कि हम पाकिस्तान और चाइना अगर दो फ्रंट वॉर लड़ना पड़े तो उसके लिए भी हम सक्षम हो।
1: भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के राफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का राफेल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J-20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं राफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भर

0: करता है। यहाँ J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं राफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह राफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही राफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। राफेल में थैलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता क्योंकि IRST में किसी रडार से ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है? और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है? रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं ट्विस्ट। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: रफाल से चीन की बोलती इसलिए भी बंद है क्योंकि रफाल को हमने ऐसी जगह पर तैनात कर रखा है जहां से चीन को निशाने पर लेना आसान है। भारत के पास 36 रफाल फाइटर प्लेन हैं, एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हासेमारा बेस पर की गई है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाला एयरबेस रणनीतिक महत्व का स्क्वाड्रन रहा है जो दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड के अधिकार में आता है।
6: फरवरी 2019 में पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज ने अंबाला एयरबेस से ही टेक ऑफ किया था, ये उड़ान भरी थी। और इसके अलावा करगिल युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से अंबाला एयरबेस ने एक बहुत बड़ी और एक अहम भूमिका निभाई थी, और यहीं पर रफेल का स्क्वाड्रन भी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अंबाला एयरबेस चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, दोनों की दूरी यहां से 200 किलोमीटर है, यानी अंबाला एयरबेस से एक साथ दोनों को एक समय में टारगेट किया जा सकता है।
12: एयरबेस की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए बन जाती है, इसके दो कारण है। एक तो ये है कि ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो एडवर्सरीज है यानी पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के ऊपर मार रखने की यहाँ से हमारे फाइटर जेट जो हैं वो क्षमता रखते हैं। ये तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर है ताकि हमें इतना डिफेंस का टाइम मिल जाए कि इन केस ऑफ एडवर्सरी अटैकिंग अस हम उसकी तैयारी कर सकें। और ये इंडिया का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एयरबेस है जहाँ इंडियन एयरफोर्स है और हेडक्वार्टर दो कोर आर्मी की वो भी है। ये यहीं से 18 स्क्वाड्रन जो है, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों ने जाके श्रीनगर के ऊपर अटैक किया था और उनको पहला परमवीर चक्र जो इंडियन एयरफोर्स में मिला वो उनको मिला था। यहाँ पर मिग, जागुआर और अभी रिसेंटली जैसे सबको पता है कि यहाँ पर हमारे रफाल जो हैं वो भी यहीं पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल हुए हैं।
0: अम्बाला एयरबेस पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक है। अम्बाला एयरबेस पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अम्बाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर पर लेह के ठीक सामने चीन का गर्गुसा एयरबेस है जो राफेल के टारगेट पर आता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो चीन का पछलग रहा पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से भारत पर हमला बोलकर मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को दो अलग मोर्चे बनाने से बेहतर है कि एक बड़ी यूनिट के तौर पर रणनीति बनाई जाए।
12: टू फ्रंट वार की बात काफी देर से चल रही है पर अभी ये एक रियलिटी बन गई है। और लॉन्ग टाइम बैक महान जेआरडी टाटा को जब उनको एक दिया गया सर्वे करने को और एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि इंडिया को टू फ्रंट वार के लिए तकरीबन 66 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है पर भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन जो अप्रूव किए। अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन हैं जिसमें से दो स्क्वाड्रन जो हैं जैसे आप जानते हैं रफाल के हैं, मिग के हैं, मिग 29 के हैं, सू के हैं, SU-30 के हैं, SU-35 भी है। तो ये टू फ्रंट वार के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल भूमिका अम्बाला एयरबेस की रहेगी।
0: पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है और ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही चीनी सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हासीमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहां से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन पर निगाहें रख सकते हैं। वहीं डोकलाम पर नजर रखना भी आसान होगा। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद रहा है। सबसे खास बात यह है कि हासीमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित हुआ है। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुसा में एक सर्फेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर रखी है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हासीमारा में राफेल के और स्क्वाड्रन की तैनाती अचूक दाव साबित होगा।
12: हासीमारा एयरबेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है और ये 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद एस्टेब्लिश किया था। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चुंबी वैली जो कि इंडिया भूटान और तिब्बत के कोने पर है वहाँ पर ये चाइना को देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ राफाल के दो स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत की शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे।
0: भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आया है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस के बने विमान MiG-27 और Sukhoi-30 जैसे विमान शामिल हैं। रूस से सुखोई खरीदने के 23 साल बाद भारत ने राफेल जैसा कोई बड़ा रक्षा सौदा किया था जो आज कामयाबी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने खुद को अपग्रेड करने के लिए साल 2007 में मल्टी रोल फाइटर जेट्स के टेंडर निकाले थे जिसमें तमाम मुल्कों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। अमेरिका की तरफ से F-16 की दावेदारी पेश की गई, F-22 की दावेदारी पेश की गई। रूस की बात करें तो रूस ने अपने MiG-21 की दावेदारी पेश की थी। इसी तरीके से यूरोप ने यूरो फाइटर्स की दावेदारी पेश की, फ्रांस ने राफेल की दावेदारी पेश की, लेकिन आखिरकार 2011 में केवल यूरो फाइटर्स और राफेल ही दौड़ में शामिल रह गए और उसके बाद 2012 में फाइनली ये टेंडर फ्रांस को दिया गया, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी जो कि राफेल बना रही थी। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट करता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि ऐसा रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार सार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। यानी राफेल की नजर से बचना नामुमकिन है। लीबिया में राफेल ने अपनी जंगी काबिलियत की वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
6: अप्रैल 2011 को फ्रांसीसी राफेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के समर्थन में ऑपरेशन हरमंजन के दौरान लीबिया पर टोही उड़ान और स्ट्राइक मिशन का आगाज किया। राफेल का शुरुआती टारगेट लीबिया के बेंगाजी के चारों ओर घेराबंदी करना था और वहां की तोपों और टैंकों को काबू में करना था।
0: चौबीस मार्च 2011 को बताया गया कि राफेल ने रनवे पर खड़े लीबियाई वायुसेना के G2 गैलिब लाइट अटैक ट्रेनर विमान को खाक में मिला दिया। अपनी तैनाती के दौरान राफेल ने अपनी जियोलॉजिकल फीचर और अलग अलग तरह के गोला बारूद के जरिए लीबियाई सेना के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। दूसरे लड़ाकू विमानों के उलट मिशन के दौरान राफेल को किसी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी। इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान राफेल की ओर खींचा।
6: इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल ने कई मोर्चों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर राफेल ने युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत को आजमाया और हमेशा इसमें अव्वल ही रहा। यानी रण क्षेत्र का बाजीगर बनकर राफेल उभरा है। वहीं अगर हम चीनी फाइटर जेट्स की बात करें तो अभी तक रण क्षेत्र में उनका इम्तिहान नहीं हुआ है, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि राफेल 21 साबित हो रहा है।
0: चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी और अमेरिकी विमानों की सस्ती नकल है। अब नकल है तो जाहिर सी बात है कि चीज वैसी ही होगी।
12: चाइना जो है वो मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेपन सिस्टम को लेके उसको खोल के उसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक चीप या सस्ता हथियार बना लेना। उन्होंने J-20 के साथ किया और उसके बाद उन्होंने ब्लैक हॉक है एक US का, उसके साथ भी यही टेक्निक अपनाई। और यही कारण है कि शायद टेक्नोलॉजी में चाइना जो है भारत से बहुत आगे है और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चीप किसी हथियार को बनाना है तो बेसिक रिसर्च में पढ़ने की बजाय, और जिसको सालों साल लगते हैं, कई डिकेड लगते हैं बेसिक रिसर्च को डेवलप करके वेपन सिस्टम के फाइनलाइज करने तक, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग पर बहुत जोर देते हैं।
0: राफेल सिंगल और ड्यूअल सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने दोनों ही विकल्प चुने हैं। भारत के पास 28 सिंगल और 8 ड्यूअल सीटर राफेल मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल DH-2 सीटर फाइटर प्लेन है, वहीं राफेल EH सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ 4.5 जेनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। एक लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत है हवा में उसका फुर्तीला होना। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो परमाणु हमला करने की ताकत भी रखता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि राफेल के पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। राफेल की अधिकतम स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने की सक्षमता है राफेल के पास, और अपने साथ ये 24.5 टन के हथियार भी ले जा सकता है। यही नहीं, राफेल महज एक मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन पर इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी अब बालाकोट जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरहद को लांघने की जरूरत नहीं है, सरहद के इस पार से ही आतंकी अड्डों को तबाह किया जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलें इसे और विध्वंसक बनाती हैं। राफेल में लगने वाले स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय में काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाता है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को स्कैल्प तबाह कर सकता है।
12: स्कैल्प मिसाइल सिस्टम जो है ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है। इसको फ्रेंच में तो स्कैल्प बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। अभी इसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है और इसका पेलोड भी 400 किलोग्राम है। इसका रोल बेसिक जो है वो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए किया जाता है।
0: वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मिट्योर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मिट्योर अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है। इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मिट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मिट्योर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मिट्योर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मिट्योर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मिट्योर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है, मिट्योर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मिट्योर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है, तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकते हैं। राफेल की खासियतों को जानकर आप समझ गए होंगे कि भारत का राफेल चीन के लिए क्यों सिरदर्द बना हुआ है और चीन चाहकर भी राफेल की सीक्रेट जानकारी को डिकोड नहीं कर सकता।
9: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन सा रत्न धारण करने से हृदय रोग में सुधार होता है? कौन सा रत्न धारण करने से डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है? और कौन सा रत्न धारण करने से नसों की समस्या में सुधार होता है? रत्नों के प्रयोग से कैसे दूर करें बीमारियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर से भक्ति, प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला है। राजधानी की सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर से परफॉर्म किया जा रहा है, और 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी कि 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें साल के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा, कंस वध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की था मंच पर उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो जब जान ले रहे बात करा की देखा तो ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमें वो रखे जो लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि बहुत सारे, और दाएं को और बाएं के स्टेज पे उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइव स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं। तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।
3: विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसे ही एक खूबसूरत पहचान है। सितंबर में BAPS के इस मंदिर का एक भव्य उत्सव के दौरान उद्घाटन कार्यक्रम है।
4: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो BAPS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। BAPS यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का मेल भी देखने को मिलता है। वहीं मंदिर की संरचना में गुंबद, स्तंभ और शिखर जैसी पारंपरिक हिंदू वास्तुकला भी शामिल है। बता दें कि BAPS के बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर में भी अक्षरधाम परिसर है। दिल्ली का अक्षरधाम पारंपरिक भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसे बनाने में हजारों कारीगरों और स्वयंसेवकों ने काम किया था। मैप्स के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को पारंपरिक वास्तु और शिल्प परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया। बेशक एक वैश्विक हिंदू संस्था के रूप में मैप्स न सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा भी करता रहा है। इस तरह से भारत के अलावा विदेशी धरती पर भी ये संस्था हिंदू धर्म के मूल्यों और संस्कारों को सींच रही है। मैप्स के मंदिर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हैं, जहां पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भारतीय संस्कृति, भाषा, संगीत, कला और बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि गुजरात के बोचासन में स्वामी नारायण परंपरा को मानने वाले शास्त्री जी महाराज ने ही साल 1907 में इस संस्था को बनाया। मौजूदा वक्त में संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज हैं। मैप्स के दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मंदिर हैं और इसका नेटवर्क 50 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, और पेरिस के पास बना मैप्स स्वामी नारायण मंदिर भी इसी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। निश्चित तौर पर पेरिस जैसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और हिंदू आध्यात्मिक परंपरा का ये नया केंद्र भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि सितंबर में होने वाला मंदिर महोत्सव इस लंबे निर्माण सफर के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ट्विस्ट। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: मन की बात कार्यक्रम से पीएम ने किया देश से संवाद, जन भागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण की कही बात, युवाओं को नसीहत दी नशा मुक्त भारत बनाने में योगदान दें। उज्बेकिस्तान के दौरे पर उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को दिया योग से सेहत का संदेश। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। नेपाल में लापता लोगों की तलाश जारी। शनिवार के दिन 468 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दुनिया भर से नेपाल को भेजी जा रही है राहत सामग्री। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर। सेना के हेलीकॉप्टर से 2 लोग एयरलिफ्ट किए गए। अब तक 350 का रेस्क्यू।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जब तक मानव का जीवन है, मानव का शरीर है, उसे रोग बीमारियां होती रहती हैं। स्वभावतः शरीर में बीमारियां आती ही हैं। ज्योतिष में बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, यंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, रत्न के माध्यम से। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों के माध्यम से, रत्नों का प्रयोग करके आप अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। और आपको विशेष रूप से बताएंगे आपके लग्न के हिसाब से किस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं और उस बीमारी को आप अपने लग्न में कौन सा उपाय करें कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये तीन मंत्र दरअसल एक मंत्र हैं। इन्हें मंत्र त्रयी कहा जाता है। स्वास्थ्य की कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, अगर आप इस मंत्र त्रयी को पढ़ें, सुबह और शाम जप करें, तो आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। फिर से नोट करें, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नियमित रूप से सुबह शाम जप करके आप अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं और ये कैसे बीमारियों में हमें फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे आकाश में 9 ग्रह स्थित हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और स्वभाव प्रभाव हैं। आपके शरीर के ग्रहों का भी अलग अलग गुण है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है या आकाश के ग्रहों के साथ इनका संबंध टूटने लगता है, तब आपको बीमारी होने लगती है, क्योंकि वो कनेक्शन कमजोर हो जाता है। रत्न धारण करके आप आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों तक तरंगों को ठीक कर लेते हैं। आप उन ग्रहों की तरंगों को रास्ते पर लाते हैं और जब आप आकाश की तरंगों को शरीर के तरंगों के साथ मैच करवा देते हैं, तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और अगर बीमारियों की संभावना है तो आप बीमारियों से बच जाते हैं। अलग अलग रत्न आपको किस बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं, चलिए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला रत्न है माणिक्य। माणिक्य किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से किन बीमारियों में लाभ होता है? देखिए, माणिक्य जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, ये सूर्य का रत्न है। सूर्य इसका प्रमुख ग्रह है। माणिक्य का रंग सामान्यतः लाल और गुलाबी होता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य बहुत लाभ पहुंचाता है। अगर आपकी कुंडली में हृदय रोग की संभावना है या आप हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो पक्की तौर पे जानिए कि कुंडली में सूर्य प्रभावित हुआ होगा। ऐसी स्थिति में आप सलाह लेकर एक माणिक्य पहन सकते हैं। इसको सोने या तांबे में धारण करना चाहिए। माणिक्य को सोने या तांबे की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अब दूसरे रत्न की बात करते हैं। दूसरा रत्न है मोती। मोती किस बीमारी में फायदा पहुंचाता है? कौन सी स्वास्थ्य की समस्या में मोती पहनने से लाभ होता है? देखिए, मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है। मोती के ऊपर जो असर होता है वो होता है चंद्रमा का। मोती जब आप धारण करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, एनीमिया यानी खून की कमी और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मामले में मोती पहनने से लाभ होता है। अगर खून की कमी है, थैलीसीमिया है, कोल्ड कफ जल्दी जल्दी होता है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है आपका, तो आप सलाह लेकर एक मोती पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होता है। अब जानते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है? किस तरह का इसका इंपैक्ट होता है? देखिए, मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह से संबंध रखता है। अगर आपको कमजोरी का अनुभव होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, बार बार आपको बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है, तो इन मामलों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। जिनके शरीर में इंटरनल गड़बड़ी ज्यादा है, जिनके शरीर में रिएक्शन और इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पहनने से फायदा होगा। या जिन लोगों को बार बार बुखार हो जाता है, उनको भी मूंगा पहनने से काफी लाभ होता है। मूंगे को तांबे या सोने की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करना चाहिए, काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पन्ने की। पन्ना यानी एमराल्ड, इसका क्या प्रभाव है और ये किस बीमारी से राहत देता है? देखिए, पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, मरकरी का स्टोन है, अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं, हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न है। ये रत्न मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। मानसिक रोग होने पर, डिप्रेशन होने पर, त्वचा की समस्या होने पर और वाणी की समस्या होने पर पन्ना धारण करना चाहिए। खास तौर से जिनको एलर्जी जल्दी होती है, एलर्जी की दिक्कतें होती हैं, या जिन लोगों को मेंटल डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई मानसिक बीमारी है, ऐसे लोगों को पन्ना पहनने से बहुत फायदा होता है। पन्ना पहनना इनके लिए लाभकारी होता है। डिप्रेशन के मामले में पन्ना जरूर पहनना चाहिए, या जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर चिंता होती हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव पालते हो, ऐसे लोगों को भी पन्ना पहनना चाहिए। चांदी की अंगूठी में, सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होता है। अब बात करते हैं पीले पुखराज के बारे में, येलो सैफायर के बारे में। पीला पुखराज कितना प्रभावशाली है और ये कैसा असर जीवन पर डालता है? देखिए, पीला पुखराज यानी येलो सैफायर बृहस्पति का रत्न है और जैसा इसका नाम है, ये पीले रंग का होता है। ये मध्यम गति से प्रभाव देता है, बहुत तेज भी नहीं और बहुत धीमे भी नहीं। शिक्षा, ज्ञान, पेट और कैंसर की समस्या में सलाह लेकर पीला पुखराज पहनना चाहिए। देखिए, पीले पुखराज के साथ दो बातें समझिए। अगर आपको पहले से पेट की गंभीर बीमारी है, अगर आपको पहले से लीवर की समस्या रहती है, तो आप पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर आपकी मोटापे की टेंडेंसी है, आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं या बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ जाता है, तो भी आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर पेट की बीमारी की संभावना है, कैंसर होने की संभावना बन रही है, तो आप सलाह लेकर बीमारी होने के पहले पीला पुखराज पहन सकते हैं। जीवन में गंभीरता लाने के लिए, चंचलता दूर करने के लिए, अपने मन के मोह को समाप्त करने के लिए पीला पुखराज पहनना बहुत अच्छा होता है। पीले पुखराज को सोने में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा है तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे, या अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तब आप इसको पीतल में पहन सकते हैं। बात करते हैं हीरे की यानी डायमंड की। किन बीमारियों में हीरा पहनने से लाभ होता है? देखिए, हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है, डायमंड। और हीरा जब आप पहनते हैं तो ये बड़ी तेज गति से, बड़ी तीव्र गति से जीवन में आपको प्रभाव देता है। नपुंसकता, इम्पोटेंसी, दुर्बलता, मधुमेह और आंखों के लिए हीरा लाभकारी होता है। जिन पुरुषों को इम्पोटेंसी की समस्या है या संतान उत्पत्ति के लिए स्पर्म काउंट कमजोर हैं, उन्हें सलाह लेकर एक हीरा पहनना चाहिए। डायबिटीज के मामले में भी हीरा पहनने से फायदा होता है, लेकिन सलाह लेकर के पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में पहनना चाहिए। अगर आपको सेहत के लिए हीरा पहन

उंगली में रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। बात करते हैं नीलम की। नीलम यानी ब्लू सैफायर, किन बीमारियों में नीलम पहनने से फायदा होता है, किन बीमारियों में लाभ होता है? देखिए, नीलम यानी ब्लू सैफायर ये शनि का रत्न है। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, बार बार दुर्घटना हो रही हो, पक्षाघात यानी पैरालिसिस की समस्या हो, या असाध्य बीमारी हो गई हो, कोई अनकंट्रोल्ड बीमारी हो गई हो, तो उसमें नीलम पहनने से आपको लाभ होता है। लेकिन बिना कुंडली अच्छी तरह से दिखाए, बिना पूरी जानकारी के नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, कोई नस दब रही है, नस के दबने की वजह से चलने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में झनझनाहट होती है, बार बार चक्कर आते हैं, ऐसे लोग सलाह लेकर एक नीलम चांदी या प्लेटिनम में मध्यमा अंगुली में मिडिल फिंगर में अगर धारण करें तो इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं गोमेद की और लहसुनिया की। गोमेद और लहसुनिया किस ग्रह का रत्न है और इससे क्या लाभ है? देखिए, गोमेद जो है हैसोनाइट, ये राहु का रत्न है, और लहसुनिया कैट्स आई विडालाक्ष, ये केतु का रत्न है। सोच समझकर इसको धारण करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के रत्न से कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एकदम बीमारियां शूट अप कर जाती हैं। राहु की महादशा चलने पर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो तुरंत गोमेद पहना देते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा। और केतु की दशा चलने पे लोग तुरंत लहसुनिया पहना देते हैं या पहन लेते हैं, ऐसा भी मत करिएगा। राहु और केतु के रत्न सहायक रत्नों की तरह, सपोर्ट की तरह पहने जाते हैं, इसीलिए ये बेसिकली मुख्य रत्न नहीं है। बीमारी के नेचर के हिसाब से और बीमारी ठीक होने के समय के हिसाब से आपको राहु केतु का रत्न पहनाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग लग्न में कौन सा रत्न धारण करें जिससे रोग और बीमारी से सुरक्षा मिले। लग्न की बात करेंगे, राशि की नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। सामान्यतः मेष लग्न वालों का स्वास्थ्य मजबूत होता है, फिर भी आप देखेंगे कि मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटना की और चोट चपेट की संभावना होती है। अक्सर इनके साथ दुर्घटना घटती है या इनको चोट चपेट लगती है। मेष वाले बीमार नहीं पड़ते, दुर्घटना के चोट चपेट के शिकार होते हैं, और उम्र बढ़ने पर मेष लग्न वालों को त्वचा की या आंखों की दिक्कत हो जाती है,
ऐसा देखा गया।

0: गया है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो माणिक्य पहनना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको लगे कि कभी आप मेंटली ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा चिंता करने लगे हैं, तो कुछ स्थितियों में मेष लग्न वालों को मोती पहनने से भी लाभ होता है। लेकिन कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए मेष लग्न वालों को माणिक्य, थोड़ा बड़ा माणिक्य, 7-8 रत्ती का एक माणिक्य धारण करना चाहिए। वृषभ लग्न, स्वास्थ्य के मामले में ये लग्न भी मजबूत लग्न है। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य गड़बड़ कम होता है। कुल मिलाकर मेहनत करके ये अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। फिर भी वृषभ लग्न वालों को उम्र बढ़ने पर हार्मोन्स की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और ENT कान नाक गले की समस्या परेशान करती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, निमोनिया का होना, छाती में जकड़न, ये समस्या वृष लग्न वालों के साथ बहुत होती है। वृष लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा होगा कि ये सलाह लेकर एक नीलम धारण करें। नीलम धारण करना इनके लिए अच्छा है। और अगर वृषभ लग्न के लोग नीलम के साथ ओपल का कॉम्बिनेशन पहने तो स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहता है। कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ज्यादा खराब होता है। मध्यम स्थिति नहीं रहती, इनका स्वास्थ्य मिला जुला दिखाई देता है। मिथुन लग्न वालों को नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या और त्वचा की समस्या होती रहती है। एलर्जी की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से और त्वचा की समस्या से परेशान होते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा जो रत्न है वो है पन्ना। मिथुन लग्न वाले अगर पन्ना धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मिथुन लग्न वालों को आग्नेय रत्नों से मूंगा, माणिक्य, लहसुनिया, जो अग्नि प्रधान रत्न हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले अगर पन्ना पहने तो स्वास्थ्य के अलावा करियर के और बाकी मामलों के मामले भी इनके बेहतर रहेंगे। कर्क लग्न, ये कमजोर स्वास्थ्य वाला लग्न है। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है और ये बीमारियों को लेकर चिंता भी बहुत करते हैं, तनाव भी बहुत पालते हैं। इनको शारीरिक समस्या तो होती ही है, शरीर से ज्यादा मानसिक समस्या होती है। और कर्क लग्न वालों को पेट की दिक्कत, मेंटल डिप्रेशन की दिक्कत, कोल्ड कफ की दिक्कत कर्क लग्न वालों को ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, कोल्ड का टेम्परामेंट होता है। इसलिए कर्क लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा जो रत्न है वो है मूंगा। एक देसी मूंगा लगभग 14-15 रत्ती का कर्क लग्न वालों को पहनना चाहिए। और कर्क लग्न के लोग अगर मूंगा मोती के साथ पहने तो और भी अच्छा होगा। अनामिका उंगली में 14-15 रत्ती का मूंगा और सबसे छोटी उंगली में 8-10 रत्ती की अगर एक मोती धारण करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न सूर्य का लग्न है, इसीलिए इनका स्वास्थ्य काफी मजबूत रहता है। कठिन स्थितियों में भी मजबूत स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर ऐसा देखा गया है कि सिंह लग्न वालों को हड्डियों की दिक्कत, शरीर दर्द की दिक्कत, पेट की दिक्कत और आंखों की समस्या से थोड़ी बहुत परेशानी होती है। वैसे सिंह लग्न वाले जितने में आम आदमी बीमार पड़ जाएगा उतनी समस्या में भी बीमार नहीं पड़ते, बहुत देर बाद बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सिंह लग्न वालों को एक मूंगा पहनना चाहिए, 12-14 रत्ती का एक मूंगा अनामिका में पहने, स्वास्थ्य की स्ट्रेंथ बेहतर होगी। और अगर शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है, तो मूंगे के साथ एक माणिक्य, दाहिने हाथ में मूंगा पहन लीजिए, बाएं हाथ की अनामिका में माणिक्य पहन लीजिए। मूंगा माणिक्य का कॉम्बिनेशन अगर आप पहने और सूर्य के प्रभाव में रहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको सामान्यतः बीमारियां नहीं होंगी। कन्या लग्न, देखिए कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है, और इनको बड़ी विचित्र बीमारियां पकड़ती हैं, इनको सामान्य बीमारी नहीं पकड़ती, ऐसी बीमारी पकड़ेगी जो हजारों लाखों में किसी एक को होती है, फिर खोजते रहिए इलाज। तो कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य एकदम से या तो बहुत खराब होगा या काफी अच्छा होगा, थोड़ी थोड़ी समस्या इनके साथ रोज लगी नहीं रहती और ये अपना काम भी लगातार करते रहते हैं। कन्या लग्न वालों को नसों की समस्या, खासतौर से पीठ दर्द, लोअर बैक का पेन इनको काफी परेशान करता है। त्वचा की और बालों की समस्या काफी होती है। कन्या लग्न की जो लड़कियां हैं उनके बाल थोड़े पतले होते हैं या बाल बड़ी तेजी से झड़ते हैं, और तमाम उपाय करने के बावजूद भी झड़ते रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका कन्या लग्न है और आप चाहते हैं कि आप लगातार स्वस्थ बने रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो इसके लिए आप पन्ना पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना पहनने से आपके स्वास्थ्य को ताकत मिलेगी। और कुछ स्थितियां कन्या लग्न में ऐसी होती हैं, जैसे आपको कोई विचित्र बीमारी हो गई जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है या जिसकी लंबे समय तक दवाइयां चल रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप सलाह लेकर पन्ने के साथ एक नीलम भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। तुला लग्न, तुला लग्न वालों का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव वाला रहता है, कभी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कभी सेहत बिगड़ जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, लगातार निरंतर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। और तुला लग्न वालों को पेट की दिक्कत जरूर होती है, आंखें कमजोर होती हैं और एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या तुला लग्न वालों को पकड़ लेती है बहुत जल्दी। यूरिन इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन इनको पकड़ लेता है। तुला लग्न वालों की जो स्ट्रेंथ आती है ना, जो ताकत इनके जीवन में आती है, वो आती है दरअसल सैटर्न से, शनि से। तुला लग्न वालों का जो प्राण है ना, वो सैटर्न है। तो तुला लग्न वालों को सलाह लेकर एक नीलम पहनना चाहिए। अगर तुला लग्न वाले एक नीलम धारण करें तो काफी बेहतर होगा। और नीलम के साथ तुला लग्न वालों को एक ओपल या हीरा पहनना चाहिए। ज्यादा बेहतर होगा कि तुला लग्न वाले एक ओपल पहने और एक नीलम पहने, तो इससे इनका स्वास्थ्य ठीक होगा, इनका मन ठीक होगा, जीवन में बार बार के सेहत के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। वृश्चिक लग्न, चंद्रमा के लिए बड़ा कमजोर लग्न है ये, इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों का स्वास्थ्य आप देखेंगे ज्यादातर कमजोर रहता है और मन के मामले में या तो बड़े उग्र होते हैं या तो बड़े कमजोर होते हैं, यानी या तो एग्रेशन में रहेंगे या तो डिप्रेशन में रहेंगे, बीच में नहीं रहते, बैलेंस मन नहीं होता, इनका मन ऊपर नीचे होता रहता है। और वृश्चिक लग्न वालों को सर्दी जुखाम जल्दी पकड़ता है, इन्फेक्शन के रोग जल्दी होते हैं, मानसिक रोग जल्दी होते हैं, इनको नशा करने की आदत भी बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ना, जो वृश्चिक लग्न में लीड करती है, वो बड़ी पॉइजनस राशि है। वृश्चिक लग्न वाले बड़े अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों में नशा करने की एक टेंडेंसी भी पाई जाती है और सर्दी जुकाम इन्फेक्शन मेंटल डिप्रेशन नशा करने की आदत, ये सब इनको जल्दी हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मोती पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया है, एक बड़ी सी मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, और इनको मोती लॉकेट में अगर पहनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, चांदी के चेन में, चांदी के लॉकेट में बना के गले में पहने मोती तो बहुत ही बढ़िया होगा। और वृश्चिक लग्न वाले अगर बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार चिंताएं हो रही हैं, तो एक बढ़िया सा देसी मूंगा 12-14 रत्ती का, ये भी बनवा के आप पहनिएगा, इससे आपको लाभ होगा। देखिए वृश्चिक लग्न वाले एक तो अपने मन पर काबू करने का प्रयास करें और दूसरा नशे की आदत से उल्टी सीधी चीजें खाने से बचें, तो आप स्वस्थ रहेंगे और सलाह लेकर एक मोती और एक मूंगा पहन लीजिएगा। धनु लग्न मजबूत लग्न है, इनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, इनके स्वास्थ्य में ज्यादातर दिक्कतें नहीं होती और अनुशासन का लग्न है, तो धनु वालों को आप देखेंगे कि वो नॉर्मली डिसिप्लिन में रहते हैं। धनु लग्न वालों को चोट चपेट लग जाएगी, जंगली जानवर काट लेंगे, कुत्ता काट लेगा, गाय मार देगी, बैल मार देगा, ये सब घटना बहुत होती है, तो दांत वाले नाखून वाले सींग वाले जानवरों से धनु वालों को दूर रहना चाहिए, चोट चपेट से दुर्घटनाओं से बचना चाहिए, ऊंचाई से गिरने की दुर्घटनाओं की संभावना इनके साथ बहुत होती है और धनु लग्न वालों को टाइफाइड बहुत जल्दी होता है, इसलिए खान पान का थोड़ा ध्यान रखें। धनु लग्न वालों के लिए माणिक पहनना बहुत शुभ है, अगर आप एक बढ़िया सा माणिक, थोड़ा बड़ा माणिक 8-10 रत्ती का, तांबे या सोने में अनामिका उंगली में पहन ले रविवार को, तो इससे बहुत फायदा होगा। एक तो आपका भाग्य अच्छा होगा सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्या अच्छी होगी, माणिक पहनने से आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर साथ में पीला पुखराज भी पहन लें, हालांकि आपको सलाह लेके पुखराज पहनना चाहिए, अगर आप पीला पुखराज भी माणिक्य के साथ पहने तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। मकर लग्न, मकर लग्न वालों को देखा गया है कि बचपन में उम्र के लगभग 22-24 साल तक इनकी सेहत काफी कमजोर होती है, शुरुआत से ही बचपन से ही इनको पेट की समस्या अक्सर पकड़ लेती है। सामान्यतः उम्र बढ़ने के बाद 35 साल से लेकर 50 साल का जो समय होता है इनका, उसमें मकर लग्न वालों को पेट की दिक्कत काफी परेशान करती है और सामान्यतः इनको पेट की हड्डियों की और आंखों की समस्या होती रहती है। अगर मकर लग्न है और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए, एक पन्ना बनवाकर आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो थोड़ा कम होगा। और साथ में सलाह लेके एक हीरा या ओपल पहन लें, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है और अक्सर देखेंगे आप कि कुंभ लग्न वाले एकदम ठीक रहेंगे, छह महीना साल भर एकदम ठीक हैं, फिर एकदम से बीमार पड़ के डिटोरिएट कर जाते हैं। इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। सामान्यतः कुंभ लग्न वालों को मानसिक बीमारियां जल्दी होती हैं, डिप्रेशन जल्दी होता है, नसों की बीमारियां होती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम होता है और इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। कुंभ लग्न वालों का लीवर अक्सर कमजोर होता है, ऐसा देखा गया है। कुंभ लग्न वालों में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है तो मेंटली ये कमजोर लग्न है। अगर इनको मेंटली ताकत मिले, मेंटल स्ट्रेंथ मिले तो सामान्यतः ये स्वस्थ रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? कुंभ लग्न वालों को ओपल या हीरा पहनना बहुत अच्छा है। अगर कुंभ लग्न के पुरुष हैं तो ओपल पहने और अगर कुंभ लग्न की महिला हैं तो हीरा पहनने से फायदा होगा, तर्जनी उंगली में धारण करने से लाभ होगा। और अगर आपको विशेष दिक्कत है, आपको अंदर से कमजोरी थकान महसूस होती है, स्ट्रेंथ का अनुभव नहीं होता, तो नीलम अगर आप पहन लें साथ में, ओपल या हीरे के साथ अगर एक नीलम धारण करें तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः मिला जुला होता है और मीन लग्न वाले धीरे धीरे धीरे धीरे उल्टी सीधी हरकतें करके अपना स्वास्थ्य चौपट कर लेते हैं। 40 के बाद इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा बुरा प्रभाव दिखाई देता है। इनको मोटापा तुरंत पकड़ेगा, इनको मोटापे की समस्या, त्वचा की समस्या और बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। मीन लग्न वालों को मोटापा बहुत जल्दी और काफी ज्यादा होता है और अक्सर मीन लग्न वालों को जीवन में एक या दो सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो एक मोती धारण करिएगा, एक बढ़िया सी मोती 12-14 रत्ती की बनवा के चांदी में सबसे छोटी उंगली में पहने, अच्छा होगा। अगर बहुत मोटापा नहीं है या मोटापे की टेंडेंसी नहीं है तो पीला पुखराज पहनने से भी फायदा होगा, लेकिन अगर मोटापे की टेंडेंसी है और आपका लग्न मीन लग्न है तो मोती के साथ एक देसी मूंगा पहनिएगा, आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं ट्विस्ट। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अब बात करते हैं प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी क्रिएटिविटी की। जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने इनोवेटिव आइडियाज के जरिए लगातार प्रहार कर रहा है। उनका स्टार्टअप रिसाइकलिंग के जरिए कचरे में फेंके जा रहे प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल लायक उत्पाद बना रहे हैं।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। NIT कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने MTech किया NIT कुरुक्षेत्र से। वैभव का मेजर था एनवायरमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पे शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ PPE किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफाई कर सके। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है। सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली NCR। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर हमें प्लास्टिक देते हैं। वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ NGO पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5 लाख किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक स्पेस सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने चेंजिंग रूम्स बनाए 1000, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया, 550 किलो, तो लगभग 5 लाख केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ट्विस्ट। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: मन की बात कार्यक्रम से पीएम ने किया देश से संवाद, जन भागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण की कही बात, युवाओं को नसीहत दी नशा मुक्त भारत बनाने में योगदान दें। उज्बेकिस्तान के दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, दुनिया को दिया योग से सेहत का संदेश। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए विशेष पूजा अर्चना, काशी के 11 ब्राह्मणों ने मां काली, बाबा विश्वनाथ, मां गंगा की पूजा कर नेपाल की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। आपदा पीड़ित नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है भारत, चौथी खेप में 11 टन सामान लेकर काठमांडू पहुंचा C-130 विमान। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, सेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा है लोगों का एयरलिफ्ट करने का की प्रक्रिया, अब तक 350 का रेस्क्यू। प्रयागराज गंगा का जलस्तर बढ़ने पर लेटे हनुमान मंदिर में घुसा पानी, ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ते जलस्तर का स्वागत किया गया, हनुमान चालीसा का हुआ पाठ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: ताशकंद में पीएम मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश, योग फेडरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर, नमस्ते इंडिया का दिखा नजारा। पीएम मोदी ने योगा की पाठशाला में लोगों को टिप्स दिए, लोगों का बढ़ाया हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, यहां हुए स्वागत को बताया अद्भुत। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का प्रसारण, तो वहीं सूर्य पर तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्ति भारत का दिया संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा कर किया गया है प्रोसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का भी जिक्र किया, कहा मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की, भारतीय इतिहास पर बनाई उनकी वेबसाइट को बेहद रोचक बताया। पीएम मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया, 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिखाई हरी झंडी। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी हिस्सा लिया है, तो वहीं साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का संदेश दिया। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने दिखाए करतब, अतिथियों ने सम्मानित किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुए संडे ऑन साइकिल रैली, ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल हुए, 10,000 लोगों ने साइकिलिंग का संदेश दिया। रियासी के अंजी खड ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ऊंचाई से दिखा शानदार नजारा। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के दरवाजे, हालात पर प्रशासन की नजर है। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच उफान पर आई कई नदियां तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश के चलते बदले हालात, उमरी गांव में धमरपुर नाला पुल से ऊपर 2 फीट तक पानी भरा। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ गंगा का कटान बढ़ा, कई मकानों के गिरने का खतरा भी बढ़ा, खाली कराए गए घर। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ में डूबा नजर आया पूरा शहर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बह गया, झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे में भारी वाहनों की यातायात बंद। चित्रकूट में रात भर चला राहत और बचाव अभियान, बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में भी चलाया जा रहा है राहत बचाव का काम, हेलीकॉप्टर से लोगों का किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। सतना में बारिश के बाद जोरदार बाढ़, तो वहीं रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला गया बाहर। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर आई, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिला डैम के खोले गए 15 फाटक, निचले इलाके के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। बिहार के कटिहार में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पर पानी भरने से कई मार्गों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में हुई मूसलाधार बारिश, उफान पर आए कई नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदान में जनजीवन प्रभावित हुआ, कई इलाकों में जलभराव हुआ। जम्मू और कश्मीर के रामबन में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिखा खूबसूरत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश, पश्चिम बंगाल की खाड़ी बन रहे लो प्रेशर के चलते बदला मौसम। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा नदी का पानी, कई घाट डूबे, प्रशासन अलर्ट हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी और 8 भारतीय नागरिक शामिल। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक, पोकलेन और भारी मशीनरी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा है मलबा। रेस्क्यू किए गए लोगों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है सुरक्षित जगह। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ हेल्थ बेसिलिका शुरू हुआ। समारोह में हर साल देश विदेश से पहुंचते हैं लाखों तीर्थयात्री। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी में नहाया चर्च। 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक चलेगा उत्सव। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखा शानदार नजारा। सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल का मंदिर में परिसर में स्वागत किया गया। भव्य आरती के बीच जयकारों से गूंज उठा गर्भगृह। गंगा स्नान के दौरान लेटे हुए हनुमान जी का किया गया भव्य श्रृंगार। सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। टपकेश्वर महादेव मंदिर के तट पर पानी का उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना जारी। महादेव का किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे रंग। 450 कलाकारों ने बाघों की रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग। जोशीले अंदाज में सड़कों पर किया बाघ नृत्य। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियों की आकर्षण का केंद्र बनी। आयोजन में शामिल टीमों ने दिखाया अपना हुनर। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट पेंटर्स और ढोलक वादकों को लेकर टीमों के बीच मुकाबला हुआ। रंग बिरंगी वेशभूषा में उत्सव में शामिल हुए चार चांद लगाए। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा गजब का उत्साह। समारोह के दौरान शहर की गलियों में बड़ी संख्या में जुटे लोग। अयोध्या में श्री कृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन। संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विशेष वाहन से 1 सितंबर को वृंदावन लाई जाएगी रजत शिला। यहां भी विधि विधान से साधु संत करेंगे पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है नीट पीजी 2026 की परीक्षा। एग्जाम के लिए 273,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे। नागपुर स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ। अपनों से मिलकर भावुक हुए। भारत से नेपाल की सहायता के लिए भेजी गई चौथी खेप। 11 टन राहत सामग्री शामिल। 230 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के लिए भी भेजा गया सामान। 16 ट्रकों से नेपाल पहुंचा सामान। 7 और बेली ब्रिज बनाने के लिए भी जल्द से जल्द भेजा जाएगा सामान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारत की ओर से अब तक लगभग 69 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई काठमांडू। इसमें जरूरी दवाएं, पोर्टेबल जनरेटर सेट और खाने के पैकेट के और पानी शामिल। 11 सदस्यीय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम भी भेजी गई है नेपाल। टनल में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भारतीय रेस्क्यू टीम कर रही है काम। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में डीएम ने एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। साफ सफाई के नियमों की अनदेखी पाई गई। खाना पकाने वाले बर्तनों में गंदगी देखकर डीएम ने जताई नाराजगी। स्वच्छता बहाली के लिए 2 दिन तक रेस्टोरेंट बंद रखने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति सैट कार्यक्रम का हुआ समापन। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शिरकत की। यूपी में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को निर्देश दिए तारीख पर तारीख का चलन अब बंद हो। त्योहारों पर सुरक्षा के साथ बाढ़ राहत में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ट्विस्ट। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का

हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग,
क्षार सूत्र की असली

0: जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नेपाल में लगातार पांचवें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी, सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारत की टीम। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए विशेष पूजा, काशी के 11 ब्राह्मणों ने मां काली, बाबा विश्वनाथ, मां गंगा की पूजा कर नेपाल की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, 23 साल का टूटा रिकॉर्ड, सड़कों पर दौड़ी नावें, सेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा है लोगों का एयरलिफ्ट, अब तक 350 का रेस्क्यू। मन की बात कार्यक्रम से पीएम ने किया देश से संवाद, जन भागीदारी के साथ राष्ट्र निर्माण की कही बात, युवाओं को नसीहत, नशा मुक्त भारत बनाने में योगदान दें। उज्बेकिस्तान के दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, दुनिया को दिया योग से सेहत का संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: नमस्कार, मैं मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे मन्नत विक्रांत संग उनका पूरा परिवार।
6: सजे

0: रिपोर्ट में दिखाना चाहिए कि राधे कभी मां नहीं बनती।
1: अब परिवार को समेटना है तो खुद को तो बिखेरना होगा बहुरिया। चित्तौड़पट दोनों को तो
2: नागेश देगा रूहानी और गुरु को धमकी।
1: तुमको क्या चाहिए, परिवार या ठिकरी?
2: महेश के बहेंगे आंसू।

0: जगदात्री और शिवाय के बीच बढ़ेगी टेंशन। खतरों के नए दौर पर रोहित शेट्टी से पड़ेगी कलाकारों को डांट।
1: चुके खतरों के खिलाड़ी है, आप लोगों ने देखा ये शो क्या है। आप लोगों ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। आप लोगों सबको पता है कि हाइट का स्टंट होगा, पानी होगा, नहीं है तो स्विमिंग सीख के आओ।
0: और मुलाकात होगी पारितोष त्रिपाठी से, करेंगे उनसे ढेर सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या
3: नहीं तो गलत हो रहा है ये मकबूल।
2: जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है, डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है।
4: सीरियल मन अति सुंदर में दादी नहीं चाहती हैं कि राध्या कभी माँ बने, बल्कि वो चाहती हैं कि प्रथम राध्या को तलाक दे, इसलिए दादी नई चाल की प्लानिंग कर रही हैं। चलिए देखते हैं।

0: दादी की चालबाजी।
1: रिपोर्ट में लिखाना चाहिए
2: जो तू रुस जानिए, टूट जानिए तेरे
0: घर वालों की टेंशन
2: सारी कट जानिए, मैं ता तेरे नाल रहना मान।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में फयाज राठौर प्रथम बेहद ही दुखी है। जी हाँ, उनकी रिपोर्ट्स में ये आया है कि राध्या कभी भी माँ नहीं बन सकती है, जिसके चलते वो बेहद टेंशन में है। तभी तो देखिए कैसे आज ये दोनों एक दूसरे का गम बांट रहे हैं एक साथ बैठकर, जहाँ राध्या प्रथम को ठीक फील करवाने की कोशिश कर रही है और अपने ही हाथों से उसे खाना भी खिला रही है।

भाई असल में हुआ ये है कि राधे और प्रथम अस्पताल पहुँचे थे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए और ये देख सके कि वो हेल्दी है या नहीं बेबी प्लान करने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहुँच गई दादी जो भेस बदल कर देखिए कैसे प्रथम और राध्या से बातें कर रही है। तो इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ पर अपना षड्यंत्र भी रच दिया। भाई यहाँ तो अब उन्होंने अपने चेहरे पर यूं मास्क लगाया कि प्रथम और राध्या उन्हें पहचान ही नहीं पाए। और देखिए कैसे उन्होंने नर्स को एक झूठी रिपोर्ट तैयार करने का भी कह दिया।

कौन सा असली टेस्ट करना है? और नई रिपोर्ट बना के रखो, सेम ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए, सिर्फ जो ऊपर क्लिनिक का नाम है वो अलग कर दो। रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि राध्या कभी माँ नहीं बन सकती।

0: मेरी रिपोर्ट देखने के बाद जब राधिया और प्रथम घर आए, देखिए कैसे राधिया बेहद अपसेट नजर आई। उसने तो घर वालों को कोई जवाब भी नहीं दिया और ये देखकर प्रथम के मम्मी पापा दोनों टेंशन में आ गए हैं, पर यहाँ तो प्रथम भी उदास है। जिसके बाद घर में एंट्री हुई दादी की, और जब दादी से सवाल पूछा गया कि भाई वो सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी थी, तो देखिए कैसे अपने आप को बचाने के लिए झूठे बहाने बनाने लगी।
1: कोई बात नहीं बेटा, तो क्या है ना, सुबह सुबह एक मनहूस चीज देखी, मुझे तो डर लग रहा था ये भगवान का इशारा ना हो। राधे और प्रथम की रिपोर्ट भी अच्छी ना हो।
2: जो तुम ना हो,
0: सबके बाद अब देखना होगा कि क्या राध्या और प्रथम असली सच का पता लगा पाएंगे या फिर कहानी में आएगा कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं।
3: गेम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में जारी है खतरों का खेल, जहां आपके फेवरेट सितारे कर रहे हैं डर का सामना। ऐसे में किस सितारे ने मारी है बाजी, चलिए देखते हैं।
4: निकाल निकाल निकाल, चल चल चल पकड़ ले। ये स्टंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या मेरी स्टंट टीम और मेरी प्रोडक्शन टीम की मेहनत पानी में जाएगी, शर्म करो।
5: हर्ष हर्ष कर ले हर्ष, केबल पर है तू, केबल पर है, गिरेगा तो नहीं ना, तू तो टेंशन क्यों ले रहा है।
6: नहीं सर, टांगे कांप रही है मेरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर, आई स्वेयर। अब स्टंट खराब होने का कोई मतलब नहीं है सर, आई स्वेयर।
5: ट्राई कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग कर चुके हैं ना कई बार यार, हमको पता है थोड़ी नीचे गिरने वाला है।
6: नहीं सर,
5: पराना और कौन गया था, करण गए थे ना, वो तो एक रोप पे थे यार, और हाइट ज्यादा थी।
6: सर मेरे को हाइट का बहुत वो है, मैं नीचे देख ही नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली।
5: हर्ष अटेम्प्ट तो कर ले। नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे।
7: इज ही एक्चुअली अबाउटिंग?
6: हाँ,
5: रेडी जसवंत।
8: हाय गुरु, वाहेगुरु।
5: रेडी गो।
9: कम ऑन जैस्मिन,
10: कम ऑन जैस्मिन,
9: शॉट लड़की।
8: वाहेगुरु वाहेगुरु,
5: कर लेगी, कर जाएगी। आ जा, आ जा, आ जा अभी। आप खड़ी हो जा। ये गुड,
9: वेरी गुड, गुड, वंडरफुल जैस्मिन, वंडरफुल।
5: दबा दे उसको, उसको रख के पैर रख। ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए, जैस्मिन होगा
8: सर, वो पट्टा लगा के नहीं होगा।
5: एक पैर से, एक पैर से,
11: एक पैर से दबा दे
5: जैस्मिन, उसको रख दे, पैर रख दे उस पे।
8: यार मेरी एड्रेनल रश की हिम्मत खत्म हो गई।
5: जैस्मिन नहीं गिरेगी। वेरी नाइस जैस,
9: शाबाश।
7: चलो
8: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु,
5: दबा दे दबा दे दबा दे,
8: वाहेगुरु,
7: बहुत बढ़िया,
8: वाहेगुरु,
9: शाबाश शाबाश शाबाश।
5: पैर से दबा, राइट पैर से, राइट पैर से।
8: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु,
9: शाबाश लड़की, वेरी गुड वेरी गुड।
8: वाहेगुरु करूं?
4: जैस्मिन खड़ी हो जा।
8: वाहे करूं?
7: You're good.
8: वाहे करूं?
4: बढ़िया।
8: नहीं हो रहा सर।
4: होगा जैस्मिन,
7: होगा,
10: हो जाएगा। अभी हो गया, अभी हो गया था। ऊपर से
4: एक बार और जैस।
8: सर मुझे एंग्जायटी अटैक आ रहा है।
7: Jasmine, calm down. Don't panic.
8: Please get me back. I will get this. This is breaking. I can't do this.
7: Don't panic.
8: No, sir.
6: एक सेकंड, होल्ड जैस्मिन, होल्ड, रिलैक्स। अबॉर्ट कर दिया,
11: अबॉर्ट कर दिया। वो तो ऊपर आ गई ना, अब तो अबॉर्ट ही हो गया ना, वहां
7: गिर गई ना।
10: और पता क्या हो रहा है, मेरे को जेन्युइनली लग रहा था ऐसे करके पकड़ के रोल करके जा सकते हैं, नहीं जा सकते।
12: शगुन कंप्लीट कर, मैं खाली सुनते रहो जो बोल रहा हूं, और वहां जाके हां सर ऐसे जब पीछे मुड़ के नहीं देखना।
13: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये लेवल एक के बाद एक ऊपर होता जा रहा है।
12: शगुन नहीं गिरेगी, जा।
8: सर मैं कोशिश कर रही हूं, मुझे
12: कुछ नहीं
8: डर लग रहा है।
12: कुछ नहीं, जा बिंदास, कैन यू जस्ट कर दो, एकदम रिलैक्स। हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अरे हवा है, कुछ केबल पर है, कुछ नहीं होगा। चल वो देखो कैसे खड़ा है। Ready? Going first turn! Go! Ja. Aise chal, crawl hoke chali ja.
8: Ye sir, mere ko baithne hi nahi de raha hai.
12: Arey, kyunki wo tight hai na, chalo, thoda khada ho. Very good, Ritvik!
10: Come on, Ritvik bhai, come on!
12: शगुन जा, देख ऋत्विक को, देख शगुन, सेम है तेरा फॉर्मेटिंग।
8: पता नहीं सर,
12: अरे सेम है, जा बिंदास, कुछ नहीं होगा, बात मान मेरी, कुछ नहीं होगा, भरोसा रख।
8: सर मेरे को आप पे है, मेरे को खुद पे नहीं हो पा रहा है।
12: अरे हो जाएगा, चल वो देखो कहाँ पहुंचा है। वेरी गुड ऋत्विक।

0: टाइम लेके बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो,
1: बैलेंस कर ले पहले।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है रफीक भाई।
2: शगुन यार, अभी बदतमीजी मत कर, जा ना। वो देखने कहाँ पहुँच गया यार।
1: सॉरी, मैं सच्ची कोशिश कर रही
2: हूँ। जा तू प्लैंक पे, जा, कुछ नहीं होगा, डर निकल जाएगा, जा।
1: नहीं निकल रहा है।
2: अरे टाइट है शगुन।
1: प्लीज सर, फिर तो नहीं हो पाएगा।
2: हो जाएगा, जा ना।
1: मैं गूंज नहीं हूँ।
2: वेरी गुड रफीक।
1: वेरी नाइस,
0: टू गुड, टू गुड, टू गुड। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया,
1: वेरी वेल डन।
0: बैठ जा, बैठ जा, उसके साथ बैठ जा।
3: तो पैर रखना पड़ेगा।
1: वेरी गुड,
4: शाबाश।
3: अरे शगुन, तब तक एक दो स्टेप तो ले ले।
4: शगुन सिर्फ एक।
1: सर मेरे से नहीं हो पाएगा।
2: अरे जा, उसको देख, वो देख, वो देख कहाँ पहुंचा है, मक्खन की तरह। सेम है तेरा फॉर्मेटिंग, सेम है, समझा कर ना बात को, सेम है।
1: सर मैं समझ रही हूँ, मैं उनके पास हूँ।
5: शाबाश,
6: क्या बात,

0: लेस खुल गई है, लेस खुल गई है,
1: लेस खुल गई है। ओहो,
2: फर्क नहीं पड़ेगा,
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया हूं।
4: या शगुन, गो फॉर इट, शगुन गो फॉर इट, शगुन एक ही स्टेप ले लो।
5: सॉरी, बट ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इट्स टू हार्ड।
3: नहीं
5: हो पाएगा मेरे से, मैं कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है।
0: नहीं,
6: वो आगे कैसे आएगा, नीचे वाला
1: बैलेंस कर ले पहले।
7: तू ऋत्विक का भी वेस्ट कर देगी, बता दू, पार्टनर स्टंट है ना, तू जा।

0: सिर्फ ऋतिक ने स्टंट कंप्लीट किए, बाकी तो कोई कर ही नहीं पा रहा। नहीं ये बस हो गया, हम हाफ सीजन में पहुंच चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी है। आप लोगों ने देखा ये शो क्या है, आप लोगों को ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं। आप लोगों सबको पता है कि हाइट का स्टंट होगा, पानी होगा, नहीं है तो स्विमिंग सीख के आओ। सबको बोल रहा हूँ, हर्ष आपको भी बोल रहा हूँ, जैस्मिन आप तीसरी बार आ रही हो, ये कोई तरीका है?
1: सर आई एम वेरी सॉरी, आई एम अशेम्ड ऑफ।
0: चलो एक नहीं कर पाता है, एक अवार्ड करता है, समझ में आता है? तीन लोग स्टंट नहीं कर रहे हैं।
1: सॉरी सर।
0: समझ के क्या रखा है यार तुम लोगों ने, छह माले से कूदने बोल रहे थे, केबल लगा हुआ है हारने से किया ना एक आदमी ने। शगुन इन लोगों को तो भेज दो इंडिया, भेज दो, नहीं हो रहा है तो कितना देंगे लेवरेज यार। ऑडियंस भी देख के हमको बोलेगी कि क्या कर रहे हैं हम इन लोगों के साथ, क्यों दे रहे इतना बेनिफिट इन लोगों को। ऋत्विक ने किया कि नहीं किया? दैट मीन इट्स पॉसिबल।
2: यस
0: गिरा ऋत्विक तो फिर तीनों को फेयर फंदा मिलेगा। हेलो, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, पहनो पहनो चलो। और इसके बाद अगर कोई भी स्टंट नहीं करना है, स्टंट करते वक्त गिर गए, स्टंट कंप्लीट नहीं हुआ, बात अलग है, नहीं करना है तो शो से निकल जाओ, सिंपल। स्ट्रेट वॉकआउट, टेक योर सूटकेस एंड गो बैक टू इंडिया। हमारी भी मेहनत लगती है ना,

0: आई होप अभी इन्हें क्लियर हो गया कि हमें शो को, इस शो पे होने वाले स्टंट्स को और हमारी ऑडियंस यानी कि आप लोगों को कितना सीरियसली लेता हूँ।
1: Hi guys, hi, hi. This is Farhan and hi Rohit, hi. How are you? All good. दिलों में अपने डर लेकर आए हो तो खतरों के खिलाड़ी होते।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: क्या बात? हर सुबह उठकर तुम चीजें भूल जाते हो तो जैस्मिन हो तुम। बिना बात के हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हो तो रुबीना हो तुम। स्टंट के शो में बैग्स का कलेक्शन दिखाकर आगे बढ़ रहे हो तो औरी
3: हो तुम।
1: और मेरे इस कविता के बीच में छुपी नजरों से करण को देख रही हो तो फरहाना हो तुम। अपने दोस्त की सेटिंग होते हुए देखकर जल रहे हो तो ऋत्विक हो तुम।
2: सर, ये आपकी मिमिक्री भी बहुत बढ़िया करता है।
3: ओ तेरी।
4: एक बार करवाओ।
5: यस।
3: देखना चाहूंगा मैं यार।
1: वेलकम टू मारुति सुजुकी प्रेजेंट खतरों के खिलाड़ी को पावर्ड बाय
3: वाय
1: आउटडोर पार्टनर। ए शगुन, कल स्टंट के बाद तू क्या बोल रही थी?
6: मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप इतने सीजन कर चुके हो, इतने अलग अलग स्टंट्स कर चुके हो, तो ये आपके दिमाग में आइडियाज कहाँ से आते हैं सर? ये खत्म क्यों नहीं हो गया आइडिया?
1: बेटा
6: इसको थोड़ा इजी कर दिया जाए।
1: गूगल पे जाके रोहित शेट्टी लिख तो तेरे को समझ में आएगा मैं कौन है। बचपन से कर रहा हूँ मैं, बताओ।
7: सीरियल्स की दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कहीं टेंशन होती है तो कहीं खुशी का माहौल। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीरियल की दुनिया की छटपटी खबरें।
8: सी टीवी के सीरियल जगधात्री में भाई आज महेश अपने होशो हवास खो बैठा है। भाई जरा देखिए तो उसका रो रो कर पूरा हाल हो गया है। वो तो अपने आप को संभाले नहीं संभल रहा, जिसके चलते पूरा परिवार परेशान है।

0: मन पर।
1: तो वही दूसरी ओर जगधात्री और शिवाय भी जुट गए हैं अपने नए मिशन पर, और देखिए कैसे वो कर रहे हैं तैयारी, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के किस तरीके से अपने नए मिशन को अंजाम दे।

से में देखिए कैसे संजय के घर पहुंच गया है स्वाति का भी पूरा परिवार। और यहाँ पर घर वाले हो रहे हैं बेहद इमोशनल, क्योंकि भाई घर के बड़े भाई साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे, जिसकी तस्वीर देखकर बुआ जी राखी बांध रही है। तो वहीं सरिता ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही है और हो रही है बेहद इमोशनल। ऐसे में घर वालों ने सरिता और वृंदा को भी नीचे बुलाया और उन्हें इस त्योहार के सेलिब्रेशन में शामिल किया।

0: अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के खास मेहमान से, जो हैं एक्टर और होस्ट पारितोष त्रिपाठी, जिन्हें प्यार से टीआरपी मामा भी कहा जाता है, और जानते हैं उनके बारे में अब क्लोज एंड पर्सनल।
1: तो मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से हाजिर हूं अपना नया पॉडकास्ट लेकर। मैं बात कर रहा हूं कला की, साहित्य की, और जो हिंदी साहित्य है हमारा बेहद खूबसूरत है, चाहे कबीर हो, तुलसीदास हो, उससे लेकर रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, इतना बड़ा हमारा इतिहास है हिंदी साहित्य का। लेकिन आजकल भी जो साहित्य है उसको बचाने की पुरजोर कोशिश चल रही है, और कुछ ऐसी ही कोशिश लेकर आए हैं मेरे साथ पारितोष। और पारितोष की मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदी साहित्य को रेलेवेंट आज के जेंजी के लिए बनाने की कोशिश की है, जो इनका एक शो है कवि सम्मेलन।
2: घर सिर्फ घर में है, बाकी सब सफर में है। सफर है नींद का सपने तक, सफर है अपने का अपने तक।
1: जो बेसिकली युवाओं को सिखा रहा है, मैं कहूंगा कविता। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और पारितोष आप तो रवि की तरह पहुंचकर अब जेंजी को सिखा रहे हैं शेरो शायरी और कवि बनना।
3: आजकल इंटरनेट पे दो ही चीजें चल रही हैं, या तो रवि सम्मेलन नहीं तो कवि सम्मेलन। दो ही चीजें चल रही हैं। और रवि भैया भी फोन करते रहते हैं, उनको बहुत सारी पोएट्री अच्छी लगती है तो फोन करके उसे बताते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा था
1: जी,
3: मैंने बहुत रिलेट किया, मैंने ये चीज जिया हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो हैप्पी। वो हमारे कई बार हमें फोन करते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं।
2: अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को, और चलो मेरे साथ कुछ साल पीछे।
1: रवि भैया अचानक से वायरल हो गए।
3: अरे पर उनको भगवान ने जोड़ के दिया है सब कुछ, 34-35 ईयर्स
1: जी
3: पर मिला है, और कितना बड़ा एग्जाम्पल है वो अपने आप में। आप लगे रहो, आप अपने काम में ईमानदार रहोगे तो आपको मिलेगा, और बहुत मिलेगा
1: जी।
3: और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। इस वक्त हर बड़ी फिल्म में वो है, वो मैंने बोला कि आप ही हैं कि एआई घूम रहा है।
1: सही सही कहा आपने। टीवी हो, वेब हो, फिल्में हर तरफ हो हैं। लेकिन रवि भैया की आप चूंकि एक बहुत अच्छे, मैं आपको बता दूं कि पारितोष जो हैं एक बहुत अच्छे मिमिक्री कलाकार हैं, उनके करियर में बहुत बड़ा हाथ है अमिताभ बच्चन का, क्योंकि ये कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे जी। तो रवि भैया की मिमिक्री जो है बहुत ही एक स्टाइल है उनका, एक अलग एक स्वैग है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने अंदाज में रवि भैया का जरा स्वैग पेश करें।
3: आप मुझसे बात करिए
1: जी,
3: सवाल पूछिए, मैं एज रवि भैया आंसर देता हूं।
1: रवि भैया क्या बात है, मामला लीगल है से लेकर आप को रियलिटी शो में बेटी के साथ आ रहे हैं, क्या चल रहा है? मतलब आपने जेंजी हो, सब तरह के लोगों को आपने बिल्कुल क्या बोलते हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा कर डाला है।
4: जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे,
3: बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या
1: जी रवि भैया, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा जो आपका है,
3: अभी तो बहुत सारे मेरे भीतर किरदार हैं जो अंदर बसे हैं, अभी तो इतना सा किया है बाबू। और तुम अगर मीडिया में हो, अच्छा काम कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, तो आज तक फॉलोज माय ब्रदर।
1: तो आपसे जानना चाहूंगा, जब आप किसी को, आप एज ए कलाकार जब क्लियर समझते हैं तो क्या क्या नुआंसेस पकड़ते हैं आप
3: रियल लाइफ में, वो कैसे हैं
1: जी?
3: बाकी तो सिनेमा किरदार, जैसे पंकज भी आए हैं, वो रियल में कैसे हैं? नहीं तो गलत हो रहा है ये मकबूल, ये सिनेमा का है
1: जी,
3: रियल में वो और नेचुरल है। कैसा है बता, क्या चल रहा है? ठीक ठीक ठीक, चल चल, लेट हो रहा है। तो मुझे लगता है जो रियल में है या इंटरव्यूज में जो आप करते हैं ना, मैं उस तरफ ज्यादा जाता हूँ। पर अब तो मिमिक से कुछ और हो गया, अब तो हमारी भी लोग कर रहे हैं।
1: पर कहते हैं ना, इमिटेशन इज द बेस्ट एक्ट ऑफ फ्लैटरी।
3: यस यस यस यस। और आप जिसको प्यार करते हैं उसी की मिमिक्री करते हैं
1: जी,
3: आप जिसकी इज्जत करते हैं, और मुझे लगता है कि आप किसी पे जोक मार रहे हैं, किसी की मिमिक कर रहे हैं किसी को, उसको भी मजा आना चाहिए देख के, ये बड़ी बात है
1: जी।
3: मैंने रवि का वीडियो बनाया, सबसे पहला हंसी वाला उन्हीं का आता है जी। कुछ तो डाला था कि गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते हुए पकड़े जाओगे तो बीवी फॉलोज माय ब्रदर, हाथ में डंडा लेके फॉलोज। क्या है ये पागल
1: जी,
3: लोगों को हंसी आनी चाहिए, लोगों को जिसके बारे में जोक है उसको भी उतना ही मजा आना चाहिए, तो जोक है, नहीं तो
1: जोक नहीं तो कभी कभी लोग बुरा भी मान जाते हैं।
3: बुरा मानना भी चाहिए, क्या हक है किसी का मजाक उड़ाने का
1: जी।
3: लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुले हाथों स्वागत करते हैं, हाँ भाई मेरे पे बोलो। चंकी पांडे जी बोलते हैं कि मेरे पे जोक नहीं मार रहे, मेरे सब ठीक नहीं चल रहा है क्या, वो गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मेरे पे जोक तो मार रहे। तो ये भी है
5: I'm joking. चंकी पांडे का क्या स्टाइल है आपको लगता है? मैं कुछ ऐसे अंडररेटेड अमिताभ बच्चन ये सब लोग तो सब करते हैं,
3: कमाल आर्टिस्ट है, कमाल आर्टिस्ट है। मैं आपको कैसे उन्होंने चेंज किया, कितना रिलेवेंट बनाया अपने आप
5: जी।
3: और आखिरी पास्ता आप सोचिए क्या-क्या कैरेक्टर उन्होंने किया है, कितना कमाल है जी। एक बंदा हीरो, फिर एंटी हीरो, फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट, फिर सपोर्टिंग विलेन होते होते होते एक दूसरा ही कोई 10 साल से चल रहा है आखिरी पास्ता
5: जी।
3: क्या रेंज है उनमें, बहुत कमाल एक्टर है, बहुत कमाल एक्टर
5: जी।
6: मम्मा मिया, अल्लोरा, बुंजोर्नो, अल पचीनो।
5: आजकल इस दौड़ती भारतीय जिंदगी में जहाँ लोग फ़ोन में हमेशा लगे रहते हैं, एक चीज़ जो बहुत मिसिंग है वो है हंसी की कमी। और कहीं ना कहीं हर सदी में जो हंसी का लाफ्टर थेरेपी है हमेशा काम आती है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर कभी कभी आजकल बहुत सारी चीज़ें आने लगी। ऐसे में आपको लगता है जो रेलिवेंट कॉन्टेंट कॉमेडी का कैसे आना चाहिए, और कवि सम्मेलन से क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे
3: सम्मेलन सुन के लोगों को लगता है कि बोरिंग चीज़ होगी, अरे पुराना सा कुछ जमाना कुछ ऐसी अलग बात,
5: ओल्ड स्कूल।
3: पर ये ओल्ड स्कूल है नहीं
5: जी,
3: इसमें बाहर जो बोर्ड लगा है वो ओल्ड स्कूल का है, इंटीरियर चेंज कर दिया हमने।
2: मेरे हर जानने वाले से पहचान करती है जिसके लिए छोड़ी थी लत सिगरेट की, वो किसी और के साथ धूम्रपान करती
3: है। तो बस आप एक बार आ जाओ अंदर, आप अंदर देखोगे फिर पता चलेगा हिंदी से कूल कुछ नहीं है
5: जी।
3: हिंदी कूल सर, हिंदी वो भाषा है जो मुझे जन्म के साथ, हम माँ के दूध के साथ जो भाषा सीखते हैं वो हमारी भाषा होती है, वो मातृभाषा है
5: जी।
3: तो हिंदी हमें आई है ऐसे ही, अंग्रेजी तो हमें मार मार के सिखाई गई है, है ना
5: जी।
3: तो वो तो ये तो नेचुरली है हमारे समाज में, कभी अंग्रेजी में गाली देके देखो फील ही नहीं आएगा दिया ना आपने मन में
5: जी। वो तो बात है, पर हमारे देश में
3: रोना आता है ना, तो आप भगवान से किस भाषा में बात करते हैं और अपनी माँ से, वही आपकी जबान है
5: जी। आई थिंक बहुत आपने सरल भाषा में एक बहुत बड़ी बात कह दी। पर हमारा जो देश है भारत, कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, तो यहाँ पर जो भाषाओं का ट्वैंग, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी बातें चेंज होती है, ईस्ट उत्तर प्रदेश का अलग ब्रिज भूमि से कब वो ब्रिज भोजपुरी में बदल जाती है जी।
3: फिर उधर खड़ी हिंदी है, मेरठ की तरफ हिंदी है, ईस्टर्न यूपी में भोजपुरी का असर ज्यादा है
5: जी।
3: मुझे यूपी बिहार की सारी भाषाएं आती है।
5: तो हिंदी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि राजस्थान में भी राजस्थानी अलग अलग अंदाज में बोली जाती है।
3: बिल्कुल है।
5: तो कितनी विचित्र है हमारा और कितना रंगीन है हमारा देश कि हम उसे सेलिब्रेट करें, राधर हम उसे फाइट करें कि हम भाषाओं पे झगड़ा करते फिरे।
3: और भाषाओं पे ऐसे झगड़ा है नहीं, मैं तो कहता हूं कि झगड़ा करते करते आदमी कई भाषाएं सीख लेता है। मैं कहता हूं भाव जहां पे होता है ना भाषा पीछे छूट जाती है। दुनिया की सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज पता है क्या है? ये है प्यास। किसी भी भाषा में ऐसे करेंगे तो लोग पानी ही समझेंगे। इसमें कोई शब्द चाहिए नहीं चाहिए
5: जी।
3: क्योंकि ये भाव स्ट्रांग है, जहां पे भाव होता है ना वहां भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती है
5: जी।
3: जो सिंपल सहज बातचीत में कोई पोएट्री जो दिल में उतरती है ना वो बहुत भारी शब्दों के साथ वाली नहीं उतरती, आप नोटिस करिएगा। जो गाने आसान होते हैं वही गाने हम तक पहुंचते हैं
5: जी।
3: जब दिनकर जी ने लिखा जब नाश मुलुक पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, इससे सिंपल क्या बात होगी।
5: तो आप पर किस पर ज्यादा प्रभाव रहा है, रामधारी सिंह दिनकर?
3: दिनकर जी का बहुत प्रभाव रहा है मेरी राइटिंग में, जबान में, मुझे पसंद है। उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं गिनता हूँ, हालांकि मैं हूं ही कौन गिनने वाला, पर मैं अगर पाठक हूं तो मेरा अंतर मेरे हीरो है वो। और सिर्फ आप रश्मि रद्दी की बात ना करें, आप और भी रचनाएं पढ़ें। आप मर्दमानों के विजय का तुर्य हो, पुरुषी अपने समय का सूर्य हो, इंद्र का आयु पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, हार जाता है मंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी से मुस्कान से, पुरुषी पढ़िए आप। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, रश्मिति का पहला सर्ग, पहली मंगलाचरण है ये। तो हम क्या होता है कि कोई भी रचना जो होती है उसको ट्रिब्यूट देते हैं किसी ना किसी को, अपने इष्ट को, अपने परिवार को, समाज को, सोसाइटी को, उन्होंने बल को दिया है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी हो बसे हमारा नमन तेज को बल को। बल को उन्होंने सेलिब्रेट किया है कि हम ये ट्रिब्यूट आपको दे रहे हैं, बाप लोग हैं साहब। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मन से ऐसी बातें भी होती हैं, उन हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, जो कवियों कवि कुल के जो बड़े हैं, उनकी बात होती है, कुमार भैया की बात होती है, और उसके अलावा हम नए जो बच्चे हैं, अभी जो नई पौध आई है, सब 40 के नीचे हैं जो भी आए 52 एपिसोड में। 150 पोएट्स आए कम से कम, 150। और क्या आप सुनिए क्या लाइनें बोल रहे हैं और क्या कहने हैं उनका। डर को इतना ना डराओ, बच्चे हथियार पकड़ लेते हैं, नया लड़का है जिसने लिखा है। डर को इतना ना डराओ, बच्चे हथियार पकड़ लेते हैं, क्या लाइन है, क्या बनेंगे ये लोग आने वाले समय में। तो मेरे लिए तो ये है कि मेरा एक स्वार्थ पूरा हुआ है, मैं तो इतना सारा मैंने डाउनलोड कर लिया है ना कि मैं अगले 10 साल तक पोएट्री पे बात कर सकता हूँ।
2: सबसे खूबसूरत यही कहानी है, बेटा बाप का बचपन है, बाप बेटे की जवानी।
3: और नई पौध है, और जिनको सोसाइटी ने, इंस्टा ने, सोशल मीडिया ने बहुत ढंग से एक्सेप्ट किया है, तो टीवीएफ और टीएसपी के साथ ही जो कोशिश है
5: जी,
3: हमारे साथ हमारा भी एक गठबंधन हुआ
5: जी,
3: और मिलके जो चीज बनी है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब लोग सुनने को तैयार है, हम अच्छा परोसे बस
5: जी। तो अभी फर्स्ट सीजन आपका खत्म हुआ है, तो इसमें कोई मजेदार, कोई पल, कोई ऐसा एपिसोड जो सबसे ज्यादा आपको मजा आया हो करने में? दिन से
3: राजपाल यादव भैया का एपिसोड बहुत अच्छा था, दिनेश जी आए थे मेरे हुआ
5: जी,
3: हमने पूरी मंडली बुलाई थी, और हमने पहले पूर्वी चैती और अपना उधर फोक गाने हुए, उसके बाद पोएट्री हुई
5: जी,
3: उन्होंने कविताएं गाई। रणवीर बरार जी आए थे, वो शेफ हैं, पर बहुत अच्छे
5: जी। ये बहुत अलग था कि आपने बहुत हमने सोच नहीं सकते थे कि वो कविता कर सकते हैं।
3: टेरेंस लुईस आए
5: जी,
3: उन्होंने कविताएं कही। हर्ष गुजराल आए, स्टैंड अप हैं, पर उन्होंने कविता
5: कही जी।
3: बहुत सारे लोग हैं जिनका ये काम नहीं है, पर आप उनसे मिलेंगे तो उनको राइटिंग की समझ है
5: जी,
3: उनको कविताओं की समझ है, उनको बहुत अच्छी समझ है, लोग सुनते बहुत अच्छा है
5: जी।
3: तो इतने अलग अलग किस्म के लोग हैं। देवेंदु शर्मा आए, एक्टर के तौर पे जानते सब लोग, अभिषेक बनर्जी उनको एक्टर के तौर पे जानते, और आप इतना अच्छा सुनाते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं।
5: तो और आपके जो महिला गेस्ट में भी हमें काफी सारी,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
5: जैसे अंगूरी भाभी हमारी,
3: तो आयशा खान बोलना चाहते जी। यहाँ तक आया था मैंने देखा, दो बार आपने वापस किया,
7: सही पकड़ा है
5: जी, आयशा खान और शुभांगी,
3: तो नाम
5: नहीं शुभांगी, क्योंकि हमारे टेलीविजन की एक उन्होंने कॉमेडी को अपनी जो भाभी जी घर पे है
3: मैं। जी तो रोके गई।
2: अगर आपको पैर छूना बुरा लगा तो आप गले लग के माफी भी मांग सकती हैं। मरो।
3: आंसू आ गए। एक हमने उनपे कविता पढ़ी थी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अकेली हैं, और वो अकेली हैं तो लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए अवेलेबल है।
2: तेरे ना होने पर मैं ज्यादा चीनी वाली चाय पीती हूँ, बस लाइफ में मिठास नहीं है, सारी वेब सीरीज आधी देख के छोड़ी है।
3: या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पीओवी से हमने कविता पढ़ी
5: थी,
3: शी वाज क्राइंग, वो बहुत इमोशनल, यशपाल शर्मा जी आए थे, वो इमोशनल हो गए।
2: बेटा बाप का बचपन है, बाप बेटे की जवानी,
3: आंख भर गई, मतलब ऐसे ऐसे। अक्षरा सिंह आई थी
5: जी, वो भी बहुत मजेदार एपिसोड था,
3: बहुत अच्छा उन्होंने भी कहा, बहुत अच्छा सुना।
8: अभी तक ठीक से बन पाया है इंसान नहीं, मगर वो आदमी खुद को खुदा समझ।
3: अम्रपाली आई
5: जी,
3: अम्रपाली जी बहुत, वो भी बहुत अच्छा, और लिखती भी है।
5: अच्छा,
3: तो क्योंकि मुझे सब जानते हैं पर्सनली, तो वो सब लोगों को पता है, तो मुझे कई बार शेयर भी करते हैं कि यार हमने कुछ चार लाइन लिखी है जरा सुनना। हर्ष गुजराल ने अपनी लिखी कविता सुनाई, इन्होंने राजीव ठाकुर पाजी ने अपनी लिखी कविता सुनाई, तो ये कितनी अलग सी बात है
5: जी।
3: तो सब लोगों ने बहुत, एक तो, और सब लोग एक कॉल पे आ गए, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, एक अच्छा काम हो रहा है तो चलो सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग, तो मुझे भी इस बार मैं इतना मजबूत महसूस कर रहा हूँ ना, कि मुझे अब लग रहा है कि मेरे लिए खड़े होने के इतने सारे लोग मेरे साथ, और मेरे लिए नहीं हो रहे हैं वो, साहित्य के लिए
5: जी,
3: हो रहे हैं,
5: ये बहुत बड़ी बात है,
3: लिटरेचर के लिए हो रहे हैं, और एक अच्छी चीज हो रही है, उसमें वो अपना योगदान दे रहे हैं। कितने सारे पोएट्स है जो दूर दूर से आए ट्रेवल करके, कश्मीर से एक लड़का आया पोएट्री सुनाने, कन्नौज से आया, एक देवरिया से आया, राजस्थान से, अहमदाबाद से, पूरे भारत से कवि आए
5: जी।
3: राहत इंदौरी साहब के बेटे सतलज आए, उन्होंने कविता पढ़ी, बहुत बहुत, तो कमाल ही आदमी है
5: जी।
2: जो भी तनहा घूम रहा सब उसकी नजर में है, घर सिर्फ घर में है, बाकी सब सफर में है।
5: तो आज हम हमारे मेरे पॉडकास्ट में खास होती हैं कुछ ट्रिविया अबाउट एन एक्टर, तो आज मैं परितोष के बारे में बातें बताना चाहूँगा। ज़्यादातर इंटरनेट पर तो गलत सलाह होती हैं या पूरी तरह नहीं होती। तो सबसे पहली बात जी, तो परितोष ने अपना करियर जब मुंबई में 2008 में नहीं 2010 में आप आए थे, नहीं 2009 में जब आप आए थे, 10 में स्टार्ट किया, तो एक रियलिटी शो आपने जीता था महुआ चैनल का। शायद बहुत कम लोग उस रियलिटी शो के बारे में जानते हैं जिसमें जो जज सुनील पाल और उपासना सिंह थे, तो वो महुआ चैनल का एक भोजपुरी में कोशिश थी, एक हंसी का तड़का अगर मैं उसका नाम शो आई थिंक आपका फर्स्ट टेस्ट उससे पहले आपने एक ईटीवी का भी शो किया था यूपी के लाल और समथिंग, तो कैसा था पहली बार जब अप्रिसिएशन मिला, स्टेज मिला? तो
3: जी आपके पास?
5: जी मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ और आप हमेशा से
3: मैं 9th में था
5: जी,
3: तो ईटीवी का शो किया था, मतलब ये बात होगी 2002-3 की होगी
5: जी।
3: बापरे 24 साल,
5: तो 24 साल पहले यूपी के लाल शो का नाम और आप ही यूपी के लाल बन के आज यूपी का नाम आप रोशन कर रहे हैं, उस प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पहला स्टारडम कैसा था? और उसके बाद ऑफकोर्स
3: बड़ा मजा आता था, संडे को एपिसोड आता था
5: जी
3: और मंडे को मैं ऐसे चौड़ में रहता था क्योंकि एक दिन पहले पूरा स्कूल देखा होता था वो शो, तो सारे टीचर्स बहुत प्यार करते थे और मेरे साथ वाले भी किया, अलग सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं फेमस बचपन से ही हूँ, हम फेमस शुरू से होते हैं, फेम का बस दायरा बढ़ता है
5: जी।
3: अभी दायरा बढ़ रहा है, बस इतनी सी बात है। फेमस मैं स्कूल में सबसे पॉपुलर था, मैं शिवाजी कॉलेज पढ़ता था दिल्ली
5: जी, जहाँ आपने अपना थिएटर ग्रुप भी बनाया था और आपको आईपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी सम्मानित किया था
3: जी। तो उपस्थिति में पुरस्कृत हुआ हूँ मैं और रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति में पुरस्कृत हुआ हूँ मैं, उनके हाथों पुरस्कार दिया है, तब वो बिहार के गवर्नर थे, मुझे पुरस्कार दिया उन्होंने और अगले दिन महामहिम राष्ट्रपति हो गए देश के। तो फिर मिलना नहीं हुआ तो मैं बोलता कि सर मैं लकी हूँ आपकी।
5: तो ये जो हंसी का तड़का, ये जो था महुआ का शो, उसमें पहली बार एक नेशनल लेवल पे आपको
3: क्योंकि तो बड़ा पॉपुलर था,
5: बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे हाँ जी,
3: और मैं विनर था, 5 लाख रुपए मिले थे
5: जी।
3: और उसमें जो लड़का टॉप 5 में था मेरे साथ, उसका नाम रणवीर प्रताप सिंह है, तो ये कवि सम्मेलन का वो डायरेक्टर है।
5: ओह माय गॉड, दैट्स द बिगेस्ट ट्रिविया आई थिंक।
3: और उसमें एक लड़का था टॉप 3 में, उसका नाम है बुल्लू कुमार,
5: okay.
3: जो पंचायत में माधव बनता है,
5: उसकी
3: बकरी खो जाती है।
5: अच्छा,
3: he was in top 3, उसका भी पहला काम था।
5: तो आपके संगी साथी सब आज उस शो से,
3: चैनल बंद हो गया
5: हाँ जी,
3: शो खत्म हो गया, चैनल बंद हो गया, दुनिया पलट गई, पर हम लोग तब से लगे रहे और लाइफ में हो गया
5: जी।
3: अब सोचिए बुल्लू कुमार वो उसमें था, टॉप 3 में था, मैं विनर था उसका
5: जी
3: और रनर था वो पहला
5: जी।
3: कमाल।
5: उसके बाद आई थिंक
3: क्राइम पेट्रोल
5: हाँ जी,
3: क्राइम पेट्रोल तो बहुत किया, बहुत 50 से ज्यादा एपिसोड्स किए।
9: दूध दाल सब्जी के भाव कितने ही बढ़ जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: बहुत, मेरे घर में टीवी फ्रिज खाने वाने का सब कुछ क्राइम पेट्रोल से।
5: तो क्राइम पेट्रोल मुझे लगता है कि एक ऐसा शो है जिसने बहुत सारे करियर्स को लॉन्च किया और शायद लोग उसको इतना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
3: काफी बेटे ने किया है, विनीत कुमार
5: जी,
3: विनीत कुमार सिंह, विनीत भैया मुक्का
5: जी
3: ने किया है
5: जी,
3: बहुत सारे फेमस एक्टर्स ने किए हैं, बहुत सारे लोगों ने क्राइम पेट्रोल किया है। और देखिए क्राइम पेट्रोल से मेरी पहचान बनी अगर ऐसे देखें तो, और अनूप सर आए थे एक एपिसोड हमारे शो पे, तो मैंने कहा क्या दुनिया है।
10: कोई था जो दिल्ली के एक अमीर घर पर नजरें गाड़े बैठा था।
3: मैं क्राइम पेट्रोल करता था तो मैं ऐसे देखता था कि अनूप सर से एक बार मिलना हो जाता हमारा, और अभी आप इस शो पे आए, अपनी कविताएं कही।
5: उनका काव्यात्मक साइड कैसा था? NSD के स्टूडेंट रहे,
3: बहुत अच्छी समझ उनको, बहुत अच्छी और बहुत मिट्टी है वो
5: इमेज ऐसी है, बहुत मिट्टी है जी,
3: अच्छा ह्यूमर है उनका, बहुत अच्छा ह्यूमर है
5: जी।
3: तो मतलब उन्होंने क्राइम पेट्रोल भी किया और
5: कॉमेडी सर्कस भी।
3: तो मैंने बोला कई बार तो क्राइम पेट्रोल मतलब कॉमेडी सर्कस देख के भी लगता था कुछ वारदात भी बनाएंगे
5: जी। जी सबसे ज्यादा पहचान मिली परितोष को एज TRP मामा जी।
11: नेवर पुट अप टिल टुमारो एज टुमारो नेवर कम्स। मेरा इंग्लिश एक ही बार में होता है, दोबारा में
5: आई थिंक आज जो भी मिलता है मेरे को भी देख के सबसे पहले आपने बहुत शोज किए, लेकिन पता नहीं कि TRP मामा जी वाज लाइक उन कैरेक्टर व्हिच इज आइकॉनिक।
3: मतलब दैट इज टर्निंग पॉइंट फॉर मी. दैट वॉज मामा जी एंड सुपर डांसर. सुपर डांसर इज माई रिबर्थ एज एन एक्टर. मामा जी मेरा दूसरा जन्म है. तो करियर मामा जी से पहले और मामा जी के बाद दो ही हिस्से में है. लेकिन अब कमाल की बात है कि अब लोग परितोष त्रिपाठी
5: जी हैं.
3: वरना पहले तो मैं कोई भी कपड़ा पहनूं लोग मूछ लगा देते थे आंखों में और झोला टांग देते थे और फिर मुझे इमेजिन करते थे अच्छा वही होगा वही होगा वही होगा.
5: लेकिन परितोष आपका मैंने देखा आपने हमेशा इंडियन कपड़े ही पहनते हैं आप. तो डेलिबरेटली आपने ये मतलब एक अच्छी कोशिश है कि आप हमेशा मैंने आपको कुर्ते पजामे में मोस्टली आई हैव सीन यू इन इंडियन कॉस्ट्यूम एंड अटायर.
3: मुझे बहुत पसंद है. मैं तो बीच में धोती कुर्ता ही पहन रहा था. फिर किसी ने बोला कि यार तुम या तो आधार कार्ड पे 50 साल लिखवाओ या फिर सुधरो. पर मेरा ये ना सर कि अगर मैंने शूज पहन लिए तो मुझे फिर कहीं ले चलो, कम से कम एयरपोर्ट ले चलो. मुझे शूज पहन के मैं आसपास नहीं जाना चाहता हूँ.
5: नहीं बट कुर्ता पजामा भी आजकल कूल लगता है. उसमें अलग अलग स्टाइलिंग से आप अच्छा बना सकते हैं.
3: मैं इंदौर गया था महाकाल दर्शन करने तो मैं वैसे ही धोती कुर्ता में एयरपोर्ट पे आ गया. तो फ्लाइट से ज्यादा लोग मुझे देख रहे थे. मैंने कहा मैं नहीं उड़ूंगा यही उड़ेगी. पर लोग देखे मुस्कुराते तुम तो यार हाँ बड़े अच्छे लग रहे हो तुम तो कर सकते हो. तो ये है अभी अलग अलग रूप में मैं दिखूंगा आपको. कुछ फिल्में आ रही हैं कुछ शोज आ रहे हैं जिसमें बहुत अलग दिखेगा किरदार दिखेंगे. मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट यूनिक एज एन एक्टर.
5: पंचायत अमेरिका बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मुझे बड़ा जब मुझे
3: टीम मिलेगी आपको साहब.
5: तो पंचायत अमेरिका आपका जो नया शो आने वाला है इट्स लाइक अगर लोगों को पंचायत पसंद हो आई एम श्योर आई थिंक यू गाइस शुड वेट फॉर दिस प्रोजेक्ट.
3: उस तरह की दुनिया दिखेगी जी फिल्म की जिसमें मैं

0: देखने को मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल सटायर है, गाने बड़े अच्छे हैं। एक गाना सुनिधि जी ने गाया है, एक गाना पीयूष मिश्रा जी ने गाया है।
1: अब पीयूष मिश्रा समवेयर आई थिंक वो भी उन्होंने, मैं दाद देना चाहूंगा आपकी, पीयूष मिश्रा और विश्व कुमार विश्वास की, जिन्होंने बड़ा कूल बना दिया है हमारी पोएट्री को।
0: हमें एक आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथों पुरस्कार मिला हमारी किताब के लिए, छह सीमा पर, और उस दिन पीयूष जी को भी मिला, मतलब पीयूष जी को मिला, मुझे भी मिला ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत, उनका प्रभाव है हम सब पूरी जनरेशन जी, तो उनको तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा के लिए मिला प्रोज में और मुझे पोएट्री में,
1: ओके,
0: साहित्य सृजन अवार्ड। तो वो बैठे थे, अरे तू इधर कैसे, मैंने कहा ऐसे टहल टहल।
1: उनका भी एक बड़ा अच्छा स्वैग है जैसे बोलते हैं वो,
0: आह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करता है तू, बहुत ही अच्छा करता है, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वो कमाल आदमी, कमाल आदमी है, इतने साफ और एकदम वो स्टारडम साहब ये वाले हैं
1: जी।
0: दो ही तरह के स्टार्डम है, एक स्टार्डम जो सलमान सर शाहरुख साहब लोग जी रहे हैं, एक स्टार्डम वो है, दूसरा स्टार्डम है जो संजय मिश्रा जी जी रहे हैं, जो विनीत कुमार जी जी रहे हैं, जो पंकज त्रिपाठी साहब जी रहे हैं, ये है, यही दो है, बाकी सब समझ नहीं पा रहे कि कैसे जीवन जीना है
1: जी।
2: मिलना है तुम्हें जैसे मिल जाते हैं गंदी फिल्म देखते वक्त मोहल्ले के अंकल अचानक से।
1: तो मुंबई ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन खास बात है कि परितोष त्रिपाठी को मुंबई ने एक परिवार दिया, जो मामा जी हम जानते हैं, उनको एक बहन दी जिसे दुनिया माँ कहती है, एक बड़ा भाई दिया जिसे लोग कालीन भैया कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज दर्शकों को आप बताएं, मुंबई में रिश्ते टूट जाते हैं, जनरली कहते हैं कि सपनों का शहर है, लेकिन आपने यहाँ पे पूरा परिवार, क्योंकि जनरली गीता माँ को सब लोग आपके शो से जानते हैं, लेकिन आपको एक बहन मिली और वो आपकी हर, मैंने देखा आपकी शादी से लेकर आपकी बेटी के जन्म से लेकर हर वक्त वो बहन साथ रही, और पंकज त्रिपाठी जी भी एक बड़े भाई की तरह। तो ये जो परिवार मिला आपको, इससे
0: मिला इन लोगों के, इन दोनों के अलावा रवि किशन जी बड़े भैया है, रवि दुबे बड़े भैया हैं, तो इनका इतना सपोर्ट मिलता रहता है, हरदम हमेशा है हमारे लिए, हमारे लिए एक मैसेज एक कॉल पे, आधे कॉल पे उपलब्ध है
1: जी।
0: ये इसी शहर में मिले हैं ये सारे रिश्ते। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर्स नहीं है
1: जी,
0: दूसरी दूसरी चीजों में है, वो भी काफी बड़े लोग हैं
1: जी,
0: पर वो मुझे भाई मानते हैं और प्रेम देते हैं
1: जी।
0: तो शहर ने तो मैं बहुत एकदम मौज के हालत में हूँ इस वक्त, मैं ऐसा लगता है कि पानी के छींटे पड़ रहे हैं कूलर से मुंह पे गर्मी के मौसम में, वो वाली फीलिंग आ रही है
1: जी।
2: ये भूख की मारी लड़कियां कितनी रातें नूडल्स में गुजारी लड़कियां, मासूमियत का अबॉर्शन करा चुकी हैं कई बार ये कुंवारी लड़कियां।
1: तो बात करता हूँ अगली ट्रिविया की, तो परितोष ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे ना बोले तुम, मैंने कुछ कहा, महाकुंभ, तो टीवी सीरियल जो सो कॉल्ड सास बहू जॉनर होता है, उसमें एक्सपीरियंस कैसा था?
0: सास बहू का तो मैंने कोई शो नहीं किया,
1: जैसे ये वाले जो शोज,
0: हाँ ये ना बोले तुम वो बहुत अच्छा था, आकांक्षा सिंह उसमें
1: जी जी, आकांक्षा सिंह
0: हम भी थे उसमें, उसका शो था
3: ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा
1: जी,
0: महाकुंभ बहुत इंटरेस्टिंग
1: जी, वो बहुत अलग
0: फील था। एक से एक टॉप एक्टर्स थे, आप उनके नाम, मतलब सुरेखा जी थी, सीमा विश्वास जी थी, विनीत कुमार जी थे, मोहन महर्षि जी थे, रॉबिन दास जी थे, मनीष वाधवा थे, गौतम रोड़े थे, पायल राजपूत साउथ की बड़ी
1: जी,
0: श्रुति उल्फत, आप देखिए ऐसा आर्टिस्टों का पूरा जमावड़ा था।
4: ये शुरुआत है महाविनाश की,
0: और वो मेरे लिए बहुत स्कूलिंग थी।
1: लेकिन उसके बाद आपने सीरियल्स में ज्यादा काम नहीं किया?
0: मैं फिर किसी ने लिया नहीं, उन्होंने कहा जाओ तुम कुछ ढंग का काम करो,
1: तो ढंग का काम आप। एक और आपका प्रोजेक्ट आने वाला है के मेनन साहब के साथ, तो
0: एक हॉरर फिल्म है,
1: हॉरर फिल्म है,
0: हॉरर है,
1: ओके,
0: और के सर है और मैं उनका छोटा भाई हूँ उसमें, समझ लीजिए
1: जी,
0: और इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता
1: जी,
0: क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, जल्द आ जाएगी
1: जी।
0: तीन चार फिल्में रिलीज है,
1: तो यानी 2026 में
0: 2027 मैं आपको कई बार मिलूंगा।
1: जी, हम तो हमेशा आपसे जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो मैं चाहता हूं हम अपने इंटरव्यू का जो एंड करें एक पोइट्री से करें, कोई ऐसी पोइट्री जो हमारे युवाओं को थोड़ा करें, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया कब है, तो सिंपल भाषा में आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आपके हिसाब से?
0: उनके लिए है कि जब से हुए हैं बेघर, हर तरफ अपना ही घर लगता है, डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है, बहादुरी की नहीं मौके की बात है, जीतता वही है हाथ जिसके खंजर लगता है, और मुझे कर गया था बदनाम।

0: सरे बाजार उस दिन कभी सामने पड़ जाऊं तो झुकने उसका सर लगता है।
1: भाई वाह, क्या बात है। आई होप हमारे युवा इसका मीनिंग समझे। आई एम श्योर आपने जो कोशिश की है कवि सम्मेलन की, वी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन जहां पर हो कुछ धमाका।
0: यस प्लीज कीप वॉचिंग कवि सम्मेलन टीएसपी 10 दिन बत्ती पे आता है हर फ्राइडे शाम 6 बजे।
2: याद करो जब कैसेट में साइड बी में ऊपर से तीसरा गाना नहीं दिल का हाल भेजा कर दिया।
3: अरे क्या बात है
1: जी। और ऑल द बेस्ट आपके आने वाली फिल्मों के लिए।
0: आज तक इतना अच्छा शो नहीं देखा होगा आपने पोएट्री का।
1: और आखिर में तो आखिर टिविया है कि आज तक चैनल जो हमारा चैनल है उनका भी एक कनेक्शन है पारितोष जी के साथ, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे पॉडकास्ट पर आज तक चैनल और अपना कनेक्शन बता दीजिए।
4: सरकार के खिलाफ जी,
5: और सरकार तो आप ही की है ना।
4: अरे हाँ,
5: कहीं आज तक वालों ने अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में पूछ लिया।
0: मैं राइटर था 7 साल प्रदीप सरकार जी के, वहाँ बड़े दिग्गज डायरेक्टर थे, उन्होंने बरदानी बनाई थी, परिणीता बनाई थी
1: जी,
0: और वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत तो बात में थे। तो आज तक की ब्लैक एंड व्हाइट एड्स आई थी, मैं ना कहती थी बड़ा तेज चैनल है, तो उसके लेखक थे गजराज राव जी और साथ में थे अनुराग कश्यप जी।
6: आज तक वालों ने हमारे खिलाफ काउंटर एनकाउंटर कर दिया है, पता लगा लिया है कि कल एनकाउंटर में मारे गए लोग नामी डकैत नहीं।
0: और जब दोबारा बना तो वो मैंने लिखा, और पहली बार उस अवार्ड को, उस एड को अवार्ड मिला था इंटरनेशनल
1: जी।
0: और जब दूसरी बार बना तो दूसरी बार भी अवार्ड मिला। तो प्रदीप सर ने एक बड़ा पोस्ट डाला था इसमें गजराज सर और मुझे टैग किया था, तो गजराज जी उस रूप में मुझे जानते हैं और हमारे शो में एपिसोड 2-3 में वो आए थे।
7: इस छोटे से 4 BHK में ना सुकून है ना चैन है, आज फ्रिज में बियर की बस 4 ही कैन है।
1: हाँ, उन्होंने बहुत एंजॉय किया आपके साथ। जी वो भी अनदर लेजेंड, एंड सो आई एम श्योर
0: देखिए आप, प्लीज अब देखिए, भरपूर प्यार दीजिए, रील्स तो बहुत वायरल चल रही है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और देखिए हर फ्राइडे को टीएसपी के पुराने एपिसोड्स भी देखिए आपको।
8: बुझती आंखों में ख्वाब नया तैरने लगा, मैं चल चल के थक गया था फिर दौड़ने लगा।
1: थैंक यू सो मच परितोष जी, सच अ प्लेजर टू ऑलवेज टॉक टू यू। आप इसी तरह हिंदी भाषा की ये जो पूरी कविताओं को लोगों तक पहुंचाते रहिए, एंड हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
9: सीरियल मन्नत में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। एक तरफ त्योहार की खुशी है तो दूसरी तरफ धैर्य के खुलासे की प्लानिंग। चलिए देखते हैं क्या है मन्नत और विक्रांत का मास्टर प्लान।
10: मन मंदिर में सजे बिहारी,
11: ने बना दी मन्नत विक्रांत की जोड़ी।
10: मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया।
11: जन्माष्टमी के त्योहार पर मन्नत का स्पेशल

0: छीन लेता। ये चाहता था कंसीन गलती थी उसकी।
1: प्रोग्राम ने बौखलाया धैर्य। क्या होगा सच का खुलासा?
0: अरे हालात बदलते हैं फिर जज्बा बदलते हैं। अगर वाकई असल में इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन है तो वो इंसान नहीं, इंसान का भक्त है।
1: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज मन्नत के घर मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। सभी कर रहे हैं इंतजार कान्हा के जन्म लेने का। ऐसे में देखिए कैसे मन्नत अपने बच्चों संग पूजा रचा कर रही है। और तब पंडित ने सभी के सामने कहा कि समय हो चला है कान्हा के जन्म होने का। ऐसे में मंदिर के पट खुल गए। सभी ने कान्हा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने चेहरे पर उनके पैदा होने की खुशी भी जताई। और फिर शुरू हुई उनकी आरती। ऐसे में क्या मन्नत और क्या मन्नत का पूरा परिवार एक एक कर आकर कान्हा की आरती कर रहा है।

आरती के बाद बारी आई कान्हा को झूला झुलाने की। ऐसे में परिवार के सभी लोग एक एक कर झूला भी झुला रहे हैं। धैर्य रोने के साथ कान्हा को झूला झुला रहे हैं।

0: इसी बीच मन्नत की नजर पड़ती है विक्रांत पर और वो चाहती है कि कान्हा को झूला उसके साथ ही झुलाए। बस फिर क्या, वो यहाँ से सीधा पहुँच जाती है विक्रांत के पास उसे कान्हा के पास लाने के लिए। ऐसे में विक्रांत भी धैर्य के सामने नकली ड्रामा शुरू कर देता है।
1: क्या चीज जबरदस्ती यार, मैं
2: हाँ है जबरदस्ती। और देखिए अगर मेरी बात नहीं मानी ना आपने
1: तो क्या,
2: दो दिन बचे, एक हफ्ता करना उसको बढ़ा दो।
1: कोई नहीं नहीं यार, नहीं नहीं मैं इसे जेल थोड़ी सकता हूँ। और नहीं
2: चलिए
1: कीमत क्या है तो हाँ कर लेते।
0: खैर ड्रामे से ही सही आखिरकार मन्नत और विक्रांत साथ में आ गए और देखिए कैसे दोनों कान्हा को झूला झूला रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी नजर आ रहे हैं। हालांकि धैर्य को कहीं न कहीं मन्नत और विक्रांत पर डाउट हो रहा है।

0: धैर्य को ये पता नहीं है कि इस जन्माष्टमी के मौके पर मन्नत और विक्रांत दोनों ने मिलकर मास्टर प्लान बनाया है कि धैर्य सभी के सामने अपना सच कबूल कर ले। और उस प्लान के मुताबिक शुरू हो गया है स्किट, जहां पर सभी बच्चे मिलकर कान्हा के पैदा होने की पूरी कहानी बता रहे हैं और मन्नत बनी है सूत्रधार।
1: का अंत करके दुनिया में धर्म दोबारा स्थापित करने और दुनिया को ये बताने के लिए कि इंसाफ से, न्याय से बड़ा कुछ नहीं, उनका रिश्ता ही क्यों ना।
0: भाई मन्नत धीरे धीरे इस नाटक के जरिए धैर्य के माइंड के साथ खेल रही है और धैर्य उसे तो मन्नत और विक्रांत ने ऐसी दवाई दे दी है जिससे विक्रांत हेलुसिनेट करने लगा है। और देखिए, जैसे ही कंस और कान्हा के मिलन की बारी आई और कान्हा पहुंच गया कंस को मारने के लिए, तो धैर्य को अपना वो दिन याद आ गया जब उसने विक्रांत को मारा था और उसी के चलते धैर्य अचानक सभी के सामने भड़क उठा। भाई पहले तो धैर्य ने कंस का साथ दिया और फिर शुरू कर दी दो भाइयों की कहानी। ऐसे में मन्नत को यकीन हो गया कि आज आखिरकार उनको जीत मिल जाएगी, लेकिन धैर्य ने भी पूरा जिम्मेदार वक्त को ठहरा दिया।
2: क्योंकि वक्त किसी का चला नहीं है, उसका चक्र भी घूमता है ना। पहले हालात बदलते हैं, फिर जज्बात बदलते हैं, दुनिया बदल जाती है। भाई गलत नहीं था मेरे भाई, भाई का वक्त गलत था, भाई गलत नहीं था। अगर वाकई असल में इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन है तो वो इंसान नहीं, इंसान का वक्त है, इंसान का वक्त। क्योंकि वक्त ही तो है जो भाई को भाई का जान सब भुला देता है, रिश्ते नाते प्यार परिवार सब भूल जाता है। याद रखना है तो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी खुशी, अपना कपड़ा, सब कुछ। मैं कहानी के साथ कह सकता हूं, मैं, क्योंकि ये बात मैं खुद।
0: भाई धैर्य ने सब बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने विक्रांत का कत्ल किया है और बिना बताए ही वो हो गया बेहोश। ऐसे में मन्नत परेशान है क्योंकि मन्नत का प्लान चौपट हो गया, लेकिन विक्रांत उसे यकीन है कि धैर्य नाटक कर रहा है। ऐसे में विक्रांत ने अपना ड्रामा छोड़ा नहीं। खैर विक्रांत तो हंसते हुए वहाँ से चला गया और मन्नत समझ ही नहीं पाई कि आखिर माजरा क्या है। इसी बीच रॉनी ने भी डॉक्टर को बुला लिया और अब मन्नत याशिका की मदद से धैर्य को उसके कमरे में लेकर जाएगी। देखना होगा क्या मन्नत और विक्रांत को ये पता चल पाएगा कि धैर्य भी इनके साथ खेल खेल रहा है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु और रूहानी के बीच नागेश्वर को लेकर बहस चल रही है। क्या इस बहस के पीछे भी नागेश्वर का हाथ है जो इन दोनों के बीच दरार पैदा करने में लगा है? चलिए देखते हैं।
4: अब परिवार को समेटना है तो खुद को तो बिखेरना होगा बहुरिया। जीत और पट दोनों तो तुम्हारी नहीं हो सकती। अब उस लड़की और कुसुम जी को वापस इस घर में लाने की सिर्फ एक ही कीमत है, तुमको क्या चाहिए, परिवार या डिग्री?
5: नागेश की शर्त। रूहानी की कश्मकश।
2: जीत के नशे ने ना आपको अंदर से खोखला कर दी है। माँ की जान जा रही थी लेकिन आपने परवाह नहीं की। ये इसे जला भी देते तो क्या फर्क पड़ता। आपकी अहंकार की संतुष्टि।
5: गुरु का गुस्सा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क चुनौनी में भाई जब से ही आरोही की एंट्री हुई है घर में शुरू हो गया है नया बवाल। भाई इतना ही नहीं, नागेश ने तो कुसुम को भी घर से बेदखल कर दिया है जिसके चलते उसकी हालत बेहद बिगड़ गई है। और देखिए कैसे वो अस्पताल में बेहद ही नाजुक हालत में है। ऐसे में गुरु और रूहानी दोनों ही परेशान हो रहे हैं कुसुम की ये हालत देख कर, जिसके बाद रूहानी ने ये फैसला किया कि वो घर जाकर नागेश को मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन भाई जरा नागेश के तेवर तो देखिए।
1: मैं आपसे कोई लड़ाई या झगड़ा करने नहीं आई हूँ अंकल जी। मैं अपनी माँ की जान की भीख मांगने आई हूँ। माँ की हालत बहुत खराब है अंकल जी। उन्होंने आज जल सब त्याग दिया।
4: तो हम क्या करें? हमने कहा तुमसे नौटंकी करने को। अरे हम भी बला से खूब खाए पिए, जहाँ रहना रहे अपनी बेटी के साथ, तुम सबके साथ। अरे हमें अब परिवार को समेटना है तो खुद को तो बिखेरना होगा बहुरिया। चित और पट दोनों तो तुम्हारी नहीं हो सकती। अब उस लड़की और कुसुम जी को वापस इस घर में लाने की सिर्फ एक ही कीमत है, ना तो तुम किसी की बेटी रहोगी ना किसी की जान बचाने वाली डॉक्टर नहीं। समय का पहिया घूम रहा है बहुरिया, जल्दी से बताओ तुमको क्या चाहिए, परिवार या डिग्री?
5: भाई ये तो होना ही था क्योंकि नागेश नहीं चाहता कि रूहानी डॉक्टर बने, तभी तो उसने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी जिसके बाद उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और जैसे ही ये बात गुरु को पता चली, देखिए कैसे फिर एक बार बाप बेटे के बीच आ गई दरार।
6: फिर से आपने हमारी कंपाउंडर के साथ सौदा किया, उसे ये डिग्री जलाने के लिए मजबूर किया है ना? हाँ या ना?
2: अरे हमने किसी को मजबूर नहीं किया है और ना कोई दाव खेला है। अरे पूछो अपनी पत्नी से, यही आई थी तुम्हारी माँ और बहन को वापस लाने का सौदा करने।
7: जीत के नशे ने ना आपको अंदर से खोखला कर दी है। माँ की जान जा रही थी लेकिन आपने परवाह नहीं की। ये इसे जला भी देते तो क्या फर्क पड़ता। आपकी अहंकार की संतुष्टि।
8: उनका ऐसा है कि वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनसे बचाने के लिए ही मुझे मतलब मम्मी ने अलग कर दिया था, भेज दिया था, मतलब बचपन में ही अलग कर दिया था क्योंकि इनकी फैमिली बेटियों को अपनाती नहीं है। तो बेटियों से ये है कि मेरी बेटी यहाँ पे सेफ नहीं रहेगी बाहुबली फैमिली में, तो उन्होंने अलग कर दिया कि हाँ। तो इतने टाइम बाद जब अगर वो मान जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा इतने टाइम दूर रखने का। तो ये दिखाते हैं कि अब इनका क्या रिएक्शन होगा मेरे पापा का जब हम घर जाएंगे, क्योंकि सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। पर जब घर गए तो उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ हुआ है वो सीन में आप देखेंगे। तो उसके बाद वो बोलते चूज़ करो, या तो आप इनके साथ जाओ या तो रूहानी को इस घर से निकालो, या तो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करो, ऐसा कुछ। तो मम्मी मुझे एक्सेप्ट करती है कि हाँ अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे लेकर बोलती है ठीक है अगर तुम्हें ये बेटी चाहिए अभी के लिए तो तुम्हें मैं पत्नी होने के धर्म से आज़ाद करता हूँ, तुम मेरे घर से निकल जाओ और इसके साथ ही रहो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे इस घर में ही मतलब आई हूँ तो मेरी अर्थी यहीं से उठेगी।
5: ऐसे में अस्पताल में रूहानी और गुरु दोनों ही कुसुम के लिए परेशान हो रहे हैं, जहाँ इनके बीच देखने को मिल रही है तकरार।
9: क्या
5: तो भाई क्या आने वाले समय में रूहानी डॉक्टर की डिग्री छोड़ बाहुबली की पत्नी बनना कबूल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी एक हल्की सी मुस्कान। तो पेश हैं आज की रॉकिंग खबरें।
9: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। वही रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस 20 की, जो बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आने वाला है, वो भी बेहद ही धमाकेदार अंदाज में। ऐसे में खबरों की माने तो अब इसमें जुड़ गया है कनिका मान का भी नाम। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई कनिका मान नजर आएंगी बिग बॉस के घर में।

एक और की बन गई है इमरान हाशमी के साथ जोड़ी। जी हाँ, मैं आपको बता दे कि गन मास्टर G9 में उनका एक आइटम सॉन्ग होगा। ऐसे में देखना होगा कि कैसे होंगे अमित के बदलते तेवर।

0: कपूर खान अब नजर आएंगी डीसीपी अर्जुनी कोहली के अंदाज में। जी हाँ, पृथ्वीराज सुधकुमार नजर आएंगे डीसीपी रमन कुमार के अंदाज में फिल्म दायरा में। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी बन गई है इस आने वाली नई फिल्म के लिए।
1: बात खटकी।
0: स्टार प्लस लेकर आ रहा है नया रियलिटी शो जिसका नाम है बात खटकी। तो वही जरा देखिए कैसे खटक रही है इन सितारों की बातें।
2: बात खटकी।
3: रील पर कोई क्राइम की हेडलाइन देखी, स्क्रॉल कर दिया। ग्रुप पर एक केस का वीडियो आया, वो भी फॉरवर्ड कर दिया। क्राइम वाली रील के कमेंट्स में अपना फैसला भी सुना दिया। पर कभी ये सोचा कि क्रिमिनल्स आपके मैसेज फॉरवर्ड लिस्ट में टॉप पर हो सकते हैं।
0: क्राइम पेट्रोल का बदल गया है अंदाज, क्योंकि अब इसमें नजर आएंगे आपको अजय देवगन। जरा देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने किया है अपने इस नए शो का आगाज।
3: क्योंकि हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन आ जाती है, पर अपनों के बदलते इरादों की नोटिफिकेशन कभी नहीं आती अब तक। देखिए क्राइम पेट्रोल, क्राइम का करंट सीजन।
0: इमरान हाशमी इन दिनों बीमार है। जी हाँ, उन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया है और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताई है, जिसके चलते हो गया है उनका बेंगलुरु का मीटअप कैंसिल। भाई हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों ने बेहद प्यार दिया। देख लीजिए बरेली के बच्चन का ये प्रोमो, जहां संगम के सवाल के आगे उड़ गए हैं कृष्णा के होश।
4: हर एक कदम पर हमारा भरोसा तोड़ा है।
5: हम आपको सब सच बता देंगे।
4: ठीक है, तो आज आप हमें एक सच बता दीजिए, क्या आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा था?
6: डीसी क्या लगता है तुम्हारा?
7: चरित्रहीन बहू कभी बर्दाश्त नहीं करोगे।
8: बस कीजिए मम्मी जी।
0: बदल रही है कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी की जिंदगी, क्योंकि अब हो गया है घर में डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है आरंभी।
6: डीसी क्या लगता है तुम्हारा?
7: चरित्रहीन बहू कभी बर्दाश्त नहीं करोगे।
8: बस कीजिए मम्मी जी।
9: आरंभी, माफी मांगो मॉम से।
8: नहीं मांगूंगी,
9: बर्दाश्त नहीं कर सकती आरंभी, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
8: जब एक आदमी हिंसा को अपना हथियार बना लेना, तो उसे रोकना जरूरी होता है।

0: राकेश ओम प्रकाश मेहरा बहुत जल्द डायरेक्ट करने वाले हैं विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्म स्मॉल टाउन लव स्टोरी।
1: ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हमारे सूत्रों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो आर्यवर्धन वर्धन है ही नहीं।
0: नजर डालते हैं तुमसे तुम तक के इस प्रोमो पर, जहां अनु और आर्या ने छोड़ दिया है अपना घर।
2: क्यों गई थी तुम? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, तो तुम निकलो यहाँ से।
3: अगर अनु इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। हम दोनों निकल रहे हैं।

0: बीते शाम सास बहू और बेटिया के कैमरे में कैद हुए आपके फेवरेट कलाकार यानी कि पारितोष त्रिपाठी, युविका चौधरी, रूही दोसानी, मेहर आहूजा और अमोल पराशर, जो एक खास शो इश्क है के लिए साथ नजर आए, जिसे प्रेजेंट कर रही है प्रिया मलिक। कपूर बेहद ही नए अंदाज में नजर आने वाली है। जी हाँ, फिर एक बार वो लौटने वाली है अपने 1990s के दौर में। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स एक नई फिल्म लेकर आ रहा है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हरमन बवेजा, और इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी सितंबर में। देख लीजिए जूही मूवी का ये प्रोमो, जहाँ जूही की ढाल बनकर आ गया है संयम, तो अब क्या वो उसे अलाहाबाद के खतरनाक इरादों से बचाएगा?
1: आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, इस केस को भूल जाओ
2: वरना क्या? चौहान फैक्ट्री में कोई साया है, यो बात सच है।
0: मैं फिर एक बार पढ़ने वाली है वसुधा और देव की फैक्ट्री यानी कि चौहान फैक्ट्री खतरे में। अब इसे बचाने के लिए कौन से कदम उठाएंगे देव और वसुधा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
2: चौहान फैक्ट्री में कोई साया है, यो बात सच है, और पिछले वाला चौकीदार वो हमारा दोस्त था। इन सब बातों के पीछे कौन है यो जानने के लिए वो भी पीछे पीछे गया और तब से वापस नहीं लौटा।
3: फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या
4: देव?

बीती शाम हुई कुक कोहली की प्रियर मीट, जहाँ नजर आए अरुणा ईरानी, अनिल कपूर, बोनी कपूर, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, श्याम कौशल, सनी कौशल, आशा पारेख, अनीस बज्मी, चंकी पांडे, पूनम सिन्हा, मुमताज, राजपाल यादव, पूनम ढिल्लों और कई और कलाकार।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाले रियलिटी शो पिच टू गेट रिच 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में शूटिंग के सेट के बाहर स्पॉट हुई हैं मलाइका अरोरा, शालिनी पस्सी, अनायता श्रॉफ अडाजानिया, अश्नीर ग्रोवर और भी कई लोग मौजूद रहे शो की शूटिंग के दौरान।

कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म कैप्टन इंडिया जल्द ही रिलीज होने वाली है, वो भी लंदन में। खबरों की माने तो ये फिल्म सितंबर 2026 में रिलीज होगी। इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि इंडिया में इस फिल्म की रिलीज डेट 13 अगस्त 2027 है। टीवी के रियलिटी शो इंडियन गेम शो की शूटिंग के दौरान सेट के बाहर स्पॉट हुई हैं भारती, हर्ष लिम्बाचिया, प्रिंस नरूला, मनारा, अनिता हसनंदानी और सभी कलाकार जो इस शो से जुड़े हुए हैं, वो सभी सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं, जो तैयार हैं अपना टास्क पूरा करने के लिए।

0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। फिलहाल तो देव और वसुधा दोनों एक साल के लिए अलग हो गए हैं, लेकिन अब देव सात समुंदर पार विदेश जाने वाला है, जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट।
1: सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, 3 दिन बाद तुम्हारा कोर्स शुरू हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी आज रात की US की फ्लाइट बुक हो चुकी है।
2: अपने गाँव की तो ना लगे।
3: अरे अपने गाँव की नहीं है तो क्या हुआ, बना लेंगे इस गाँव की।
0: रक्षाबंधन के मौके पर रूहानिका धवन पहुंच गई हैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के घर अपने छोटे भैया राजा को राखी बांधने के लिए। ऐसे में उन्होंने याद किए सीरियल ये है मोहब्बतें के कुछ लम्हे भी।

डायरेक्टर स्कर्ट अपने यूट्यूब चैनल के लिए लेकर आने वाला है नया शो, जिसमें नजर आएंगी अदा खान, प्रतीक सहजपाल, सीमा आजमी और मोहक मीत। देख लीजिए आने वाले नए शो द लिफ्ट का ये प्रोमो।

0: सीरियल्स की दुनिया में आते हैं ढेर सारे ट्विस्ट, और जितनी कहानियां उतने सारे ट्विस्ट। तो चलिए देखते हैं कि कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।
1: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में वही एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ बवाल। जरा देखिए तो कैसे, जहां अनुपमा अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही है, अपने परिवार को एक साथ रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बौखला गया है प्रेम, जिसने अब ये अंदेशा दे दिया है कि आने वाला है जिंदगी में कोई नया तूफान।
2: अरे मूड खराब कर दिया,
3: बताइए।
4: इस कॉम्पिटिशन में मेरा उद्देश्य और लक्ष्य हमारी जीत था, किसी की हार नहीं। फाइनल में दो टीम आई थी, उसमें से एक को जीतना था, एक को हारना था। तो जिसको जीतना था वो जीत गई, जिसके हक में फैसला होना था वो हो गया। लेकिन कंपटीशन अब खत्म हो गया है, पर जो रिश्ते हैं वो तो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इस हार जीत के वजह से मेरी और मेरी बेटी के बीच में दूरी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आने ही नहीं दूंगी। और दूसरी बात, पिछली बार जब हमारी टीम कंपटीशन से आउट हुई थी, तब आपके कुछ मीडिया वाले दोस्त आए थे यही पूछने के लिए कि अपने दामाद से हारना कैसा लग रहा है। तब उन्हें जो सवाल पूछा था मैंने, आपसे भी वही पूछती हूँ, आपको क्या लगता है इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना, अपनी कला के साथ साथ अपने परिवार का भी प्रदर्शन करना, अपनी निजी जिंदगी पूरी दुनिया के सामने रख देना आसान है? आसान है क्या? तो फिर अरे ये कंपटीशन में हार जीत के कई सारे पैमाने होते हैं। कोई अगर हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी काबिलियत, तो उसका हुनर, उसकी लगन किसी भी तरह से कम साबित होती है। पहले भी कहा है, फिर से कहती हूँ कि इस कंपटीशन में पूरे गुजरात की हजारों हजारों टीम ने हिस्सा लिया था, उसमें से सिर्फ चार टीम नॉकआउट राउंड में पहुंची थी। तो मेरे हिसाब से वो चारों की चारों टीम विनर थी। और प्रेम कोठारी, मेरा दामाद, मेरा बेटा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो सबसे बेस्ट चेप है।
5: लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज
6: जवाब चाहिए। हाँ, मैं दूंगा जवाब। अनुपमा जोशी मुझसे बेहतर चेप नहीं है। ये कंपटीशन, ये फैसला, ये जीत, मैं किसी चीज को सही नहीं मानता। उन्होंने बहकाया है जो जिसको, मेरे खाने को बिना टेस्ट किए इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, जिसकी वजह से जजिस के मन में डाउट हुआ। मैं विनर हूं, नहीं तो मैं जीतता ये कॉम्पिटिशन। मैं बता विनर, आई एम द विनर। प्रेम कोठारी इज अ विनर, लूजर नहीं हूं मैं।
5: अंदर चलो,
6: लूजर नहीं हूं मैं।
5: अंदर चलो ना,
6: मैं हूं विनर।
7: एक्चुअली हम जजेस का फैसला मानने से इनकार करते हैं। ये फैसला उन्होंने अनुपमा के इमोशनल मैनिपुलेशन में आकर दिया है। हर बार तुम एंड में कैसे जीत जाती हो अनुपमा? इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रेटजीज, पर सब वेस्ट। मैं यूएस में आदु और अनुज के साथ रहती थी, लेकिन उनका दिल तुम्हारे पास। अनुज आज भी तुम्हारे पास है। मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ।
8: तुम राही से बहुत प्यार करती हो ना, तो उसे छोड़कर और वो रेस्टोरेंट श्रुति, उसमें तुमने भी तो बहुत मेहनत की।
7: तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं अनुज कैफे बंद कर रही हूँ या नहीं?
0: आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और इसी तरह जारी रहेगा एंटरटेनमेंट का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: मथुरा से द्वारका, अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, कृष्णमय हो गए बाजार, बांसुरी, मुकुट, मोरपंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की हो रही है खरीदारी। महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कचली मेले का आगाज, बड़ी संख्या में जुटे लोग बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक। जयपुर में पावर कट से नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम, एग्जाम शुरू होने के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम हुआ बाधित। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। नेपाल में लगातार 5वें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी, सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारतीय टीम। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, 23 साल का टूटा रिकॉर्ड, सड़कों पर दौड़ी नावें, सेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा लोगों का एयरलिफ्ट, अब तक 350 का रेस्क्यू।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताशकंद में सेना के जवानों ने दिया सैल्यूट, साथ में राष्ट्रपति शौकत भी मौजूद रहे। ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार, कहा हिंदुस्तान को उन्होंने ताशकंद में जीवंत कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को दी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां, कहा भारत और उज्बेकिस्तान इस साल 15वीं रणनीतिक साझेदारी की मना रहे हैं सालगिरह। राष्ट्रपति शौकत ने भारत को बताया स्थायी स्ट्रैटेजिक साझेदार, पिछले साल में दोनों देशों के बीच 1 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश, योग फेडरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचाई तस्वीर, नमस्ते इंडिया का नजारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग की पाठशाला में लोगों को दिए टिप्स, लोगों को बढ़ाया हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देखिए भारतीय संस्कृति की झलक, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया, यहां हुए स्वागत को बताया अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का प्रसारण हुआ, सूर्यपथ तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्ति भारत का संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को इकट्ठा करके प्रोसेस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का भी जिक्र किया, कहा मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की, भारतीय इतिहास पर बनी उनकी वेबसाइट को बताया रोचक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया, 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। महुआ में 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज हुआ, आल्हा उदल के शौर्य की याद में उमड़ा जन सैलाब। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां, लोगों ने इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मुस्लिम महिलाएं बना रही बांसुरी। झांसी में निकली श्री कृष्ण की शाही सवारी, नाचते गाते भक्तों ने भगवान का स्वागत किया। इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर निकाली गई हरिनाम कीर्तन यात्रा। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिखाई हरी झंडी। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लिया हिस्सा, साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का संदेश। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शुरुआत में बच्चों ने दिखाए कर्तव्य, अतिथियों ने किया सम्मानित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल रैली, ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल। रियासी के अंजी खड्ड ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ऊंचाई से दिखा शानदार नजारा। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के कपाट, हालात पर प्रशासन की नजर। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने बारिश के बीच उफान पर आई, कई नदियां तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के बन्ना में बारिश चलती बदल गए हालात, उमरी गांव में धर्मपुर नाला पुल के ऊपर 2 फीट तक भर गया पानी। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ बढ़ा गंगा का कटान, कई मकानों की गिरने किया खतरा, खाली कराए गए घर। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बहा। चित्रकूट में रात भर चला राहत और बचाव अभियान, बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में भी चला जा रहा है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सतना में बारिश के बाद जोरदार बारिश, रेस्क्यू करके बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खुले गए 15 कपाट। बिहार के कटिहार में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पानी भरने से मार्गों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में मूसलाधार बारिश, उफान पर कई नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलजमाव। जम्मू और कश्मीर के रामबन में बारिश से हुआ मौसम सुहाना, दिखा खूबसूरत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश, बंगाल की खाड़ी बन रही है लो प्रेशर के चलते, बदल गया मौसम। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट डूब गए, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित निकाला, बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी, 8 भारतीय नागरिक शामिल। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री में पहुंचाई प्रभावित इलाकों में, चलाया जा रहा है सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक प्रोक्लीन और भारी मशीनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा मलबा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ द हेल्थ बेसिलिका शुरू। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी से नहाया चर्च, 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक चलेगा उत्सव। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में देखा शानदार नजारा, सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल के बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल पर मंदिर परिसर में भव्य स्वागत हुआ, भव्य आरती के बीच जयकारों की गूंज। गंगा स्नान के दौरान लेटे हुए हनुमान जी का किया गया भव्य श्रृंगार, सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में तट का पानी उफान पर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, महादेव का भव्य श्रृंगार। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हुआ, त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे रंग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: Good news today.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान

जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर, नेक्रोसिस फैक्टर
यानी

0: TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर, ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: मथुरा से द्वारका अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां कृष्णमय हो गए। बाजार रा बांसुरी मुकुट मोरपंख झूला और कान्हा के कपड़ों की हो रही है खरीदारी। महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का आगाज, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुंदेली संस्कृति की झलक। जयपुर में पावर कट से नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम। एग्जाम शुरू होने के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम हुआ बाधित। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सावन में एक महीने भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना के बाद भाद्रपद में कजरी तीज की तिथि पर पूजे जाएंगे गौरी शंकर। माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाएं कजरी तीज का व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। आज हम जानेंगे क्या है कजरी तीज का विधान और क्यों ये व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे आज की इस खास पेशकश में।

0: कजरी तीज पर मिलेगा वरदान। शिव पार्वती की उपासना करेगी कल्याण। चंद्रमा को अर्घ से बरसेगी सुख और समृद्धि। कजरी तीज पर दान दिलाएगा कष्टों से मुक्ति। कजरी तीज, जिसे कज्जली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है। कजरी तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम और तपस्या का प्रतीक है, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना का विधान है।
1: यह तिथि भगवान शिव माता पार्वती के मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कजरी तीज पर भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित कहा जाता है कि इस दिन यदि माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित किया जाए, भगवान शिव को दूध दही घी शहद चंदन इत्यादि अर्पित किया जाए, साथ ही साथ खीर का भोग लगाया जाए माता पार्वती को और भगवान शिव को, तो जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि होती है।
0: शास्त्रीय मान्यता है कि शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कजरी तीज का त्योहार उत्तर भारत में विशेष रूप से महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से मनाती हैं। ये पर्व खास तौर पर सुहागिनों के अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, पति की लंबी उम्र और पारिवारिक समृद्धि की कामना से जुड़ा है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पारंपरिक गीत कजरी गाती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करती हैं। कजरी तीज की सबसे विशेष परंपरा है निमड़ी पूजन।
1: कजरी तीज का व्रत कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इस कारण से है कि इस दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत रहती हैं। सूर्योदय पूर्व से लेकर के और चंद्रमा को अर्घ देने तक जल भी ग्रहण नहीं करती है, इस कारण से यह कठिन व्रत हो जाता है। सरल इसलिए है कि इसमें पूजा का विधान बहुत सरल है। कम पूजा करके भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ साथ निमड़ी माता के पूजन का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है।
0: इसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी के रूप में पूजती हैं। शास्त्रों में नीम को रोग नाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। महिलाएं नीम को माता का स्वरूप मानती हैं। उनकी हल्दी, रोली, चूड़ी, सिंदूर और सुहाग की अन्य चीजों से पूजा करती हैं। ये पूजन सौभाग्य और संतान के सुख का प्रतीक होता है।
1: अच्छा, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिष्ठान इत्यादि के साथ इनकी पूजन कर लेना है आपको। पूजन के उपरांत कजरी तीज की कथा का पाठ करना है और श्रवण करना है। उसके बाद रात्रि के समय में दिन भर व्रत रहना है निर्जला। रात्रि के समय जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए, चंद्रमा दिखने लगे हैं, तो उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के उपरांत पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ना है, अर्थात व्रत का पारण कर लेना है। ये विधान है, ये सरलतम विधान है।
0: मान्यता है कि स्थिति पर नीम की पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और रोग शोक से रक्षा मिलती है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं झूला झूलते हुए पारंपरिक गीतों के माध्यम से निमड़ी माता से सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। कजरी तीज का व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। कथा है कि इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थी। शिव जी को पति के रूप में पाने का संकल्प माँ पार्वती ने लिया था। माता ने 108 साल तक भोलेनाथ की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तभी से इसको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है।
1: इस व्रत को करने से ऐसी मान्यता है कि घर में सुख संपन्नता, धन धान्य की वृद्धि, आत्मीय शांति के साथ साथ जीवन साथी के आयु में वृद्धि होती है, जीवन साथी के यशकृत में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने 108 जन्मों के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में इसी तिथि को व्रत रहकर पूजन के उपरांत प्राप्त किया था। इस कारण से इस व्रत को, इस पर्व को अत्यंत ही महत्व प्रदान किया गया है शास्त्रों में।
0: ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज व्रत पर जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई तरह के भोजन तैयार होते हैं। अद्भुत और समर्पण के भाव से भरी ये परंपरा, जिसमें छिपी है अपने परिवार के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना, तो आप भी विधि विधान से कजरी तीज का व्रत करके पा लीजिए गौरी शंकर का वरदान। आगे हम आपको बताएंगे बाहुला चतुर्थी का विधान, इस शुभ तिथि पर कैसे करें प्रथम पूज्य गणपति की उपासना। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो चलिए आपको बहुला चतुर्थी की महिमा और इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताते हैं, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो।

0: बहुला चतुर्थी पूरे करेगी सारे अरमान। गणपति के पूजन से संतान होगी गुणवान। गौ माता के पूजन से दूर होगी संतान की बाधा। श्री कृष्ण की कृपा से ऐश्वर्य में होगी वृद्धि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। ये व्रत महिलाएं संतान की उन्नति और सुरक्षा के लिए रखती हैं।
1: यह व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बड़े ही मनोभाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। इस दिन माताएं व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की बुद्धि में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है।
0: मान्यता है कि इस दिन माताएं गाय और उनके बछड़े की पूजा करती हैं। इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी उपासना की जाती है, तो साथ ही पूजे जाते हैं भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। धर्मशास्त्री बताते हैं कि इस दिन माताएं अपने संतान की सुख और समृद्धि के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन गौ माता की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बहुला चौथ का व्रत कैसे रखना है।
1: इस व्रत का विधान यह है कि इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित किया जाता है। षोडशोपचार विधि से जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है पूजा स्थल में, रोरी, अच्छत, चंदन, अबीर, गुलाल, पंचामृत, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शहद, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, फल इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि के द्वारा इन सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है।
0: सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, गौ माता के स्थान को साफ करें, गाय के साथ उसके बछड़े की भी सेवा करना है। इस दिन भगवान गणेश के साथ गौ माता और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति गौ माता के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले गणपति का पूजन करें, गणपति को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें अक्षत और तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। श्री कृष्ण के गौ माता वाले चित्र पर गंगा जल छिड़कें, उन्हें भी अक्षत और तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें, भगवान कृष्ण की आरती करें।
1: गौ से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि जिस प्रकार हम आपके बछड़े की सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरा जगत हमारे संतान की पूजा करे, हमारे संतान का के गुणों का यशगान करे। हर माता के मन में यह विचार आता है, इसी कारण से यह व्रत अपने आप में संतान की प्रगति के लिए श्रेष्ठ है, शुभ कारक है।
0: माना जाता है कि गौ माता की पूजा से संतान के जीवन में संकटों का नाश होता है और श्री कृष्ण की उपासना से आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं कि आखिर क्यों ये व्रत भगवान कृष्ण और गौ माता से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब द्वापर युग में अवतार लिया तो उन्होंने कई लीलाएं की। कथा है कि नंद बाबा की गौशाला में बहुला नाम की गाय थी। भगवान कृष्ण ने एक बार बहुला गाय की परीक्षा लेने की सोची। कथा है कि जब बहुला गाय वन में चरने गई थी, तब श्री कृष्ण शेर के वेश में बहुला के सामने प्रकट हो गए और जैसे ही बहुला को खाने के लिए झपटे, वैसे ही बहुला ने कहा कि हे सिंह देवता, मेरा बछड़ा भी भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आपके पास लौट आऊंगी। तब श्री कृष्ण रूपी शेर ने कहा कि अगर तुम नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तब बहुला गाय ने कहा कि मैं सत्य और धर्म का प्रण लेती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर लौट आऊंगी। भगवान ने उस पर विश्वास कर बहुला गाय को जाने दिया। कुछ देर बाद भगवान देखते हैं कि बहुला गाय वाकई वापस आ गई है। तब सिंह बने भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गौ माता की पूजा करेगा, उसकी संतान के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उस दिन से ही बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा होने लगी। इस दिन श्री कृष्ण का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही गणपति की उपासना भी परम फलदायी बताई गई है। बुद्धि और संपन्नता के देव हैं गणपति, लेकिन तमाम सांसारिक कष्टों से रक्षा भी करते हैं गणपति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो श्री गणेश के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं हो सकती। स्थिति पर गणपति की उपासना से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, खुद ही देख लीजिए। इस दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह का संकट नष्ट होता है, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है, अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं, हर तरह के कार्यों की सभी बाधाएं दूर करते हैं गणपति, धन और कर्ज से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं।
1: इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष रूप से गरीबों की आराधना करना, गरीबों की सेवा करना, गरीब जनों को उनके आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का दान करना, जैसे घी का दान, दूध का दान, दही का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, इस अन्य जीवन से जुड़ी हुई कोई अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी, तो उसका दान करने से भी जीवन में सुख संपन्नता आती है।
0: तो आप भी कल संकल्प के साथ और विधि विधान से कीजिए कजरी तीज और बहुला चतुर्थी का व्रत। परमेश्वर की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।
2: तो देखा आपने कैसे भाद्रपद में ये खास त्योहार इस पूरे महीने को और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि द्वारका तक किशन कन्हैया बंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां बजने वाली हैं। और देखिए क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव मनाया जाने वाला है और मंदिरों में सजावट भी हो रही है, बाजारों में भी बाल गोपाल के लिए वस्त्र मुकुट और श्रृंगार के सामानों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं, जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग होएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2-6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहां पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
10: मथुरा से द्वारका अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, कृष्णमय हो गए बाजार, बांसुरी मुकुट और मोरपंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की हो रही है खरीदारी। महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का आगाज, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुंदेली संस्कृति की दिखी अद्भुत झलक। जयपुर में पावर कट से नीट PG की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम, एग्जाम शुरू होने के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम हुआ बाधित। उज्बेकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर रहा, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। नेपाल में लगातार 5वें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी, सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारतीय टीम। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, सड़कों पर दौड़ी नावें, सेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा है लोगों का एयरलिफ्ट, अब तक 350 का रेस्क्यू।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में चल रहे मिशन जिंदगी की। पांच दिन पहले 26 अगस्त को नेपाल में आई आपदा के बाद वहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अभी तक हजारों लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। तो बचाव और राहत का काम बड़े पैमाने पर लगातार किया जा रहा है। इसमें देखिए, हेलीकॉप्टरों की भी लगातार मदद ली जा रही है। प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने और सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस दौरान कई जगहों पर करिश्मा भी देखने को मिल रहा है, जहां पर तीन दिन से मलबे में दबे रहने के बावजूद एक बच्ची की जान बच गई। तो एक जगह सैलाब से बचने के लिए पेड़ का सहारा लेने वाले बच्चे को सलामत एयरलिफ्ट कर लिया गया। वहीं पर देखिए, सैलाब से प्रभावित हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की मदद लगातार की जा रही है। ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। भारत ने भी पड़ोसी देश की मदद करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स और राहत सामग्री भेजी है। इस स्पेशल शो में आगे हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें पहले देख लीजिए। देखिए, नेपाल में आई आपदा के बाद अब पूरी ताकत जो है जिंदगी बचाने में झोंक दी जा रही है। सेना, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मिलकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पहाड़ों के मलबे को चीरकर अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि वक्त बीतने के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब भी हजारों लापता लोगों की तलाश जारी है। आपदा के इस खौफनाक मंजर के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंसान के हौसले और एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है।

0: नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को आई आपदा के बाद से अब तक लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में जमीन से आसमान तक हर मुमकिन कोशिश में लगी है कि जहां कहीं भी जिंदगी के निशान हो वहां पहुंच सके और मलबे में फंसे लोगों को निकाल सके। नेपाल सरकार का कहना है कि बचाव, राहत और आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।
1: Our government is making every possible effort for rescue. We are still on the rescue stage. I personally have just arrived, so I'm yet to fully get field level briefings. But over the last 4 days, 3 days, we've rescued over 4,000 individuals. As you know, over 600 people have been found dead. And there is an active rescue operation going on in different communities at this point. As of yesterday, we've rescued over 200 foreign nationals. A big chunk of that is Indian nationals who are in different areas of Nepal. So we're actively trying to make sure that along with the Nepali nationals, we're also making sure to support foreign nationals who need support of the government of Nepal.
0: रसुवा में आई आपदा के अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े इलाकों में मलबा पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग लापता है। लिहाजा तलाशी अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। त्रिशूली और नुवाकोट सहित सभी प्रभावित इलाकों में मशीनरी निरंतर काम पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी को पटरी पर लाने में आसानी हो।
2: अभी पहला मकसद तो ये रास्ता है ना, ये आगे जाने के लिए बना रहा है, और दूसरा तो ये जो घर है उसमें सामान निकालने के लिए चल रहा है।
0: ये तस्वीरें ढूंगे गांव की है, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांव और इलाकों में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके।
3: इन सड़कों को खोलना अभी सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनें, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है कि अगर ये प्रमुख मार्ग खुल जाता है, बेतरावती तक की कनेक्टिविटी आ जाती है, तो संभवतः रसद पहुंचाना, बेतरावती से आगे रसुवा तक के लिए बड़ी लॉजिस्टिक पहुंचाना, और जो रास्ता वहां पर भी बंद हो चुका है, ताकि अगले 72 घंटों में रसुवा को नुवाकोट से सड़कों से जोड़ा जा सके। और अगर ऐसा होता है तो जहां वैली पुल बह गए, मसलन हम जहां पर हैं डूंगे गांव में, इसका दूसरा इलाका जो है वो पूरी तरह कट चुका है, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए हेली ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो कम से कम वैली ब्रिज के लिए अगर ये सड़क जुड़ जाती है तो उसे फिर से वैली ब्रिज से जोड़ा जा सकेगा।
0: इन पहाड़ी इलाकों में आपदा से सड़कों को बेइंतहा नुकसान हुआ, लिहाजा पहले दिन से हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में अब नेपाल के नुवाकोट से अब तक का सबसे बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है।
3: नुवाकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सेना के लोग और उसके साथ सिविल अथॉरिटी, जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वहां पर खाना, पानी, दवाइयां, जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। इसी के साथ दूसरी तरफ जहां पर मेडिकल कैंप बनाया गया है, तो जो घायल एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं उनको यहां पर इलाज भी किया जा रहा है, मेडिकल कैंप यहां से किया गया है, और इसी के साथ बाद में तमाम लोगों को यहां से सुरक्षित ठिकानों पर भी भेजा जा रहा है।
0: नेपाल के बाद प्रभावित पहाड़ी इलाकों में कीचड़ के सैलाब और मलबे के कारण सड़कों का तकरीबन सफाया हो चुका है। ऐसे में दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
3: और लगातार जो रेस्क्यूअर्स की टीम है उनको भी अब हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां पर जो टनल की आपदा है वहां से लोगों को निकालने के लिए। ये विशेषज्ञ हैं, रेस्क्यूअर हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हैं, और अब इनकी जो पूरी टोली है पलटन को हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर ले जाई जा रही है, जहां पर इनको ड्रॉप किया जाएगा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।
0: नेपाल के बाद प्रभावित कई इलाकों में बार बार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खासतौर से बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली बन में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
4: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there. Trishuli 3B and Upper Trishuli 1, you know, these are all major hydropower projects where people might still be trapped. So that effort is continuing today. There are reports that some people might still be stranded in the jungles near the border. That is another area that we would need to look at.
0: सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सके, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किसी संकेत का पता चल सकेगा। सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए भारत से भी एक्सपर्ट्स की टीम और जरूरी तकनीकी सामग्री भेजी गई है।
1: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been four different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue, and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: Nepal mein aapda se prabhavit ilakon mein mission zindagi full speed mein jari hai. मकसद यही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों की तलाश की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यही फिलहाल इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता।
5: नेपाल में आई भीषण आपदा ने जहां एक ओर चारों तरफ मलबे और तबाही का खौफनाक मंजर छोड़ा, वहीं पर दूसरी ओर कुछ ऐसे अविश्वसनीय करिश्मे भी देखने को मिले जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। जिंदगी और मौत की इस जंग में कई लोग चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गए। मौत के मुंह से सुरक्षित लौटकर आए कुछ सर्वाइवर्स ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने उस पल को जिया। ये दास्तान सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की त्रासदी भर नहीं है, बल्कि मलबे के ढेर से जिंदगी की उम्मीद, अदम्य साहस और जाबाजी की जिंदा होने की वो कहानियां हैं जो आज भी लोगों को ठांडस बंधा रही हैं कि आपदा में लापता लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बाकी है।
0: इस छोटी सी बच्ची के लिए पानी की हर बूंद जैसे अमृत की समान
6: है।
0: भूख प्यास से तड़प रही बच्ची तकरीबन तीन दिनों तक सैलाब के बाद मलबे में दबी रही, लेकिन जब ये जवान इसके पास जैसे देवदूत बनकर पहुँचे तो इसे नई जिंदगी मिली। ये तस्वीरें नेपाल की बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले की। शुक्रवार 28 अगस्त को आपदा के करीब 72 घंटे के बाद सैलाब के कारण जहां मलबे में किसी के बचे होने की कोई उम्मीद तक नहीं थी, वहां जिंदगी के निशान दिखे। असल में यहां टिमुरे इलाके में बाढ़ के साथ आई आपदा के बाद किसी के बचने की संभावना नहीं के बराबर थी, लेकिन यहां पर तलाशी अभियान चला रहे जवानों को अचानक से मलबे में इस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जवानों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, इस बच्ची तक पहुंचने में कामयाब हुए और घंटों मेहनत के बाद बच्ची को सही सलामत बाहर निकालने में सफलता हासिल की। 6 साल की इस बच्ची को शुक्रवार को टिमुरे बॉर्डर आउटपोस्ट लाया गया। वहां इसे शुरुआती मेडिकल सहायता दी गई और खाना पानी दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए आखिरकार शनिवार दोपहर इसे काठमांडू पहुंचा दिया गया। कुछ ऐसा ही करिश्मा नेपाल की नुवाकोट के गंगाटे इलाके में भी हुआ। वहां 8 साल के जोयल को एयरलिफ्ट करने के बाद इलाज के लिए काठमांडू के अस्पताल में पहुंचाया गया। जिस समय इलाके में सैलाब आया उस समय जोयल स्कूल में था। आपदा से बचने के लिए वो जंगल की ओर भागा और पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान उसे कुछ चोटें आई और पैर भी टूट गया। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में उसे बचा लिया गया। जोयल की माँ माया तो उसके बचने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी।
7: मैले बच्चाहरु छैन भनेर नै पुरै माया मारिसकेको थियो। त्यतिखेरको मेरो रुवा बासीको क्रम त थियो नै, आफै अब बाँच्नु कुनै अर्थ छैन भनेर आफैले आफैलाई नै सम्हाल्नै सकिरहेको थिएन त्यतिखेर त म त।
8: लेकिन नेपाल में आपदा की कवरेज करने के लिए पहुंची एक विदेशी पत्रकार की मदद से माया को अपने बच्चे के काठमांडू के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में पता चला और फिर फोन पर उसकी बात हुई तो जान में जान आई।
7: मुख में पानी नहीं नहालिकन रुआ बासी कर जंगल जंगल जिस जुगा में जंगल में खोला में खोज्ते खोज्ते खोज्ते हिड़ा तो हिजो तीर तो भेटो बाबूर दुईजना तो अब घाव चोट लगा भेपनी ठूल बाबू को खुट्टा में अब तेरी घाव चोट लगा भाजी बटर बड़ न सक काठमंडू अब ट्रामा हस्पिटल में पठा भाव कति खेल भेट होना पाने बच्चा ते मम्मी मम्मी भन्दै रुदै थियो रे भन्दै हुन्थ्यो देख्नेहरूले कति खेल भेट्न पाउने हो।
8: आपदा के दो दिन बाद आखिरकार माया को अपने बच्चे से रूबरू होने का मौका मिला तो उसने राहत की सांस ली। वहीं नेपाल में बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे कई मजदूरों को आपदा के चार दिन बाद सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। मुश्किल हालात के बीच सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने लगातार ऑपरेशन जारी रखा और आखिरकार उन तक पहुंचने में कामयाबी पाई। हालांकि अभी भी सुरंगों में फंसे बहुत से मजदूरों की तलाश जारी है और उन्हें सलामत निकालने के लिए पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। इस बीच प्रभावित इलाकों में सैलाब उतरने के बाद बचे हुए लोग वापस भी लौटने लगे हैं। उनकी आंखें मलबे में अपनों को खोज रही हैं। तबाही के निशान में वे अपने असबाब की पहचान करने में लगे हैं। कुदरत के प्रकोप के बीच ये लोग किसी तरह से बचने में कामयाब तो रहे लेकिन इनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं।
9: दोस्रो भाव यो फेरि पानीको लेदो भाग्दा फेरि दोस्रो ढलान भरेपछि त्यो पोल ढाल्यो अहिले बसिरहेको पोल ढलेपछि त्यो दोस्रो लेदो आउँदाखेरि यो जमिन भुइँचाला आज यसरी थरथर थरथर काने अनि त्यो देखेपछि अर्को तिन ढलान आउँदा अब हामी पनि बाँच्दैन भनेर भाग्ने तर्खरमा हामी नि भाग्नलाई तयारी भएर दौडिन थाले माथितिर माथि माथिबाट हेर्दै तिन रन त्यो तिन ढलान पछि सल सल बग्यो अनि त्यसपछि पानीको छाल बग्दै गयो अनि यो ग्रेभर मात्रै बस्यो अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि सम्म हुँदै गयो अनि हल्का मात्रै बग्न थाल्यो त्यसपछि धेरै बगेन अनि पानी चाहिँ बाफ हुँदै गयो उठ्दै गयो पानी चाहिँ त्यही भएर।
8: नेपालमा यस ऐतिहासिक आपदाका कई चश्मदीद अस्पतालोमा उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो डराने वाला मंजर देखा जिसने अपनों को भी इनसे छीन लिया। हालांकि युद्ध स्तर पर चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों की जान बचा ली गई।
10: महालो छत में आईपुगो अब लड़ते भन्दा भन्दा भन्दा एक घंटा पीछे अलग घटे गयो बुढ़ीपुरी बुढ़ीपुरी हाल हम छता बसा बस चार पाँच घंटा पीछे तो रात गए हेलीपैड गए हम त्याल।
8: भोटे कोशी

0: खुशकिस्मत लोगों में हैं जो अपने परिवार के साथ इस आपदा का शिकार होने से बच गए।
1: तो एकदम धुआं मुसलो धुआं जस्तो बुढाहरूलाई बच्चाहरूलाई सबैलाई हल्ला गरेर अनि माथि संसारी त्यहाँनिर देखिरहेको थियो। गर्दा गर्दा त यो ढुङ्गा ऊ त्यो ढुङ्गा त्यो त्यहाँबाट त पारिपट्टि त्यहाँ पुरै ऊ थियो, खेत खान्थ्यो त्यहाँ पावर हाउसको। अब यो यो पावर हाउसको पानी फेरि डाइभर्ट गरेर तल पावर हाउसमा लगेको यो कुनामा छ भित्री त्यहाँ, अनि त्यहाँबाट लग्यो त्यहाँ जम्मै मार्दै लगेपछि त लगाइयो त पनि आउँछ भनेर मात्र भाग्यो हामी।
0: आपदा में बचे तमाम लोग इन दिनों नुवाकोट और दूसरी जगहों पर बनाए गए शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। यहां पर इन्हें कपड़े, खाने पीने के सामान और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें से कई खुद आपदा से प्रभावित हुए और अब यहां पर दूसरों की मदद के लिए हाथ बटाने में जुट गए हैं।
2: कसलाई कति पायो के पायो भनेर अब नाम त देखा छ, त्यही पनि मान्छे धेरै छ, को पीडित हो, अब पीडितलाई चाहिँ यसो सबैजनालाई हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हामी पनि पीडितै हो, हाम्रो पनि घर जग्गा केही पनि छैन, बालबच्चा मात्रै छ होइन।
0: शेल्टर होममा यिनी तत्काल मदत तो मिल रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी चिन्ता इन्हें जरूर परेशान कर रही है।
3: खाने सहयोग मात्र पाएर के गर्ने, हामी कहाँ बस्ने कहाँ जाने, त्यही चिन्ता छ। परिवारहरू त्यहाँ बहिनीहरू ज्वाइँहरू दाईहरू जे राजु सबै लागिसकेको छ बाहिरले, कोही पनि छैन। अनि मेरो त तिनवटा बच्चा छ, मेरो त दुईवटा कारण मेरो भएर साथले पढाउनु भएर त्यो के अरे ऊ बारीले पकाएको छैन, कान्छा मात्रै याद यो कान्छा तर मात्रै त्यो चाहिँ भएको सबै भएर छ।
0: भारत के भी कई सैलानी 26 अगस्त को नेपाल में आई आपदा के गवाह बने। इन्हीं में से एक तमिलनाडु की शिवरंजनी, जिन्होंने सैलाब की तस्वीरें भी अपने मोबाइल फोन में कैद की। शिवरंजनी अपने पति और 57 लोगों के ग्रुप के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी। कैसे इन्होंने अपनी आंखों से सैलाब को आते हुए देखा और किस तरह से ये खतरे से बचने में कामयाब हुई, इसकी पूरी दास्तान सुनिए इनकी जुबानी।
4: 26th morning we hum log after taking breakfast around 7 o'clock hum sab log nikal ke khairong jane ke samay wo nahi kya some place that apj camp hai na uske apf camp ka niche humko ye sab thoda mushkil hua। हम काला काला फॉग ऐसा कम के आया था, हम तो हम सोचे थे ये कुछ नहीं है, कम सम पटास लाइक ऐसा ते थॉट। आई टुक अ वीडियो देन ओनली रियलाइज्ड द सीरियसनेस, देन वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द व्हीकल एंड क्लाइम्ड द हिल एंड सॉ द कैंप इन दी ऊपर कैंप को देखिए। उसके बाद उधर से हम उसका वो कैंप वाला के मदद से हम उधर रखते थे। हम तमिलनाडु सेक्रेटरी ऑफिस को थोड़ा मैसेज किया था।
0: वहीं मुंबई के रहने वाले वकील रमेश त्रिपाठी भी 25 लोगों के साथ 19 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। 26 अगस्त को इन्हें फिर नेपाल आना था, लेकिन अचानक हुई एक घटना से इन सब लोगों की जान बच गई।
5: हम लोगों ने जब यात्रा के पहले दिन का चढ़ाव तो पार कर लिया था, लेकिन त्रासदी होने के बाद हमारे कुछ वहां पे जो हमारे साथ 25 लोग गए थे, लगभग 5-6 लोगों को वहां पे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और उसके कारण जो है उसमें से कुछ लोग जो थे उनका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया, किसी का 40 हो गया, किसी का 30 हो गया। तो अगला पड़ाव जाने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर जिंदगी रहेगी तो हम लोग दोबारा भोलेनाथ की इसमें यात्रा में जरूर करेंगे। तो हम लोग परिक्रमा के पहले दिन ही डिसाइड किया और सारे के सारे लोग नीचे आ गए, चूंकि उनके लिए उनको तो एम्बुलेंस से भेजना पड़ा। हम लोग दोबारा जो है घोड़े से नीचे उतर करके आ गए, और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग बच गए, नहीं तो जो त्रासदी हुई थी उस समय हम लोग दूसरे दिन की परिक्रमा पे रहते थे, और निश्चित तौर पे ऐसा होता था कि शायद हम लोग

0: आपकी जिंदगी भी वहाँ पे जा सकती है।
1: वहीं महाराष्ट्र की भी 100 तीर्थ यात्रियों का जत्था भी रसुवा में हुई आपदा के बाद काठमांडू में फंस गया था। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर बिहार सरकार की ओर से इन्हें वहां से 28 अगस्त को सुरक्षित सीतामढ़ी लाया गया और फिर महाराष्ट्र भेजने की व्यवस्था की गई। जो लोग आपदा से बचकर आ गए वो ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी नजरों से आपदा देखी उनके लिए ये कभी ना भुलाई जा सकने वाली याद बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: बस देखते जाइए, इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्हे हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: मथुरा से द्वारका अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां कृष्णमय हो गए बाजार, बांसुरी मुकुट मोरपंख झूला और कान्हा के कपड़ों की हो रही है खरीदारी। महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का आगाज, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुंदेली संस्कृति की झलक। जयपुर में पावर कट से नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम। एग्जाम शुरू होने के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम हुआ बाधित। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताशकंद में सेना के जवानों ने दिया सैल्यूट, साथ में राष्ट्रपति शौकत भी रहे मौजूद। ताशकंद राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार का, हिंदुस्तान को उन्होंने ताशकंद में जीवन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को दी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां, कहा भारत और उज्बेकिस्तान इस साल 15वीं रणनीतिक साझेदारी की बना रहा है सालगिरह। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत को बताया स्थानीय स्ट्रैटेजिक साझेदार। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश, योग फेडरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचाई तस्वीर, नमस्ते इंडिया का दिखा नजारा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की पाठशाला में लोगों को दिए टिप्स, लोगों का बढ़ाया हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देखी भारतीय संस्कृति की झलक, बच्चों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, यहां हुए स्वागत को बताया अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का प्रसारण हुआ सूर्यपथ तिरंगा अभियान के साथ, नशा मुक्त भारत का संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे इकट्ठा करके प्रोसेस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का जिक्र किया, कहा मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्रों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की कृष्णा शिष्याद्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया, 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। महोबा में 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज, आला उदल के शौर्य की याद में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां, लोगों ने की इससे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मुस्लिम महिलाएं बना रही हैं बांसुरी। झांसी में निकली श्री कृष्ण की शाही सवारी, नाचते गाते भक्तों ने भगवान का स्वागत किया। इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर निकाली गई हरिनाम संकीर्तन यात्रा। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी भाग लिया, साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का संदेश। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने दिखाया करतब, अतिथियों ने किया सम्मानित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल रैली, ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल हुए। 10,000 लोगों ने साइकिलिंग का संदेश दिया। रियासी के अंजी खड्डा ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ऊंचाई से दिखा शानदार नजारा। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के दरवाजे, हालात पर नजर। मध्य प्रदेश मानसूनी बारिश के बीच उफान पर आई कई नदियां, तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश के चलते बदल गए हालात, उमरी गांव में उधवपुरा थरपुर नाला पुल से ऊपर 2 फीट तक भर गया पानी। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ बढ़ा गंगा का कटान, कई मकानों के गिरने के खतरा, खाली कराए गए घर। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बहा। चित्रकूट में रात भर चला राहत और बचाव अभियान, बाढ़ में फंसे कई लोगों सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में भी चला जा रहा राहत बचाव काम, हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सतना में बारिश के बाद जोरदार बढ़ा रेस्क्यू कर रहे बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खोले गए 15 कपाट। बिहार के कटिहार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पानी भरने से कई मार्गों पर संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में हुई मूसलाधार बारिश, तूफान पर नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलजमाव। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिखा अद्भुत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश, बंगाल की खाड़ी बन रहे लो प्रेशर के चलते मौसम बदला। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा का पानी, कई घाट जलमग्न। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी, 8 भारतीय। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। ट्रक पोकलेन और भारी मशीनरी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा है मलबा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ हेल्थ बेसिलिका शुरू हुआ। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी में नहाया चर्च, 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक चलेगा उत्सव। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखा शानदार नजारा, सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल के मंदिर में परिसर में भव्य स्वागत हुआ, भव्य आरती के बीच जयकारों की गूंज। गंगा स्नान के दौरान नेटिव हनुमान जी ने किया भव्य श्रृंगार, सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में तट तक पानी पे उफान। कपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर, महादेव का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हो गया। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। 450 कलाकारों ने बाघों के रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट, पेंट्स और ढोल वादकों को लेकर टीमों में शामिल हुए। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में श्रीकृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन हुआ। संतों और श्रीकृष्ण ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया।

रंगीन झांकियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट, पेंट्स और ढोल वादकों को लेकर टीमों में शामिल हुए। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में श्री कृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन हुआ। संतों और श्री कृष्ण ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। विशेष वाहन से 1 सितंबर को वृंदावन लाई जाएगी रजत शिला। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति सेट कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। उत्तर प्रदेश में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी। त्योहारों पर सुरक्षा के साथ बाढ़ राहत में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारी निर्देश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन हुई शुरू। लखनऊ में अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में डॉक्टर्स ने लॉन्च की आय डोनेशन कैंपेन, लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। एक दिन की देरी ने बचा ली मानसरोवर यात्रियों की जान। बागेश्वरी माता मंदिर के नजदीक पहुंचा शेर, वन विभाग ने दिखाई मुस्तैदी। इटली के कासल गंटोल्फो में पोप लियो ने लेक अल्बानो की पारंपरिक धार्मिक शोभा यात्रा में नाव से शिरकत की। चर्च में मैरी और जीसस की प्रतिमा के साथ जुलूस निकला, झील के बीच से गुजरी इस शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा था। लेक अल्बानो में पोप लियो उसी नाव पर सवार हुए जिस पर मैरियम प्रतिमा मौजूद थी। शोभा यात्रा के बाद पोप ने लोगों को प्रेम, दान और क्षमा करने का संदेश दिया। पोप लियो ने युद्ध से घायल लोगों के लिए प्रार्थना की। सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी, लोगों से न्याय, स्वतंत्रता, मानव गरिमा और जन कल्याण को बढ़ावा देने की अपील। अरागोन में मार्क मार्केज ने अपने छोटे भाई एलिक्सन को हराकर जीती स्प्रिंट रेस। मार्क मार्केज ने जीत के साथ अरागोन में स्प्रिंट जीत की हैट्रिक भी लगा दी। फिनलैंड में सामी पजारिनी टोयोटा जीआर यारिस रैली वन में अपनी बढ़त को रखा कायम। इसमें दूसरे पायदान पर बने हुए हैं न्यूजीलैंड के हैरन पैडन। 2018 के बाद हुंडे के साथ पहली बार रीट के दौड़ में पहुंचे पैडन। वेल्स के एल्फिन इवांस 55.3 सेकंड पीछे तीसरे पायदान पर है। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नॉरिस का मैकलेरिन के साथ नया करार, F1 चैंपियन ने कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक बढ़ाया। मैकलेरिन में ही करियर खत्म करना चाहते हैं नॉरिस, करार में 2030 के बाद का मल्टी ईयर ऑप्शन भी शामिल। मैकलेरिन से नॉरिस को मिला बहुत खास तोहफा, मैकलेरिन ने चैंपियन बनने वाली मैक L39 कार गिफ्ट भी की। स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस वेल्टा में आंद्रियास का जलवा, नॉर्वे के राइडर ने जीता स्टेज 7। करीब 150 किलोमीटर की रेस में बने चैंपियन टोबियास रहे दूसरे पायदान पर।

0: फिल्म टॉक्सिक ने चौथे दिन भारत में 25 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का 190 करोड़ रुपए पहुंचा कुल कलेक्शन। नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म के लिए पुराने अंदाज का टीजर रिलीज किया। फिल्म दिसंबर में हो रही है रिलीज। डिमांड के बाद थिएटर मालिकों ने फिल्म द ओडिसी को आईमैक्स स्क्रीन्स पर दोबारा किया रिलीज। टॉम क्रूज के फैंस के लिए शानदार खबर। एन हैथवे ने एक वीडियो जारी करके डेज ऑफ थंडर के सीक्वल का ऐलान किया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने घर के पलों का वीडियो शेयर किया। फैंस ने डाउन टू अर्थ बताते हुए जमकर तारीफ की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार। टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार। दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार। अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर से भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर से परफॉर्म किया जा रहा है। 5 का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जन्माष्टमी तक यानी 4 तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंस और वध महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा का मंचन होगा।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला की तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो चल जान ले बात करा की देखा, तो ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमें वो रखे जो लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि मोचन और दाएं को और बाएं के स्टेज में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइव स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्ण की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बता
2: दी,
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है। वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी देखते हैं, ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं, तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल के चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में उसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: सात समंदर पार पहुंचा सनातन विचार, टोक्यो से लंदन तक राम कथा का प्रसार, दुनिया भर में बागेश्वर बाबा की जय जयकार, अज्ञातवास से विख्यात होने की कथा, बंदे में है दम श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8:00 गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: मथुरा से द्वारका अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, कृष्णमय हो गए बाजार, बांसुरी मुकुट और मोरपंख झूला और कान्हा के कपड़ों की हो रही है खरीदारी। महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का आगाज, बड़ी संख्या में जुटे लोग, बुंदेली संस्कृति की दिखी अद्भुत झलक। जयपुर में पावर कट से नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, 5 सितंबर को दोबारा होंगे एग्जाम। एग्जाम शुरू होने के बाद 2 घंटे के भीतर करीब 10 बार एग्जाम हुआ बाधित। उज्बेकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को नई उड़ान पर जोर रहा, यूरेनियम समेत कई अहम समझौते। नेपाल में लगातार 5वें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी, सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारतीय टीम। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, 23 साल का रिकॉर्ड टूटा, सड़कों पर दौड़ी नावें, सेना के हेलीकॉप्टर से हो रहा है लोगों का एयरलिफ्ट, अब तक 350 का रेस्क्यू।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो
8: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजयी संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए, उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए और हाँ अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
1: बड़ा मेरा
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चल रहा और सत्य जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं।
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलख जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
1: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की छतरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
3: लोगों का लोगों से मिलन होना
1: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
3: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's trail.
1: People to people
3: will connect through Ramayana.
1: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति हो गए, सबका मंगल हो गए। ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाएं।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद, पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट या अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए

0: बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखे। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: बस देखते जाइए इनकी हरकतें पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्ने हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
3: धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला, हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए हजारों लोग। पुलिस बैंड ने दी भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर, पंख, चूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। उज्बेकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर। यूरेनियम समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताशकंद में सेना के जवानों ने दिया सैल्यूट, साथ में राष्ट्रपति शौकत भी रहे मौजूद। ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार का। हिंदुस्तान को उन्होंने ताशकंद में जीवंत कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को दी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां। कहा भारत और उज्बेकिस्तान इस साल 15वीं रणनीतिक साझेदारी की बना रहा है सालगिरह। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत को बताया स्थानीय स्ट्रैटेजिक साझेदार। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश। योग फेडरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचाई तस्वीर। नमस्ते इंडिया का दिखा नजारा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की पाठशाला में लोगों को दिए टिप्स। लोगों का बढ़ाया हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देखी भारतीय संस्कृति की झलक। बच्चों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। यहां हुए स्वागत को बताया अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। सूर्यपथ तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्त भारत का संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया। कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे इकट्ठा करके प्रोसेस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का जिक्र किया। कहा मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्रों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की कृष्णा शिषाद्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया। 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। महोबा में 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज। आला उदल के शौर्य की याद में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां। लोगों ने की इससे राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मुस्लिम महिलाएं बना रही हैं बांसुरी। झांसी में निकली श्री कृष्ण की शाही सवारी। नाचते गाते भक्तों ने भगवान का स्वागत किया। इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर निकाली गई हरिनाम संकीर्तन यात्रा। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी भाग लिया। साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का संदेश। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने दिखाया करतब। अतिथियों ने किया सम्मानित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल रैली। ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल हुए। 10,000 लोगों ने साइकिलिंग का संदेश दिया। रियासी के अंजी खड्ड ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन। ऊंचाई से दिखा शानदार नजारा। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के दरवाजे। हालात पर नजर। मध्य प्रदेश मानसूनी बारिश के बीच उफान पर आई कई नदियां। तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश के चलते बदल गए हालात। उमरी गांव में उधमपुरा थरपुर नाला पुल से ऊपर 2 फीट तक भर गया पानी। बेगूसराय में भारी बारिश के साथ बढ़ा गंगा का कटान। कई मकानों के गिरने की खतरा। खाली कराए गए घर। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी एप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बहा। चित्रकूट में रात भर चला राहत और बचाव अभियान, बाढ़ में फंसे कई लोगों सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा। सतना जिले के चित्रकूट में भी चला जा रहा राहत बचाव काम, हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सतना में बारिश के बाद जोरदार बढ़ा रेस्क्यू कर रहे बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खोले गए 15 का पाट। बिहार के कटिहार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पानी भरने से कई मार्गों पर संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में हुई मूसलाधार बारिश, उफान पर नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलजमाव। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिखा अद्भुत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश, बंगाल की खाड़ी बन रहे लो प्रेशर के चलते मौसम बदला। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा का पानी, कई घाट जलमग्न। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना ने 468 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, बचाए गए लोगों में 418 नेपाली, 42 चीनी, 8 भारतीय। सेना ने 274 हेलीकॉप्टर शटल रन के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई। ट्रक, पोकलेन और भारी मशीनरी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हटाया जा रहा है मलबा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में औपचारिक ध्वजारोहण के साथ वार्षिक उत्सव आवर लेडी ऑफ हेल्थ बेसिलिका शुरू हुआ। आतिशबाजी के साथ शानदार रोशनी में नहाया चर्च, 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मोत्सव तक चलेगा उत्सव। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखा शानदार नजारा, सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल के मंदिर में परिसर में भव्य स्वागत हुआ, भव्य आरती के बीच जयकारों की गूंज। गंगा स्नान के दौरान डेटे हुए हनुमान जी ने किया भव्य श्रृंगार, सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में तट तक पानी पे उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर, महादेव का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन हो गया, त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। 450 कलाकारों ने बाघों के रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बेहतरीन कलाकारों, बॉडी आर्ट पेंट्स और ढोल वादकों को लेकर टीमों में शामिल हुए। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में श्री कृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन हुआ, संतों और श्री कृष्ण ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। विशेष वाहन से 1 सितंबर को वृंदावन लाई जाएगी रजत शिला। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है नीट पीजी 2026 परीक्षा एग्जाम के लिए 273,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। नेपाल फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्वदेश पहुंचे। नागपुर स्टेशन पर फूलमालाओं से भव्य स्वागत हुआ। भारत से नेपाल की सहायता करने के लिए भेजी गई चौथी खेप 11 टन राहत सामग्री शामिल। 230 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के लिए भी भेजा गया सामान। 16 ट्रकों से नेपाल पहुंचा सामान। 7 और वैली ब्रिज बनाने के लिए भी जल्द से जल्द भेजा जाएगा सामान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत की ओर से अब तक 69 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है काठमांडू। इसमें जरूरी दवाएं, पोर्टेबल जनरेटर सेट और खाने के पैकेट्स। 11 सदस्यीय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में डीएम ने एक रेस्टोरेंट का किया निरीक्षण। साफ सफाई के नियमों की अनदेखी मिली। खाने पकाने वाले बर्तनों में गंदगी देखकर डीएम ने जताई नाराजगी। स्वच्छता बहाली करने के लिए 2 दिन का रेस्टोरेंट बंद रखने का निर्देश। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित मिशन शक्ति सेट कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। उत्तर प्रदेश में राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी। त्योहारों पर सुरक्षा के साथ बाढ़ राहत में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारी निर्देश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन हुई शुरू। लखनऊ में अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में डॉक्टर्स ने लॉन्च की आय डोनेशन कैंपेन। लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। एक दिन की देरी ने बचा ली मानसरोवर यात्रियों की जान। बागेश्वरी माता मंदिर के नजदीक पहुंचा शेर। वन विभाग ने दिखाई मुस्तैदी। इटली के कासल गम्पोल्फो में पोप लियो ने लेक अल्बानो की पारंपरिक धार्मिक शोभा यात्रा में नाव से शिरकत की। चर्च में मैरी और जीसस की प्रतिमा के साथ जुलूस निकला। झील के बीच से गुजरी इस शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा था। लेक अल्बानो में पोप लियो उसी नाव पर सवार हुए जिस पर मैरियम प्रतिमा मौजूद थी। शोभा यात्रा के बाद पोप ने लोगों को प्रेम दान और क्षमा करने का संदेश दिया। पोप लियो ने युद्ध से घायल लोगों के लिए प्रार्थना की। सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी, लोगों से न्याय, स्वतंत्रता, मानव गरिमा और जन कल्याण को बढ़ावा देने की अपील। अरागोन में मार्क मार्केज ने अपने छोटे भाई एलिक्सन को हराकर जीती स्प्रिंट रेस। मार्क मार्केज ने जीत के साथ अरागोन में स्प्रिंट जीत की हैट्रिक भी लगा दी। फिनलैंड में सामी पजारिनी टोयोटा जीआर यारिस रैली 1 में अपनी बढ़त को रखा कायम। इसमें दूसरे पायदान पर बने हुए हैं न्यूजीलैंड के हैडन पैडन। 2018 के बाद हुंडे के साथ पहली बार लीड की दौड़ में पहुंचे पैडन। वेल्स के एल्फिन इवांस 55.3 सेकंड पीछे तीसरे पायदान पर है। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर नॉरिस का मैकलेरिन के साथ नया करार। F1 चैंपियन ने कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक बढ़ाया। मैकलारेन में ही करियर खत्म करना चाहते हैं। नॉरिस करार में 2030 के बाद का मल्टी ईयर ऑप्शन भी शामिल। मैकलारेन से नॉरिस को मिला बहुत खास तोहफा। मैकलारेन ने चैंपियन बनने वाली मैक L39 कार गिफ्ट भी की। स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस वेल्टा में आंद्रियास का जलवा। नॉर्वे के राइडर ने जीता स्टेज 7। करीब 150 किलोमीटर की रेस में बने चैंपियन टोबियास रहे दूसरे पायदान पर। फिल्म टॉक्सिक ने चौथे दिन भारत में 25 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का 190 करोड़ रुपए पहुंचा कुल कलेक्शन। नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म के लिए पुराने अंदाज का टीजर रिलीज किया। फिल्म दिसंबर में हो रही है रिलीज। डिमांड के बाद थिएटर मालिकों ने फिल्म द ओडिसी को आईमैक्स स्क्रीन पर दोबारा किया रिलीज। टॉम क्रूज के फैंस के लिए शानदार खबर। एन हैथवे ने एक वीडियो जारी करके डेज ऑफ थंडर के सीक्वल का ऐलान किया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने घर के पलों का वीडियो शेयर किया। फैंस ने डाउन टू अर्थ बताते हुए जमकर तारीफ की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि द्वारका तक किशन कन्हैया बंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां बजने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र मुकुट और श्रृंगार के सामानों की बिक्री खूब है।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महा उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं, जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए, फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2-6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहां पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोकमेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोकमेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT University Ghaziabad, Shaping Future, Creating Leaders.
7: मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर, पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उज्बेकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर। यूरेनियम समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। नेपाल में लगातार पांचवें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारत की टीम।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।

नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। बंधन में रक्षाबंधन। अभी दो दिन पहले पूरे देश में भाई बहन के प्यार का त्योहार यानी रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। हम सब जानते हैं कि राखी का ये वो त्योहार है जिसमें एक मामूली सा धागा ये वचन ले जाता है कि हर भाई अपनी बहन की हिफाजत करे। पर हमारे इसी देश में ऐसे बहुत से भाई हैं जो किसी न किसी जुर्म में जेल में है यानी बंधन में ना। कभी आपने सोचा है कि ऐसे भाइयों के लिए बंधन में रक्षा बंधन कैसा होगा? आज पहली बार आपको टीवी पर देश के अलग अलग जेलों में लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जेल के अंदर बंधन को पार कर भी रक्षा बंधन मनाया जाता है।

0: बंधन, कितना खूबसूरत शब्द है ना ये। सात फेरे लेते ही पति पत्नी एक खूबसूरत बंधन में बन जाते हैं। कलाई पर एक धागा भर बांधते ही भाई बहन एक अटूट बंधन में बन जाते हैं। कानून के गुनहगार एक अलग बंधन में बन जाते हैं, वो बंधन जिसे हम और आप आम जुबान में जेल कहते हैं। लेकिन राखी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में खुद खिड़कियां बनाकर उस एक दिन के लिए सारे बंधन तोड़ डालता है, ताकि भाई बहन के प्यार के बीच कोई दूसरा बंधन बाधा ना बने। जेल की ऐसी तस्वीर आपको साल में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलेगी, और वो दिन है रक्षाबंधन का दिन, राखी का दिन। किसी भी भाई की कलाई सूनी ना रह जाए, बस इसीलिए इस एक दिन में जेल गुलजार हो जाती है। ये जो सजी धजी बहनें हैं, ये जो लंबी लंबी कतारें हैं, ये जो टेंट और शामियाने के नीचे बैठे लोग हैं, ये जो टेबल के इस और उस तरफ लोग बैठे हैं, ये जो पुलिस वाले हैं, ये सब इसीलिए हैं ताकि किसी एक बहन की भी ये हसरत अधूरी न रह जाए कि राखी के दिन बंधन की वजह से उसके भाई की कलाई सूनी रह गई। बस इसीलिए खुद जेल ही एक दिन के लिए ये बंधन खोल देता है, ताकि हर भाई बहन रक्षा बंधन मना सके।
1: मेरे लिए कोई नहीं चाहेगा किसी का भाई ऐसे अंदर जेल में रहे। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, लेकिन ये है कि इस बहाने अपने भाई से मिलना हो जाता है, राखी बांधनी हो जाती है।
2: राखी बांधी आपने भाई को? तो भाई के लंबी उम्र की दुआ की होगी।
3: हाँ, मैं बस चाहती हूँ भाई बस घर आ जाए जल्दी।
4: हाँ, उसको देख के ऐसा लगा कि बस सब कुछ मिल गया।
5: आई मिस यू भाई, सारे परिवार को याद कर रही हूँ मैं। दिल को तकलीफ होती, परिवार याद आते हैं।
1: मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है रोज।
6: घर के इनके सब याद है, घर के इनके सब याद आते।
7: हम जब आते हैं तब आंसू आते हैं, हम चार महीना से मिलाई करने हम ही आते।
0: साल में शायद ये एक दिन ऐसा होगा जब ऐसे भाइयों को भी ये महसूस होता है कि किसी की बहन के साथ कभी गलत मत करो। अगर इसी एहसास को महसूस करना है तो बस राखी के दिन देश के किसी भी जेल का मंजर देख लीजिए। इस खास दिन और खास मौके पर वहाँ कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं, बल्कि आपको सिर्फ एक भाई नजर आएगा। वो भाई जो अपनी बहनों का बेसब्री से जेल के दरवाजे को ताकते हुए इंतजार कर रहा होगा। वो भाई जो पल पल अपनी बहन के एक झलक को तड़प गया होगा। वही भाई जिसने अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करनी है, लेकिन बंधन ऐसा कि रक्षा बंधन पर भी वो उनके पास न जा सका। तो बहनें ही अपने भाई के पास चली आई। बहनें तो फिर भी आजाद हैं, लेकिन इनके भाइयों की बेबसी और तड़प बस यही जानते हैं। नोएडा जेल में अपनी बहनों से मिलने के बाद इनकी आंखें भी छलक आई। सुनिए एक भाई के दिल की तड़प जब आंसू बनकर आंखों से निकली तो कैसी सुनाई पड़ी।
6: बहुत दुख हो रहा है, यहाँ पे रक्षाबंधन मना ले
8: कि आगे से कोई ऐसा काम या कोई बिल्कुल भी कोई ऐसा काम कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे कि अपनी फैमिली के ऊपर कोई आंच आए। जो भी हुआ क्या हुआ, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, मुझे खुद इस चीज का दुख है।
9: अच्छा तो ये लगता है कि बहनें आ रही हैं मिलने के लिए, पर एक दुख ये भी होता है कि हाँ जेल में आ रही हैं, कि यहाँ ना आए कि मैं ही बाहर जाऊँ और बाहर ही रक्षाबंधन बने।
10: इमोशनल हो गया।
9: 6 साल हो गई, छठी मेरी 7वीं रक्षाबंधन है। ऐसी कोई रक्षाबंधन नहीं हुई जिसमें मेरी सिस्टर ना आई हो।
11: रोना आ गया। ऐसा है ना कि घर पे राखी बांधते थे दोनों भाई साथ में बैठ के, अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है, हम जेल आ गए हैं इस वजह से ज़्यादा रो रहे हैं।
8: मैं ये कहना चाहूँगा बहने, जो मुझसे हुआ वो गलती हो गई, लेकिन तुम्हारा प्यार है जो तुम मेरे को यहाँ राखी बांधने आ गए, और अगली बार की राखी बड़ी धूमधाम से बनेगी, घर पे बनेगी।
0: जी नहीं, ना तो यहाँ कोई मेला लगा है, ना ही ये किसी सत्संग की तस्वीर है। ये लंबी कतारें उन भाई बहनों की है जो यहाँ राखी बांधने या बंधवाने आए हैं। ये तस्वीर जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जेल की है। राखी के खास मौके पर जेल प्रशासन ने यहाँ खास इंतजाम किए हैं, ताकि बंधन में होने के बाद भी रक्षा बंधन पर किसी भाई की कलाई सूनी न रह पाए।
12: कोई भी कलाई सुनी न रह जाए, इस थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी बहन या भाई कोई भी कारागार पे आए बिना भाई से मिले या बहन से मिले वो जाए नहीं। और चूंकि यह त्यौहार हम लोगों के भारतीय परंपरा में बहुत ही गौरवशाली एक त्यौहार है, जिस पर यह माना जाता है कि अगर भाई ने अपनी बहन को कोई वादा दे दिया, वचन दे दिया, तो वो मरते दम तक उसको निभाता है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी इन जो भी बहनें आ रही हैं, जो भी भाई आ रहे हैं, उनसे यह कह रहे हैं कि आप जो भी वादा लीजिए कि जो भी बंदी हमारी कारागार से छूटे, भूलवश या अज्ञानतावश कोई भी जो इसने गलती कर दी है, जब यह यहाँ से छूट कर जाए तो एक अच्छा व्यक्ति बन करके समाज को एक अच्छा मैसेज दे और समाज में अपने आप को पुनः स्थापित कर सके।
0: जेल के अंदर रक्षा बंधन पर राखी बांधने के लिए वक्त को भी नहीं बांधा गया। सुबह से शाम तक जो भी बहन या भाई यहाँ पर आए उन्हें आने की इजाजत दी गई। बाकायदा इस खास मौके पर यहाँ टेंट और शामियाने लगाए गए। जेल में अपने भाइयों के पास आने पर उन्हें जेल जैसा महसूस ना हो इसका भी खास ख्याल रखा गया। मिलने के लिए पूरा वक्त दिया गया। जेल नियम का नियम इस खास दिन पर कुछ देर के लिए भुला दिया गया। कैद में बंद भाई और बहनों के बीच की हर दीवार, हर सलाखें जेल प्रशासन ने हटा दी ताकि भाई बहन एक दूसरे को गले लगा सके।
12: पूरे वर्ष जो है सिर्फ दो मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसमें खुली मुलाकात होती है, और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि बीच में एक जाली होती है, अन्य दिनों वैसी मुलाकात होती है जिसमें स्पर्श नहीं हो पाता है। लेकिन यह त्यौहार बिना स्पर्श किए कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो भैया दूज और रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा और मुख्यालय स्तर पर और माननीय मंत्री जी के स्तर पर इस त्यौहार को मनाए जाने हेतु खुली व्यवस्था की जाती है ताकि भाई बहन एक साथ बैठ करके इस पर्व को मना सके। तो हम लोगों का जो पिछला अनुभव है उसमें हम लोगों ने ये महसूस किया है कि लगभग 3000 परिवार जो है लगभग एवरेज आते हैं, लगभग 4000 लोग, उनके साथ बच्चे बच्चे को इंक्लूड कर लिया जाए तो 5,500 लोग मतलब पूरे दिन भर में मुलाकात करते हैं। बहनें तो चाहती हैं कि पूरा समय के लिए हम बैठे रहें, लेकिन हम लोग और भी बाहर आपने जैसा देखा होगा कि लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोगों को 30 से 40 मिनट का समय पर्याप्त दिया गया है कि आप बैठिए, अपने भाई के साथ बैठिए और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर लें। उसके लिए हम लोगों ने एक पहल की है कि पहले उन बहनों को बुला लिया जाए, उनका समय खत्म ना हो, और बंदियों को उनसे पहले बुला करके हम लोग खड़ा करके रखे हुए हैं ताकि वो जैसे ही बहनें आए उनका समय वहीं से काउंटडाउन शुरू हो जाए और वो अपनी बहनों से मुलाकात कर सके।
13: मेरे पीछे यहाँ पर ये जो पूरी तस्वीर है, यहाँ पर एक तरफ अंदर जेल से जो है वो कैदी बाहर आए हैं और दूसरी तरफ बाहर से उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। और यही खूबसूरती है कि आज खुला मिलन इसको कहते हैं कि वो करवा रहे हैं, और यहाँ पर सारी बहनें जो है अपने भाइयों के लिए राखी लेकर, मिठाइयाँ लेकर और एक उम्मीद लेकर आई है कि आज अपने भाई से मुलाकात होगी। अक्सर जब जेल में मुलाकात होती है तो बीच में एक दीवार होती है, एक बैरियर होता है, लेकिन आज उन सभी दीवारों को तोड़ दिया गया है और आज ये आमने सामने से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और यही तो त्यौहार है रक्षाबंधन का।
0: वैसे तो जेल में एक तय वक्त पर और तय वक्त के लिए ही मिलने की इजाजत होती है, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन दूर दूर से रक्षा सूत्र लेकर आने वाली बहनों और कैद में रह रहे उनके भाइयों को देखते हुए जेल प्रशासन ने इस पूरे दिन को ही जेल के लिए खास बना दिया। हर तरह के बंधन को तोड़कर बहन भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी।
14: सुरक्षा की कई कारण होते हैं, सुरक्षा कारण हम पहले महिलाओं की कराते हैं, फिर इसके बाद जो बहनें हमारी जेल में बंद हैं उनके भाइयों की भी कराते हैं, फिर बाद में इसके बाद जो जेल में भाई बहन बंद हैं उनकी भी हम मुलाकात कराते हैं। आज ये कोशिश करते हैं कि कोई भी बहन अपने भाई से बिना मिले ना रह सके, हमारी पूरी कोशिश रहती है। बाहर भी हम देखते हैं अंत में शाम तक कोई समय का बंधन नहीं रखते हैं, जब भी कोई बहन आ जाए तो हम कोशिश करते हैं अपने भाई से बिना मिले वो ना जा पाए।
0: कुछ बहनें ऐसी भी थी जिनके भाई उन तक नहीं पहुंच सके, वो जेल में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और इसीलिए वो जेल के अंदर ही जेल अधीक्षक और जेलर को राखी बांधकर उनके साथ ये त्योहार मना रही थी।
13: आप इस जेल के जेलर हैं, सारी चीजें आप देखते हैं, कैदियों से आपका एक रिश्ता बन गया है, तो जो महिला बंदी हैं क्या उनके लिए आप गार्जियन भी हैं, भाई भी हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि आप ही हमारे भाई, हम आपको भी राखी बांधना चाहते हैं, ऐसे भी कोई कह दिए?
14: हाँ, हमेशा जो है आती हैं, एक हक से आती हैं, वो हमको अपना मानती हैं। बड़ी महिलाएं हमको बेटे की तरह मानती हैं, बाकी हैं अपने भाइयों की तरह मानती हैं। महिलाएं जो जेल में बंद हैं, हमारा महिला स्टाफ है, हर आदमी भाई बहन की तरह मानता है, आता है, एक अपनी समस्या होती हमको बताता है, हमसे बोलता है। हमको भी अच्छा लगता है कि एक आदमी अगर हमारे पास आके सहज सरल हो जाए, अपने मन की बात कह सके, तो शायद वो हमको इस लायक समझता तभी कहता है।
0: जेल में अपने भाइयों को राखी बांधकर बहनों को वापस एक लंबी दूरी तय करनी थी। वो सुबह से भाइयों से मिलने का इंतजार भी कर रही थी, तो जेल से निकलने के बाद जेल परिसर में ही उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी और इसके लिए कई संस्था जेल प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही थी।
12: यहाँ पर काफ़ी कैदी हैं जो अन्य जनपदों से भी हैं, जहाँ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, काफ़ी दूर दूर से लोग हैं। तो उनकी बहनें दूर दराज से जब आती हैं तो भूखे प्यासी, चूँकि यह त्यौहार जब मनाया जाता है तो व्रत रख करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, संस्थाओं से बात की है, जिसमें अपराध निरोधक है और आपका इनर व्हील क्लब है और क्या कहते हैं भारत विकास परिषद है और भी कई संस्थाएं हैं। सबसे जिससे किसी से बिरयानी, वेज बिरयानी बनवाई गई है, किसी से फल वितरण कराया जा रहा है, किसी से चाय वितरण कराया जा रहा है, और साथ ही जेल परिसर के अंदर जो है हम लोगों द्वारा टेंट की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था और उनको बैठने की व्यवस्था की गई है।
15: मेरा ये मानना है कि बहनें, चाहे जेल के कैदियों की हो या कोई भी हो बहनें, तो एक अलग सा बॉन्ड होता है बहन और भाई का, तो मेरे हिसाब से उनको भी हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सर ने जेल में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी। इतनी भीषण गर्मी है, रक्षाबंधन के पर्व पे हमने ये इनर व्हील द्वारा आयोजित किया है, फ्रूटी और ठंडे पेयजल का एक स्टॉल लगाया था। हमारा क्लब जो है वो समाज के हर वर्ग, छोटे बड़े जो भी, हर वर्ग की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और हमारे क्लब का मोटो है सर्विस एंड सिस्टरहुड, सो वी जस्ट फॉलो दैट।
0: शुक्रवार की सुबह से ही जेल परिसर में बहनों के आने का तांता लग चुका था। जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जेल परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और आने जाने वाले लोगों की जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा था। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गयी थी।
13: तो ये एक लंबी कतार है, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई हैं। तो ये वो वेटिंग एरिया है, अंदर वेटिंग एरिया फुल हो गया है, इसलिए यहाँ पर अब इन्हें बिठाया गया है। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं अपने बंदी भाइयों का इंतजार कर रही हैं, ताकि जब उनकी बारी आए तो वो अंदर जाकर वहां पर उनको राखी बांध सके, जहां पर पूरी व्यवस्था रक्षाबंधन के लिए जेल प्रशासन ने की है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए जेल है, जेल का मेन गेट है और यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है और पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोगों को लगाया गया, उनको बताया जा रहा है कि किस तरफ जाना है, किधर नहीं जाना। ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद वहां से निकल रही हैं और बाहर की तरफ जा रही हैं, और कुछ महिलाएं इंतजार कर रही हैं, तो अलग अलग स्लॉट्स में इन्हें अंदर भेजा जा रहा है। यहां से आइए आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या व्यवस्था है। ये महिलाएं जो है राखी बांधकर अपने भाइयों को, चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी लेकर जा रही हैं, उनके चेहरे पर खुशी है कि अपने भाइयों को राखी बांधा है। और ये व्यवस्था पूरी यहां से कुछ ऐसी है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो ये है कि ये देखिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को बाय कर रहे हैं, यहाँ से अलविदा कर रहे हैं कि फिर से मुलाकात होगी। और ये जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, वो अपनी अपनी बहनों का इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग स्लॉट में, क्योंकि उन्हें बताया गया कि उनकी बहनें आ चुकी हैं, तो ये अपनी बहनों का इंतजार कर रहे हैं। ये यहाँ से जाएंगे, बहनें सामने से आएंगी और ये दाहिने तरफ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है।
0: जेल में हर कैदी की अपनी एक अलग कहानी है, हर कहानी आपको भावुक कर देगी। राखी के इस त्योहार पर भाई बहन की इस जोड़ी ने वाकई भावुक कर दिया। भाई 4 दिन पहले ही जेल आया, रक्षाबंधन की तैयारी तो बहुत पहले से थी, दोनों के बीच खूब प्यार भी है। नजरों के सामने देखते ही एक दूसरे को गले लगाकर सातों सागर आंखों में ले आए। उम्र भी कम ही है, सो भावनाओं को जरा भी रोक नहीं पाए और उमड़ उमड़ कर कुछ आंखों से, कुछ लफ्जों से सब बाहर आता गया। मोहब्बत, तड़प, पछतावा, दुख और सबक, सब कुछ इन भाई बहन की छोटी सी कहानी आप भी सुनिए।
6: मैं बस निकल जाऊँ बस यहाँ से, मैं कभी जिंदगी में ना आऊँ। रोवा मत ना बस
3: चुप हो जाओ, रोने
6: मन नहीं लग रहा गर्गन के बिना।
7: बहन को देखकर इमोशनल हो गई, क्या कहना चाहती
6: हो? मैं ना नहीं करूंगा,
3: इसको रो मत, छुड़ाएंगे हम, जल्दी छुड़ाएंगे, चुप
6: चुप मैं वादा करता।
7: क्या बात
6: है, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कर करूँगा। मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत याद आती है तेरी।
0: ऐसी ही हजारों कहानियां पूरे यूपी और देश भर के जेलों में नजर आई। ये तस्वीर नोएडा जेल की थी।

0: सिंह चौहान पहुंचे, बाहर से आई बहनों और अंदर बंद कैदियों से मुलाकात की, जेल का निरीक्षण किया और महिला बंदियों से राखी भी बंधवाई।
1: नोएडा जनपद कारागार में की बड़े पैमाने पर मैंने देखा जो बहने हैं यहाँ पर अपने भाई की कलाई पे रक्षा बंधन का धागा बांध करके उनकी सलामती की दुआ मांगने आई हैं। मैं तो चाहता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बहनें आज अपने भाई की कलाई पे रक्षाबंधन का सूत्र धागा बांध करके आज उनके भाई बहन के प्यार को जो प्रगाढ़ करना चाहती हैं, उनकी दुआ की सलामती के लिए दुआ मांग रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आने वाले दिन में अगला जो रक्षाबंधन पड़े, ये भाई जो है अपनी बहन के साथ मिलकर के अपने घर पर इसी तरीके का हर्षोल्लास के साथ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए।
0: ये देहरादून जेल है, यहाँ भी राखी के मौके पर जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। इस मौके पर सुबह से ही बड़ी तादाद में तमाम बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुँची थी। तस्वीर कमोबेश यहाँ भी वही थी, भावनाएं यहाँ भी बह रही थी, मानो ये बहनें एक दिन में कई साल समय लेना चाहती थी। ग्वालियर जेल में भी बहनें सुबह से लंबी लंबी कतार में लगकर अपने भाइयों से मिलने का इंतजार करती नजर आई। भाई की एक झलक से उनके चेहरे खिल उठे। जेल प्रशासन ने यहाँ भी बेहतरीन तैयारी की थी।
2: बंदी भाइयों की जो बहनें आती हैं उनके मुलाकात की व्यवस्था की गई है और यह मुलाकात जो है प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी और अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 7 से 8 हज़ार बहनें जो हैं बंदी भाइयों से मिल रही हैं। अभी हमारे जेल में लगभग 3400 कैदी बंद हैं, जिसमें से सजायाफ्ता भी है, अंडर ट्रायल्स भी हैं और उन सभी बंदी भाइयों की मुलाकात आई है।
0: अजमेर जेल के नियम बाकी जेलों से कुछ अलग थे। यहाँ जेल के दरवाजे के बाहर से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती नजर आई। हजार बंदिशों के बाद भी भाई बहन के इस त्योहार रक्षा बंधन में कोई बंधन ना आ सका। यहाँ भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। अब राजस्थान से आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। ये इंदौर जेल है, यहाँ की तस्वीर बाकी जेलों से कुछ अलग नहीं थी। प्यार यहाँ भी उमड़ रहा था, लेकिन इस एक तस्वीर ने वाकई बहुत धावक कर दिया। ये मेरठ जेल है, यहाँ भी किसी भाई की कलाई सुनी नहीं रही। बहनें अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने यहाँ चली आई और जिन बहनों के भाई उनसे मिलने जेल नहीं आ सके उनसे जेल स्टाफ ने राखी बंधवाई, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा गया।
3: ये जितने भी महिलाएं आएंगी ये तो उससे मिलने के लिए कोई भाई नहीं आता है या वो किसी को नहीं बांधती है, तो जो भी महिलाएं रह जाती है बाद में जेल प्रशासन के सभी लोग मिलकर के उन बहनों से राखी बंधवाते हैं ताकि उनको ये आभास ना हो कि हमसे कोई मिलने नहीं आया और उनके मन में कोई कुंठा ना आए। इसलिए सभी लोग यहाँ पर, ये परंपरा है, सभी बहनें जो रह जाएंगी उनसे प्रशासन के सभी लोग राखी बंधवाते हैं।
0: इसी तरह मुजफ्फरपुर, कोटा, सोनीपत, फिरोजपुर, पटना, इंदौर, जामनगर, बलरामपुर, करनाल समेत देश के अलग अलग जेलों में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश के जेलों में बंधन के बावजूद रक्षा बंधन का ये पर्व सारी बेड़ियों को तोड़कर, सारे बंधनों से खुलकर, सारे नियमों से ऊपर होकर जोर शोर से मनाया गया। पूरे देश में अलग अलग जेलों में इसी तरीके से रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बहनें बाहर से आती हैं और अंदर कैद में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं, इस उम्मीद, इस प्रार्थना, इस दुआ के साथ कि वो जल्द बाहर आए, वो स्वस्थ रहें, उनकी जिंदगी और अच्छी हो। आगे चलेंगे। देखिए, आप समझिए, जो महीनों की बातचीत है, सालों की बातचीत है, जो सामने से नहीं हो पा रही, वो कुछ इस तरीके से होती है। एक दूसरे में खोए हुए भाई बहन अपने घर परिवार की सारी बातें, एक दूसरे की इमोशन की सारी बातें, कितना वो याद करते हैं। इससे पहले जब वो जेल में नहीं थे तब रक्षाबंधन का यह त्यौहार कैसे मनाते थे, उन पलों को याद करते हुए, उन सारी चीज़ों को याद करते हुए आज का ये त्यौहार मना रहे हैं। ये जो एक सीमित समय मिलता है, कुछ मिनट का या कुछ घंटे का वक्त मिलता है, उस वक्त को थाम लेना चाहते हैं। भाई बहन हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं कि बस ये पल ना जाए, ये इस पल को हम थाम ले और ये जो हमें कुछ मिनट का, आधे घंटे का या 40 मिनट का, 45 मिनट का समय मिला है, इस समय को बस यहीं पर रोक ले, यही चाहते हैं। बहुत सी ऐसी बहनें भी थी जो तमाम मुश्किलों के बावजूद लंबा सफर तय कर जेल पहुंची थी, पर भाई को राखी बांधने के बाद उनके चेहरे पर एक सुकून था। हर बहन की राखी बांधते वक्त एक ही ख्वाहिश थी, अपने भाइयों की सलामती और उनके जल्द घर लौटने की दुआ।
4: ऐसा लगता है कि हम अगला रक्षाबंधन अपने भाई के साथ यहाँ ना मनाएं, अपने घर पे ही मनाएं।
5: आज दुआ मांगिए, मेरा भाई जल्दी बाहर आ जाए, अपने यहाँ पे ना मनाएं, हम अपने घर पे मनाएं अच्छे से।

0: खुशी से सारे परिवार के साथ।
1: ऐसा तो लग रहा है मेरे भाई भी मेरे साथ घर चले,
0: ऐसा लग रहा है।
1: हाँ,
2: बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं।
0: बस कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा भाई जल्दी बाहर आ जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है।
3: और इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: विदेश की धरती पर जब भारतीय मंदिर आकार लेते हैं तो ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, इनके साथ भारत की आस्था, संस्कृति और संस्कार भी वहां पहुंचते हैं। पेरिस के पास बना पीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर भी ऐसी ही एक खूबसूरत पहचान है। अगले महीने इस मंदिर का उद्घाटन होना है।
2: भारतीय मठ मंदिर देश की संस्कृति, परंपराओं का विस्तार और भारतीय विरासत के वैश्विक प्रसार की ही अनमोल संपदा हैं। विदेशों में बने भारतीय मंदिर न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वो भारतीय कला, वास्तुकला, संस्कार और तीज त्योहारों को भी दुनिया भर में पहुंचाने का काम बखूबी निभाते आ रहे हैं। ऐसी ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा फ्रांस में पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बुसी सेंट जॉर्जेस में खड़ी की गई है, जो बैप्स स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के रूप में भारतीय संस्कृति के विस्तार का एक और अध्याय लिखने के लिए तैयार है। बैप्स यानी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसके द्वारा बनाया गया ये मंदिर फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। इसका उद्घाटन अगले महीने यानी सितंबर में होगा। 2 से लेकर 14 सितंबर तक 13 दिन का यहाँ फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित होगा। इस दौरान हिंदू परंपरा, भारतीय कला, संगीत और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। 2 से लेकर 13 सितंबर तक खास तौर से यहाँ वैदिक महायज्ञ आयोजित होगा। उद्घाटन और उत्सव कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंदू समुदाय और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों के शामिल होने की काफी उम्मीद है। समझाया जा रहा है कि इस दौरान आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति को करीब से जानने और साथ ही पेरिस की धरती पर हिंदू मंदिर बनने की कहानी को भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि फ्रांस में हिंदू मंदिर बनाने का विचार साल 1970 में आया था। इसके करीब 25 साल बाद 1995 में पेरिस में मंदिर बनाने की योजना पर काम आगे बढ़ा। साल 2017 में बुसी सेंट जॉर्जेस में मंदिर के लिए जमीन मिली, जिसके बाद साल 2021 में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार करीब 56 साल बाद अब 2026 में मंदिर बनकर तैयार है। पेरिस के पास बना ये स्वामी नारायण मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होगा, बल्कि यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। 50 के दशक से ऊपर का समय लगाते हुए इस मंदिर को बनाने में काफी मेहनत और मेधा का इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर को बनाने में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें भारत में करीब 1000 साल पुरानी नक्काशी की तकनीकों से तैयार किया गया। कई हिस्सों पर तो कारीगरों ने हाथ से बारीक नक्काशी की है। मंदिर निर्माण के काम में भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञ भी शामिल रहे, जिनमें नोट्रे डैम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी थे। इस मंदिर में भारतीय शिल्पकला और फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है? अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ब्रह्मांड के कई नए रहस्यों से होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप नैंसी ग्रेस रोमन। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा रोमन। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी मुकुट मोरपंख झूला और कान्हा की कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की देखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उज्बेकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर। यूरेनियम समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिव डोला निकाला गया। शहर में गूंजे हर हर महादेव।

0: शाही रथ पर सवार भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने भगवान सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी। ढोलताशों और झांकियों के साथ पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। शिव डोली की सुरक्षा के लिए 8 जिलों का पुलिस बल तैनात। शिवडोला मार्ग पर 350 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से हर गतिविधि पर पैनी नजर। डीआईजी कलेक्टर और एसपी समेत बड़े अधिकारी संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। खरगोन का 58वां शिवडोला करीब 15 घंटे में तय करेगा 4 किलोमीटर का सफर। देर रात डोला मंदिर लौटेगा। महुआ में 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज। आलाउदल के शौर्य की याद में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मुस्लिम महिलाएं बन रही हैं बांसुरी। झांसी में निकली श्रीकृष्ण की शाही सवारी। नाश्ते गाते झूमते हुए नजर आए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर निकाली गई हरिनाम संकीर्तन यात्रा। हरे कृष्ण मंदिर से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दिखा शानदार नजारा। सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के पवित्र जल ने बजरंग बली को कराया स्नान। ढोल नगाड़े बजाते हुए गंगा जल का मंदिर में परिसर जबरदस्त स्वागत। भव्य आरती के बीच जयकारों की गूंज। गंगा स्नान के दौरान लेटे हुए हनुमान जी का भव्य श्रृंगार। सन्यासियों के साथ भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देहरादून में तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में तट तक पानी पहुंचा। टपकेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जारी। महादेव का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। केरलम के त्रिशूर में भव्य समारोह के साथ ओणम उत्सव का समापन। त्रिशूर राउंड में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकली के जरिए बिखेरे रंग। 450 कलाकारों ने बाघों की रंग बिरंगी पोशाक के साथ शरीर पर बनाई आकर्षक पेंटिंग। कलाकारों के साथ अलग अलग थीम पर सजी रंगीन झांकियां भरी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बेहतरीन कलाकारों बॉडी आर्ट पेंटर्स और ढोलवादकों को लेकर टीम में जबरदस्त मुकाबला। रंग बिरंगी वेशभूषा में नजर आए लोग। पुलिकोट्टू के जोशीले ढोल और नृत्य के साथ कलाकारों में दिखा गजब का उत्साह। अयोध्या में श्री कृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन हुआ। संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। विशेष वाहन से 1 सितंबर को वृंदावन लाई जाएगी रजत शिला। यहां भी विधि विधान के साथ साधु संत करेंगे पूजा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी जल्द निपटारे के आदेश। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई गई नीट पीजी 2026 की परीक्षा। 263,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्थान पर स्वदेश पहुंचे। नागपुर स्टेशन पर फूल मालाओं से स्वागत। भारत से नेपाल की सहायता के लिए भेजी गई चौथी केप 11 टन राहत सामग्री। 230 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के लिए भी भेजा गया सामान। 7 और वैली ब्रिज बनाने के लिए भी जल्द से जल्द भेजा जाएगा सामान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत की ओर से अब तक लगभग 69 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई काठमांडू। इसमें जरूरी दवाएं पोर्टेबल जनरेटर सेट और खाने के और पीने के सामान शामिल। 11 सदस्यीय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक विशेष टीम भेजी गई नेपाल। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित सुरंग इलाके में राहत का काम तेज। नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गए। नेपाल की हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद। नेपाल पुलिस के 6 जवान समेत कुल 90 लोगों की टीम मौके पर तैनात। कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल कर रहे हैं पुरजोर प्रयास। जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, दमन के समुद्र तट पर सच हुई एक कहावत, लाइफ गार्ड ने बचाई डूबती बच्ची की जान। समुद्र में मौज मस्ती करने वालों के लिए ये बड़ा सबक, समुद्र में उतरने से पहले मौसम, लहरों और सुरक्षा का रखें ख्याल। चित्रकूट के रामघाट और निर्मोही अखाड़ा इलाके में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी अप्रोच रोड का एक कोना बढ़ा। चित्रकूट में रात भर चला राहत और बचाव अभियान, बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में भी चला जा रहा है राहत बचाव काम, युद्ध स्तर पर हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, राहत सामग्री बांटी। सतना में बारिश के बाद जोरदार बाढ़, रेस्क्यू करके बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समाये। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडल डैम के खोले गए 15 फाटक। बिहार के कटिहार में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पानी भरने से कई मार्गों पर कटा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परवाड़ू में हुई मूसलाधार बारिश, उफान पर नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, के इलाकों में जलजमाव। जम्मू और कश्मीर के रामबन में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिखा खूबसूरत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जबरदस्त बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के चलते बदल गया मौसम का मिजाज। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा, कई घाट डूब गए, प्रशासन अलर्ट। देश के 16 राज्यों में आज प्रचंड बारिश और आंधी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रियासी में जोरदार बारिश के बाद खोले गए सलाल डैम के दरवाजे, हालात पर प्रशासन की पैनी नजर। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच उफान पर आई कई नदियां, तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें। मध्य प्रदेश के बना में बारिश के चलते बदल गए हालात, उमरी गांव में धर्मपुर नाला पुल के ऊपर 2 फीट बहराया। बेगूसराय में भारी बारिश के चलते बढ़ गया गंगा नदी का कटान, कई मकानों के गिरने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। द्विवर्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री को ताशकंद में सेना के जवानों ने दिया सैल्यूट, साथ में राष्ट्रपति शौकत भी मौजूद रहे। ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार, कहा हिंदुस्तान को उन्होंने ताशकंद में जीवन करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां दी, कहा भारत और उज्बेकिस्तान इस साल 15वीं रणनीतिक साझेदारी के बना रहा है सालगिरह। राष्ट्रपति शौकत ने भारत को बताया स्थायी स्ट्रैटेजिक साझेदार। ताशकंद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उनको हेल्थ का संदेश, योग फेडरेशन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर, नमस्ते इंडिया का जबरदस्त नजारा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की पाठशाला में लोगों को टिप्स दिए, लोगों को बढ़ाया उनका हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देखिए भारतीय संस्कृति की शानदार झलक, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया, यहां हुए स्वागत को बताया अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, सूर्य पथ तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्त भारत का संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे का प्रोसेस हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का भी जिक्र किया, कहा मिशन शक्ति सेट से 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया, 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाई। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी शामिल हुए, साइकिल चलाकर हेल्थ के टिप्स। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, अतिथियों ने किया सम्मानित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल रैली, ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल हुए। सियासी के एनजी खड्डा ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ऊंचाई से दिखा शानदार नजारा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन शुरू। लखनऊ में अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में डॉक्टरों ने लॉन्च की आय डोनेशन कैंप। एक दिन की देरी ने बचा ली मानसरोवर यात्रियों की जान, चंडीगढ़ निवासी सीए और 20 दोस्तों ने साथी के बीमार होने के चलते टाल दी थी यात्रा। बागेश्वरी माता मंदिर के नजदीक पहुंचा शेर, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। नासा का नया स्पेस टेलीस्कोप रोमन हो गया लॉन्च, अब ये ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएगा। रोमन टेलीस्कोप धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर स्थित, यहां से ये अंतरिक्ष की बहुत साफ तस्वीरें निकालेगा। वैज्ञानिक अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझेंगे, रोमन पूरे ब्रह्मांड का बड़ा 3D नक्शा बनाएगा। रोमन की रफ्तार हबल से कई गुना ज्यादा होगी, 1 महीने में ये वो काम करके दिखाएगा। रोमन 2 अरब से ज्यादा आकाश गंगाओं का सर्वे भी करेगा। जापान के फुकुई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कसुयामा शहर में 24 घंटे में करीब 350 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। फुकुई ओनो और कत्सुयामा में केवल 5 का जारी हुआ अलर्ट। भारी बारिश के बाद जापान में जमीन खिसकने के बाढ़ का खतरा बन गया है, लोगों को नदियों और डूबे हुए इलाकों से दूर रहने की नसीहत। कई नदियों का पानी बढ़ गया और कुछ जगह बाढ़ का खतरा। इटली के कोस्टल गम्पोल्फो में पोप लियो ने लेक अल्बानो की पारंपरिक धार्मिक शोभा यात्रा में नाव से शिरकत की। चर्च में मैरी और जीसस की प्रतिमा के साथ जुलूस निकला। लेक अल्बानो में पोप लियो उसी नाव पर हुए सवार जिस पर मैरियम प्रतिमा मौजूद थी। शोभा यात्रा के बाद पोप ने लोगों को प्रेम, दान और क्षमा का रास्ता अपनाने का संदेश दिया। पोप लियो ने युद्ध से घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। फिल्म टॉक्सिक ने चौथे दिन भारत में करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया, फिल्म ने अब तक भारत में कमाया 190 करोड़। नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म के लिए पुराने अंदाज का टीजर किया जारी, फिल्म दिसंबर में होगी रिलीज। डिमांड के बाद थिएटर मालिकों ने फिल्म द ओडिसी को आईमैक्स स्क्रीन पर दोबारा किया रिलीज। टॉम क्रूज के फैंस के लिए शानदार खबर, एन हैथवे ने एक वीडियो जारी करके डेज ऑफ थंडर के सीक्वल को कंफर्म किया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने घर के पलों का वीडियो शेयर किया, फैंस ने डाउन टू अर्थ कहा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: बात करेंगे प्लास्टिक के कचरे से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी की। जिस प्लास्टिक को प्रकृति और पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उस पर दिल्ली का एक कपल अपने स्टार्टअप के जरिए कचरे में फेंके जाने वाले प्लास्टिक से सुंदर और इस्तेमाल लायक उत्पाद बना रहा है।

0: धरती के लिए अभिशाप सिंगल यूज प्लास्टिक का, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंक्रीट, आरसीसी या ग्रेनाइट पत्थर की तरह दिखने वाले ये बेंच और टेबल केवल एक बार इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जल, जमीन और हवा को दूषित करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार ही हो पाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के इस कपल ने प्लास्टिक कचरे को नया स्वरूप दे दिया, जो दिखने और इस्तेमाल में अपने मूल आकार और स्वरूप से ज्यादा खूबसूरत है।
1: दिल्ली में प्लास्टिक एक बेहद बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो प्लास्टिक के कचरे की अगर हम बात करें और अगर उस कचरे का इस्तेमाल दोबारा से किया जाए तो ये कचरा किसी के भी काम आ सकता है। खास तौर पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है बेहद ही फायदेमंद वाली चीज़ हो सकती है। जिस पर मैं बैठी हूँ ये उसी का एक उदाहरण जो है मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे पीछे भी और जिस पे मैं बैठी हूँ और आसपास भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएगी जो उसी प्लास्टिक के कचरे से जो है बनी है। इसकी जो शुरुआत हुई है उसी प्लास्टिक के कचरे से हुई है जिसको आप और मैं बेकार समझकर जो है फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बेंचेस जो है वो नज़र आ जाएगी, आपको टेबल नज़र आ जाएगी, आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें नज़र आने वाली है जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से जो है वो बनाई गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको जो है बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वापस से किया जा सके। आप इसको किसी भी ओपन स्पेस में रख सकते हो, चाहे इन बेंचेस का, इन टेबल का इस्तेमाल पार्क में किया जा सकता है, स्कूल में किया जा सकता है, किसी भी ओपन स्पेस में जो है इसको लगाया जा सकता है।
0: सड़क, पार्किंग, गार्डन और फर्श को मजबूत बनाने और सुंदर दिखने के लिए कंक्रीट या सीमेंट के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल होता है जिसे पेवर ब्लॉक कहा जाता है। इसको बनाने में भी अब प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होने लगा है।
1: तो आपको यहाँ पे पेवमेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे, आपको ये छोटे छोटे इस तरीके की जो टाइल्स जैसे दिखती है पेवमेंट ब्लॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। और ये सभी जो है रिसाइकल प्लास्टिक से जो है बनाया गया है, यानी जिस प्लास्टिक को आप और मैं इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं बेकार समझकर, उसी प्लास्टिक को जो है रिसाइकल करके, प्रोसेस करके इस चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में जो है बदला जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक किया जा सके।
0: कंक्रीट की पक्की सड़क के मुकाबले ये लचीली सतह बनाते हैं जिससे जमीन के धंसने पर भी इनमें दरारें नहीं आती हैं। भारी वजन पड़ने पर भी ये आसानी से नहीं टूटते। दिल्ली के रहने वाली सोनल और उनके पति ने प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल को अपना लक्ष्य बना लिया। एनआईटी कुरुक्षेत्र से मास्टर्स करने वाले पति पत्नी ने मिलकर एक कॉन्सियस नाम का स्टार्टअप शुरू किया जिसका मकसद प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें तैयार करना है जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों की सुविधा के लिए किया जा सके।
1: इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली के इस कपल ने जो इस वक्त मेरे साथ है, सोनल और वैभव मेरे साथ बैठे हैं। सोनल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि यह आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लेकिन प्लास्टिक कम नहीं होता, बट उसको थोड़ा सा कम करने की शायद आपने एक पहल जो है वो शुरू करी है।
2: डेफिनेटली प्लास्टिक में शुरुआत हमारी एक्चुअली कोइंसिडेंटली हुई थी। सो हम दोनों ने एमटेक किया एनआईटी कुरुक्षेत्र से, वैभव का मेजर था एनवायरनमेंट में, तो उसमें ही वॉज स्टडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज जो मेरा एक कॉन्शियस थॉट था टुवर्ड्स डूइंग समथिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, कोविड के टाइम पर शुरुआत करी स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पर हम देख रहे थे कि बहुत सारा सिंगल यूज प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ पीपीई किट्स या फिर मास्क कह लीजिए या फिर लोग वैसे भी पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो हमने एक कॉन्शियसली थॉट किया कि दिस इज़ आई फील द बेस्ट टाइम कि हमें कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए एंड ऑल्सो कि हम उसको कुछ कन्वर्ट कर पाएँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटिफाई कर सकें। सो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड।
0: शुरुआत में सोनल और वैभव ने प्लास्टिक के कचरे से घर सजावट का सामान बनाना शुरू किया था, लेकिन बाद में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उसी के इस्तेमाल पर फोकस कर लिया। यही वजह है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के लिए वो पिकअप सुविधा भी देते हैं।
2: प्लास्टिक का जो हमारा कलेक्शन का सेटअप है वो हम दिल्ली में बेस्ड एक स्टार्टअप है, सो हमारा जो भी कलेक्शन सेटअप है दैट इज़ इन दिल्ली एनसीआर। लोग हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट होके हमें प्लास्टिक देते हैं, वी प्रोवाइड अ पिकअप सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ एनजीओ पार्टनर्स हैं जो हमारे बिहाफ में वो कलेक्शन करते हैं और फिर हम उनके थ्रू सोर्सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा जो हमारे वेस्ट वर्कर्स होते हैं, कबाड़ी वाले भैया दीदी लोग होते हैं, सो हम उनसे भी सोर्सिंग करते हैं।
0: पिछले साल महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और गोपनीयता के लिए 1000 से अधिक विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए थे जिनको सोनल और वैभव की स्टार्टअप कंपनी ने एक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसमें करीब 5,00,000 किलो प्लास्टिक को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया।
3: ये महाकुंभ का ये जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हमने इस पे एक थॉट दिया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और महिलाओं को एक सेफ स्पेस मिलेगी चेंज करने के लिए उनको स्नान के बाद में। तो हमने वो चेंजिंग रूम्स बनाए 1,000, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम में लगभग 550 किलो प्लास्टिक को हमने इसमें रिसाइकल किया। 550 किलो तो लगभग 5,00,000 केजी तक हमने प्लास्टिक को इसमें रिसाइकल करके हमने चेंजिंग रूम्स बनाए इससे।
0: प्लास्टिक से होने वाला कचरा दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करने के बाद खुले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी यानी उर्वरता भी घट जाती है। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के नुकसान को गंभीरता से नहीं लेती, जिनको जागरूक करने का बीड़ा सोनल और वैभव ने अपने कंधों पर उठाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
13: ब्रह्मांड के कई नए रहस्यों का होगा खुलासा, नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप नैन्सी रेस रोमन। धरती से करीब 16,00,000 किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा रोमन। मथुरा से द्वारका और रामरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, बांसुरी मुकुट मोर पंख झूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी। हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल।

0: उज्बेकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर। यूरेनियम समेत कई क्षेत्रों में हुए अहम समझौते।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी।
0: और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। शहर भ्रमण पर निकलने पर भगवान सिद्धनाथ महादेव प्रदेश का सबसे बड़ा शिवडोला निकलता है खरगोन में। तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड द्वारा भी भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी गई। देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंचे हुए हैं। सबसे संवेदनशील शहर होने से 8 जिलों का पुलिस बल यहाँ पर तैनात। 350 सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई असुरक्षा ना हो। डीआईजी डीएम और एसपी सहित सभी अफसर यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, देखिए ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत बड़ी इसको गैदरिंग कहा जा सकता है। 58वां ये शिवडोला शुरू हुआ है। सिद्धनाथ महादेव की पालकी को बाकायदा पुलिस बैंड जो है सलामी देता है और उसके बाद ये पालकी निकलती है, महाआरती होती है और उसी के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें जुड़ते हैं। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर तमाम श्रद्धालु जुड़ते हैं। लगभग बता दें आपको 27 झांकियां, 9 नृत्य दल भी इसमें शामिल हैं। शिवडोला में जैसा कि जिक्र किया गया है 27 झांकियां, 9 नृत्य दल और 10 ढोलताशा नगाड़ा पार्टियां इसमें शामिल होती हैं और ज़बरदस्त तरीके से इन 27 झांकियों को निकाला जाता है। भगवान महाकाल को ये समर्पित होता है। आपको बता दें शिवडोला की सुरक्षा के लिए 1000 से ज़्यादा इस वक्त जवान भी तैनात हैं। पुलिस अधिकारी शुमार हैं, एसएएफ और क्यूआरएफ की कंपनियों के साथ 8 जिलों का पुलिस बल भी इसमें लगाया गया है। तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही और ये बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़ कर बस एक बार दर्शन कर लेना चाहते हैं और उसी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शिवडोला मार्ग पर करीब 350 सीसीटीवी कैमरे भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। 15 घंटे में करीब 4 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय किया जाता है, यानी बिल्कुल धीमे धीमे जो शिवडोला है उसको आगे बढ़ाया जाता है जिससे सुगम दर्शन हो सकें। सभी जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें शिरकत करते हैं। ये एक 15 घंटे तक का लगभग आप समझ लीजिए 4 किलोमीटर तक का जो दायरा है वहाँ से शिवडोला ये पूरी झांकियाँ निकलती हैं। उसके बाद देखिए भावसार मोहल्ला स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर ये लौटेगा, यहाँ महाआरती होगी और शिवडोले का फिर समापन हो जाएगा। 30 किलोमीटर के दायरे में 23, आपको ये भी बता दें शराब दुकानों को भी बंद करा दिया गया है क्योंकि बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। क्योंकि देखिए ना सिर्फ इसमें आपको पुलिस बल तैनात दिखेंगे बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की, अगर आप घरों में देखेंगे छतों में देखेंगे तो बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु इसमें जुटते हैं। सबसे बड़ा जैसा कि हमने जिक्र किया शिवडोला है। और आइए अब आगे देखते हैं स्वाइन फ्लू पर हमारी खास पेशकश।

नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज इसी को लेकर, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि नॉर्मल खांसी जुकाम नॉर्मल बुखार से ये कितना अलग है। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान होंगे हमारे साथ। दरअसल राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है। इसमें हालात को देखते हुए सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है, मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। तो स्वाइन फ्लू हर द्वार कैसे करे पलटवार, मॉनसून में सर्दी जुकाम क्यों हुआ आम, कैसे बढ़ाएं शरीर की इम्यूनिटी ताकि हम सेफ रहें, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स।

0: तो इस मॉनसूनी सीजन में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कहां कहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली, कर्नाटक समेत देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा केसेस हैं, तो वहीं दिल्ली की बात करें तो 1800 मामले। केरल तमिलनाडु में भी सांस में दिक्कत से जुड़े कई केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हालात पर लगातार नजर है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की है। मंत्रालय में राज्यों को जांच बढ़ाने और ऐसे मामलों के तुरंत उपचार की सलाह दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार की मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR का भी बयान आया है। उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू का कोई फिलहाल नया स्ट्रेन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार में भी H1N1 वायरस पर कई बैठकें हुई हैं। आज खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक बुलाई है। इस मॉनसून में सर्दी जुकाम के मामलों में इजाफा हुआ है, ये हर घर में सामने आ रहा है। और दिल्ली के अस्पतालों में भी फिलहाल आदेश ये दिए गए हैं कि बेड इसी को देखते हुए बढ़ा दिए जाएं। मरीजों की जांच को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि मई 2009 में देश में पहला मामला स्वाइन फ्लू का सामने आया था और दिसंबर 2009 से मार्च 2010 तक केस बढ़े थे। 2009 में WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। हालांकि 2010 की बात करें तो इसे वैश्विक महामारी की सूची से हटा दिया गया था, लेकिन 2014-15 में फिर से स्वाइन फ्लू के केस सामने आए और कई लोग इससे संक्रमित हुए थे। और इसके बाद 2019 में भी देश में कई मामले सामने आए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्वाइन फ्लू कभी खत्म नहीं हुआ था, कई साल इसका संक्रमण कम रहा जिससे केस नहीं बढ़े, पर अब इम्यूनिटी घटी है तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हर जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है, जिस पर सरकार और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं।
1: 25 टाइम 73 टेस्ट्स आर डन फॉर ऑल वायरसेस, सो वी नो एट एनी पॉइंट इन टाइम दैट विच वायरसेस आर सर्कुलेटिंग इन दीस हॉस्पिटल्स, बिकॉज दीस हॉस्पिटल्स आर बिग हॉस्पिटल्स, दे ड्रेन बिग एरियाज। So we, this is the sentinel surveillance that we are having. This is the syndromic surveillance. ऐसी syndromic surveillance हमारी diarrhea के लिए भी है, meningoencephalitis के लिए भी है, और fever without rash or with rash दोनों के लिए एक ही है। fever के लिए जो undifferentiated fever है, मतलब 5 दिन तक कोई और सिम्टम नहीं होता, सिर्फ बुखार होता। तो ये चार सिंड्रोम क्यों लिए हैं? क्योंकि ये चारों इम्पोर्टेंट हैं पब्लिक हेल्थ के हिसाब से और किसी भी आउटब्रेक के हिसाब से यही सिंड्रोम सबसे कॉमन है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो रेस्पिरेटरी सर्वेलेंस हमें दिखा रही है कि there is a lot of circulating H1N1 which is influenza A होता है, influenza B होता है, ये दोनों humans में होते हैं। तो जो influenza A में जो सबसे common हमें मिल रहा है, तो A सबसे common है, उसमें H1N1 सबसे ज़्यादा common है, और H3N2 जो है वो सिर्फ 2-3% है, बाकी 98% is H1N1। But in addition we are also finding some influenza B circulating which is of the Victoria type. देश में दो होते हैं पर आजकल एक ही सर्कुलेट करता है, पर वो प्रीडोमिनेंट नहीं है, प्रीडोमिनेंट H1N1 ही है। और तीसरा के SARS-CoV-2 जो कोविड के भी कुछ केसेस अभी तक थोड़े ज्यादा आ रहे थे और अब वो डिक्लाइन पर हैं, पर आ रहे हैं। देयर इज ए मिक्स ऑफ ऑल थ्री happening in the surveillance data that we are seeing. It is not a new strain. It is not a new virus that will cause anything very different. That is not what we, the picture we are seeing.
0: तो स्वाइन फ्लू के मामले दिल्ली में बढ़े हैं। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी अहम बैठक बुलाई और इसमें स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल रहे। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है और अस्पतालों में तैयारी पूरी रखी गई है।
2: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, लगातार देखा जाए तो तेजी के साथ H1N1 के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार की क्या तैयारी है?
3: देखिए, सरकार पूरी तरह सजग है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहे हैं हम पहले से सजग हैं हर चीज के लिए। हमने इसके लिए अलग से बेड, अलग से डॉक्टर, सबका व्यवस्था कर रखी है। कहीं भी कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब चीज कंट्रोल में।
2: एडवाइजरी जारी की है अस्पतालों को,
3: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी को हमने आगे एडवाइजरी दी है, वही सोशल डिस्टेंस, भीड़ों में कम रहना, मास्क पहनना, थोड़े समय के लिए इस चीज को एडवाइजरी जारी की है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है हमारे दिल्ली अस्पतालों में, आप जाइए इलाज कराइए और चीजें कंट्रोल में है। सबसे बेस्ट बात है कि अभी तक कोई भी सैंपलिंग का रिपोर्ट कहीं से नहीं आई है, पेशेंट आए इलाज करा के अपने घर गए।
2: नंबर कितने केसेस जो है अब तक?
3: देखिए H1N1 के 2308 केसेस हुए हैं और इन्फ्लुएंजा को मिला के लगभग 3000 केसेस हैं, जिसके काफी लोग के इलाज होकर अपने घर गए हैं।
0: तो चलिए, सरकार और प्रशासन लगातार दावा कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, हालात काबू में है, तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि बावजूद इसके इंस्ट्रक्शंस दी जा रहे हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड हों, मरीजों का टेस्ट लगातार किया जाए और उस हिसाब से उपचार हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हमने LNJP अस्पताल में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की।
2: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से आज एक अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है दिल्ली के तमाम अस्पतालों और एजेंसीज को लेकर के। ऐसे में जो 2000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर बढ़े हैं उसको लेकर के अस्पतालों में तैयारियां भी जो है वो तेजी के साथ इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। ये LNJP का स्पेशल वार्ड जो है वो H1N1 के लिए जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि फिलहाल यहाँ अभी पेशेंट जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी पेशेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज के हैं और खांसी जुकाम के सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं। हमारे सर LNJP के डॉक्टर हैं। सर, क्या तैयारियां हैं सरकार की, कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं फिलहाल LNJP के अंदर अभी?
4: जी, ऑलमोस्ट 0.5-1% के लोग जो है सर्दी खांसी और बुखार के प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। हमारे पास, हमने अभी 7 बेड का इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें 2 वेंटिलेटर भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम उनको यहाँ पर रखकर इलाज कर सकते हैं, फिर उनकी जांच के बाद उचित तौर पे इलाज किया जाएगा।
2: सावधानी बरतने की जरूरत है और अगर इस तरीके के जो सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर वो सिम्टम्स हैं तो उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से ये वार्ड जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि खासकर लोगों को हाई फीवर रहता है और ऐसे में फ्लूड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए ORS की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि लोग जो है वो पेशेंट अगर यहाँ पर आए तो उनको इस तरीके से क्या मेडिकेशन देना है वो सब तैयारी जो है वो की गई है। स्पेशल स्वाइन फ्लू का ये वार्ड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया और हर अस्पताल के अंदर इस तरीके के वार्ड तैयार करने की सरकार की तरफ से हिदायत जो निर्देश है वो दिए गए हैं।
0: और इस बीच बहुत अहम हो जाता है एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया इस पर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, एक बार उनको सुनते हैं।
5: तो H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेज आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी, और कुछ देर तक बुखार रहता है फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजली सी ड्यूरिंग।
0: तो राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू H1N1 के केस बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो जैसा अभी आप सुन ही रहे थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बताया कि 2300 से ज्यादा मामले इसमें सामने आए हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव बगई पद्मश्री अवार्डी हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर वली पद्मश्री अवार्डी अगेन, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा हैं, फॉर्मर CEO है ICRC के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वगई, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन को पहले क्लियर कर देते हैं डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल खांसी जुकाम, एक नॉर्मल बुखार, उसमें और स्वाइन फ्लू, दोनों में अंतर क्या है? एक आम मरीज किस तरीके से इसको पहचान सकता है? कौन सी वो स्टेज है जहां हमें लगे कि अब स्थितियां खराब है और अब हमें टेस्ट के लिए जाना है? क्योंकि बहुत से लोग एक नॉर्मल कोल्ड का, फ्लू में, बुखार में, वो डॉक्टर तक को विजिट नहीं करते हैं, एक पैरास्टामोल से अपना काम चला लेते हैं। डॉक्टर साहब ऑडियो म्यूट है डॉक्टर साहब,
6: सॉरी
0: जी।
6: जो हम अभी देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जो केसेस बढ़ रहे हैं जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, ये सीजनल फ्लू है। पहला पॉइंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो 2025 के एंड में जो इन्फ्लुएंजा था और इसमें बीच में कोई अंतर नहीं है, लीनियज में कोई अंतर नहीं है, कोई नया खास म्यूटेशन आया नहीं है। ये सीजनल फ्लू है, सेल्फ लिमिटिंग है। इसका जो लक्षण है बनिस्पत एनी अदर वायरल इन्फेक्शन जो थ्रोट को इफेक्ट करता है, पहले एक दिन दो दिन एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। जो तीन कार्डिनल चीज होती है, हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट, दूसरा सोर थ्रोट गले में दर्द, और तीसरा खांसी जुकाम, बॉडी एक एंड मायल्जिया हेडेक, वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है। उसके बाद पहले दो दिन खाली पैरासिटामोल काफी रहता है। आपको हॉस्पिटल जाने की कब जरूरत पड़नी चाहिए या डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, अगर आपका फीवर डे थ्री डे फोर क्रॉस करे, अगर आपका फीवर हाई ग्रेड हो 103-104, बॉडी एक और शिवरिंग ज्यादा हो, वॉमिटिंग लूज मोशन हो, पेट में दर्द हो या कोई रैश हो, छोटे बच्चों में अगर बच्चे का सेंसोरियम यानी कि बच्चे की अलर्टनेस कम हो, फीडिंग कम हो, तब डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करें। हर एक फीवर इन्फ्लुएंजा नहीं होता और हर एक इन्फ्लुएंजा का टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। 95-98% ये जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड इन्फेक्शन होती है, अक्सर देखा गया एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, ये आके ऑटोमेटिकली चले जाती है। इसका सिंपल प्रिकॉशन घर में रखना है कि अगर आपको कोई खांसी जुकाम बुखार गले में दर्द हो, कम से कम 5-7 दिन आप अपने आप को आइसोलेट करें घर में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 दिन रहता है, पीक 4th दिन होता है और इन्फेक्टिविटी पीरियड 8 और 10 दिन रहता है। तो कम से कम 7-8 दिन आप घर में रहिए, मास्क पहनिए, अपने आप को एक्सपोज मत करिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये बिल्कुल सेफ है। इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन 60-65% है, 80-85% प्रोटेक्शन है टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सिवियर डिजीज, स्पेशली बच्चों में, एल्डरली में, जिनको कोमॉर्बिड है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनको जरूर वैक्सीन लगाना चाहिए। बिल्कुल सेफ है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, रेडिली अवेलेबल है। इसमें जो हम कहते हैं एनुअल फ्लू शॉट उस प्रकार से दिया जाता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
0: ठीक,
6: इसका टेस्टिंग तब करना चाहिए जब डॉक्टर कहे। अगर आप टेस्ट पहले दिन ऑफ फीवर में कराएं, डे वन ऑफ फीवर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, ये टेस्टिंग का जो डिसीजन है वो डॉक्टर का होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा इस टाइम पर, सिंपल पैरासिटामोल काफी रहता है घर में। छोटे बच्चों में ज्यादा कॉफ सिरप नहीं देना चाहिए, वो ज्यादा हानिकारक है। कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स या कॉम्बिनेशन पेन किलर फीवर मेडिसिन नहीं देना चाहिए। निमोसिलाइड, एस्पिरिन, ब्रूफिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल होता है और इसमें कोई रोल एंटीबायोटिक का नहीं है,
0: ठीक है।
6: कोई होम रेमेडी का रोल नहीं है। सिंपल बेड रेस्ट,

0: की बात से ही आगे आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आजकल क्योंकि इसको लेकर हम चर्चा बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, नॉर्मल अगर फीवर की बात करें, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर वाली आप ही से सवाल है, नॉर्मल फीवर की भी अगर आजकल हम बात करें, वायरल जिसकी चर्चा अक्सर होती है, 7 से 10 दिन तक नॉर्मल लोगों को वायरल रहता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बगई ये कह रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है 4th-5th दिन तक अगर फीवर उतना रहता है तो फिर उसके बाद आपको टेस्ट के लिए जाना है। डॉक्टर साहब इस पर एक राय मैं आपकी भी जानना चाहूंगी।
1: हाँ नवजोत जी, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, चिंता का विषय बन गया है, मीटिंगें हो रही हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सर जोड़ के बैठा है, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब दिखा रहे हैं ना, पूछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बरसात तो अब आपे से बाहर हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अब हमारे यहाँ वो जो 3 ऋतुएं पढ़ाई जाती थी, जाड़ा गर्मी बरसात, वो नहीं हो रहा है। अब कभी भी बरसात है तो पानी को मत इकट्ठा होने दो, गंदगी को कम करो। और दो बातें मैं डॉक्टर बगई के साथ हूं, जो जो बताया उन्होंने, आई फुली एंडोर्स हिम। प्रेग्नेंट वेमेन के लिए भी वैक्सीन रिकमेंडेड है उनको भी। और सबसे जो बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों को बुखार आ रहा है उनके माँ बाप उनको स्कूल ना भेजें, नंबर वन। कोई आदमी मुझे सड़क पे 4-5 के अलावा 100 में ऐसा नहीं दिखता जो रेनकोट पहन के घर से निकल रहा हो, बारिश में भीग रहे हैं लोग, तो ये प्रोन कर रहा है स्वाइन फ्लू के लिए। और तीसरा सबसे बड़ी मुझे जो शिकायत है, लोग इसको भूल गए, संतरी को भूल गए, सिपाही को भूल गए, रक्षक को भूल गए, इसको मैं याद दिला रहा हूं, ये है मास्क, मेरा अपना स्वास्थ्य कवच, MASK, इसका मैंने नाम दिया था कोविड में, मेरा अपना स्वास्थ्य कवच। तो ये मास्क से हम बच सकते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाइए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताएंगे, डॉक्टर बगई जैसे डॉक्टर्स हमारे देश में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं सस्ती, अच्छी और हमेशा उपलब्ध हैं। हमारे डॉक्टर रात के 12-12 बजे फोन लेते हैं पेशेंट्स के, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। हमारे पेशेंट्स को चाहिए सेल्फ मेडिकेट ना करें, नंबर वन। नंबर टू, टीका के लिए उपयुक्त योग, जैसे डॉक्टर बगई ने अभी पॉइंट आउट किया है, वो सब टीका लगवाएं, एनुअल फ्लू शॉट लगवाएं, अभी वाला एक शॉट आ गया है जो और भी इम्यून अच्छा करता है, इन्फ्लुवैक के नाम से आता है, फ्लुवेरिक्स के नाम से आता है, वैक्सीग्रिप के नाम से आता है, ये सब है। तो ये वैक्सीन्स बहुत जरूरी हैं लगाने, और इनसे बचाव होगा, लेकिन सबसे जरूरी हमारा परम मित्र जो है वो मास्क है
0: जी।
1: मास्क पहली रुकावट है, पहला जेल का दरवाजा है, और मास्क जो है बैरियर है, मास्क हमारा दोस्त है, मास्क इससे मिलती जुलती सभी बीमारियों से बचाव है,
0: ठीक है।
1: और स्वास्थ्य स्टेट में भी लगाएंगे तो पोल्यूशन से बचाव है। जापान के लोग मास्क लगाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ये तो सीखा है हमने उनसे कोविड में, लेकिन हम भूल गए नवजोत जी, आप सही याद दिला रही हैं आज सबको। मैं सोचता हूँ कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से अभी भी बचना चाहिए।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटती हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा यहीं से, मास्क जरूरी है, डॉक्टर वली कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, यानी वन मास्क, नंबर टू सोशल डिस्टेंसिंग, और नंबर टू सैनिटाइज करना। क्या मतलब तमाम जो कोविड वाले नियम हैं, वक्त आ गया है कि उन्हीं को दोबारा फॉलो किया जाए, क्योंकि वायरस जो है वो बहुत देर तक सस्टेन करता है, तो ऐसे में क्या हमें उन्हीं नियमों को फॉलो करना चाहिए?
2: ज्योति जी, इसमें तो मेरे ख्याल दो राय हो ही नहीं सकती हैं। अब जब कोविड आया था 5-6 साल हो गए, अब तो 2000 से 2026 खत्म होने जा रहा है, उस समय का जो माहौल था, ये तो नहीं कि उस समय ये स्वाइन फ्लू नहीं था या और तरीके के सर्दी जुखाम नहीं होते थे, पर चूंकि उस समय हम लोग सब लोग सतर्क थे क्योंकि जान का भी खतरा था, और कहीं ज्यादा सीरियसली इन प्रिकॉशन जो हमारे डॉक्टर वली ने और डॉक्टर जी ने बोला कि मास्क लगा रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में थूक नहीं रहे हैं, अगर छींक रहे हैं तो उसके अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन ले रहे हैं, कॉफ कर रहे हैं तो उसका रास्ता रोक रहे हैं, ये 4-5 चीज जो हम लोगों ने करी थी, वो हम तो

0: चाहते हैं कि फिर से मे भी उतनी मात्रा में नहीं होगा कि भाई सब दुकानें बंद हो जाएं, ऑफिस बंद हो जाए, वो ऑब्वियसली नहीं है इस समय, पर जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो मेरे ख्याल से हम लोग को कंटिन्यू करने चाहिए कोविड वाले। और अभी भी जैसे कि डॉक्टर संजीव ने बताया कि कोविड भी चल रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है, बट ऑब्वियसली वो वाला हाल नहीं है पहले के मुकाबले में। रिलेटिवली बहुत नंबर कम है और साथ साथ में लोग बाय एंड लार्ज जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, और साथ साथ में डेथ्स भी उसकी वजह से ऊपर वाले का शुक्र है नहीं हो रही है। तो अगर चाहते हैं लोग कि किसी वजह से, जैसे लास्ट ईयर करीबन 270 डेथ्स 270 केसेस रिपोर्ट हुए थे इस पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू के, इस साल हमारे ऑलरेडी जैसे कि आप लोगों ने दिखाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि 2,500 के आसपास नंबर आ गया है, और इसमें से कई ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं करे जाते हैं, कम से कम 30-40-50% जो होंगे वो रिपोर्ट नहीं करे जाते हैं। आमतौर पे अगर इंडिविजुअल हेल्दी है इसकी वजह से बहुत सीरियस इशू नहीं आते हैं, डेथ नहीं होती है, बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में या कि बच्चों में या प्रेग्नेंट लेडीज में, खासतौर से जो भी ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उसमें खासतौर से आदमी को ज्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। और इन्फ्लुएंजा से डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, हमारे देश में भी होती है, लोगों को ये पता नहीं है, कहने को चाहिए सीजनल फ्लू है, सिंपल फ्लू है, वो बिल्कुल ठीक है, पर जिन इंडिविजुअल्स में ये इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है उसमें काफी मामला सीरियस हो सकता है। तो इसको हल्के में ना लें, पर ये भी नहीं कि इमीडिएटली आप पैनिक बटन दबा दें और फौरन जाके उसका बड़े महंगे महंगे टेस्ट कराएं। जो प्रिकॉशंस अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई अगर बहुत सीरियस मामला नहीं है, बुखार 3 दिन में हल्का फुल्का है ठीक हो जाता है, तो पैरासीटामोल लेके काम चला लें। पर आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि हमें क्या वही प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेरे समझ से यस।
1: बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति, अभी आजकल आप देख रही हैं कि जिस तरीके का वेदर है, हालांकि अलनीनो इफेक्ट है, एक दिन बारिश, एक दिन बहुत कड़क धूप, फिर बारिश, फिर धूप, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। काफी हद तक कहा जा रहा है कि यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक नॉर्मल फ्लू और हमें अब टेस्ट के लिए जाना है, बेसिक सिम्टम्स एक मरीज में कौन से होते हैं और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, और ये हर वर्ग के लोगों के लिए आप अलग अलग अगर बताएं, और अगर आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी आप अगर दे पाए हमें तो।
2: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर आज हम बात करें तो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो खांस रहा है, छींक रहा है, जिसे बुखार है, सर्दी है, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सबको H1N1 हो गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए जिस H1N1 की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है जो हम लोगों के बीच में आया है। कई सालों से यही स्ट्रेन हम लोगों को इन्फ्लुएंजा करता रहा है, सीजनल जो बीमारियां होती हैं इसकी वजह से सर्दी खांसी निमोनिया ये सब होता रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। अब जहां तक बात है, देखिए अगर नॉर्मल किसी को जो है सर्दी खांसी हो रही है या इन्फ्लुएंजा की हो रही है, तो शुरू के दिनों में कई बार बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि किस कारण से हो रहा है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर बगई ने भी बोला कि अगर किसी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, खांसी बहुत ज्यादा है, या किसी को बहुत ज्यादा लूज स्टूल्स वॉमिटिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये पेट के सिम्टम्स लेकर के भी सामने आ सकता है, या किसी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो ये ज्यादातर वो मामले हैं जहां ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये H1N1 पॉजिटिव हो सकते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को टेस्टिंग भी करानी चाहिए, ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलकर के जो ट्रीटमेंट है वो भी शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिंपल सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ा बुखार है, आपको लग रहा है घर में पैरासिटामोल लेके, थोड़ा एंटी एलर्जिक लेके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप तुरंत टेस्टिंग के लिए भागे या तुरंत आपको जो है कुछ इसके लिए स्पेशल मेडिकल केयर लेने की जरूरत है। लेकिन आपको डेफिनेटली घर में मास्क लगाने की जरूरत होगी, या घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चे हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको फिर भी करनी है, चाहे आपको H1N1 पता है या नहीं है। सिंपल आपको सर्दी खांसी भी हो रही है तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा जो बहुत जरूरी चीज इस वक्त है वो है हाइड्रेशन, यानी कि हम सब लोगों के लिए पानी अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों में, तो इस बात का खासतौर से ध्यान रखें। और अगर आपको पहले से अस्थमा है, कोई सांस की दिक्कत है, या पहले से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्या है, तो अगर आपके पास घर में नेबुलाइजर है तो उसको हैंडी रखिए, क्योंकि इस वक्त इनहेलर है तो उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे लोगों को अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो वल्नरेबल ग्रुप है। इनमें पूरी तरह से कई बार सिम्टम्स उभर करके सामने नहीं आते, इनको निमोनिया भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इस वर्ग को खासतौर से ध्यान रखना है और डॉक्टर से संपर्क करना।
1: बिल्कुल। अब डॉक्टर बगई मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। देखिए हालांकि डॉक्टर वली ने कहा है कि अगर जरा सा भी बच्चे में खांसी जुकाम कुछ भी लग रहा है तो उसे स्कूल नहीं भेजिए, लेकिन अब स्कूलों में भी क्या मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या आप उनके लिए रिकमेंड करेंगे, बच्चों को कैसे सावधानी बरतनी है?
3: मेरे ख्याल जो कोविड के जो हमें लेसन्स मिले हैं वो पिछले 2-3 साल में ज्यादातर पैन इंडिया लोग भूल गए। मैं 4 इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड 1 इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम या बुखार है उस दिन बच्चे को स्कूल मत भेजिए, हर दिन को आप रिव्यू करिए। अगर सर्दी जुकाम बुखार जैसे जस्ट अ पासिंग वायरल है, सीजनल वायरल है, सेटल हो जाता है तो अगले दिन या तीसरे दिन भेज सकते हैं। स्कूल के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन द चेयर्स एंड द बेंचेस जरूरी है। जो ये वायरस है H1N1 ये 7 फीट तक ट्रेवल करता है, ये माइक्रो एरोसोल है, ये एयरबॉर्न है, ये खांसी जुकाम स्नीजिंग के साथ फैल सकता है। दूसरी चीज है बच्चों को स्पेशली अगर पूरी क्लास को मास्क पहनने का एडवाइस देना चाहिए। तीसरी चीज हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। एक सिंपल चीज है कि आप एक हैंड सैनिटाइजर हर क्लास में रखें, बच्चे को दोबारा एजुकेट करें हैंड वॉशिंग के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली जो बाहर का खाना है ताकि बच्चे को लूज मोशन वॉमिटिंग ना हो, फास्ट फूड है वो अवॉइड करें, गुड न्यूट्रिशन दें, एडिक्वेट हाइड्रेशन दें। बच्चों में डिहाइड्रेशन क्योंकि फीवर के कारण, फीवर एक स्ट्रेस होता है तो जो बच्चे का जो फ्लूड लेवल होता है क्योंकि उनकी बॉडी रिजर्व्स कम रहती हैं वो जल्दी कम हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन के ज्यादा प्रोन होते हैं। सो कोई एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं देने, शुगरी ड्रिंक्स नहीं देने, सिंपल होम लिक्विड्स। इंपॉर्टेंट है कि आजकल दोबारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा रैम्पेंट है और जैसे ये वायरल इन्फेक्शन होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और होममेड डॉक्टर्स तो पूरी दुनिया में उभर आते हैं। जो केले का रस, करेले का रस, पपीता का लीव्स या लौकी का जूस, ये सब चीज इन्फ्लुएंजा को कोई असर नहीं करती है। इसके साथ बच्चे को और हानि हो सकती है, बेनिफिट नहीं होता। सिंपल पैरासिटामोल, नो डीकंजेस्टेंट, कोई कॉफ कोल्ड फीवर कॉफ कोल्ड की मेडिसिन नहीं देनी। डे 2 के पहले तो प्लीज टेस्ट कराइए मत, और अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। अपने आप एंटीवायरल प्लीज शुरू मत करिए। मैंने बहुत से एडोलेसेंट्स देखे हैं, यंग पेरेंट्स देखे हैं, वो एंटीवायरल जिसे हम कहते हैं ऑस्टेमिविर वो पहले शुरू करके आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एंटीवायरल्स वो खाली तब रिजर्व रखते हैं अगर कोई पेशेंट सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या हम पहले 48 आवर्स में इस दवाई को शुरू करें। घूमते घामते day 3, day 4, day 5 में आप ये शुरू करेंगे तो उसका कोई असर नहीं है। सो सिंपल मैसेजिंग की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। सिंपल मैसेज है प्लीज डू नॉट पैनिक,
1: पैनिक नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब एक लाइन और जोड़ दूं कि खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से ही आपको अपने बच्चे का इलाज शुरू करना या फिर अपना भी अगर इस तरह की सिचुएशन यहां पर आती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, बिना पैनिक किए किस तरीके से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना है और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना, इन सब पर चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का ब्रेक में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: Good news today.
2: स्वाइन फ्लू का बुखार क्या हो उपचार, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वली, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद भी यह है कि लोग पैनिक नहीं करें, और ये चीज हमने पहले भी देखी है, कोविड टाइम पे भी देखी है कि जरा सा खांसी जुकाम फीवर होता है वो थोड़े दिन और ज्यादा अगर एक्सटेंड हो भी जाता है तो लोग तुरंत से टेस्ट के लिए चले जाते हैं। अब अभी डॉक्टर बगे ने बहुत अच्छी बात कही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और जो खुद लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ये सबसे गलत है, डॉक्टरी सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को फीवर है, किसी को फीवर है, फीवर बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए?
6: डोज की बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। ठीक है, पैनिक तो होता है घर में भाई, उसको हम लोग डिफ्यूज करते हैं, पेशेंट तो करता है पैनिक, माँ करेगी बच्चे को स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी, क्यों नहीं करेगी? मैं एक बाप हूँ, आप एक माँ हैं, क्यों नहीं करेंगे? पैनिक है, बट पैनिक से पहले की सावधानी भी तो है, ये वाली ये जो सावधानी हम बता रहे तो इसको जरूरी करना है। ठंडा पानी ना पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, बाहर का खाना शायद बताया गया अभी ना खाओ, पेन किलर, हाँ पेन किलर वो वाले जो हम लोगों के मना होते हैं, जो ब्लड को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हम खास तौर से डेंगू में मना करते हैं, उस टाइप के नहीं लेने चाहिए। पैरासीटामोल बेस्ड पेन किलर्स लेने चाहिए, एक गोली की जगह 2 गोली ले सकते हैं अगर एक से फायदा होगा। और कोल्ड बाथ, ये ठंडे पानी से नहाना, ये बरसात में भीग के आ गए और फिर नहा लेना, तो ये अवॉइड करना चाहिए, ये सावधानियां हैं। मैं शुभ हूँ, ये क्यों होता है, हम लोग क्यों नहीं सीखते? कब तक नवजोत और डॉक्टर वाली, डॉक्टर बगाई और अपनी डॉक्टर साहिबा बताती रहेंगी हैं? ये हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम खाली बैठ जाएं, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वाली, डॉक्टर बगाई, पब्लिक इतनी समझदार हो जाए कि वो खुद हाइजीन प्रैक्टिस करे, खुद बीमारी से बचे, खुद एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे, अपने लंग्स को पावरफुल बनाए, और जागते समय मानता कोई नहीं नवजोत जी ये ट्रेजिडी तो यह है हमारे यहाँ, पढ़ लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री सबके पास है, मानेगा कोई नहीं। अच्छी बात बार बार याद दिला रहा हूँ, मास्क, ये मेरा मास्क है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और सबको करना चाहिए। दूसरे भीगने से परहेज, आपने बहुत अच्छी बात शुरू में बीच में सबने भी की है कि बरसात के मौसम की बीमारी, अब तो बरसात ही बेकाबू हो गई, आप इसे बाहर हो गई, आपने एल नीनो की बात कर ली, ब्रिलियंट, अब तो यही नहीं पता बरसात कब होगी, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से भी नहीं होती कभी कभी, तो बरसात में भीगने से परहेज करना है। ये मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, और मैं बहुत शुभ हूँ कि हम लोग जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे।
2: बिल्कुल,
6: और ये खैरियत है कि स्ट्रेन वेरिएंट जो है लाइट है, माइल्ड है, म्यूटेट नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो क्या करोगे भाई? तो उसका इंतजार मत करिए, आप अपनी सुरक्षा, हिफाजत, डिसिप्लिन, अनुशासन और समय से सोना, समय से उठना, ताजा खाना खाना, ये सब जनरल जो प्रिकॉशन है हेल्थ की प्रिकॉशंस तो लीजिए ना, उसमें ये भी आ जाएगा। उस अभी एक चैनल पे मैंने मलेरिया और डेंगू की बात करी है, वो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। अब क्या क्या नहीं हो रहा है बरसात में, एक तरफ हम भीग रहे हैं, दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग हो रही है, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। हमको अच्छी चीजें जो जानते हैं उनका पालन करना चाहिए। और मैं आखिरी बात ये कह के आपसे वार्तालाप का कटा कलाम करूंगा कि पीपल शुड नो अबाउट देयर सो मच दैट वी गेट अनएम्प्लॉयड। इतना अच्छा आप अपनी सेहत को रखिए कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े।
2: बिल्कुल, जिसको हम डॉक्टर साहब सरल शब्दों में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर मेहरोत्रा आपके पास आऊंगी। वैक्सीन की जब बात होती है, दो सवाल, पहली बात कब लगानी है, किसे लगानी है, और जो कोमोबिडिटीज वाले लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी जरूरी हो जाती है?
7: बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन जो है वो सिर्फ बच्चों को लगाने की जरूरत है, बड़ों को जरूरत नहीं होती है। तो छोटा सा एक फैक्ट, आई एम श्योर आपकी ज्यादातर जो व्यूअर है वो जानते हैं कि इन एडिशन टू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि हर हालत में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और क्रॉनिक डिजीज, यानी कि ऐसे डायबिटीज है या और कोई क्रॉनिक डिजीज है जिससे कि इम्यून सिस्टम कम होता है, कैंसर से पीड़ित लोग हैं या ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रही है, चाहे जिस उम्र के हों, उनके लिए ये अहम होता है। वैसे तो मैं कहूंगा हर एक को लगानी चाहिए, विदेशों में तो वो सब इंडिविजुअल्स को 17 साल के बाद कहते हैं कि ये वैक्सीन हर साल आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वैक्सीन जो आप जानते हैं, जिसको कि हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कैंसर की वैक्सीन बच्चों को लगती है 9-14 साल के बीच में, HPV वैक्सीन खासतौर से लड़कियों को, अब लड़कों के लिए भी लगने होगी जरूरत। साथ साथ में उम्र के साथ में 65 साल की उम्र के बाद खासतौर से न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जरूरी है। तो ये तीन वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल और तीसरा होता है शिंगल्स, यानी कि हर्पीस जोस्टर उसको बोलते हैं। तो ये तीन वैक्सीन बड़ों में भी लगाई जाती है, खासतौर से हर्पीस और न्यूमोकॉकल तो एल्डरली लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अधिकांश लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, पर धीमे धीमे करके अब लोग समझने आ गए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अभी वैक्सीन खासतौर से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पहले के मुकाबले में ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। और जैसे बात हो रही थी कि फॉर्चुनेटली ये वाला जो इस बार H1N1 है, ये वही स्ट्रेन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। और अगर ये जो आप लगाते हैं वैक्सीन, इसमें कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है, और एट द सेम टाइम इसको जितनी जल्दी आप लगा सकें, क्योंकि इसका असर आते
2: वही है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही लगाते हैं। इसका असर कितने दिन में होता है डॉक्टर साहब?
7: इसको 2 हफ्ते लग जाते हैं इसके असर आते आते, तो इसलिए जैसे आज आपको मालूम है कि डायग्नोसिस हुई तो उस समय लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये कायदे से तो पहले लगानी चाहिए। जैसे ये हर साल होता है कि बरसात शुरू हुई और ये कोविड, साथ में मलेरिया, डेंगी और H1N1 करीबन हर साल ये आते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि ये जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है हर आदमी को लगा लेनी
2: ठीक है। डॉक्टर स्वाति अब आपके पास आते हैं, डॉक्टर सब लौटते हैं, डॉक्टर स्वाति बहुत देर से इंतजार करिए डॉक्टर स्वाति, क्योंकि देखिए प्रिकॉशंस अब कहा जा रहा है बिल्कुल कोविड जैसी, आपको मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज खुद को करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं, खासतौर पर अगर इम्यूनिटी ठीक करनी है तो, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे ही सीधा निशाना लगाता है?
8: बिल्कुल, देखिए अभी डॉक्टर मेलिसा ने भी इस चीज के बारे में बात करी थी, क्योंकि हम एक तरफ जहाँ गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, वहीं क्या होता है कि हम जब बाहर से अंदर आते हैं, हम ऑफिस में स्टेप इन करते हैं, स्कूल पहुंचते हैं या हम घर आते हैं बाहर से गर्मी में, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एकदम चिल्ड वाटर पीने की कोशिश करते हैं या फ्रिज से निकाल करके एकदम ठंडा पानी जो है वो लोगों को चाहिए होता है या बच्चों को चाहिए होता है। ये एक हमारी प्रैक्टिस है जो हमें नुकसान देती है, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों के गले खराब होते हैं, सर्दी खांसी होती है, हमारा इम्यूनिटी लेवल ये डाउन करती है। तो एक तो हमें ये डेफिनेटली अवॉइड करना है कि अगर हम बहुत गर्मी से बाहर से आए तो एकदम से ठंडी चीजें नहीं लेनी है। दूसरा, अभी के समय में हमें कुछ जो फ्रिज की बहुत ठंडी चीजें होती हैं वो बच्चों के साथ इस वक्त अवॉइड करनी चाहिए। हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब चीजें आ जाए तब उनको दें। साथ ही जो मौसम के फल सब्जियां होते हैं इनका प्रयोग हमें जो है बढ़ाना है। इनको हमें बच्चों को भी खासतौर से सिखाना है कि कुछ फ्रूट्स जो है स्पेशली वो बच्चों के लिए भी खाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि स्विगी, जोमैटो, ये सब चीजों का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं या पेरेंट्स भी सहूलियत की वजह से बच्चों को ऐसा खाना परोस रहे हैं। तो ये हमें डेफिनेटली देखने की जरूरत है कि हम हेल्दी फूड बच्चों को और खुद भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इस चीज का खासतौर से ध्यान रखना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले बोला था कि अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं होगा तो इम्यूनिटी लेवल भी वो प्रभावित करता है। तीसरी चीज, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम इस वक्त जो भी चीजें हम जैसे बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। जैसे वैक्सीन के बारे में अभी बात करी गई, तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या खासतौर से जो वल्नरेबल ग्रुप है वो वैक्सीन लगवाए, लेकिन अगर किसी को बुखार हो रहा है या H1N1 हो गया है तब आप डेफिनेटली ये वैक्सीन मत लगवाइए। इस बात को ध्यान रखिए कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि अगर किसी को H1N1 है या आज मुझे सर्दी खांसी हो गया है तो मैं सोचूं कि आज ही वैक्सीन लगवा लेती हूँ तो मुझे H1N1 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये पहले से प्रिवेंटिव के तौर पर लगानी है कि अगर ताकि एक आपको इससे इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन दूसरा कई बार वैक्सीन के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन होता है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये हमने कोविड के साथ भी देखा था। लेकिन एडवांटेज ये है कि तब आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि अगर इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीन के बाद तो वो बहुत सिवियर नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह फॉल नहीं होंगे, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन एक अच्छी चीज है, और खास तौर से जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, लंबे समय से पर है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, ये खास तौर से ऐसा वर्ग है जिनको वैक्सीन डेफिनेटली लगवाना चाहिए। सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए इस वक्त बैठ के कि लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो उनको डेफिनेटली लगवाना चाहिए। और वहीं बच्चों का वर्ग भी एक ऐसा है, क्योंकि बच्चों में बहुत तेजी से स्कूल में ये मामले फैलते हैं और बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आपने कहा करना बहुत मुश्किल होता है, तो बच्चों को भी ये वैक्सीन जो है पेरेंट्स को इस वक्त लगवानी चाहिए। और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ओपीडी में भी जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत सिक पेशेंट्स नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको बुखार है, सर्दी खांसी है और हम थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो 2-3 दिन में लोग घर में ठीक हो रहे हैं। इसलिए पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कोविड के समय में ऑक्सीजन बहुत फॉल हो रहा था, लोगों को हॉस्पिटल में बहुत हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था, ये सिचुएशन अभी नहीं है। इसलिए डेफिनेटली हम थोड़े से जैसे आपने कहा प्रिकॉशंस अगर रखें और इन बातों का ध्यान रखें जो यहां सभी लोग बता रहे हैं तो हम आसानी से जो ये इन्फ्लुएंजा का अभी वेव आया है इसको क्रॉस कर जाएंगे।
2: बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब, विटामिन सी कितनी इम्पोर्टेंट है ऐसे समय में?
8: डेफिनेटली देखिए, विटामिन सी जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध विटामिन सी खाने लग जाए। वो मौसम के फल सब्जी आते हैं, अगर आप उनका ही सेवन करें तो आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा। तो थोड़ा, लेकिन बस वही है, देखिए अगर हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाएंगे तो हमें कोई भी विटामिन नहीं मिलता, सी तो बहुत दूर की बात है।
2: बिल्कुल,
8: तो इसलिए अगर हम जब तक फल सब्जियां नहीं खाएंगे वो हमें नहीं मिलेगा।
2: बिल्कुल, आखिर में डॉक्टर बगई क्या नहीं करना है, क्योंकि डूज तो हम सब जानते हैं लेकिन डोंट को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं।
9: तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये समझना जरूरी है कि ये सीजनल फ्लू है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट नंबर टू, होम रेमेडीज, अलग अलग प्रकार के फल के या छिलकों का रस पीना बिल्कुल हानिकारक है। तीसरी चीज, मेडिसिन्स जैसे आइबुप्रोफेन, निमोसिलाइड, एस्पिरिन, प्लीज हाथ मत लगाइए। अगर फीवर है कैलकुलेटेड डोज, अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं क्योंकि वो कम डोज देते हैं पैरासीटामोल की, डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे पर हिसाब से कैलकुलेट करके आप पैरासीटामोल दीजिए, केवल पैरासीटामोल। तीसरी चीज, एंटीबायोटिक अपने आप मत शुरू करिए, अपने आप टेस्ट के लिए मत भागिए, एंटीवायरल बिल्कुल मत भागिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाइए और बाबा एंड गुरु की बात बिल्कुल मत मानिए।
2: ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी। सावधानी क्या है, बचाव के लिए क्या कुछ आपको करना है? हैंड सैनिटाइज जरूर करिए, खांसते छींकते समय मुंह नाक को ढकिए बार बार, आंख नाक मुंह को छूने से बचिए, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है ऐसे समय भी, भीड़ वाली जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो मास्क मस्ट हो जाता है, और लक्षण दिखने पर कोशिश करें कि घर पर ही रहें, फ्लू के लक्षण दिखने पर दूसरों से भी दूरी बनाए रखें।
10: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली के सांस्कृतिक मंच पर एक बार फिर भक्ति प्रेम और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजधानी के सबसे फेमस कमानी ऑडिटोरियम में डांस ड्रामा कृष्ण एक बार फिर परफॉर्म किया जा रहा है। 5 दशक का सफर पूरा कर चुके इस चर्चित डांस ड्रामा का मंचन जो है जन्माष्टमी तक यानी 4 सितंबर तक किया जाएगा। इस विशेष 50वें वर्ष के संस्करण में कृष्ण के गोकुल और वृंदावन के दिनों से लेकर राधा कंस वध और महाभारत के विराट प्रसंग तक की कथा मंचन उतारी जाएगी।

0: घुंघरुओं की झंकार, रंगों की फुहार, मंच पर साक्षात उतरते भगवान द्वारकाधीश। ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध कमानी ऑडिटोरियम की हैं, जहां रामलीला के तर्ज पर मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण का भव्य आगाज हो चुका है। भक्ति और कला के अद्भुत संगम से भरपूर 50 सालों से चला आ रहा मशहूर डांस ड्रामा कृष्ण अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में फिर से लौट आया है। अपने 50 साल पूरे करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर छू रहा ये शो कृष्ण जन्माष्टमी यानी 4 सितंबर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।
1: तो सब जानते हैं ये पहली बार किया हमने करीब 20-25 साल पहले। हम चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कृष्ण की जिंदगी के बारे में, तो अब वो चीज ही नहीं है कि जो लोग जाते हमने वो रखे जो लोग नहीं जाते। उदाहरण के लिए जैसे गांधारी का शाप इत्यादि मौजूद है, और दायकों और बाएं के स्टेज में उसमें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसे अगर लोग हिंदी ना समझ पाए तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद है।
0: इस डांस ड्रामा में दर्शक न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की मनमोहक झलकियां देखेंगे, बल्कि कृष्ण जन्म से लेकर बाल लीला, अलौकिक रास लीला और महाभारत में गीता के सार तक जीवन के हर पहलू का ज्ञान सीख सकेंगे।

0: पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के निर्देशन और शशिधरन नायर की कोरियोग्राफी में तैयार ये शो कृष्ण जन्म से लेकर महाभारत की गीता सार तक का सफर तय करता है। शास्त्रीय नृत्य, अद्भुत सेट और लाइट इफेक्ट्स, हाथ से बनी भव्य पोशाकें और अनूठे लाइफ स्टेज डिजाइन का एक ऐसा संगम जो दर्शकों को सीधा द्वापर युग में ले जाता है।
1: जो है ये पूरे श्री कृष्णा की कथा 2 घंटे 15 मिनट में बताती
2: है।
1: पूरा ट्रेडिशनल फॉर्म में है, वो ट्रेडिशनल नहीं जो हम बरसाना में या नौटंकी टाइप का देखते हैं। ये पूरा क्लासिकल डांस नृत्य संरचना है, डांस ड्रामा है। इसमें हम कृष्ण जी के जन्म से उनके विश्व रूप तक दिखाते हैं। तो इसमें हम महाभारत भी दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में जो भगवद गीता का उनका उच्चारण था, जो कृष्ण उन्होंने सिखाया, जो हम आजकल की चाहते हैं कि हम भगवद गीता को आज के दिन में इसको हम अडॉप्ट करें, वो हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं।
0: आज के आधुनिक दौर में युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जीवन के मूल्यों से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। 4 सितंबर तक चलने वाला ये सांस्कृतिक महाकुंभ इस जन्माष्टमी को और भी खास बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्ति, कला और ज्ञान के इस अनूठे अनुभव के साक्षी बनना चाहते हैं, तो दिल्ली का कमानी ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर, द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वीं ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ, बुंदेली संस्कृति की झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। खरगोन में निकलिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला, पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उज्बेकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों को मजबूत करने पर जोर, यूरेनियम समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते। ब्रह्मांड के कई नए रहस्यों का होगा खुलासा, नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेक्नोलॉजी। नैन्सी ग्रेस रोमन धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा रोमन।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राजशुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों से जुड़ी हुई। नंद के लाला, यशोदा के कान्हा, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, पूरे ब्रजमंडल में अभूतपूर्व हर्षोल्लास का माहौल है। देश भर में अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी के रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में इस बार विशेष उत्सव की तैयारियां हैं।

0: नंद के लाला, यशोदा के कान्हा, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में है। लेकिन इस मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा का रंग सबसे अलग और सबसे जुदा रहने वाला है। इस खास मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर समेत पूरे ब्रज मंडल में अभूतपूर्व हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक और अद्भुत रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसलिए जन्म स्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए, ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र, पुष्प, वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है। इस विशेष मौके पर कन्हैया जी को अत्यंत दुर्लभ और नैनाभिराम पंचरत्नी पोशाक पहनाने की तैयारी है, जिसे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 प्रमुख और पवित्र रत्नों के जरिए सजाया और सवारा जा रहा है।
1: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। श्री ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: ब्रजभूमि में इस बार जन्माष्टमी का महापर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन आस्था के एक नया इतिहास रचने का महासंगम बनने जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने दिव्य रजशिला का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद जैसे ही रजशिला मणिराम दास छावनी पहुंची, हजारों भावुक संतों और भक्तों ने पुष्प वर्षा के साथ उसका वंदन किया। भक्ति भाव से सराबोर इस रजशिला को सबसे पहले माँ सरयू की गोद में पावन स्नान कराकर महाआरती अर्पित की गई, फिर वीर हनुमान जी के श्री चरणों में नतमस्तक कराकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पवित्र माटी का स्पर्श कराकर संकल्पित किया गया है।
2: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए रजशिला का पूजन किया गया। सभी संत भगवान ने पुष्प वर्षा की और सरयू नदी के किनारे ले जाकर वहां पर उस ऐतिहासिक आरती का साक्षी उस रजशिला को बनाया गया। फिर हनुमानगढ़ी आए, हनुमानगढ़ी में परम पूज्य हम सबके आराध्य हनुमान जी के चरणों में रजशिला को रखा गया। उसके बाद में श्री राम मंदिर गए, वहां पर सभी श्रद्धालुओं की जो रज थी, चरणों की रज को रजशिला में लगाया गया। उसके बाद में पूरा विधि विधान से संत भगवान ने पूजन किया।
0: पूरे ब्रज मंडल में जहां तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, वहीं वीरांगना नगर झांसी जन्माष्टमी से पहले कृष्णमय हो उठी है। इस्कॉन की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के स्वर्णिम अवसर पर शहर में अलौकिक हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। हरे कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई इस भव्य यात्रा में भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि हर कोई इसमें बहता चला गया। ढोल और मंजीरों के धुन पर गूंजता हरे कृष्ण का महामंत्र वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा भर रहा था। इस दिव्य यात्रा का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण था फूलों से सजा ये भव्य रथ, जिस पर श्री श्री नेताई गौर सुंदर और इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह विराजमान थे। सड़कों पर जहाँ जहाँ से ये रथ गुजरा, लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भगवान का आशीर्वाद लिया।
3: तीन दिवसीय क्राफ्ट मेला मैदान में भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। 2 तारीख को युवाओं का महोत्सव यूथ फेस्टिवल होगा, 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।
0: हरे कृष्ण मंदिर से शुरू होकर पूरे झांसी नगर को भक्ति रस से सराबोर करने के बाद यह संकीर्तन यात्रा वापस कौन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा ने झांसी वासियों के दिलों में जन्माष्टमी के महापर्व की भक्तिमय अलग जगा दी है। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में पूरे उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ झांसी से अजय झा, गुड न्यूज टुडे।
4: देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ जी महाराज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जब नगर भ्रमण पर निकले तो जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर उतर आया। तस्वीरें देखिए, खरगोन की सड़कें केवल रास्ता नहीं बल्कि भक्ति की अविरल धारा बन चुकी हैं। हर साल सावन महीने के दौरान भगवान सिद्धनाथ महादेव की भव्य नगर यात्रा शिव डोला उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में आकर्षक झांकियां, अखाड़े और ढोल धमाकों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं।

0: देखिए, आज शिवडोला के अवसर पे मैं सभी नगरवासियों को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है और भक्तिमय माहौल है, और जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, मुझे सेवा और त्याग का जो है कि यहाँ पे अवसर दिख रहा है, लोगों में वो भावना दिख रही है और एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन और शिवडोला समिति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए।
1: बात करते हैं महोबा में चल रहे ऐतिहासिक कजली मेले की। 12वीं शताब्दी के चंदेल साम्राज्य की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक कजली मेले का भव्य आगाज हो चुका है। इस मौके पर शहीद स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा में वीर आला उदल की झांकियां देखकर पूरा महोबा जयकारों से गुंजायमान हुआ। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों पर सवार वीर आला उदल, राजा परमार और राजकुमारी चंद्रावल की झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। 50 से ज्यादा घोड़ों के अनूठे नृत्य को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस मेले का इतिहास सन 1182 के उस गौरवशाली युद्ध से जुड़ा हुआ है, जब राजकुमारी चंद्रावल कीरत सागर पर काजलिया विसर्जन के लिए जा रही थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला कर दिया था। तब वीर आला उदल ने भीषण समर में दुश्मन को धूल चटाकर राजकुमारी की रक्षा की थी। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में महोबा में आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन कजली मेला यानी विजय पर्व मनाया जाता है।
2: ये कजली मेला में परमाल की सिंह की राजा परमाल सिंह की बेटी राजकुमारी के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। आज ये कार्यक्रम भव्य रूप से महोबा में मनाया जाता है और अच्छा कार्यक्रम, लाखों की संख्या में कजलियां, हाथी घोड़े ऊंट और सभी क्षेत्र के लोग बाग इसको अच्छे ढंग से मनाते हैं।
1: आइए आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर माँ गंगा अपने पुत्र श्री हनुमान जी का अभिषेक करने खुद पहुंचती हैं। जी हाँ, संगम तट पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे ही माँ गंगा का पानी मंदिर तक पहुंचा, विधि विधान के साथ यहाँ माँ गंगा का स्वागत किया गया। माँ गंगा की भव्य आरती की गई। इसी के साथ मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए।
3: संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद माँ गंगा मंदिर तक पहुंच गई। और यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं, जहां पर माँ गंगा अपने पुत्र बजरंगबली को स्नान कराने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहां पर सीढ़ियों से प्रवेश कर रही हैं और बजरंगबली यहां पर शयन को जा रहे हैं। ये दुर्लभ क्षण है और इस दुर्लभ क्षण के लिए यहां पर लोग सालों से इंतजार करते हैं, जब हर वर्ष माँ गंगा यहां स्नान कराने के लिए आती हैं और ये सीढ़ियों से जो गंगा जला रहा है और माँ गंगा का स्वागत किया गया, पूजन किया गया, इसके बाद माँ का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उस क्षण का इंतजार करते हैं।
3: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल स्तर जब बढ़ा, तब एक अत्यंत दुर्लभ, अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। माँ गंगा ने स्वयं संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अपने पुत्र बजरंगबली को पावन स्नान कराया।
5: गंगा माई हर साल हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही जाते हैं। पहले बार आए गंगा जी, वो आपस दीवार से लौट गए, दोबारा गंगा जी आए, वो आज बहुत भाग्यशाली हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही गंगा जी प्रवेश करते हैं, फिर लौटते हैं।
4: आज बजरंगबली शयन में चले गए
5: हनुमान जी, आज जो है शयन में जल शयन कर गए हनुमान जी। हर साल होता है, प्रतिदिन हर साल गंगा जी स्नान करा के ही आते, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा दुर्लभ है कि गंगा जी स्नान।
3: जैसे ही देर रात माँ गंगा की पवित्र धारा मंदिर के गर्भ गृह तक पहुंची, पूरा परिसर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा।
6: गंगा मैया की जय, गंगा माता की जय।
3: धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को माँ गंगा ने आगोश में ले लिया। मंदिर के महंत और साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा का स्वागत किया। दूध, दही, घी और पंचामृत अर्पित कर माँ गंगा का अभिनंदन किया गया और भव्य आरती उतारी गई।
6: जी, गंगा मैया का सबसे पहले पंचामृत द्वारा और दूध, दही, शहद और पंचमेवा के द्वारा अभिषेक किया गया है। गंगा मैया को अभिषेक करने के बाद, दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण किया गया है, नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया गया है, दीप द्वारा आरती उतारी गई है, गंगा मैया की स्वागत में आरती उतारी गई है और वस्त्र अर्पण करके, प्रसाद अर्पण करके भक्तों को वितरण किया।
3: मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अलौकिक और दुर्लभ क्षण के बाद परंपरा अनुसार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6: बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जिसका प्रयागवासी लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि अब नहाएं हनुमान जी महाराज का वो, लेकिन आज गंगा मैया ने अपने पुत्र का जलाभिषेक कर दिया है तो देश में तरक्की, खुशहाली और समुद्री सुख समृद्धि आएगी।
3: प्रयागराज की पावन धरती और त्रिवेणी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि करोड़ों भक्तों के अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। दुनिया में हनुमान जी की खड़ी या बैठी प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संगम तट पर विराजे बड़े हनुमान का स्वरूप सबसे निराला है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान की प्रतिमा न केवल अद्भुत है, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम यानी शयन मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल जब तक गंगा का जल स्तर नहीं घटेगा तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जल स्तर घटने और मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद ही बजरंगबली के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। तब तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे।
4: गंगा जी का पानी इस गर्भगृह में जा रहा है और माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आई है। बजरंगबली यहाँ पर शयन कर चले गए हैं। अब मंदिर बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद जब गंगा जी का पानी वापस आएगा तो इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करते हैं दिल्ली में हुए एक अनोखे इवेंट की। फिट इंडिया मुहिम के तहत रविवार की सुबह राजधानी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक अनोखे उत्साह का गवाह बना। तस्वीरें दिखी, अवसर था संडेज ऑन साइकिल आयोजन का, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने पैडल मार कर न सिर्फ फिटनेस बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जबरदस्त संदेश दिया। फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस विशाल साइकिल रैली में बच्चों और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस आयोजन में आगामी ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस खास आयोजन में टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और पहलवान संग्राम सिंह भी पहुंचे।
7: जितना हम स्ट्रांग रहेंगे और आज के जमाने में जो ये स्क्रीन का जो जमाना है, जितना हम ऑडियंस रहेंगे, जितना ऑडियंस रहेंगे, फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिटनेस को अपना ही जिंदगी का एक पार्ट बनाएंगे, उतना ही बेहतर हमारा देश बनेगा, उतना ही बेहतर हम निर्णय ले पाएंगे। तो इसको आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सिर्फ एक इवेंट के नजरिए से नहीं लेकिन एक मूवमेंट के नजरिए से देखिए और मूवमेंट बनाइए।
8: संसार तब तक चलेगा जब तक आपका शरीर चलेगा, और आपका शरीर तब तक चलेगा जब आप हर रोज एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे और घर का बना हुआ खाना खाओगे। तो हमेशा हर रोज वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ। मैं एक मैसेज हमेशा देता हूँ, आज भी तुम्हारे आपसे सर से मैंने बहुत सीखा डिसिप्लिन कि भाई खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना हो गए फिट आप।
1: नेपाल में आई आपदा के बाद अब पूरी ताकत जो है जिंदगी बचाने में झोंक दी गई है। सेना, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मिलकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पहाड़ों के मलबे को चीरकर अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि वक्त बीतने के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब भी हजारों लापता लोगों की तलाश जारी है। आपदा के इस खौफनाक मंजर के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंसान के हौसले और एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है।

0: और आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। रसुवा में आई आपदा के अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े इलाकों में मलबा पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग लापता है, लिहाजा तलाशी अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। त्रिशूली और नुवाकोट सहित सभी प्रभावित इलाकों में मशीनरी निरंतर काम पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी को पटरी पर लाने में आसानी हो।
1: अभी पहला मकसद तो ये रास्ता है ना, ये आगे जाने के लिए बना रहा है, और दूसरा तो ये जो घर है उसमें सही सामान निकालने के लिए चल रहा है।
0: ये तस्वीरें ढूंगे गांव की है, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांव और इलाकों में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके। इन पहाड़ी इलाकों में आपदा से सड़कों को बेइंतहा नुकसान हुआ, लिहाजा पहले दिन से हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में अब नेपाल के नुवाकोट से अब तक का सबसे बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। नेपाल के बाद प्रभावित पहाड़ी इलाकों में कीचड़ के सैलाब और मलबे के कारण सड़कों का तकरीबन सफाया हो चुका है। ऐसे में दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल के बाद प्रभावित कई इलाकों में बार बार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खास तौर से बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली वन में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सके, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किस संकेत का पता चल सकेगा। सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए भारत से भी एक्सपर्ट्स की टीम और जरूरी तकनीकी सामग्री भेजी गई है।
2: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been 4 different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue, and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: Nepal mein aapda se prabhavit ilakon mein mission zindagi full speed mein jari hai. मकसद यही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों की तलाश की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यही फिलहाल इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: सोना धातु किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, लोहे का प्रयोग करने से जीवन में किस तरह का फायदा हो सकता है, अलग अलग धातुओं के क्या हैं लाभ और क्या है प्रयोग विधि, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे अलग अलग धातुओं की और उनके अलग अलग प्रयोग की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के लिए लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, अलग अलग मेटल्स के बारे में। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हर धातु अपने आप में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब आप धातुओं का सही प्रयोग करते हैं तो तुरंत लाभ होना आरंभ हो जाता है। और धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं कड़ा पहनकर या छल्ला पहनकर। यानी आपके संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसकी तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं, और अगर सही धातु का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, यानी सोने की। इसका प्रभाव और इसका महत्व जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली धातु सोना है। सोना यानी गोल्ड का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, हालांकि कई जगहों पर इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। जब आप सोने का प्रयोग करते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर ये सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सामान्यतः ये धातु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देती है। जो लोग शनि प्रधान लोग हैं, ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने से ज्यादा लाभ नहीं होता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं तांबे की, यानी कॉपर की। तांबे का महत्व क्या है? तांबा जो है, इस धातु का गुण जल और अग्नि का मिला जुला गुण है इसके अंदर। आम तौर पर ये औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है, और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेशन पर असर डालता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा आम तौर पर शुभ नहीं होता। तांबा आम तौर पर इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहता है। अब बात करते हैं लोहे की, यानी आयरन की। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ज्योतिष में लोहे का संबंध जोड़ा जाता है शनिदेव के साथ। ये शनिदेव की धातु मानी जाती है, और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, हड्डियों पर, बालों और कोशिकाओं पर असर डालता है। लौह धातु, लोहा जो है, ये मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है ये धातु, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा बहुत अनुकूल नहीं होता है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बात करते हैं स्टील की, स्टील के गुण क्या हैं? देखिए, स्टील के गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु मानी जाती है। स्टील का संबंध दुर्घटनाओं से, संचार से और शक्ति से होता है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटना हो, इन्फेक्शन की, कम्युनिकेशन की बीमारी हो या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। स्टील का छल्ला बनवाकर अगर आप मिडिल फिंगर में पहने तो राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी जो है ये धातु अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाली मानी जाती है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। चांदी का प्रभाव या इसको धारण करने का प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है। ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आम तौर पर चांदी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देती। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, काम की अधिकता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। पीतल की बात करते हैं, ब्रास की, ये जो धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, शुद्ध रूप से फायर एलिमेंट की धातु है, और इसके अंदर कुछ अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इसका असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर सीधा पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को पीतल का प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पित्त की समस्या से परेशान है, ज्यादातर हाइपर एसिडिटी किसी व्यक्ति को होती है, और वो अगर पीतल धारण करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आप कोई भी धातु इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसका छल्ला बनवा लीजिए, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एक छल्ला बनवा के मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में आप पहनिए। थोड़ा मोटा और भारी छल्ला हो तो आपको लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग धातुओं के प्याले, कटोरी या कप होने चाहिए, और उसमें रात भर आप पानी भर करके रख दीजिए, और सुबह उठ करके उस पानी को आप पीजिए। खासतौर से तांबे के पात्र में ये बात ज़्यादा अप्लाई होती है। इस तरीके से भी आप उस धातु का फायदा उठा सकते हैं। रविवार को किसी भी समय गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर आप हर रविवार को ऐसा करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का सूर्य मजबूत होगा। कि अगर आपको शिक्षा में खूब सफलता चाहिए तो क्या करेंगे, सफेद रंग की सरस्वती माता की एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, रोज सुबह पीले फूलों से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान मिलेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बस देखते जाइए इनकी हरकतें, पूरी मौज में हैं। इन्हें पता है कि लोग यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं, सो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। फोटो क्लिक करनी है तो करो ना, मैं पोज दे तो रहा हूँ। नन्ना हाथी सैलानियों के सामने जिस तरह से अजीब अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, जानवर के हों या इंसान के, ऐसी शरारतें करते क्यूट ही लगते हैं। नन्हे हाथी का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। पेड़ में लगा ये फल इन्हें चाहिए, लेकिन ये है कि हाथी नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है, कभी मुंह से कभी हाथ से। ये लोहे का बैरियर न होता तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही कहाँ है। डॉगी जिस तरह से उस फल को खाने के लिए बेसब्र दिखता है और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, वो देखना दिलचस्प है। लगता है स्कूल में कोई फंक्शन है, अब सुंदर तो दिखना पड़ेगा, पर घर में क्रीम लगाना भूल गई शायद। बाइक में लगा आईना देखा तो एकदम से याद आया, या फिर शायद घर में क्रीम लगाने की मनाही हो। मसला चाहे जो भी हो, सड़क पर जिस तरह से हाल हो रहा है वो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे को नहीं पता था कि उसे आईने के अलावा भी कोई देख रहा है। जैसे ही नजर कैमरे पर पड़ी शर्मा गई। बच्चे के इस नेचुरल मुस्कान पर लोग दिल हार रहे हैं। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन दोनों ही माँ पापा के पैसों पर डिपेंड है तो यही होता है। बहन ने भाई को राखी बांधी, गिफ्ट मांगा तो भाई ने माँ की तरफ देखा। माँ ने पैसे दिए तो सही, लेकिन बहन के हाथ में आते ही फिर लपक लिया। आखिर इस छोटी सी उम्र में पैसों का करोगी क्या, संभाल कर रख देंगे हम, ये तो चीटिंग है ना। बच्चों का चेहरा देखिए जरा, मासूम बेचारे। ये वीडियो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: गुजरात के वडोदरा से महाराष्ट्र के अकोला पहुंची गणपति बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोलताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, भोलेनाथ की बारात बनी आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाके बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल, गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 midnight का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहाँ पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेदव्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है। जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव, कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे, तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेक

0: मिस्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
0: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नाशहि तबहि, भगवानों के करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
0: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता की परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बता

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी। हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की देखी झलक। बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर, पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजय संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए, उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चलना और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए,
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं।
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश इंडोनेशिया

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
1: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
3: लोगों का लोगों से मिलन होना
1: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
3: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
4: People to people
3: will connect through Ramayana.
1: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल ये है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाएं।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़े तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विषय, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीड़नम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है, उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: महाराष्ट्र के कूला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला, पुलिस बैंड निधि श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ, बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, बांसुरी, मुकुट, मोर, पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा, नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैंसी ग्रेस रोमा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: रफेल एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान रहता है। रफेल की ताकत और तकनीक ही कुछ ऐसी है कि रण क्षेत्र में दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रफेल की बेमिसाल खूबियां ही सबसे बड़ी वजह है कि दुश्मन रफेल के रण कौशल को डिकोड करने की कोशिश में लगा रहता है। खबर है कि चीन रफेल के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताकि रफेल की बारीकियों को समझा जा सके।
1: चीन और मिस्र के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 का आयोजन किया गया है। ये एक्सरसाइज मिस्र में हो रही है जिसमें चीन के J-16 फाइटर जेट सीधा रफेल के साथ कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्या इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि चीन रफेल की क्षमताओं को परखना चाहता है? क्या चीन रफेल के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बना है?
0: 23 अगस्त को चीन मिस्र संयुक्त एयर एक्सरसाइज में J-16 और रफेल आमने सामने आए। इस एक्सरसाइज में चीन के J-16 और मिस्र के रफेल के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई। ये पहली रिपोर्टेड ट्रेनिंग थी जिसमें किसी चीनी फाइटर ने रफेल के साथ सीधे कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मिलिट्री ड्रिल में पूरा युद्ध जैसा ही सीन था। एक और चाइनीज J-16 गरज रहे थे तो दूसरी तरफ रफेल जेट्स।
1: दरअसल मिस्र में चीन के फाइटर पायलट्स वहां की सेना और रफेल के साथ सीधे तौर पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं जिसमें पहली बार चीन के पायलट्स किसी पश्चिमी देश में बने 4.5 जेनरेशन के रफेल फाइटर जेट के साथ अभ्यास कर रहे हैं और उसकी बारीकियों को जानने समझने की कोशिश की जा रही है।
0: ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए चीन को रफेल की क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हवाई युद्ध की रणनीतियों को समझने का मौका मिल सकता है।
2: जो चाइना और इजिप्ट की एक्सरसाइज हो रही है, एक लंबी एक्सरसाइज, और इसका नाम दिया गया है ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026। ये दिखाता है कि दो सिविलाइजेशन की एक्सरसाइज, इजिप्ट की भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सो इज चाइना, तो इसका नाम बड़ा ही एप्ट रखा है। अब दो बड़े प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट, एक राफेल जो 4.5 जनरेशन है और साथ में F-16 वो भी 4.5 जनरेशन, बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, जिस तरीके से डीप स्ट्राइक करते हैं, जिस तरीके से बियॉन्ड विजुअल रेंज स्ट्राइक करते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। तो जब दोनों एक साथ हवा में उड़ेंगे और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे दोनों देशों को पता लगेगा विच एयरक्राफ्ट इज बेटर। हालांकि दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, किस तरीके से आप उसको कॉम्बैट एयर में इस्तेमाल करते हैं ये देखना होगा।
0: भारतीय वायुसेना ने LSC पर रफेल को तैनात कर रखा है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि चीन वॉर एक्सरसाइज के जरिए रफेल की कमजोरियों और उसकी उड़ान सीमाओं को समझना चाहता है। मिस्र के रफेल के साथ J-16 फाइटर के एक्सरसाइज से चीन क्या डिकोड कर सकता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है रफेल का एरोडायनामिक्स और युद्ध क्षमता जानना, जिसमें रफेल का टर्न रेट यानी कि ये हवा में कितनी तेजी से मुड़ सकता है, क्लाइंब रेट क्या है और ये क्लोज रेंज डॉग फाइट में रफेल कितनी ऊर्जा बरकरार रखता है। दूसरा है रफेल का बेसिक रडार सिग्नेचर पता लगाना। चीन के J-16 के ऐसा रडार मिस्र के रफेल का रडार क्रॉस सेक्शन डेटा रिकॉर्ड कर रहा है जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि रफेल उनके रडार पर कितनी दूरी से दिखाई दे सकता है। और तीसरा पश्चिमी युद्ध रणनीति। मिस्र की वायुसेना फ्रांसीसी और अमेरिकी युद्ध शैलियों का पालन करती है। इसके खिलाफ लड़कर चीनी पायलट पश्चिमी वायुसेनाओं की हवाई रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: अभी तक चीन के फाइटर जेट्स का मुकाबला केवल ब्रिटिश और रशियन मूल के फाइटर जेट्स के साथ ही हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे खुद चीन एक मौके के तौर पर देख रहा है, जहां पर मिस्र में इस अभ्यास में उसे किसी पश्चिमी देश, खास तौर पर फ्रांस के लड़ाकू विमान रफेल के साथ सीधे एक्सरसाइज करने का मौका मिला।
0: रक्षा जानकारों का मानना है कि एक युद्धाभ्यास से रफेल की सभी क्षमताओं या कमजोरियों का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चीन के लिए इसकी अहमियत जरूर है। पहली बार J-16 को रफेल के खिलाफ सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट का प्रत्यक्ष अनुभव मिला है और यही अनुभव भविष्य की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को प्रभावित कर सकता है। चीन राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिटियोर मिसाइल के रडार सिग्नेचर को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। ऐसा करने से चीनी डिफेंस सिस्टम को राफेल में लगी मिसाइलों को जाम करने या फिर उन्हें चकमा देने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
2: देखिए, चाइना जब किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है, जब भी कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है, उसके कई सारे मेनी फोल्ड एम्स होते हैं। सबसे बड़ा एम तो यह है कि विश्व में वो J-16 का मार्केट खोज रहा है। दूसरी तरफ वो जब राफेल के साथ उड़ेगा तो राफेल की कमियों को वो नोटिस करेगा और अपने सिस्टम में वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा। और साथ में हिंदुस्तान के पास आज की डेट में राफेल है तो इन सारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मकसद तो एक यही है कि राफेल के कंपटीशन में J-16 को पिच करके अपने वर्ल्ड में मार्केट पकड़ना, और दूसरा अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कभी उसको ऑपरेशनली कमिट करना पड़ा J-16 तो वो राफेल को कैसे काउंटर करेगा, ये इसका अल्टीरियर एम है।
0: राफेल विमान का स्पेक्ट्रा यानी सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर राफेल एयरक्राफ्ट एक बेहद उन्नत और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो राफेल लड़ाकू विमान को दुश्मन के खतरों के खिलाफ अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रा से राफेल को 360 डिग्री सुरक्षा और डिटेक्शन मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल वार्निंग के जरिए ये विमान के चारों तरफ और 360 डिग्री की कवरेज देता है। लंबी दूरी से ही दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेजर और इंफ्रारेड खतरों को समय रहते भापा जा सकता है। दुश्मन का रडार या मिसाइल किसी दिशा से आ रहे हों, यह उसकी सटीक लोकेशन पायलट को बताता है। स्पेक्ट्रा के जरिए आक्रामक और रक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार जैमिंग, स्मार्ट डिकॉय, एक्स गार्ड डिकॉय के जरिए राफेल की सुरक्षा तय होती है। रडार जैमिंग के लिए राफेल में एक्टिव फेज्ड एरे रडार जैमर्स लगे हैं जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जाम कर सकते हैं। स्मार्ट डिकॉय में ये सिस्टम इंफ्रारेड फ्लेयर्स और चाफ छोड़ता है ताकि थर्मल या फिर रडार गाइडेड मिसाइल मिसगाइड होकर राफेल के बजाय नकली मशीनों पर वार कर दें। एक्स गार्ड डिकॉय में एडवांस्ड टोड डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये स्मार्ट बॉडी डबल या छलावे के रूप में काम करता है। उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर एक्स गार्ड डिकॉय का इस्तेमाल होता है जिसमें एडवांस टॉट डिकॉय को विमान के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हवा में छोड़ दिया जाता है। एआई की मदद से डिकॉय हूबहू उसी लड़ाकू विमान के रडार क्रॉस सेक्शन, डॉपलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स की नकल करता है जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइल ट्रैकर भ्रमित हो जाते हैं और वो असली लड़ाकू विमान के बजाय डिकॉय को ही असली विमान मानकर उस पर लॉक कर देते हैं।
2: देखिए, एक्स गार्ड डिकॉय एक ऐसा सिस्टम है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब एयरक्राफ्ट किसी मिशन में जाता है या बियॉन्ड विजुअल रेंज से किसी मिसाइल को लॉन्च करता है और कहीं हवा में उसको ये महसूस होता है कि दुश्मन के रडार ने उसको लॉक कर लिया या दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर मिसाइल डालने के लिए उसको लॉक कर रखा है, ऐसे समय में एक्स गार्ड डिकॉय को वो रिलीज करता है। एक्स गार्ड डिकॉय कुछ नहीं बल्कि 100 मीटर लंबा फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू एक डिकॉय सिस्टम है जिसका की वजन 30 kg होता है। वो 100 मीटर दूर एक स्टिंग आप समझ लीजिए उससे जुड़ा हुआ वो हवा में आता है। तो जब वो एयर में इस तरीके से उड़ता है तो जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की लोकेशन है वो डिकॉय रडार पे दिखाता है, और जो मिसाइल जो लॉकिंग की हुई है आज की डेट में जब वो हवाई जहाज के नजदीक आती है तो उस डिकॉय को डिस्ट्रॉय करती है।
0: स्पेक्ट्रा में एक सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट होता है यानी कंप्यूटर यूनिट जो सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में जोड़ता है। खतरा दिखने पर यह सिस्टम बिना किसी देरी के पायलट को सबसे सटीक पैतरेबाजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक जवाबी कार्रवाई करने का सुझाव देता है। आसान भाषा में अगर स्पेक्ट्रा को समझना हो तो सीधे तौर पर यह एक तरीके से राफेल के रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। हवा या फिर जमीन से आने वाले किसी भी खतरे को ये भटका सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने हाल ही में स्पेक्ट्रा के नए F4 वर्जन को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ कितना गहरा है। चीन रफेल के खिलाफ हवाई युद्ध से जो भी डेटा और खुफिया जानकारियां जुटा रहा है उसे वो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ साझा भी कर सकता है और इससे पाकिस्तान को भी भारतीय रफेल से निपटने की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है। चीन और पाकिस्तान का रक्षा गठजोड़ इतना गहरा है कि दोनों देश इसे आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं। ये सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि संयुक्त हथियार विकास, खुफिया जानकारी साझा करने, परमाणु सहयोग और रणनीतिक सैन्य अड्डों तक फैल चुका है जिसका अहम मकसद भारत को घेरना है।
2: आसिम मुनीर कई बार चाइना के विजिट कर चुके हैं और चाइना पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मानता है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान को उसने स्लेव बना रखा। सीपैक और बीआरआई के प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से पाकिस्तान में चल रहे हैं और साथ में ये डिफेंस ट्राई, मकसद एक है कि तमाम चीजों का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाइना इस एक्सरसाइज से गैदर कर रहा है या अदरवाइज गैदर कर रहा है उसका वो शेयरिंग पाकिस्तान से जरूर करता है और पाकिस्तान को अपने हथियार बेचता है, J-16 बेचता है, तमाम तरीके के फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जो J-सीरीज के एयरक्राफ्ट है वो भी बेचने की बात है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो इस फ्रंट पे उलझा के रखना चाहता है।
0: सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 70% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन से आता है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक J-10CE फाइटर जेट दिए हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत के रफाल के मुकाबले तैनात करता है। चीन पाकिस्तानी नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके तहत टाइप 054AP जियांगकाई 2 क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और हैंगर क्लास टाइप 039B पनडुब्बियां शामिल है जो समुद्र में भारत की घेराबंदी के लिए है। पाकिस्तानी सेना चीन में बने BT-4 मेन बैटल टैंक और SH-15 होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही है। चीन सिर्फ हथियार बेचता नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उनका निर्माण भी करता है जिससे पाकिस्तान आत्मनिर्भर दिखने की कोशिश करता है। आधुनिक युद्ध रणनीति में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। चीन अपने सैटेलाइट जैसे ब्यूडो नेविगेशन सिस्टम के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता है। हाल के वर्षों में चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार को चकमा देने वाली तकनीकों जैसे होलोथीरियन एंटी रडार डिकॉय सिस्टम पर एक साथ काम करना तेज कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं साल भर उच्च स्तरीय अभ्यास करती हैं जिससे दोनों की युद्ध प्रणालियां आपस में पूरी तरह से घुल मिल गई हैं। यानी दो दुश्मनों की सांठगांठ भारत के लिए खतरा पैदा करती है और अब मिस्र में रफेल के साथ J-16 के एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नजरें भी चीन पर ही टिक गई हैं।
1: वैसे देखा जाए तो चीन मिस्र में रफेल के साथ जिस एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है उसमें इसके बुनियादी ढांचे को परखने की कोशिश कर रहा है लेकिन चीन ये बात भूल रहा है कि वो रफेल के बाहरी ढांचे को तो परख सकता है लेकिन उसकी आत्मा को परखना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत के पास जो रफेल है वो मिस्र के रफेल से बहुत अलग है। इसीलिए चीन के लिए रफेल को खास तौर पर भारतीय रफेल को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल होगा।
0: चीन मिस्र के रफेल का डाटा ले रहा है लेकिन भारतीय रफेल फिर भी सुरक्षित है। भारत ने इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स यानी कि भारत ने फ्रांस से जो रफेल खरीदे हैं उनमें 13 विशेष बदलाव करवाए हैं जिसमें कोल्ड स्टार्ट क्षमता, खतरनाक हथियारों का पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और ट्रैकिंग समेत कई तकनीकें जोड़ी गई हैं।
1: लद्दाख और अरुणाचल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में युद्ध के नियम काफी हद तक बदल जाते हैं। यहाँ पर विमान की एक्चुअल कागजी स्पीड काम नहीं करती है, यहाँ काम करती है विमान की पेलोड क्षमता और कोल्ड कैपेसिटी यानी कितने भारी मात्रा में विमान हथियारों को ले जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड में।
0: राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
2: राफेल एक ऐसा डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो हाई अल्टीट्यूड में भी काम करता है। ये इसका ऑपरेटिंग रेट 50,000 फीट है, और 50,000 फीट से ऊपर से अगर कोई ये उड़ सकता है, अपनी काबिलियत रखता है, तो ये तमाम टारगेट को, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे अरुणाचल हो, या हाई अल्टीट्यूड एरिया हो, उसमें वो स्ट्राइक कर सकता है। और साथ में इसके मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज पर आप लॉन्च करते हैं, साथ में इसका डिक्वाय सिस्टम जो इसको इनहेरेंट सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो एक बड़ा ही वर्सिटाइल प्लेटफॉर्म है। हमें 4.5 जनरेशन के इस तरीके के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। इसकी संख्या और बढ़ेगी, जैसे कि हम पाकिस्तान और चाइना अगर दो फ्रंट वॉर लड़ना पड़े तो उसके लिए भी हम सक्षम हो।
0: भारतीय वायुसेना के पास G20 का सामना करने के लिए राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J20 माइटी ड्रैगन और भारत के राफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का राफेल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं राफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है, जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं राफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह राफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है, जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं राफेल एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेटियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। राफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं

0: कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रडार से ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दोनों अलग ही रौनक है। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ जी महाराज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जब नगर भ्रमण पर निकले तो जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर उतर आया। तस्वीरें देखिए, खरगोन की सड़कें केवल रास्ता ही नहीं बल्कि भक्ति की अविरल धारा बन गई हैं। हर साल सावन महीने के दौरान भगवान सिद्धनाथ महादेव की भव्य नगर यात्रा शिवडोला उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में आकर्षक झांकियां देखने को मिलती हैं। अखाड़े ढोल धमाकों के साथ लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं।

बात करते हैं महोबा में चल रहे ऐतिहासिक कजली मेले की। 12वीं शताब्दी के चंदेल साम्राज्य की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक कजली मेले का भव्य आगाज हो चुका है। इस मौके पर शहीद स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा में वीर आला ऊदल की झांकियां देखकर पूरा महोबा जयकारों से गुंजायमान हुआ। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों पर सवार वीर आला ऊदल, राजा परमार और राजकुमारी चंद्रावल की झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। 50 से ज्यादा घोड़ों के अनूठे नृत्य को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस मेले का इतिहास सन 1182 के उस गौरवशाली युद्ध से जुड़ा हुआ है जब राजकुमारी चंद्रावल कीरत सागर

0: पर काजलिया विसर्जन के लिए जा रही थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला कर दिया था। तब वीर आलाउदल ने भीषण समर में दुश्मन को धूल चटाकर राजकुमारी की रक्षा की थी। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में महुबा में आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन कजली मेला यानी विजय पर्व मनाया जाता है। बात करते हैं दिल्ली में हुए एक अनोखे इवेंट की। फिट इंडिया मुहिम के तहत रविवार की सुबह राजधानी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक अनोखे उत्साह का गवाह बना। तस्वीरें देखिए, अवसर था संडेज ऑन साइकिल आयोजन का, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने पैडल मार कर न सिर्फ फिटनेस बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जबरदस्त संदेश दिया। फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस विशाल साइकिल रैली में बच्चों और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस आयोजन में आगामी ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस खास आयोजन में टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और पहलवान संग्राम सिंह भी पहुंचे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ

से ज्यादा भोग लगाए जाएंगे। इसके बाद ये भोग श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाएंगे। इस बार मंदिर में शुगर फ्री प्रसादम भी किया जा रहा है तैयार। इसमें चीनी की जगह खजूर, कोकोनट और पाम शुगर का होगा इस्तेमाल। जन्माष्टमी पर 200 किलो का खास केक काटा जाएगा। वहीं पर 108 किलो का केक पूरे दिन श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अकोला में गणपति बप्पा की हुई भव्य एंट्री। वडोदरा से आई 30 फीट की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। बप्पा के साथ भोलेनाथ की शादी की झांकी भी निकली। ऋषि मुनि, नंदी और राक्षसों के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ढोलताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचे भक्त। भगवा झंडे और आतिशबाजी से माहौल हुआ भक्तिमय। 30 फीट के बप्पा को देखने के लिए सड़क किनारे भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद किया। रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में चारों धाम की झांकी की हो रही है तैयारियां। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ महादेव का भव्य शिवडोला निकाला गया। शहर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। शाही रथ पर सवार भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड ने भगवान सिद्धनाथ महादेव को सलामी दी। ढोलताशों और झांकियों के साथ पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। शिव डोली की सुरक्षा करने के लिए 8 जिलों का पुलिस बल तैनात। शिवडोला मार्ग पर 350 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। डीआईजी, कलेक्टर और एसपी समेत बड़े अधिकारी संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। खरगोन का 58वां शिवडोला करीब 15 घंटे में तय करेगा 4 किलोमीटर का सफर। देर रात डोला मंदिर लौटेगा। महोबा में 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का भव्य आगाज। आलाउ दल के शौर्य की याद में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेले में निकाली गई मनमोहक झांकियां। लोगों ने की इस राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग। जन्माष्टमी से पहले गूंजने लगी बांसुरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मुस्लिम महिलाएं बना रही हैं बांसुरी। झांसी में निकली श्रीकृष्ण की शाही सवारी। नाचते गाते झूमते हुए नजर आए भक्त। इस्कॉन के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर निकाली गई हरिनाम संकीर्तन की यात्रा। हरे कृष्ण मंदिर से लेकर शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अयोध्या में श्रीकृष्ण का नाम लिखी चांदी की शिला का पूजन हुआ। संतों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा। विशेष वाहन से 1 सितंबर को वृंदावन लाई जाएगी रजत शिला। यहां पर भी विधि विधान के साथ साधु संत करेंगे पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। आज देश भर में एक ही शिफ्ट में कराई गई नीट पीजी 2026 की परीक्षा। 263,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा टूरिस्ट सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। नागपुर स्टेशन पर फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के उफान पर बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगातार चला रहे हैं प्रशासन राहत बचाव कार्य। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। अफसरों को लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। चित्रकूट में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान। हनुमान धारा जाने वाला मुख्य पुल और कई मंदिरों में बुरा हाल। मंदाकिनी की तेज धार ने चित्रकूट में बढ़ा दिए मुश्किलें। मुख्य पुल को नुकसान पहुंचने से आवाजाही पर भी पड़ रहा है असर। चित्रकूट में बाढ़ का असर मंदिरों तक पहुंच गया। हनुमान धारा समेत कई धार्मिक जगहों पर नुकसान हुआ है। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित सुरंग इलाके में राहत का काम हुआ तेज। नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचाए जा रहे हैं भारी उपकरण। नेपाल की हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय एक्सपर्ट और नेपाली सेना ने साथ में शुरू किया काम। बचाव अभियान में जुटी टीम।
नेपाल पुलिस के 6 जवान समेत कुल 90 लोग

0: उनकी टीम मौके पर तैनात हुई। कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल कर रहा है पुरजोर प्रयास। जाकुरा के साई अमार से गगना कोए दमन के समुद्र तट पर सच हुई कहावत, लाइफगार्ड ने बचाई डूबती बच्ची की जान। समंदर में मौज मस्ती करने वालों के लिए एक बड़ा सबक, समुद्र में उतरने से पहले मौसम, लहरों और सुरक्षा का रखें ख्याल। सतना बारिश के बाद जोरदार पड़ा, रेस्क्यू कर रहे बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला जा रहा है बाहर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर, कई मकान और कई बीघा खेत नदी। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, चांडिल डैम के खुले गए 15 कपाट। बिहार के कटिहार में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर, जगह जगह पानी से जल जमाव। हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में हुई मूसलाधार बारिश, उफान पर आई कई नाले। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल जमाव। जम्मू और कश्मीर के रामबन में बारिश से मौसम को सुहाना दिखा, खूबसूरत नजारा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जबरदस्त बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के चलते बदल गया मौसम का मिजाज। वेस्ट चंपारण में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट जलमग्न, प्रशासन अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताशकंद में सेना के जवानों ने दिया सैल्यूट, साथ में राष्ट्रपति शौकत भी मौजूद रहे। ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार का, हिंदुस्तान को उन्होंने ताशकंद में जीवन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस के अग्रिम बधाई दी, कहा भारत और उज्बेकिस्तान इस साल 15वीं रणनीतिक साझेदारी की बना रहा है सालगिरह। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत को बताया स्थायी स्ट्रैटेजिक साझेदार। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हेल्थ का संदेश, युग फेडरेशन के कार्यक्रम में शुमार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग में हिस्सा ले रहे लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, नमस्ते इंडिया का नजारा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग की पाठशाला में लोगों को टिप्स दिए, लोगों का बढ़ाया हौसला। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में देखी भारतीय संस्कृति की झलक, बच्चों ने पेश की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिसाल। उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए बताया स्वागत को अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड का प्रसारण किया सूर्यपथ तिरंगा अभियान के साथ नशा मुक्ति का संदेश। स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, कहा अभियान में 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को प्रोसेस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम का भी जिक्र किया, कहा मिशन शक्ति सैट से 12,000 छात्रों को मिला लाभ। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री की तारीफ की, भारतीय इतिहास पर बनाई उनकी वेबसाइट को बताया रोचक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया, 3 सितंबर को मनाई जाएगी उनकी जन्म शताब्दी। फिट इंडिया मिशन के तहत दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी हिस्सा लिया, साइकिल चलाकर लोगों को हेल्थ का संदेश। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने दिखाया जबरदस्त करतब। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई संडे ऑन साइकिल रैली, ब्रिक्स देश के लोग भी शामिल हुए, 10,000 लोगों ने साइकिलिंग में संदेश दिया। रियासी के एनजी खड्ड ब्रिज से गुजरी वंदे भारत ट्रेन, ऊंचाई से दिलकश नजारा। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शादी दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में कल स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। गौतम गंभीर की बेटी आजीम बनी फिट इंडिया एम्बेसडर। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की फ्री बस सेवा में यात्रियों का बना नया रिकॉर्ड, 3 दिन में करीब 89 लाख यात्रियों ने निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठाया। 3 दिन में 55 लाख से ज्यादा बहनों ने फ्री बस यात्रा की, वहीं पर करीब 34 लाख सहयोगियों ने भी सुविधा का लाभ लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, मुकुंदरा टनल की दूसरी लाइन शुरू हुई। लखनऊ में अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विशाखापट्टनम में डॉक्टर्स ने लॉन्च की आई डोनेशन कैंपेन। एक दिन की देरी ने बचाली मानसरोवर यात्रियों की जान, चंडीगढ़ निवासी सीए और 20 दोस्तों ने पोस्टपोन किया। बागेश्वरी माता मंदिर के नजदीक पहुंचा शेर, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया। नासा का नया स्पेस टेलीस्कोप रोमन हो गया लॉन्च, अब ये ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएगा। रोमन टेलीस्कोप धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, वहां से ये अंतरिक्ष की बहुत साफ तस्वीरें खींचेगा। वैज्ञानिक अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को भी समझ पाएंगे। रोमन की रफ्तार हबल से कई गुना ज्यादा। रोमन 2 अरब से ज्यादा आकाश गंगाओं का सर्वे करेगा। जापान के फुकुई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कत्सुयामा शहर में 24 घंटे में करीब 350 मिलीमीटर बारिश दर्ज। फुकुई ओनो और कत्सुयामा में लेवल 5 का अलर्ट हुआ जारी। भारी बारिश के बाद जापान में जमीन खिसकने का बढ़ गया खतरा। कई नदियों का पानी बढ़ गया और कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा। नेदरलैंड्स में लाल बालों वालों का लगा अनोखा जमावड़ा। टिलबर्ग शहर में रेड हैट्स डे का 21वां आयोजन किया गया। लाल बालों वाली महिलाओं के लिए खास मेकअप भी चर्चा का विषय बना रहा। इस आयोजन में दुनिया के कई देशों ने लोग पहुंचे, लोगों ने अपने देश के झंडे वाले स्टिकर भी पहने। आयोजकों का कहना है कि यहां सिर्फ लाल बाल जरूरी नहीं, मेले का मकसद लोगों की अलग अलग पहचान और खूबसूरती को बयां करना। नॉर्थ साइप्रस के पास करीब 270 यात्रियों से भरी फेरी पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए, ऊपर से फंसे हुए लोगों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। फेरी काइरेनिया बंदरगाह से तुर्की के लिए हुई थी रवाना। फेरी में करीब 270 यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। जहाज किस वजह से डूबा अभी पता नहीं। हादसा काइरेनिया के पास समुद्र में हुआ था। फिल्म टॉक्सिक ने चौथे दिन भारत में करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने अब तक कमाया कुल 190 करोड़ भारत में। नागार्जुन ने अपनी 100वीं फिल्म के लिए पुराने अंदाज का टीजर किया रिलीज। फिल्म दिसंबर में होगी रिलीज। डिमांड के बाद थिएटर मालिकों ने फिल्म द ओडिसी को आईमैक्स स्क्रीन पर दोबारा लॉन्च किया। टॉम क्रूज के फैंस के लिए शानदार खबर, एना हैथवे ने एक वीडियो जारी करके डैस ऑफ थंडर के सीक्वल को कंफर्म किया। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने घर के पलों की शानदार वीडियो शेयर की, लोगों ने कहा डाउन टू अर्थ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: नेपाल आपदा के बाद सेना, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मिलकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पहाड़ों के मलबे को चीरकर अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब भी हजारों लापता लोगों की तलाश जारी है।

0: नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को आई आपदा के बाद से अब तक लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में जमीन से आसमान तक हर मुमकिन कोशिश में लगी है कि जहां कहीं भी जिंदगी के निशान हो वहां पहुंच सके और मलबे में फंसे लोगों को निकाल सके। नेपाल सरकार का कहना है कि बचाव, राहत और आपदा के पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। रसुवा में आई आपदा के अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े इलाकों में मलबा पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग लापता है, लिहाजा तलाशी अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। त्रिशूली और नुवाकोट सहित सभी प्रभावित इलाकों में मशीनरी निरंतर काम पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी को पटरी पर लाने में आसानी हो।
1: अभी पहला मकसद तो ये रास्ता है ना, ये आगे जाने के लिए बना रहा है, और दूसरा तो ये जो घर है उसमें सही सामान निकालने के लिए चल रहा है।
0: ये तस्वीरें ढूंगे गांव की हैं, जहां सैलाब के कारण कटे हुए गांव और इलाकों में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके। इन पहाड़ी इलाकों में आपदा से सड़कों को बेइंतहा नुकसान हुआ, लिहाजा पहले दिन से हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में अब नेपाल के नुवाकोट से अब तक का सबसे बड़ा एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। नेपाल के बाद प्रभावित पहाड़ी इलाकों में कीचड़ के सैलाब और मलबे के कारण सड़कों का तकरीबन सफाया हो चुका है। ऐसे में दुर्गम इलाकों में रेस्क्यू टीमों और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा है, लिहाजा ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल के बाद प्रभावित कई इलाकों में बार बार बारिश के कारण राहत और बचाव का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खास तौर से बाढ़ के बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं है। त्रिशूली 3A, 3B और अपर त्रिशूली बन में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरंगों के मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों ने ड्रोन का सहारा लिया है। ड्रोन के जरिए सुरंग के उन हिस्सों पर नजर रखी जा रही है जहां रेस्क्यू टीम के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल है। साथ ही टनल में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। टनल में फंसे लोग मोबाइल फोन चार्ज कर सके, इसके लिए पावर बैंक भेजने की भी तैयारी की गई है। उम्मीद है कि ड्रोन की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन से सुरंगों के अंदर फंसे लोगों या उनकी मौजूदगी के किस संकेत का पता चल सकेगा। सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में मदद के लिए भारत से भी एक्सपर्ट्स की टीम और जरूरी तकनीकी सामग्री भेजी गई है।
2: We are extremely grateful for the support that the government of India has provided to us already. There's been 4 different flights that have come to Nepal with relief supplies. We had asked some experts to support us with tunnel rescue and the team had already arrived yesterday and day before yesterday.
0: Nepal mein aapda se prabhavit ilakon mein mission zindagi full speed mein jari hai. मकसद यही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों की तलाश की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। यही फिलहाल इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
6: गुड न्यूज़ टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: क्या सोना धारण करने से क्रोध बढ़ता है? क्या चांदी धारण करने से सर्दी जुखाम में सुधार होता है? क्या तांबे का प्रयोग करने से पेट की समस्याओं में राहत मिलती है? अलग अलग धातुओं का क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: महाराष्ट्र के अकोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में धातुओं और उनके प्रयोग की, उनके प्रयोग से हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: रविवार को किसी भी समय गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलाइएगा। अगर आप हर रविवार को ऐसा करें तो आपकी कुंडली का, आपके जीवन का सूर्य मजबूत होगा।
0: और चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 31 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले पंडित जी से अपना पहला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, धातुओं का हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में, अलग अलग मेटल्स के बारे में। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हर धातु अपने आप में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब आप धातुओं का सही प्रयोग करते हैं तो तुरंत लाभ होना आरंभ हो जाता है। और धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं कड़ा पहनकर या छल्ला पहनकर, यानी आपके संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसकी तरंगें आपके ऊपर असर डालती हैं। और अगर सही धातु का आप प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होना शुरू हो जाता है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि धातुओं में सोने का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व होता है और कैसे ये प्रभाव डालता है।
1: सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, यानी सोने की। इसका प्रभाव और इसका महत्व जानते हैं। देखिए, दुनिया की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली धातु सोना है। सोना यानी गोल्ड का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है, हालांकि कई जगहों पर इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। जब आप सोने का प्रयोग करते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध पर, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर ये सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सामान्यतः ये धातु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देती है। जो लोग शनि प्रधान लोग हैं, ऐसे लोगों को गोल्ड पहनने से ज्यादा लाभ नहीं होता है।
0: और आगे बढ़ने से पहले आप जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि,

0: से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आज धातुओं की बात हो रही है तो पंडित जी से अब जान लेंगे कि तांबा है जो, उसका महत्व क्या होता है और उसका हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है।
0: अब बात करते हैं तांबे की, यानी कॉपर की। तांबे का महत्व क्या है? तांबा जो है, इस धातु का गुण जल और अग्नि का मिला जुला गुण है इसके अंदर। आम तौर पर ये औषधीय धातु है, मेडिसिनल मेटल है और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, डाइजेशन पर असर डालता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा आम तौर पर शुभ नहीं होता। तांबा आम तौर पर इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहता है।
1: और अब जान लेंगे लोहे की धातु के बारे में कि लोहे की धातु का हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है।
0: अब बात करते हैं लोहे की, यानी आयरन की। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ज्योतिष में लोहे का संबंध जोड़ा जाता है शनि देव के साथ। ये शनि देव की धातु मानी जाती है और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये आपके रक्त प्रवाह पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, हड्डियों पर, बालों और कोशिकाओं पर असर डालता है। लौह धातु, लोहा जो है, ये मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है ये धातु, और सिंह राशि वालों के लिए लोहा बहुत अनुकूल नहीं होता है।
1: और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल किसका रहेगा?
0: जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है, और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1988। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। ये कह रही हैं कि नौकरी को लेकर के मेरा एक मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा कब तक हल होगा और नौकरी के मामले में मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नौकरी का जो मुकदमा है वो आपके पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में हल होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साल 2027 के शुरुआती समय में ये मामला आपके पक्ष में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भविष्य में आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिख रही है, उसमें किसी तरह के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी, दूसरा प्रश्न किसका रहने वाला है?
0: जी, अगला प्रश्न हमें पुष्पलता जी ने लिखा है, और पुष्पलता जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 15 फरवरी 2012। जन्म का समय सुबह के 9:50। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो एकाग्र नहीं होता और पढ़ाई में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके पुत्र के जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो मार्च 2027 के बाद दिखाई देती है। आगे की पढ़ाई लिखाई और आगे का जीवन आपके पुत्र का बेहतर रहेगा। अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए, और आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए तो आपके पुत्र के लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब धातुओं में बात करेंगे स्टील की। स्टील का आखिर महत्व क्या होता है और हमारे जीवन पर ये कैसे प्रभाव डालता है,
0: बात करते हैं स्टील की। स्टील के गुण क्या हैं? देखिए, स्टील के गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील जो है ये राहु और केतु की धातु मानी जाती है। स्टील का संबंध दुर्घटनाओं से, संचार से और शक्ति से होता है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटना हो, इन्फेक्शन की, कम्युनिकेशन की बीमारी हो या बार बार उतार चढ़ाव की समस्या हो, ऐसे लोगों को स्टील का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। स्टील का छल्ला बनवाकर अगर आप मिडिल फिंगर में पहने तो राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, काम की अधिकता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब बात करेंगे चांदी की। चांदी का आखिर महत्व क्या होता है और हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालता है,
0: चांदी के बारे में बात करते हैं। चांदी जो है ये धातु अत्यंत शीतल और औषधीय प्रभाव वाली मानी जाती है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चांदी जब आप प्रयोग करते हैं तो ये धातु शरीर में कफ और जल तत्व को नियंत्रित करती है। चांदी का प्रभाव या इसको धारण करने का प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है, ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए आम तौर पर चांदी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देती। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के लिए

0: की। ये जो धातु है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, शुद्ध रूप से फायर एलिमेंट की धातु है, और इसके अंदर कुछ अंश जल तत्व का पाया जाता है। पीतल का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इसका असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर सीधा पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को पीतल का प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर पित्त की समस्या से परेशान है, ज्यादातर हाइपर एसिडिटी किसी व्यक्ति को होती है और वो अगर पीतल धारण करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना

0: समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए पंडित जी से ये जान लेंगे कि हम किसी धातु का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लाभ हो।
0: जी देखिए, आप कोई भी धातु इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसका छल्ला बनवा लीजिए, सोना चांदी पीतल तांबा, एक छल्ला बनवा के मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में आप पहनिए। थोड़ा मोटा और भारी छल्ला हो तो आपको लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग धातुओं के प्याले कटोरी या कप होने चाहिए और उसमें रात भर आप पानी भर करके रख दीजिए और सुबह उठ करके उस पानी को आप पीजिए। खासतौर से तांबे के पात्र में ये बात ज़्यादा अप्लाई होती है। इस तरीके से भी

0: आप उस धातु का फायदा उठा सकते हैं।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं, अपना सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है और सुनील जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1978, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है ब्यावर, राजस्थान। सुनील जी पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सुनील जी, आपकी कठिनाई का जो समय है वो अक्टूबर 2026 तक दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के बाद स्थितियां बेहतर दिख रही हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आपका व्यापार और आपका काम निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10

0: वो एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम और आखिरी सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी,

0: कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें भोपाल से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1993। जन्म का समय शाम के 5:45। जन्म स्थान है भोपाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनके विवाह होने का जो समय है वो साल 2027 के सेकेंड हाफ में है, जून से दिसंबर 2027 के समय में इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 31 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पंडित जी से जान लेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 31 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्थान परिवर्तन के और नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामले में और संतान के मामले में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रां राहवे नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, सामान्यतः लोग शिव जी की पूजा करते हैं विवाह के लिए और आयु की रक्षा के लिए। क्या शिव जी की पूजा से दरिद्रता भी दूर होती है, धन का लाभ भी होता है? देखिए, शिव जी की कृपा से दुनिया की हर तरह की उपलब्धि पाई जा सकती है। अगर शिव जी की नियमित पूजा और प्रार्थना की जाए तो दरिद्रता दूर हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह और शाम दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ किया जाए। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
1: और चलिए आप जान लेंगे कि 31 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर किस तरह की दिक्कतें होती हैं और उन्हें कहां सुधार करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर। आपको बेवजह की मेहनत से बचना चाहिए और दूसरों की ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचना चाहिए। आपको थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी देना चाहिए ताकि आप जीवन में सुखी रह सकें।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब पंडित जी से जानने का वक्त हो चला है आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको शिक्षा में खूब सफलता चाहिए तो क्या करेंगे। सफेद रंग की सरस्वती माता की एक मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। रोज सुबह पीले फूलों से इनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपको विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान मिलेगा।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: तो 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसे में देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि द्वारका तक किशन कन्हैया बंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां बजने वाली हैं, क्योंकि श्रीकृष्ण के प्राकट्य उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की बिक्री खूब है।

0: नंद के लाला, यशोदा के कान्हा, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में है। लेकिन इस मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा का रंग सबसे अलग और सबसे जुदा रहने वाला है। इस खास मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर समेत पूरे ब्रज मंडल में अभूतपूर्व हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के एक बेहद अलौकिक और अद्भुत रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कन्हैया कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे, इसलिए जन्म स्थान के अंदर के पुष्प बंगलों को दुर्लभ पत्र, पुष्प वृक्षों और विशेष रूप से हंसों की दिव्य आकृतियों से सजाया जा रहा है।
1: भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मदिन को जन्मोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां बहुत जोर शोर भाव से चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से कर पाए, ऐसा संस्थान का प्रयास है। इस वर्ष भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। अंदर के पुष्प बंगलों को जो बना रहे हैं उसमें पत्र पुष्प वृक्ष आदि आकृति उकेरी जाएंगी और हंस, इस बार हंस आकृति जो है वह पुष्प बंगले की शोभा होंगी। बाहर बहुत ही दिव्य और भव्य विद्युत सजावट की जा रही है। निश्चित रूप से सज्जा नैना विराम होगी और श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसी सुंदर दिव्य छटा को देखकर अभिभूत हो उठेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
0: मथुरा में इस बार की जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा के एकाकार होने का महापर्व बनने जा रही है। इस विशेष मौके पर कन्हैया जी को अत्यंत दुर्लभ और नैनाभिराम पंचरत्नी पोशाक पहनाने की तैयारी है, जिसे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से 5 प्रमुख और पवित्र रत्नों के जरिए सजाया और सवारा जा रहा है।
1: पंचरत्नी पोशाक को धारण करेंगे। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे उनमें से 5 रत्न उकेरे गए हैं श्री ठाकुर जी की दिव्य पोशाक पर। श्री ठाकुर जी को इस वर्ष काशी और अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ धाम से प्रसाद आ रहे हैं, उनको भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में श्री के जन्म स्थान में प्रवेश कराया जाएगा, श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाएगा।
0: ब्रजभूमि में इस बार जन्माष्टमी का महापर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन आस्था के एक नया इतिहास रचने का महासंगम बनने जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने दिव्य रजशिला का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद जैसे ही रजशिला मणिराम दास छावनी पहुंची, हजारों भावुक संतों और भक्तों ने पुष्प वर्षा के साथ उसका वंदन किया। भक्ति भाव से सराबोर इस रजशिला को सबसे पहले माँ सरयू की गोद में पावन स्नान कराकर महाआरती अर्पित की गई, फिर वीर हनुमान जी के श्री चरणों में नतमस्तक कराकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पवित्र माटी का स्पर्श कराकर संकल्पित किया गया है।
2: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए रजशिला का पूजन किया गया। सभी संत भगवान ने पुष्प वर्षा की और सरयू नदी के किनारे ले जाकर वहां पर उस ऐतिहासिक आरती का साक्षी उस रजशिला को बनाया गया। फिर हनुमानगढ़ी आए। हनुमानगढ़ी में परम पूज्य हम सबके आराध्य हनुमान जी के चरणों में रजशिला को रखा गया। उसके बाद में श्री राम मंदिर गए, वहां पर सभी श्रद्धालुओं की जो रज थी, चरणों की रज को रजशिला में लगाया गया। उसके बाद में पूरा विधि विधान से संत भगवान ने पूजन किया।
0: पूरे ब्रज मंडल में जहां तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, वहीं वीरांगना नगर झांसी जन्माष्टमी से पहले कृष्णमय हो उठी है। इस्कॉन की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के स्वर्णिम अवसर पर शहर में अलौकिक हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। हरे कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई इस भव्य यात्रा में भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि हर कोई इसमें बहता चला गया। ढोल और मंजीरों के धुन पर गूंजता हरे कृष्णा का महामंत्र वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा भर रहा था। इस दिव्य यात्रा का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण था फूलों से सजा ये भव्य रथ, जिस पर श्री श्री नेताई गौर सुंदर और इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह विराजमान थे। सड़कों पर जहाँ जहाँ से ये रथ गुजरा, लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और भगवान का आशीर्वाद लिया।
3: तीन दिवसीय क्राफ्ट मेला मैदान में भव्य जन्माष्टमी का महोत्सव होगा। 2 तारीख को युवाओं का महोत्सव यूथ फेस्टिवल होगा, 3 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा।
0: हरे कृष्ण मंदिर से शुरू होकर पूरे झांसी नगर को भक्ति रस से सराबोर करने के बाद यह संकीर्तन यात्रा वापस कौन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा ने झांसी वासियों के दिलों में जन्माष्टमी के महापर्व की भक्तिमय अलग जगा दी है। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है, लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में पूरे उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ झांसी से अजय झा, गुड न्यूज टुडे।
4: देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में इन दिनों अलग ही रौनक है। खरगोन में भगवान सिद्धनाथ जी महाराज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए जब नगर भ्रमण पर निकले तो जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर उतर आया। तस्वीरें देखिए, खरगोन की सड़कें केवल रास्ता ही नहीं बल्कि भक्ति की अविरल धारा बन गई हैं। हर साल सावन महीने के दौरान भगवान सिद्धनाथ महादेव की भव्य नगर यात्रा शिवडोला उत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में आकर्षक झांकियां देखने को मिलती हैं। अखाड़े ढोल धमाकों के साथ लाखों की संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं।

0: देखिए, आज शिवडोला के अवसर पे मैं सभी नगरवासियों को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है और भक्तिमय माहौल है, और जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ, मुझे सेवा और त्याग का जो है कि यहाँ पे अवसर दिख रहा है, लोगों में वो भावना दिख रही है और एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। मैं इसके लिए पुलिस प्रशासन और शिवडोला समिति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
1: बात करते हैं महोबा में चल रहे ऐतिहासिक कजली मेले की। 12वीं शताब्दी के चंदेल साम्राज्य की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक कजली मेले का भव्य आगाज हो चुका है। इस मौके पर शहीद स्थल से निकली भव्य शोभा यात्रा में वीर आला उदल की झांकियां देखकर पूरा महोबा जयकारों से गुंजायमान हुआ। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों पर सवार वीर आला उदल, राजा परमार और राजकुमारी चंद्रावल की झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। 50 से ज्यादा घोड़ों के अनूठे नृत्य को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस मेले का इतिहास सन 1182 के उस गौरवशाली युद्ध से जुड़ा हुआ है, जब राजकुमारी चंद्रावल कीरत सागर पर काजलिया विसर्जन के लिए जा रही थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला कर दिया था। तब वीर आला उदल ने भीषण समर में दुश्मन को धूल चटाकर राजकुमारी की रक्षा की थी। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में महोबा में आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन कजली मेला यानी विजय पर्व मनाया जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर मां गंगा अपने पुत्र श्री हनुमान जी का अभिषेक करने खुद पहुंचती हैं। जी हां, संगम तट पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और इसी विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे ही मां गंगा का पानी मंदिर तक पहुंचा, विधि विधान के साथ यहां मां गंगा का स्वागत किया गया। मां गंगा की भव्य आरती की गई। इसी के साथ मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए।
2: संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गई, और यह अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
3: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं, जहां पर माँ गंगा अपने पुत्र बजरंगबली को स्नान कराने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि माँ गंगा यहां पर सीढ़ियों से प्रवेश कर रही हैं और बजरंगबली यहां पर शयन को जा रहे हैं। ये दुर्लभ क्षण है और इस दुर्लभ क्षण के लिए यहां पर लोग सालों से इंतजार करते हैं, जब हर वर्ष माँ गंगा यहां स्नान कराने के लिए आती हैं और ये सीढ़ियों से जो गंगा जला रहा है, और माँ गंगा का स्वागत किया गया, पूजन किया गया, इसके बाद माँ का अभिवादन किया गया। आप देख सकते हैं लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उस क्षण का इंतजार करते हैं।
2: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जल स्तर जब बढ़ा, तब एक अत्यंत दुर्लभ अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला। माँ गंगा ने स्वयं संगम तट पर स्थित प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अपने पुत्र बजरंगबली को पावन स्नान कराया।
4: गंगा माई हर साल हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही जाते हैं। पहले बार आए गंगा जी, वो आपस दीवार से लौट गए, दोबारा गंगा जी आए, वो आज और भाग्यशाली हनुमान जी महाराज का स्नान करा के ही गंगा जी प्रवेश करते हैं, फिर लौटते हैं। भगवान जी आज जो है शहर में जल शयन कर गए। हनुमान जी हर साल होता है, प्रतिदिन हर साल गंगा जी स्नान करा के ही आते, बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा दुर्लभ है कि गंगा जी स्नान।
2: जैसे ही देर रात माँ गंगा की पवित्र धारा मंदिर के गर्भ गृह तक पहुंची, पूरा परिसर हर हर गंगे और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को माँ गंगा ने आगोश में ले लिया। मंदिर के महंत और साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ गंगा का स्वागत किया। दूध, दही, घी और पंचामृत अर्पित कर माँ गंगा का अभिनंदन किया गया और भव्य आरती उतारी गई।
5: जी गंगा मैया का सबसे पहले पंचामृत द्वारा और दूध दही शहद और पंचमेवा के द्वारा अभिषेक किया गया है, गंगा मैया को अभिषेक करने के बाद दूध दही साथ पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र अर्पण किया गया है, नैवेद्य प्रसाद अर्पण किया गया है, दीप द्वारा आरती उतारी गई है, गंगा मैया की स्वागत में आरती उतारी गई है और वस्त्र अर्पण करके प्रसाद अर्पण करके भक्तों को वितरण किया।
2: मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है उस साल देश प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस अलौकिक और दुर्लभ क्षण के बाद परंपरा अनुसार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
5: बहुत ही दुर्लभ क्षण होता है जिसका प्रयागवासी लगभग 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि अब नहाए हनुमान जी महाराज का वो, लेकिन आज गंगा मैया ने अपने पुत्र का जलाभिषेक कर दिया है तो देश में तरक्की खुशहाली और समुद्री सुख समृद्धि आएगी।
2: प्रयागराज की पावन धरती और त्रिवेणी संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि करोड़ों भक्तों के अटूट श्रद्धा का प्रतीक भी है। दुनिया में हनुमान जी की खड़ी या बैठी प्रतिमाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन संगम तट पर विराजे बड़े हनुमान का स्वरूप सबसे निराला है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान की प्रतिमा न केवल अद्भुत है, पूरे विश्व में यही एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी विश्राम यानी शयन मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल जब तक गंगा का जल स्तर नहीं घटेगा तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जल स्तर घटने और मंदिर परिसर की साफ सफाई के बाद ही बजरंगबली के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। तब तक श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही लेटे हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले सकेंगे।
3: गंगा जी का पानी इस गर्भगृह में जा रहा है और माँ गंगा अपने पुत्र को स्नान कराने के लिए आई है। बजरंगबली यहाँ पर शयन कर चले गए हैं। अब मंदिर बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद जब गंगा जी का पानी वापस आएगा तो इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाके बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे है। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है। तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियाँ दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहाँ पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, वो स्वयं भगवान हैं। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामि युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बस देव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
8: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस

0: देता है, क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है, जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ नाशहि तबहि, भगवानों के करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
1: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महाराष्ट्र का कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजय संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग अंजन का है।
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चलना और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए,
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं।
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश इंडोनेशिया

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
3: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
4: लोगों का लोगों से मिलन
5: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
4: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
5: People to people.
4: People connect through Ramayana.
5: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
6: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: कर्मचारी सा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल ये है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना है? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखे। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है, लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: इसके ऊपर ऐसा गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: महाराष्ट्र के कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और रामरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाकी बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल, गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निशित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर रूप बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है, तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रज मंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे है। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बता दें इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 midnight का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, वो स्वयं भगवान हैं। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामि युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बस देव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षित यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
8: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट अघनाश ही तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघनाश कर देते हैं।

0: कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। वक्त देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: महाराष्ट्र का कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

खड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते। पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजयी संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए, उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही थी।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग है।
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चलना और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश इंडोनेशिया

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
1: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
3: लोगों का लोगों से मिलन होना
1: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
3: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthday.
1: People to people
3: will connect through Ramayana.
1: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया, हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: कर्मचारी शाखा पार इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। FB कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी सौरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने। चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना है।
0: साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखे। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़िया भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है, उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है, लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: महाराष्ट्र के अकोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला पुलिस बैंड ने दी श्री। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाके बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है, तो पूरे ब्रज मंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था, तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पर रखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था, लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन, बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हुए आएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है, वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया हुआ लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बता दें इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 midnight का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है। जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव, कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे, तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की वसुदेव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
8: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशहि तबहि, भगवानों के करोड़ों जन्म का अघनाश कर देते हैं।
8: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महाराष्ट्र के कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पिच पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की मयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजय संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

सूरज के देश में बाबा बागेश्वर जो कुर्ता पहनकर नमूदार हुए उस पर सूर्यवंशी राम के सुंदर नाम अंकित थे। राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही थी।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए। और हाँ, अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
1: बड़ा मत मेरा बजरंग अंजनी का है।
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चलना और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपल सिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो।

वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश इंडोनेशिया

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
1: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
3: लोगों का लोगों से मिलन होना
1: हम ले चाहते हैं और उसका यही उत्तम उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
3: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
1: People to people
3: will connect through Ramayana.
1: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरु जी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया, हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन कीर्तन साधना उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहते। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवोहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट या अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है, उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
4: महाराष्ट्र के कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला, पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ, बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां, बांसुरी मुकुट मोर पंख झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते, प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर, द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा, नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप, धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाकी बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया, वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निश्चित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर पॉइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे है। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहां 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो इसके लिए सारे विभाग सारे डिपार्टमेंट्स लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है। तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और काफी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 MM का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीजें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: कहा जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामी युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असब साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बस देव क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? या ज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छू कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
8: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आम तौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट यघनाशहि तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघनाश कर देते हैं।
8: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

महाराष्ट्र के अकोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवडोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान का ये युवा संत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका समेत कई देशों में रामकथा की पुण्य सरिता प्रवाहित कर चुका है। अद्भुत बात यह है कि इनकी रामकथा के प्रभाव से विदेशी धरती पर भी वैचारिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लोगों के मन की बात जानकर उनकी पर्ची फाड़ने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर ने पिछले 3-4 सालों से विदेशी धरती पर सनातन का कालजयी संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में बाबा कुछ दिनों पहले पहुंच गए थे उगते सूरज के देश यानी कि जापान में। उगते सूरज के देश में बाबा बागेश्वर ने सूर्यवंशी राम की कथा का वाचन कर लोगों का दिल जीत लिया। माथे पर त्रिपुंड, तन पर राम नामी कुर्ता और पैरों में खड़ाव डालकर बाबा जब जापान की सड़कों पर निकलते तो उन्हें देखकर जापानीज लोग कौतूहल से भर जाते, पर बाबा तो अपनी ही मस्ती में रमे रहने वाले इंसान हैं। जो भी मिला उसे शुद्ध सनातनी अंदाज में आशीर्वाद दिया।

स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का

सनातन चेतना के वैश्विक प्रसार की अपनी मुहिम के तहत बाबा बागेश्वर ने 21 अगस्त को कदम रखा उस जापान में जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है।

राम के पतित पावन नाम के बीच में राम भक्त हनुमान की तस्वीर सुदूर पूर्व के देश जापान में सनातन के पौराणिक ज्ञान प्रकाश का प्रसार करती जान पड़ रही थी।

भारतीय ऋषि मुनियों सन्यासियों की पनही माने जाने वाले खड़ाओं को पैरों में डालकर बाबा बागेश्वर जब उगते सूरज के देश की सड़कों पर निकले तो वहां सनातन का पूरा बिंब सजीव हो उठा।

0: कुछ लोग हमसे कह रहे हैं भारत छोड़ के विदेशों में प्रचार कर रहे हो सनातन का, सब जगह जरूरी है भैया, इन लोगों को भी तो अपनी तरफ खींचना है। ये अपने भारत आएंगे तो अपना स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भाव प्रबल तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअली टूरिज्म भी तो बढ़ेगा, भारत की आय भी तो बढ़ेगी, इसलिए जाना जरूरी है। हम आए, बहुत आनंद आया, मुस्कुराइए और हाँ अपना ख्याल रखना, हम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भूकंप भूकंप चला गया।
1: बड़ा मेरा बजरंग
2: 21 अगस्त को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 22 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो के मंच पर अपनी ओजस्वी वाणी में हनुमंत कथा का वाचन कर विदेशी धरती पर राम भक्ति की जीवन दायिनी धारा प्रवाहित की।
3: ऐसा ही चल रहा और सबके जीवन में आना, राम जी के जीवन में आए, कृष्ण भगवान के जीवन में आए।
4: हनुमान जी एक मात्र ऐसे पुत्र हुए जो माँ के दूध के ऋण से मुक्त हुए, माँ के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी बेटा ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं।
5: ओम पार्वती बदायरे हर हर महादेव।
2: अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर जापान के कई शहरों में गए, वहाँ की अद्भुत व्यवस्था देखी, सड़कों की साफ सफाई देखी, तकनीक का उत्कर्ष देखा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखी, लोगों का अनुशासित जीवन देखा। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने उसी धरती से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को उद्घोष करने से कतई परहेज नहीं किया।
0: बहुत अद्भुत था जापान का अनुभव, यहाँ के लोग, यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा था और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
4: हे ठाकुर सुनो, जरा ध्यान से सुनो, पागलो भगवान से कहो, पूछो क्या, अरे जोर से तो पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो।
1: तेरी बंदगी से मैं।
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी धरती पर जाकर लगातार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना का कालजयी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। जापान जाने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगस्त में ही द्वीपों के देश

0: इंडोनेशिया के बाली में उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का अलग जगाते हुए ऊर्जा संचय समागम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीपीय देश में मौजूद सनातन धर्म के अनुयायी या इस धर्म के दार्शनिक विचारों में विश्वास करने वाले लोगों को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा और एकाग्रता के मार्ग में प्रवृत्त करना था।
1: बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है। यहाँ पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
0: अगस्त में अपनी 4 दिवसीय बाली यात्रा से पहले इसी साल जून के 4th हफ्ते में भी बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखकर सनातन धर्म का परचम लहराया था। जून के 4th हफ्ते में बाबा बागेश्वर ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा की पावन सरिता प्रवाहित की थी। जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मानव मात्र की एकता को सबसे बड़ा दर्शन और मानवता की निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताकर सबका दिल जीत लिया था।
2: यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ना चाहिए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत को।
0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मानवता का पावन संदेश देने से पहले जून 2026 में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में बाबा बागेश्वर ने सनातन और बौद्ध धर्म की तात्विक समरसता का समावेशी संदेश प्रसारित कर सबका दिल जीत लिया था। हनुमान जी के अनन्य उपासक बाबा बागेश्वर श्रीलंका की धरती पर कदम रखने के बाद उस अशोक वाटिका में भी गए जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं।
3: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने।
0: श्रीलंका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सीता एलिया गांव के अलावा कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर, सनातन और बौद्ध धर्म के अनोखे संगम के रूप में प्रतिष्ठित गंगार माया मंदिर समेत कई दिव्य स्थानों पर गए और हर जगह सनातन के इस युवा संत का प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया।
4: लोगों का लोगों से मिलन होना
5: हम यही चाहते हैं और उसका यही तो उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने आए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए।
4: Guruji is hoping that Indians from India come to see the Ramayana trail over here and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
5: People to people.
4: People connect through Ramayana.
5: Uska sarvottam upay hi hai Ramayana ki dono ek dusre se jud payenge।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा का विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराने का ये सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया। दिलचस्प तो ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले आने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
6: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत? उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक बाद बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका अतिथि सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंगबली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: ब्रिटेन के अलावा बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की धरती को भी धन्य कर चुके हैं। 8 से 22 अप्रैल 2026 के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबेरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। खास बात तो यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा भी कर चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा बागेश्वर विदेशी सरजमी पर सनातन के मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार कर स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों की मुहिम को इस युग में आगे बढ़ा रहे हैं।
2: बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो युग बोध वाले संत हैं। भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को लेकर वे हमेशा सजग रहते हैं। यूं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाहिर नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे गहराई से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बाबा को राजनीति और कूटनीति से लेकर वैश्विक हलचलों तक की बारीक जानकारी है। बागेश्वर बाबा सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं और युवाओं को उसके दुष्परिणामों से दूर रहने की सलाह देते हैं।

0: सनातन का आध्यात्मिक संदेश और राम कथा की सरिता विदेशी धरती पर प्रसारित प्रवाहित करने वाले बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। बालाजी यानी बजरंग बली की भक्ति में अपना जीवन होम कर चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खासियत ये है कि उनके भीतर गजब का युग बोध है। सोशल मीडिया आज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जेन अल्फा और जेन जी से लेकर जेन एक्स और जेन मिलेनियल्स तक आज कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता है। कमाल यह है कि बालाजी के भक्ति भाव से आप्लावित रहने वाले बाबा बागेश्वर को सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से लेकर उसके डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और कंट्रोलर्स तक के बारे में गहराई से जानकारी है।
1: इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एफबी कहां से हैंडल हो रही? अमेरिका से। यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। एक्स कहां से हैंडल हो रहा? अमेरिका से। तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाएं।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा बागेश्वर की सुबह भजन, कीर्तन, साधना, उपासना से शुरू होती है। राम कथा के वाचन और सद्विचारों के प्रसार के साथ उनका दिन चढ़ता है। धाम पर आए श्रद्धालुओं के साथ संवाद और उनके मार्गदर्शन की कोशिशों के बीच इस युवा संत की संध्या होती है। पर इन सब के साथ ही राष्ट्रहित का चिंतन भी सतत चलता रहता है। भारत के मौजूदा हालात और देश में विदेशी शक्तियों के कुत्सित हस्तक्षेप को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असहज हैं और युवा पीढ़ी को इसे लेकर जागरूक करना चाहते हैं।
1: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले, ऐसी समाज को आगे करके, प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो। आंदोलन हो, आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना हो।
0: भारत की धरती पर ऐसी कई विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने युग में आध्यात्मिक चेतना के साथ ही राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा का भी संचार किया। महर्षि अरविंद और स्वामी चिन्मयानंद से लेकर स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती तक ने एक ओर जहां वेद, पुराण और उपनिषदों की योगीन विवेचना की, तो दूसरी ओर लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल की। निसंदेह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान की इसी अतुल्य परंपरा का संवहन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि युवा पीढ़ी विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने और ड्रग या सोशल मीडिया एडिक्ट होने की जगह कथा का एडिक्ट बने, तो इससे युवाओं के भविष्य के साथ ही राष्ट्र का भविष्य भी संवरेगा।
1: संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना। देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना है? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए। गुरु चरण
0: सरोज। साफ है कि बाबा बागेश्वर प्रभु की भक्ति के साथ ही राष्ट्र की भक्ति का संगम संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। वैसी भक्ति जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित पर प्रतिकूल असर पड़े, बाबा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए बाबा बागेश्वर उन कावड़ियों को भी संदेश देते हैं जो अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आमजन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं या फिर स्वच्छता का आग्रह दरकिनार कर देते हैं।
1: धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखे। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन के इस युवा संत के भीतर भक्ति की शक्ति तो है, लेकिन धर्म या परंपरा को लेकर कट्टरता या दुराग्रह नहीं है। बागेश्वर बाबा परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम की संजीवनी को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाकर विकास की सरिता प्रवाहित करने के पक्षधर हैं। परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है, इसी दर्शन को आत्मसात कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम नाम के एक भव्य दिव्य शैक्षणिक संस्थान का शुभारंभ भी उन्होंने कराया है। इस गुरुकुलम में वैदिक शिक्षा के साथ ही साइंस, मैथ्स और दूसरे रोजगारोन्मुखी विषयों की भी शिक्षा दी जा रही है। बाबा बागेश्वर खुद अविवाहित हैं, लेकिन हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर गरीब, असहाय और अनाथ कन्याओं के लिए अपनी छत्र छाया में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करते हैं। साफ है कि बाबा बागेश्वर को कम उम्र में ही जो बेहिसाब लोकप्रियता मिली है, उसके पीछे उनकी त्याग तपस्या के साथ ही मानवीय संवेदना और जनहितकारी कार्यों का बड़ा योगदान है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने बाबा बागेश्वर के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: शनि का कौन सा योग व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है? शनि का कौन सा योग विवाह के बाद तरक्की तो देता है, लेकिन अपने से बड़ी उम्र का जीवन साथी भी दे सकता है? और शनि का कौन सा शुभ योग विलंब के बावजूद बड़ी सफलताएं देता है? कौन से हैं शनि के शुभ योग और क्या है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: महाराष्ट्र के कोला में बप्पा के स्वागत में उमड़े शहरवासी। वडोदरा से लाई गई बप्पा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। खरगोन में निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। पुलिस बैंड ने दी श्री सिद्धनाथ महादेव को सलामी, हजारों लोग हर्षोल्लास के साथ हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के महोबा में भव्य शोभा यात्रा के साथ 845वें ऐतिहासिक कजली मेले का शुभारंभ। बुंदेली संस्कृति की दिखी झलक, बड़ी संख्या में जुटे लोग। मथुरा से द्वारका और अमरावती तक लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां। बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, झूला और कान्हा के कपड़ों के लिए खरीदारी में जुटे श्रद्धालु। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। उज्बेकिस्तान ने दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ भी लगाया। ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर शायद दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। द एकेडमी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म ये जवानी है दीवानी का आइकॉनिक सीन। ब्रह्मांड के नए रहस्यों का होगा खुलासा। नासा ने अंतरिक्ष में भेजा नया स्पेस टेलीस्कोप। धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर से ब्रह्मांड का 3D नक्शा बनाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे पर हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्सवों का सीजन चल रहा है। अभी सावन और रक्षाबंधन का बस समापन ही हुआ है और गणेश उत्सव, दशहरे, दीपावली की बारी आने वाली है। उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि आ रहे हैं कान्हा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजमंडल से लेकर देवभूमि द्वारका तक देश के कोने कोने में नंदलाला, गोपाला, बाकी बिहारी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादा समय अब बाकी नहीं है। चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या द्वारकाधीश मंदिर, या फिर वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर, या फिर देश में जगह जगह फैले इस्कॉन मंदिर, हर जगह लड्डू गोपाल के दिव्य जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और क्या क्या खास आयोजन होने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी ज्यादा खास है, और इसीलिए भी वो खास है क्योंकि इस बार बरसों बाद एक ही साथ अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो द्वापर युग में तब बना था जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में क्या कुछ तैयारी हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी क्या है, उनके प्राकट्य का आखिरकार क्या महात्म्य है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कान्हा आ रहे हैं तो देश के कोने कोने में उत्सव की धूम देखने को मिलने वाली है। माखन चोर, नंद किशोर, कृष्ण मुरारी, गिरधारी, नंद के लाल, गोपाल, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आज से बस कुछ ही दिनों के बाद मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर उनकी कर्म भूमि यानी कि द्वारका तक कृष्ण कन्हैया वंशी वजैया के जन्म पर बधाइयां और आने वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाने वाला है। मंदिरों में सजावट हो रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो बाजारों में बाल गोपाल के लिए वस्त्र, मुकुट और श्रृंगार के सामानों की भी काफी ज्यादा बिक्री हो रही है। इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर मेले भी लगने वाले हैं, तो कान्हा के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: आ रहे हैं कान्हा, प्रकट होने वाले हैं नंद के लाल, भक्तों को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं लड्डू गोपाल, घर घर में हो रही है बांके बिहारी लाल की जयकार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज हर ओर सुनने को मिल रही है, कृष्णमय हो रहा है माहौल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे के संकीर्तन के साथ मदन गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय, जयकार के साथ देश के कोने कोने में हर जगह भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा के जन्म स्थल ब्रज से लेकर देवभूमि द्वारका तक हर ओर उत्साह का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से कुंज बिहारी कन्हैया लाल माता यशोदा के प्यारे नंदलाल प्रकट होने वाले हैं। बस चंद दिनों के बाद किशन कन्हैया के अवतरण का इंतजार खत्म होने वाला है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव मनाया जाने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 4 सितंबर को मनाई जाने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। प्रति वर्ष इस तिथि को रात में निशित काल के दौरान जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। खास बात है कि इस बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसा संयोग आमतौर पर नहीं बनता है, जो इस बार योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बनने जा रहा है।
1: इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही शुक्रवार को मिल रही है। गुरुवार की रात में लगने से रात में शुक्रवार को 11:13 तक अष्टमी और 11:12 तक रोहिणी नक्षत्र है। 4 सितंबर को हर्षण योग है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने से स्मारता नाम वैष्णवा नाम सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन है और बहुत सुंदर संयोग है और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का योग सबको मिलेगा।
0: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारियां चल रही है तो हर तरफ खुशियों की धूम मची है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये कोई सामान्य उत्सव नहीं बल्कि इस महापर्व का अपना खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
1: कृष्ण का प्राकट्य क्या है कि ज्ञान और सत्य का प्राकट्य, यह जो विषय है, और गोकुल क्या है, प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो जन्म है, यह जन्म प्रभावित करता है कि आप जब आपके संसार में किसी प्रकार की समस्या का होता है तो भगवान ऐसे समय का चुनाव करते हैं। भगवान राम का जन्म मध्य दोपहर में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि में कारागार में जाकर जन्म लेते हैं कि सांसारिक बंधनों से अगर मुक्त होना है तो तुम कहीं पर भी रह कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो करके जीवन मुक्ति का लाभ पा सकते हो।
0: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी मंदिरों में कान्हा के जन्म उत्सव की बेहद भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। वहीं वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर सहित तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वृंदावन उनकी बाल लीलाओं की भूमि है, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्म अष्टमी का उत्सव सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि इस बार जन्म उत्सव के सिलसिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि में कान्हा का जन्म अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रजमंडल के तमाम मंदिरों में शानदार झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार बिहारी लाल जी का 5253वां जन्म महत उत्सव मनाया जाएगा, तो अवसर अत्यंत विशिष्ट है। लिहाजा भव्य उत्सव मनाने के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां द्वापर युग की भी अनूठी झलक मिल सके। इस अवसर पर पहली बार मथुरा वृंदावन का आसमान कृष्णमय होने जा रहा है। मथुरा में 4 सितंबर को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भव्य ड्रोन शो होगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में 500 ड्रोन भाग लेंगे। ड्रोन शो में श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी कथाओं और उनकी लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कोई उलझन नहीं है तो पूरे ब्रज मंडल में एक ही साथ एक ही उत्सव की शानदार छठा देखने को मिलेगी। इस सिलसिले में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण के लिए खास पोशाक और मुकुट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है और लाइटिंग भी की जा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रज के मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं को कान्हा के शानदार दर्शन होने वाले हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए मथुरा में 125 बैरियर प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर छोड़नी पड़ेगी। लोग दर्शन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पैदल जा सकेंगे। भीड़ पर नजर रखने के लिए 16 जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। साथ ही आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कान्हा के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोने कोने में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वेस्ट मटेरियल से शानदार सिंहासन तैयार किया गया है। इस बार इस तरह के सिंहासन की काफी डिमांड हो रही है।
2: हम तो लगभग 6 साल पहले से काम कर रहे हैं। जब से हमारे घर में कान्हा जी आए थे हमने अपने कान्हा जी के लिए एक सिंहासन बनाया था तो पड़ोसियों ने देख देख के कहा कि हमारा भी ऐसा बनाइए। फिर हमने दुकान पे रखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा फर्नीचर का काम था पूरा।
0: फर्नीचर कारोबारी अंकुर ने पहले अपने घर के लिए ऐसा सिंहासन बनाया था लेकिन देखते ही देखते ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अंकुर ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए सिंहासन बेड और झूले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये काम इतना बढ़ा कि अब हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून और दिल्ली तक से ऑर्डर आने लगे हैं। लोग जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए बड़े चाव से इस तरह के सामान की खरीदारी करवा रहे हैं, इस तरह की सामग्री मंगवा रहे हैं।
2: लगभग 7 इंच से स्टार्टिंग हो जाएंगे, लगभग 3-3.5 फुट तक बन जाएंगे। प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट 5000 प्लस भी हो जाता है। जन्माष्टमी में काफी डिमांड आती है, हमारे पास माल भी नहीं बचता इस तरह का, हमें भी रेडीमेड ला के फिर बेचना पड़ता है जी, अपना खत्म हो जाता है बिल्कुल।
0: जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गुजरात में राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में सौराष्ट्र के सबसे बड़े लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस साल इस मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। ये मेला 2 से 6 सितंबर तक चलेगा और इसमें 228 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा भी ले सकेंगे। इस दौरान 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ 40 स्थानीय कलाकारों की परफॉर्मेंस का आनंद भी उठा सकेंगे। सिर्फ राजकोट से ही नहीं पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने आते हैं। इस बार भी यहाँ 5 दिनों के दौरान 10 से 12 लाख लोगों के पहुँचने की संभावना है।
3: 2 तारीख को मेले का इनोग्रेशन है, इनोग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोक मेला 2026 का आयोजन सुचारू सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो इसके लिए सारे विभाग सारे डिपार्टमेंट्स लोक मेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले।
0: जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम को जाहिर करने का उत्सव है, तो हर साल की तरह इस बार भी देश के हर कोने में लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। राजकोट से रौनक बजीठिया, सहारनपुर से राहुल कुमार और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार तैयारियां चल रही हैं, तो राजधानी दिल्ली और आसपास के मंदिरों में भी इसकी रौनक कुछ कम देखने को नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सिलसिले में दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़े ही जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कृष्ण भक्ति को समर्पित इस्कॉन के मंदिरों में हर साल बड़े पैमाने पर बड़ी ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस बार वहां पर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
5: रोशनी से जगमग हुआ मंदिर, भजन कीर्तन से गूंज रहा भक्तिमय माहौल, राधा कृष्ण की भक्ति की अनूठी छटा यहाँ देखते ही बनती है। ये तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर की हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की आराधना साल भर हर पल चलती रहती है, लेकिन भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है, जब यहाँ भव्य तरीके से जन्माष्टमी के उत्सव का आयोजन होता है और मंदिर की छटा देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियाँ यहाँ पर 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। इस साल भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिर को रंग रोगन करके शानदार तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे विशाल टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि जन्माष्टमी के उत्सव में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने और भजन कीर्तन में सुविधा हो।
6: अभी हम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में हैं और यहाँ पर भी 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है और उसको लेकर टेंट लगाए जा रहे हैं, अन्य सजावट की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट वगैरह आपको लगाया जा रहा है, अलग अलग कपड़ों से, प्लास्टिक के ऊपर उसके नीचे सब कपड़ों के लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है ये तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से तैयारियाँ की जाती है। बताते हैं इस्कॉन मंदिर में जो है तैयारियाँ जो है वो पहले से ही शुरू कर दी जाती है, जन्माष्टमी से पहले से ही, और इस बार भी शुरू कर दी गई है।
5: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर को देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मंगाए गए खास किस्म के फूलों से सजाया जाता है। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी सुंदर लाइटिंग भी की जाती है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों से लाखों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने और भगवान के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लिहाजा इस बार भी व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है।
6: तो जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ के मद्देनज़र तमाम तैयारियां की जाती है, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो, चाहे मंदिर की सजावट का इंतजाम हो, अन्य इंतजाम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो फोटो है, वो जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 4 सितंबर 4 AM to 12 midnight का बताया गया है कि पूरे दिन उत्सव होता है और क्या क्या चीज़ प्रोविडेड रहेगा, वो तमाम बैग्स, हेलमेट, ETC, ये सब तमाम चीज़ें जो की जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर नहीं लाना है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जानकारियां दी गई है।
5: 4 सितंबर को यानी जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर के आसपास काफी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए यहां पर CCTV से पूरा मंदिर परिसर निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा भीड़भाड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी दिल्ली में वैसे तो राधा कृष्ण जी को समर्पित इस्कॉन के कई मंदिर हैं,
7: लेकिन दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में इस मंदिर की बात ही अलग है। श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के नाम से इस मंदिर की स्थापना 1998 में की गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और खास तौर से हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ होने वाला भव्य उत्सव श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इस बार भी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में कृष्ण भक्ति की अनूठी झांकियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कौन है भगवान कृष्ण? द्वापर युग के आखिरी चरण में आया एक विलक्षण मनुष्य, भगवान विष्णु के आठवें अवतार यानी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं भगवान है। आइए आज हम भगवान कृष्ण की जन्म कथा और उनकी लीलाओं के जरिए उन्हें पूर्णता में समझने की कोशिश करते हैं।
8: जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर असुरों, दैत्यों और राक्षसों के पाप और आतंक का साम्राज्य बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब भगवान कृष्ण धर्म की प्रतिष्ठा, साधु संतों के कल्याण और पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि संभवामि युगे युगे, यानी पहले के युगों में भी उनका प्राकट्य होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो उनका लौकिक स्वरूप है। ऐतिहासिक शोध के आधार पर ये माना गया है कि द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। उनका प्रादुर्भाव कलयुग के प्रारंभ से करीब 125 साल पहले हुआ और 125 साल 1 महीने और 5 दिन उन्होंने धरती पर बिताए। मथुरा में स्थित कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य ही निराशा और असव साध की घनघोर अंधियारे में दिव्य प्रकाश पुंज के समान है, जब अपार दुख और कष्ट में थे देवकी और वासुदेव। कंस का कारागार, हाथों और पैरों में बेड़ियां, चारों ओर पहरेदार, भादो की अमावस्या की घनघोर काली रात और मध्य रात्रि की बेला, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आए तो जीने की आस छोड़ दे। तब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ताकि दुख दर्द दूर हो सके, जीवन में नया सवेरा आ सके।
1: देखिए, यह जो संसार है, भगवान ने कारागार में जन्म लिया। कारागार क्या है? बंधन ग्रस्त संसार है। देव की बसदियों क्या है? श्रद्धा और समर्पण है। अर्धरात्रि का समय क्या है? कि अज्ञान से हमको दूर होना है।
8: श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि अधर्म के विनाश के एक ऐतिहासिक कालचक्र की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जिसे कालांतर में कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। मान्यता है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। इसी भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कृष्ण के जन्म लेते ही पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां भी खुल गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी ने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग ने बारिश से बालक की रक्षा के लिए अपने फनों से छाता तान दिया। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ दिया। वहां जन्मी कन्या योग माया को लेकर वसुदेव वापस मथुरा की जेल में आ गए। जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने पहुंचा। जैसे ही उसने उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, वो कन्या आसमान में उड़ गई। कन्या ने हंसकर कहा, मुझे मारने से क्या होगा कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बचपन में श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पर हुआ। मनुष्य रूप में अपने प्राकट्य के बाद श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिनके बारे में जानकारी आज भी श्रद्धालुओं और भक्तों को भाव विभोर कर देती है। कभी वे अपनी पालनहारी माँ को अपने मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड का दिव्य दर्शन कराते हैं, और दूसरी ओर माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी कर चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते, जो कृष्ण कंस जैसे महाबली का क्षण भर में वध कर देते हैं, जो कृष्ण नवजात अवस्था में ही पूतना जैसी दुर्दांत राक्षसी का खात्मा कर देते हैं, जो कृष्ण भयंकर कालिया नाग का मर्दन करते हैं, वही कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम के वंश में भी बंध जाते हैं।
1: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपने वंशी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही होता है दूसरे को अपने बस में कर लेना, अपने प्रेम भरी वाणी से, अपने विचार से संसार को आकर्षित करना। यह कृष्ण नाम जो है आकर्षित करने वाला नाम ही है।
8: श्री कृष्ण की अवतार लीला के दो पक्ष हैं। पहला तो सांसारिक पक्ष है। तार्किक नजरिए से देखने पर उनकी सांसारिक लीलाएं आमतौर पर असंभव प्रतीत होती हैं। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है, जो लीला के पीछे के गूढ़ तत्व का निवारण करता है। जगत लीला के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझे बगैर श्री कृष्ण के स्वरूपों को समझना नामुमकिन है। कंस का वध करके उन्होंने ये संदेश दिया कि अहंकार के रहते मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की माखन मिश्री और गोपिकाओं के चीर की चोरी की लीला में भी अत्यंत गूढ़ संदेश समाहित है। कृष्ण चोर बनकर सिर्फ माखन मिश्री या चीर ही नहीं चुराते, बल्कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सांचित पाप ताप संताप को भी चुरा लेते हैं।
1: श्री कृष्ण की लीलाएं जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को शीतल निर्मल करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग है वह करुणा का समग्र प्रकाश हमारे अंदर देता है। क्योंकि भगवान जब कुब्जा को रास्ते में पकड़ते हैं और उसका चंदन ग्रहण करते हैं तो कुब्जा को सुंदर युवती बना देते हैं, जो कंस की दासी है। तो भगवान करुणा बता रहे हैं, अपने ग्वाल बालों पर कृपा करना, अपने मित्र सुदामा पर कृपा करना, भगवान की करुणा का जो सागर है अथाह है। जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोट यघ नासहिं तबहीं, भगवान उनके करोड़ों जन्म का अघ नाश कर देते हैं।
8: भाद्रपद माह की अंधेरी रात में प्रकट होकर भगवान ने यही संदेश तो दिया कि जीवन में हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो जाएं, माया मोह जन्म मृत्यु की बेड़ियां कितनी भी अकाट्य क्यों ना हो जाएं, निराशा का भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक बार सच्चे मन से प्रबल प्रेम के साथ भगवान को याद करें तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। एक बार जब मनुष्य ईश्वर के शरणागत हो जाता है तो उसके सारे कष्ट कलेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं। यही पावन संदेश भगवान कृष्ण ने अपने प्राकृति के जरिए दुनिया को दिया है। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता के परम पावन संदेश का जो दिव्य प्रकाश फैलाया, उसकी पवित्र रोशनी से आज भी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।